अन हद वाजे परम पौ पाजे सगल व्याप रहा प्रभ साजे सब तेरी तू गुरमुख जाता दरसो है गुण गायेंदा आप निरंजन निर्मल सोई अवर न जाना दूजा कोई एक अंकार वसे मन पावे।

कर्म तर्म सच हाथ तुम्हारे वे प्रवाह अखुट पंडार है। तू दयाल कृपाल सदा प्रभ आपे मेल मिलाएगा आपे देख दिखावे आपे आपे थाप उठापे आपे आपे जोर विछोड़े करता आपे मार जीवाएगा जेती है तेती तुद अंदर देखें आप बैठ बिज मंदर नानक साच कर।

जो किस करे सो आपन पाने, लख चौरासी जी उपाय पाने सहलवाएंदा, जो तिस पावे सो नेचो होवे, मनमुख आप गनाए रोवे, नामो पुल्ला ठौर न पाए, आए जाए दुख पाएंदा, निर्मल काया उजल हंसा, तिस विच नाम निरंजन अंसा, सगले दुख अमृत कर पीवे, बहुर दुख न पाएंदा, बहु साधो दुख प्राप्त होवे, ओगो रोग सो अंत विगोवे, हरखो सोग न मिटई कभू, बिन पाने परमाएंदा, ज्ञान विहूनी पवे सभाई, साचा रव रहा लिव लाई, निरपौ शब्द गुरु सच जाता, ज्योति ज्योत मिलाएंदा, अटल अडोल अतोल मुरारे, खिन में चाहे फिर उसारे, रूप न रेखिया मृत नहीं कीमत, शब्द पेद पति आएंदा, हम दासन के दास प्यारे, साधक साच पले विचारे, मन्ने नाओ सोई जिन जासी, आपके साथ गिड़ाएंदा, पल्ले साच सचे सच्यारा, साचे पावे शब्द प्यारा, त्रिभुवन साच कला तर सापी, साचे ही पति आएंदा, वड्डा वड्डा आखे सब कोई, गुरु बिन सो जी किने न होई, साच मिले सो साचे पाए, ना विचर दुख पाएंदा, कुरों विचुन्ने ताही रुन्ने, मर मर जन में मोहलत पुन्ने, जिस बख्शे तिस देवडे आई, मेल न पछोताएंदा, आपे करता आपे पुगता, आपे तृप्ता आपे मुक्ता, आपे मुक्त दान मुक्ति सर।

नानक साच कह बेनंती मिल साचे सुख पाएंदा मारू मेला पहला अरबद नरबद तुंदू कारा तरन ना गगना हुक्म अपारा ना दिन रैन ना चंद ना सूरज सुन समाद लगाएंदा खानी ना बाणी पौन ना पानी ओपत खपत ना आवन जानी खंड पताल सपत नहीं सागर नदी ना नीर वहाएंदा ना तद सुरग मच पयाला दोजक पेत नहीं खै काला नरक सुरग नहीं।

ऐं जात न जनमा ना सो दुख सुख पाएदा ना तद जति सती बनवासी ना तद सिद्ध साधक सुखवासी योगी जंगम पेख न कोई ना को नाश कहाएदा जप तप संयम ना व्रत पूजा ना को आख वखाने दूजा आपे आप उपाय विगसै आपे कीमत पाएदा ना सुच संयम तुलसी माला गोपी कान न गऊ गुआला संत मंत पखंड न कोई ना को वंश बजाएदा कर्म तर्म नहीं माया माखी जात जन्म नहीं दिसे आखी ममता जाल काल नहीं माथे ना को किसे त्याएदा निंद बिंद नहीं जियो न जिंदो ना तद गोरख ना माचिंदो ना तद ज्ञान ध्यान कुल ओपत ना को गणत गणाएदा वरन पेख नहीं ब्राह्मण खत्री देव ना देहोरा गौ

ना को शेख मसाए कहा जी रैयत राव ना हो मैं दुनिया ना तो कहन कहाएंदा पाओ न पगती ना शिव शक्ति साजन मीत बिंद नहीं रखती आपे साओ आपे वनजारा साचे एहो पाएंदा वेद कतेब ना सिमरत शास्त्र पाठ पुराण उदय नहीं आप्त कहता बक्ता आप अगोचर आपे अलख लखाएंदा जात पाना ता जगत उपाया बाज कला आदान रहाया ब्रह्मा विष्ण महेश उपाए माया मोह वधाएंदा विरले को गुर शब्द सुनाया कर कर देखे हुक्म सवाया खंड ब्रह्मंड पता

नानक साच रते बिस्मादी। बिस्म पए गुण गाएंदा मारू मैला पहला, आपे आप उपाय निराला, साचा थान कियो दयाला, पौन पानी अग्नि का बंधन काया, कोट रचाएंदा नौ कर खापे खापन हार है, दसवें वासा अलख अपार है, सायर सप्त परे जल निर्मल, गुरमुख मैल न लाएंदा, रव सच दीपक जोत सबाई, आपे कर वेखे वडियाई, जोत स्वरूप सदा सुखदाता, सच्चे सोभा पाएंदा, गर्म है हाट पटन वापा।

से पंडार है, सर्व कला ले आपे रहया, गुरमुख से बुझाएंदा नदर करे पूरा गुर पेटे, जम जम धार न मारे फेटे, जो जल अंतर कमल बिगासी, आपे बिरसते आएंदा, आपे वर्ख है अमृत तारा, रतन जवे हर लाल अपारा, सतगुर मिले ता पूरा पाये, प्रेम पदार्थ पाएंदा, प्रेम पदार्थ लह अमोलो, कभी न काटस पूरा तोलो, सच्चे का वापारी हो वे, सच्चो सौदा पाएंदा, सच्चा सौदा बिरला को पाए, पूरा सतगुर मिले मिलाए, गुरमुख होए सो हुकम पछाने, माने हुकम समाएदा, हुक्मे आया हुक्म समाया, हुक्मे दीसे जगत उपाया, हुक्मे सुर्ग मच पयाला, हुक्मे कला रहाएदा, हुक्मे तरती तौल सिर पारंग, हुक्मे पौन पानी गैनारंग, हुक्मे शिव शक्ति करवासा, हुक्मे खेल खिलाएदा, हुक्मे आडाने आगासी, हुक्मे जल फल त्रिभुवनवासी, हुक्मे सास गिरा सदा सुन, हुक्मे देख दिखाएदा, हुक्म उपाए दस अवतारा, देव दानव अगणत अपारा, माने हुक्म सो दरगह पैजे, साथ मिलाए समाएदा, हुक्मे जुग शक्ति गुदारे, हुक्मे सिद्ध साधक विचारे, आप नाथ नथी सब जाकी, बख्शे मुक्त कराएदा, काया कोट करे महराजा, नेब खवास पला दरवाजा, मिथ्या लोभ नाही करवासा, लब पाप पछताएदा, सत संतोख नगर में कारी, जत सत संजम शरण मुरारी, नानक सहज मिले जग जीवन, गुर सबदी पत पाएदा, मारू महला पहला, सुन कला अपरंपर तारी, आप निरालम अपर अपारी, आपे कुदरत कर कर देखे, सुनो सुन उपाएदा, कौन पानी सुने के साजे, श्रेष्ठ उपाय काया गणराजे, अगन पानी जियो जोत तुम्हारी, सुनने कला रहाएदा, सुनो ब्रह्मा विष्णु महेश उपाय, सुनने वर्ते जुग सवाए, इस पद विचारे सो जन पूरा, इस मिलिए परम चुकाएदा, सुनो सपत सरोवर थापे, जिन साजे विचारे आपे, तित सत सर मनुआ गुरमुख नावे, फिर बहुर जोन न पाएदा, सुनो चंद सूरज गैनारे, किसकी ज्योत त्रिभुवन सारे, सुनने अलख अपार निरालम, सुनने ताड़ी लाएदा, सुनो तरत आकाश उपाए, जिन थम्मा राखे सच काल पाए, त्रिभुवन साज में खुली माया, आप उपाय खपाएदा, सुनो खाणी सुनो बाणी, सुनो उपजी सुन समाणी, कुछ कुछ चलत किया सुर करते, विस्माद शब्द देखाएदा, सुनो रात दिन सुदोय किए, ओ पत खपत सुखा दुख दिए, सुख दुख ही ते अमर अतीता, गुरमुख निज कर पाएदा, सामवेद ऋग जुजर असर बन, ब्रह्मे मुख माया है त्रैगुण, ताकी कीमत कह न सके को, त्यों बोले ज्यों बोलाएदा, सुनो सपत पताल उपाए, सुनो पवन रखे लिवलाए, आपे कारण किया परंपर, सब तेरो किया कमाएदा, राज्य तम सत कल तेरी छाया, जन्म मरण हो मैं दुख पाया, जिसनों कृपा करे हर गुरमुख, गुण चौ

गुरमुख समझे रोग न होई, हे गुर की पौड़ी जाने जन कोई, जुगे जुगंतर मुक्त परायण, सो मुक्त पया पत पाएदा, पंच तत् सुनो परिदासा, दे संजोगी कर्म अभ्यासा, बुरा पला दोई मस्तक लीखे, पाप पुन भी जाएदा, उत्तम सतगुरु पुरख निराले, शब्द रते हर रसमत वाले, रिद्ध बुद्ध सिद्ध ज्ञान गुरु ते पाये, पूरे पाग मिलाएदा, इस मन माया को

अंदर जुगत समाई रहो निरालम राया जग तिस की छाया जिस बाप न माया ना तिस पैन ना प्राव कमाया ना तिस ओपत खपत पुल जाती ओ अजरावर मन पाया तू अकाल पुरख नाही सिर काला तू पुरख अलेख अगम निराला सत संतोख शब्द अतीतल सहज पाए लिवलाया त्रैवर्ताए चौथे करवासा काल विकाल किए इक ग्रासा निर्मल ज्योत सर्व जग जीवन गुर अनहद शब्द दिखाया उत्तम जन संत पले हर प्यारे हर रस माते पार उतारे नानक रेण संत जन संगत।

तन पाया पंच तत् मिल ए तन किया आत्म राम पाए सुखतिया कर्म करतूत अमृत फल लागा हर नाम रतन मन पाया ना किस भूख प्यास मन मान्या सर्व निरंजन कट कट जान्या अमृत रस राता केवल बैरागी गुरमत पाए सुवाया अध्यात्म कर्म करे दिन राती निर्मल ज्योत निरंतर जाती सब दिर साल रसन रस रसना बेन रसाल बजाया बेन रसाल बजावे सोई जाकी त्रिभुवन सोजी होई नानक बूजो ए विद गुरमत हर राम नाम लिवलाया ऐसे जन विरले संसारे गुर शब्द विचारे रह निरारे आप तरह संगत कुल तारे तिन सफल जन्म जग आए।

मैं पुरख अतीत निराला आपे अलख लखाया पुरख अलेख सच्चे दीवाना हुक्म चलाए सच निशाना नानक खोज लहो कर अपना हर आत्म राम नाम पाया। सर्व निरंजन पुरुष सुजाना।

सच्चे मेल निवास निरंतर हावण जान चुकाया, नामन चले न पौन उड़ावे, जोगी शब्द अनाहद वावे, पंच शब्द चुनकार निरालम, प्रभ आपे वाय सुनाया, तो बैरागा सहज समाता, हो मैं त्यागी अनहद राता, अंजन सार निरंजन जाने, सर्व निरंजन राया, दुख पै पंजन प्रभ अविनाशी, रोग कटे साथी जम फासी, नानक हर प्रभ सो को पंजन, गुर मिले हर प्रभ पाया, काले कवल निरंजन जाने, बूझे कर्म सो शब्द पछाने, आपे जाने आप पछाने, सब किसका चोट सबाया, आपे साव आपे वनजारा, आपे परखे परखनहारा, आपे कस कसवटी लाए, आपे कीमत पाया, आप दयाल दया प्रवतारी, कट कट रव रहा बनवारी, पुरख अतीत वसैने केवल, गुरु पुरख है पुरख मिलाया, प्रभ दाना बीना गर्भ गवाए, दूजा मेटे एक दिखाए, आशा माए निरालम जोनी, अकुल निरंजन गाया, हों में मेट शब्द सुख होई, आप विचारे ज्ञानी सोई, नानक हर जस हर गुण लाहा, सत्संगत सच फल पाया, मारू मैला पहला, सच कहो सच्चे कर रहना, जीवत मरो पव जल जग तरना, गुर बोहित गुर बेड़ी तुल्हा, मन हर जग पार लंगाया, हों मैं ममता लोभ विनाशन, नौ दर मुक्ते दसवें आसन, ऊपर परे परे अपरंपर, जिन आपे आप उपाया, गुरमत ले वो हर लिव करिए, अकल गाए जम से क्या डरिए, जत जत देखो तत तत तुम ही, अवर ना दुतिया गाया, सच हर नाम सच है सरना, सच गुर शब्द जिते लग तरना, अकत कट है देखे अपरंपर, सुन गर्व ना जो नी जाया, सच बिन सत्संतोख ना पावे, बिन गुरु मुक्त ना आवे जावे, मूल मंत्र हर नाम रसायन, कहो नानक पूरा पाया, सच बिन पाव जल जाए न तरिया, एहो समुंद अथा मां बिक परिया, रह अतीत गुरमत ले ऊपर, हर निरपो कै कर पाया, झूठी जग हित की चतराई, बिलम न लागे आवे जाई, नाम विसार चले अभिमानी, उपजे बिन खपाया, उपजे बिन से बंधन बंदे, हो मैं माया के गल फंदे, जिस राम नाम नाही मत गुरमत, सो जमपुर बंद चलाया, गुर बिन मोख मुक्त क्यों पाये, बिन गुर राम नाम क्यों त्याये, गुरमत ले हो तरो पग दुतर, मुक्त पहे सुख पाया, गुरमत कृष्ण गोवर्धन तारे, गुरमत सायर पाहन तारे, गुरमत ले हो परम पद पाये, नानक गुर परम चुकाया, गुरमत ले हो तरो सच तारी, आत्म चीनो हृदय मुरारी, जम के फाहे काटे हर जप, अकल निरंजन पाया, गुरमत पंच सखे गुर पाई, गुरमत अगन निवार समाई, मनमुख नाम जपो जग जीवन, हृदय अंतर अलख लखाया, गुरमुख बूझे शब्द पति जय, उस्तक निंदा किसकी की जय, चीनो आप जपो जगदीशर, हर जगन्नाथ मन पाया, जो ब्रह्मंड खंड सो जानो, गुरमुख बूझो शब्द पछाणो, कट कट पोगे पोगन हारा, रह अतीत सवाया, गुरमत बोलो हर जस सूचा, गुरमत आखी देखो ऊचा, श्रवणी नाम सुने हर बाणी, नानक हर रंग रंगाया, मारू मेला पहला, काम क्रोध पर हर पर निंदा, लब लोभ तज हो निचिंदा, क्रम का संगल तोड़ निराला, हर अंतर हर रस पाया, नित दामन जो चमक चंदायन देखे, ऐनस ज्योत निरंतर देखे,

देख अदित रहो लिव लागी, सब त्रिभुवन ब्रह्म सबाया, अमृत रस पाए तृष्णा पौ जाए, अनपौ पद पावे आप गवाए, ऊंची पदवी ऊंचो ऊंचा, निर्मल शब्द कमाया, अदृष्ट अगोचर नाम अपारा। अतरस मीठा नाम प्यारा, नानक को जुग जुग हर जस दीजे, हर जप ये अंत न पाया, अंतर नाम प्राप्त हीरा, हर जप ते मन मन ते तीरा, दुकट कट पौ पंजन पाये, बाहुर जन्म न जाया, भगत हेत गुर सब तरंगा, हर जप नाम पदार्थ मंगा, हर पावे गुर मेल मिलाए, हर तारे जगत सवाया, जिन जप जपियो सतगुर मत वाके, जम कंकर काल सेवक पगता के, उत्तम संगत गत मित उत्तम, जग पौजल पार कराया, ए पौजल जगत शब्द गुर तरिये, अंतर की दुबदा अंतर जरिये, पंच बाण ले जम को मारे, गगन अंतर तनख चढ़ाया, साकत नर शब्द सुरत क्यों पाये, शब्द सुरत बिन आये जाये, नानक गुरमुख मुक्त परायण, हर पूरे पाग मिलाया, निरपौ सतगुर है रखवाला, भगत परापत गुरु गोपाला, तुन आनंद अनाहद वाजे, गुरु शब्द निरंजन पाया, निरपौ सो सिर नाही लेखा, आप अलेख कुदरत है देखा, आप अतीत अजोनी संभो, नानक गुरमत सो पाया, अंतर की जब सतगुर जाने, सो निरपौ गुर शब्द पछाने, अंतर देख निरंतर बूझे, अंत न मन डोलाया, निरपौ सो अब अंतर वस्या, एहनस नाम निरंजन रसिया, नानक हर जब संगत पाये, हर सहजे सहज मिलाया, अंतर बार सो प्रभु जाने, रह अलिप्त चलते कर आने, ऊपर आद सर्ब तिहु लोई, सच नानक अमृत रस पाया, मारू मैला पहला, कुदरत करने हार अपारा, कीते का नाही क्यों चारा, जी उपाय रिजक दे आपे, सिर सिर हुक्म चलाया, हुक्म चलाए रहा पर पूरे, किस नेड़े किस आखा दूरे, गुप्त प्रगट हर कट कट देखो, वर्ते ताक सबाया, जिसको मेले सुर समाए, गुर शब्दी हर नाम ते आए, अनद रूप अनूप अगोचर, गुर मिले परम जाया, मन तन तन ते नाम प्यारा, संत सखाई चलन वारा, मोह पसार नहीं संग बेली, बिन हर गुर किन सुख पाया, जिसको नदर करे गुर पूरा, शब्द मिलाए गुरमत सूरा, नानक गुर के चरण सरेवो, जिन पूला मार्ग पाया, संत जना हर तन जस प्यारा, गुरमत पाया नाम तुम्हारा, जाचक सेव करे दर हर के, हर दर गै जस गाया, सत गुर मिले ता महल बुलाए, साची दर गै गत पत पाए, साकत ठोर नाही हर मंदर, जन्म मरे दुख पाया, सेवो सतगुर समुंद अथाहा, पावो नाम रतन तन लाहा, दिखिया मल जाए अमृत सरनावो, गुर सर संतोख पाया, सतगुर सेवो संत न की जय, आशा माहे निराश रही जय, संसा दुख बिना सन सेवो, फिर बहुर रोग न लाया, साचे पावे तिस वडियाए, कौन सो दूजा तिस समझाए, हर गुरु मूरत एका वर्त है, नानक हर गुरु पाया, वाच्य है पुस्तक वेद पुराना, इक बह सुने सुनावे काना, अजगर कपट कहो क्यों खुले, बिन सतगुरु तत न पाया, करे विपूत लगावे पस में, अंतर क्रोध चंडाल सोहो में, पखंड कीने जोग न पाये, बिन सतगुरु अलख न पाया, तीरथ वर्त नेम करे उद्याना, जत सत संजम कथे ज्ञाना, राम नाम बिन क्यों सुख पाये, बिन सतगुरु परम न जाया, न्योली करम प्रियंगम पाठी, रेचक कुंभक पूरक मनहाठी, पाखंड तरम प्रीत नहीं।

आनचा तुम राम सबाया, गुर सतगुर अलख लखाया, मारू सोले मैला तीजा एक ओंकार। सतगुर प्रसाद हुक्मे सहजे सृष्ट उपाय, कर कर वेखे अपनी वड्याई, आपे करे कराए आपे, हुक्मे रहा समाई है। माया मोह जगत गुबारा, गुरमुख बूझे को विचारा, आपे नजर करे सो पाए, आपे मेल मिलाई है। आपे मेले देवड्याई, गुर प्रसादी कीमत पाई, मनमुख बहुत फिरे गिललांदी, दूजे पाए खुआई है। हौ मैं माया विचे पाई, मनमुख पूले पत गवाई, गुरमुख होवे सो नाए राचे, साचे रहा समाई है। गुर ते ज्ञान नाम रतन पाया, मन सामार मन माहे समाया, आपे खेल करे सब करता, आपे दे बुझाई है। सतगुर सेवे आप गवाए, मिल प्रीतम शब्द सुख पाए, अंतर प्यार पगति राता, सहज मते बन आई है। दुख निवारण गुर से जाता, आप मिलिया जग जीवन दाता, जिसनो लाए सोई बूझे, पौ परम शरीरों जाई है। आपे गुरमुख आपे देव, सच्चे शब्द सतगुर सेवे, जरा जम तिस जोहे न साके, साचे स्यो बन आई है। तृष्णा अग्न जले संसारा, जल जल खपे बहुत विकारा, मन मुख ठौर न पाए कबहू, सतगुर बूझ बुझाई है। सतगुर सेवन सेवड पागी, साचे नाम सदा लिव लागी, अंतर नाम रविया ने केवल, तृष्णा शब्द बुझाई है। सच्चा शब्द सच्ची है बाणी, गुरमुख विरले किने पछाणी, सच्चे शब्द रते बैरागी, आवन जान रहाई है। शब्द बुझे सो मैल चुकाए, निर्मल नाम वसे मन आए, सतगुर अपना सद ही सेवे, हो मैं विच्चों जाई है। गुर ते बूझे तांदर सूझे, नाम विहूणा कत कत लूझे, सतगुर सेवे की वड्याई, कृष्णा फूक गवाई है। आपे आप मिले ता बूझे, ज्ञान विहूणा किछु न सूझे, गुर की दात सदा मन अंतर, बाणी शब्द वजाई है। जो तुर लिखिया सो कर्म कमाया, कोई

नानक दास कहे बेनंती, पीठिया नाम दर पाई है मारू महला तीजा, एको एक वरते सब सोई, गुरमुख किरला बूझे कोई, एको रव रहा सब अंतर, तिस दिन अवर न कोई है, लख चौरासी जी उपाय, ज्ञानी चानी आज सुनाए, सबना रिजक समाए आते, कीमत होर न होई है, माया मुहो अंध अंधारा, हौ मैं मेरा पसरिया पासारा, अंदिन जलत रहे दिन राती, गुर बिन शांत न होई है, आपे जोड़ विछोड़े आपे, आपे थाप उठापे आपे, सच्चा हुक्म सच्चा पासारा, होरन हुक्म ना होई है, आपे लाए ले सो लागे, गुर प्रसादी जंगा पौ पागे, अंतर शब्द सदा सुखदाता, गुरमुख बूझे कोई है, आपे मेले मेल मिलाए, पूर्व लिखिया सो मेटना ना जाए, हम दिन भगत करे दिन राती, गुरमुख सेवा होई है, सतगुर सेव सदा सुख जाता, आपे आए मिलिया सबना का।

जय अंग दिन नाम रवे दिन राति मिल प्रीतम सुख होई है मन मुक्तात दूजह है लागा जन्मत की नाम वो अपागा आवत जात बिरथा जन्म गवाया बिन गुरु मुक्त ना होई है काया कुसुद हो मैं मल लाई जे सो तो मैं ता मैल न जाई सबर तो पै ता अच्छी हो वे फिर मैली मूल ना होई है पंच दूत काया संगार है मर मर जम में शब्द ना विचार है अंतर माया मोह गुबारा जो सुपने शुद्ध ना होई है एक पंचा मार शब्द है लागे सतगुर आए मिलियावट पागे अंतर साथ रहे रंग राते सहज समावे सोई है गुर की चाल गुरु ते जापे पूरा सेवक शब्द जापे सदा शब्द रवे कट अंतर रसना रसा कह सच सोई है हम मैं मारे शब्द निवारे हर का नाम रखे उधारे एक बिन हों होर ना जाना सहजे होए सो होई है बिन सतगुरु सहज किने नहीं पाया गुरमुख बूझे सत समाया सच्चा सेव शब्द सच राते हों मैं शब्दे खोई है आपे गुण दाता बिचारी गुरमुख देवे पक्की सारी नानक नाम समावे साचे साचे ते पत होई है मारू मैला तीजा जग जीवन साचा एको दाता गुर सेवा से शब्द पछाता एको अमर एका पत साही जुग जुग सिरकार बनाई है सोजन निर्मल जिन आप पछाता आपे आए मिलिया सुखदाता रसना शब्द रसी गुण गावे दर्शा चै पत पाई है गुरमुख नाम मिले वड्याई मनमुख निंदक पत

वह पाए सुवाई है। पर पंडित अवरा समझाए, पर जलते की खबर न पाए, बिन सतगुरु से वे नाम न पाई है, परखा के सांत न आई है। एक पसम लगाए फिर पेक तारी, बिन शब्द हूँ मैं किन मारी, हम दिन जलत रहे दिन राती, परम पेक परमाई है। एक गृह कुटुम्ब में सदा उदासी, शब्द मोए हर नाम निवासी, हम दिन सदा रहे रंग राते, तह पाए भगत चित लाई है। मन मुख निंदा कर कर विगुता, अंतर लोभ पहुँचे जिस कुत्ता, जम काल तिस कदे न छोड़े, अंत गया पछताई है। सच्चे शब्द सच्ची पत होई, बिन नाम है मुक्त न पावे कोई, बिन सतगुरु को नाम न पाए, प्रभ ऐसी बंत बनाई है। एक सिद्ध साधिक बहुत विचारी, एक एनस नाम रते निरंकारी, जिसनो आप मिलाए सो बूझे, भगत पाए पहुँच जाई है। स्नान दान करे नहीं बूझे, एक मनुआ मार मने सो लूझे, साचे शब्द रते एक रंगी, साचे शब्द मिलाई है। आपे सिरजे दे वड्याई, आपे पाने दे मिलाई, आपे नदर करे मन वस्या, मेरे प्रभु क्यों फुरमाई है। सतगुरु सेवे से जन साचे, मन मुख सेव न जानन काचे, आपे करता कर कर वेखे, जो पावे त्यों लाई है। जुग जुग साचा एको दाता, पूरे पाग

का मुख बोले दुर्मत नाम न पाई है अवगणियारी कंस न पावे मन की झूठी झूठ कमावे फिर का साव न जाने मूरख बिन गुरबूझ न पाई है दुर्मत खोटी खोट कमावे सिगार करे फिर खत्म न पावे गुणवंती सदा पिर रावे सदगुर मेल मिलाई है आपे हुक्म करे सब वेख है इकना बख्श ले तुर लेख है हम दिन नाम रते सच पाया आपे मेल मिलाई है हूँ मैं तात मुह रस लाई गुरमुख लिव साची सहज समाई आपे मेल है आपे कर वेख है बिन सतगुर बूझ न पाई है एक शब्द विचार सदा जन जागे एक माया मोह सोए रहे अपागे आपे करे कराए आपे होर करना किछु न जाई है काल मार गुर शब्द निवारे हर का नाम रखे उधारे सतगुरु सेवा के सुख पाया हर के नाम समाई है दूजे पाए फिरे देवानी माया मोह दुख माए समानी बहुते पेक करे नहीं पाए बिन सतगुरु सुख न पाई है किसनो कहिए जा आप कराए जित पावे तित राह चलाए आपे मेहरवान सुखदाता ज्यों पावे तें चलाई है आपे करता आपे पुगता आपे संजम आपे जुगता आपे निर्मल मेहरवान मधुसूदन जिसदा हुक्म ना मेटिया जाई है सेवड पागी जिन्नी एको जाता कट कट वस रहा जग जीवन दाता इक है गुप्त प्रगट है आपे गुरमुख परम पहु जाई है गुरमुख हर जियो एको जाता अंतर नाम शब्द पछाता जिस तू दे सोई जन पाए नानक नाम वडाई है मारू महला तीजा सत्साला ही गहर गंभीर है सब जग है तिस ही कैचीर है सब कट भोग वै सदा दिन राती आपे सुख निवासी है सच्चा साहिब सच्ची नाही गुर प्रसादी मन वसाई आपे आए वस्या कट अंतर टूटी जम की फांसी है किस सेवी तै किस सलाही सतगुर सेवी शब्द सलाही सच्चे शब्द सदा मत उत्तम अंतर कमल प्रगासी है देही काची कागद मिकदारा बूंद पवे बिन सह कहत न लागे बारा कंचन काया गुरमुख बूझे जिस अंतर नाम निवासी है सच्चा चौका सुरत की कारा हर नाम पोजन सच आधारा सदा तृप्त पवित्र है पावन जित कट हर नाम निवासी है हों तिन बलिहारी जो साचे लागे हर गुण गावे अंदिन जागे साचा सुख सदा तिन अंतर रसना हर रस राशि है हर नाम चेता अवरना पूजा एको सेवी अवरना दूजा पूरे गुर सब सच दिखाया सच्चे नाम निवासी है प्रम प्रम जोनी फिर आया आप पूला जा सतम पुलाया हर जियो मिले ता गुरमुख बूझे चीने शब्द अवनासी है काम क्रोध परे हम अपराधी क्या मुँह ले बोले ना हम गुण ना सेवा सादी डुबदे पाथर मेल ले हो तुम आपे साथ नाम अविनाशी है ना कोई करे ना करने जोगा आपे करे करावे तो होएगा आपे बस ले सुख पाए सभी नाम निवासी है तिर तन तरती शब्द बीज अपारा हर साचे सेती वन जब अपारा सच तन जमया कोट ना आवे अंतर नाम निवासी है हर जियो अवगणियारे नो गुण की जय आपे बस ले नाम दी जय गुरमुख हो वे सो पत पाए इकत नाम निवासी है अंतर हर तन समझ ना होई गुर प्रसादी बूझे कोई।

मन मुख ना बूझे फिर आणी जम काल कड़ी मोत निहाले अंदिन आर जा छी जय अंतर लोभ करे नहीं बूझे सिर ऊपर जम काल।

दुआ श्रिया का खत्म है आपे आपे गुण में पी जाए। गुर के शब्द सदा जन सो है नाम रसायन एव मन मोह है। माया मोह मैल पतंग ना लागे गुरमति हर नाम पी जाए। सब नाम विच वरते एक सोई गुर प्रसादी प्रगट होई। हौ मैं मार सदा सुख पाया नाय पाचे अमृत पी जाए। किलविक दुख निवारण हारा गुरमुख सेविया शब्द विचारा। सब किस आपे आप वरते गुरमुख तन मन पी जाए। माया अग्न जले संसारे गुरमुख निवारे शब्द विचारे। अंतर सांप सदा सुख पाया गुरमति नाम ली जाए। इंद्र इंद्रासन बैठे जम का पौ पावे जमना छोड़े बहु कर्म कमावे। सतगुरु पेटे ता मुक्त पाये हर हर रसना पी जाए। मनमुख अंतर पगत न होई गुरमुख पगत शांत सुख होई। पवित्र पावन सदा है बाणी गुरमत अंतर पी जाए। ब्रह्मा विष्णु महेश विचारी।

वेद पढ़े हर नाम न बूझे, माया कारण पर पढ़ लूजे, अंतर मैल अज्ञानी अंधा, क्यों कर दुत्तर तरी जय हे, वेद बाद सब आँख वखाने, ना अंतर पी जय।

सच्चे सच्चा सत रचाया, निज कर वस्या तिथे मोह न माया, सद ही साथ वस्या कट अंतर, गुरमुख करनी सारी है। सच्चा सौदा सच वापारा, ना तिथे परम ना दूजा पसारा, सच्चा तन खटिया कदे तोट ना आवे, बूझे कोई चारी है। सच्चे लाए से जन लागे, अंतर शब्द मस्तक वड़ पा।

ऊंची पौड़ी ज्ञान रतन हूँ मैं मारी है। माया मोह शब्द जलाया सच मन वस्या जा सुद पाया। सच्चे की सब सच्ची करनी हूँ मैं सिखाने वारी है। माया मोह सब आपे कीना गुरमुख विरले किन्ही चीना। गुरमुख हो वै सो सच कमावे साची करनी सारी है। कार कमाई जो मेरे प्रभ पाई हूँ मैं तृष्णा शब्द बुझाई। गुरमत सद ही अंतर शीतल हूँ मैं मार निवारी है। सच लगे तिन सब किस पावे सच्चे शब्दे सच सुहावे। ऐसे साचे से दर साचे नगरी नदर सवारी है। बिन साचे जो दूजे लाया माया मोह दुख सवाया। बिन गुर दुख सुख जाते नाही माया मोह दुख पारी है। साचा शब्द जिना मन पाया पूरब लिखिया तिनी कमाया। सच्चो सेवे सच त्यावे सच रते विचारी है। गुर की सेवा मीठी लागी आम दिन सुख सहज समाधि। हर हर करत्या मन निर्मल होवा गुर की सेव प्यारी है। से जन सुखिए सतगुर सच्चे लाए

महला तीजा आपे आप उपाय उपन्ना सब में वर्तै एक प्रछन्ना सबना सार करे जग जीवन जिन अपना आप पछाता है जिन ब्रह्मा विष्णु महेश उपाय फिर सिर संदे आपे लाए जिस पावे तिस आपे मेले जिन गुरुमुख एक हो जाता है आवा गौण है संसारा माया मोह बहुचित है विकारा तिर साचा साला ही सदही जिन गुरु का शब्द पछाता है एक मूल लगे ओनी सुख पाया डाली लागे तिन्नी जन्म गवाया अमृत फल तिन जन को लागे जो बोले अमृत बाता है।

जा तुद पाना ता सच्ची कारे लाए, अवगुण छोड़ गुण माए समाए, गुण में एको निर्मल साचा, गुर कह सबद पछाता है, जह देखा तह एको सोई, दूजी दुर्मत सब देखोई, एक स्ने प्रभ एक समाना, अपने रंग सदराता है, काया

जो इच्छे सोई फल पाए, जो रंग मजी ठहराता है, मनमुख ज्ञान कते न होई, फिर आवे ठौर न कोई, गुरुमुख ज्ञान सदा साला है, जुग जुग एक हो जाता है, मनमुख कार करे सब दुख सवाए, अंतर शब्द नाही क्यों डर जाए, गुरुमुख शब्द वसे मन साचा, सद सेवे सुख दाता है। जह देखा तू सबनी थाई, पूरे गुर सब को जी पाई, नामो नाम त्याय सदा सद।

इतना गुरुमुख शब्द पछाता है, पूरे सतगुरु बूझ बुझाई, बिन नामे मुक्त किने ना पाई, नामे नाम मिले वड्याई, सहज रह रंग राता है, काया नगर टह टह तेरी, बिन शब्द चूके नहीं फेरी, साज सलाहे साज समावे, जिन गुरुमुख एक हो जाता है, जिस

दर सात छह सात पछाता है मारू सो लेती जा। आपे करता सब जिस करना जी जंक सब तेरी सरना। आपे गुप्त वर्त सब अंतर गुर कै शब्द पछाता है। हर के भगत परे पंडारा आपे

माया मोह सब जगत उपाया, ब्रह्मा विष्णु देव सबाया, जो तुद पाने से नाम लागे, ज्ञान मति पछाता है, पाप पुनवर्ते संसारा, हर्ष शोक सब दुख है पारा, गुरुमुख हो वह सो सुख पाए, जिन गुरुमुख नाम पछाता है, कीर्तना कोई मेटन हारा, गुर कै सबदे मोख द्वारा, पूरब लिखा सो फल पाया, जिन आप मार पछाता है, माया मोह हर क्यों चितना लागे, दूजे पाए कणा दुख आगे, मनमुख परम पुले पेख सारी, अंत काल पछताता है, हर कै पाने हर गुण गाए, सब किलबिख काटे दुख सवाए, हर निर्मल निर्मल है बाणी, हर तेती मन राता है, जिसनो नदर करे सो गुण निद गाए, हों मैं मेरा ठाक रहाए, गुण अवगुण का एको दाता, गुरुमुख विरली जाता है, मेरा प्रभु निर्मल अत अपारा, आपे मेले गुर शब्द विचारा, आपे बक्से सच दृढ़ाए, मन तन साचे राता है, मन तन मेला विच जोत अपारा, गुरुमत बूझे कर विचारा, हों मैं मार सदा मन निर्मल, रसना सेव सुख दाता है, गर काया अंदर बहु हट बजारा, तिस विच नाम है अत अपारा, गुर कै शब्द सदा दर्शो है, हों मैं मार पछाता है, रतन अमोलक अगम अपारा, कीमत कवन करे बेचारा, गुर कै शब्दे तोल तोलाए, अंतर शब्द पछाता है, सिमरत शास्त्र बहुत विस्तारा, माया मोह पसरिया पासारा, मूर्ख पढ़े शब्द न बूझे, गुरमुख विरले जाता है, आपे करता करे कराए, सच्ची बाणी सच दृढ़ाए, नानक नाम मिले वड्याई, जुग जुग एको जाता है, मारू महला तीजा, को सच सेवियो सृजन हारा, सबदे दुख निवारण हारा, अगम अगोचर कीमत नहीं पाई, आपे अगम असहा है, आपे सच्चा सत वरताए, एक जन सच है आपे लाए, साचो सेवे साच कमावे, नामे सच समाहा है, तुर पगता मेले आप मिलाए, सच्ची पगती आपे लाए, साची बाणी सदा गुण गावे, इस जन्मे का लाहा है, गुरमुख वणज करें पर आप पछाणे, एक बिन को अवर न जाने, सच्चा साव सच्चे वन जारे, पूंजी नाम विसाहा है, आपे साजे सृष्ट उपाए, विरले को गुर शब्द बुझाए, सतगुर सेवे से जन साचे, काटे जम का फाहा है, पन्ने करे सवारे साजे, माया मोह दूजे जंत पाजे, मन मुख फिरे सदा अंध कमावे, जम का जेवड़ा गल फाहा है, आपे बख्शे गुर सेवा लाए, गुरमती नाम मन वसाए, अंधिर नाम त्याए साचा, इस जग में नामो लाहा है, आपे सच्चा सच्ची नाई, गुरमुख देवे मन वसाए, जिन मन वस्या से जन सो है, तिन सिर चूका कहा है, अगम अगोचर कीमत नहीं पाई, गुर प्रसादी मन वसाए, सदा शब्द सलाही गुण दाता, लेखा कोई न मंगै ताहा है, ब्रह्मा विष्णु रुद्र तिसकी सेवा, अंत न पावे अलख वेवा, जिनको नजर करे तू अपनी, गुरमुख अलख लखाहा है, पूरे सतगुर सो जी पाई, एको नाम मन वसाई, नाम जपी तै नाम त्याई, महल पाए गुण गाहा है, सेवक सेवे मन हुक्म अपारा, मन मुख हुक्म न जाने सारा, हुक्मे मन्ने हुक्मे वड्याई, हुक्मे वे परवाहा है, गुर प्रसादी हुक्म पछाने, तावत राखे

सबत सला है से जन निर्मल निज करवा सा ताहा है। सदा भगत तेरी शरण आई अगम अगोचर कीमत नहीं पाई, ज्यों तुद पावे त्यों तू राखे गुरु।

सच देवो सच समाहे मारू मैला तीजा। सतगुर सेवन सेवड पागी अंदिन सात नाम लिव लागी। सदा सुख दाता रव्या कट अंतर शब्द सच्चै ओ माहे। नदर करे ता गुरु मिलाए हर का नाम मन वसाए। हर मन वस्या सदा सुख दाता सबदे मन ओ माहे। कृपा करे ता मेल मिलाए हो मैं ममता शब्द जलाए। सदा मुक्त रहे इक रंगी नाही किसे नाल कहा है। बिन सतगुरु सेवे कोर अंधारा बिन शब्द कोई न पावे पारा। जो शब्द राते महा बैरागी सो सच शब्द लाहा है। दुख सुख करते तुर लिख पाया दूजा पाओ आप वर्ताया। गुरमुख होवे सो अलिप्तो वर्ते मन मुख का क्या बेसाहा है। से मन मुख जो शब्द ना पछाने गुर के तय की सार न जाने। तय बिन क्यों निरपो सच पाये जम काट लेगा सहा है। अफ्रियो जम मारिया ना जाई गुर के शब्दे नेर ना आई। शब्द सुने ता दूरों पागे मत मारे हर जियो वे परवाह है। हर जियो की है सब फिरकारा एहो जम क्या करे विचारा। हुक्मी बंदा हुक्म कमावे हुक्मे कटदा सहा है। गुरमुख साचे किया आकारा गुरमुख पसरिया सब पासारा। गुरमुख होवे सो सच बूझे शब्द सच्चे सुख ताहा है। गुरमुख जाता कर्म विधाता जुगचारे गुर शब्द पछाता। गुरमुख मरे ना जन्मे गुरमुख गुरमुख शब्द समाहा है। गुरमुख नाम शब्द साला है अगम अगोचर।

कहे गुरमुख उपजय साज समावे ना मर जमे ना जूनी पावे गुरमुख सदा रहे रंग राते अन दिन लेन दे लाहा है गुरमुख भगत सोहे दरबारे सच्ची बाणी सब सवारे अन दिन गुण गावे दिन राती सह छेती कर जाहा है सतगुरु पूरा सब सुनाए हम दिन भगत करो लिव लाए हर गुण गावे सद ही निर्मल निर्मल गुण पाप सहा है गुण का दाता सच्चा कोई गुरमुख बिरला बूझे कोई नानक जन नाम सलाहे बिजसे सो नाम बेपरवाह है मारू महला तीजा हर जियो सेवियो अगम अपारा किसदा अंत न पाये पारा वारा गुर प्रसाद रविया कट अंतर तित कट मत अगाहा है सब में वरते एको सोई गुर प्रसादी प्रगट होई सबना प्रतपाल करे जग जीवन दींदा रिजिक संभाहा है पूरे सतगुर बूझ बुझाया हुक्मे ही सब जगत उपाया हुक्म मन्ने सोई सुख पाए हुक्म सिर साहा पास साहा है सच्चा सतगुर शब्द अपारा तिस दे शब्द निस्तर है संसारा आपे करता कर कर वेख है देंदा पास गिराहा है कोट मदे किसे बुझाए गुर के शब्द रते रंग लाए हर साला है सदा सुखदाता हर

सतगुर पूरा साच दृढ़ाए, सच्चे शब्द सदा गुण गाए, गुणदाता वर्त है सब अंतर, सिर सिर लिखदा साहा है, सदा हदूर गुरमुख जाते, सब देशे वै सो जंत्रा पै, अनदिन सेवै सच्ची बाणी, शब्द सच्चे ओ महा है, अज्ञानी अंधा बहु कर्म दृढ़ाए, मन हठ कर्म फिर जो नी पाए, विख्या कारण लभ लोभ कमावे, दुर्मत का दो रहा है, पूरा सतगुर भगत दृढ़ाए, गुर के शब्द हर नाम चित लाए, मन तन हर रविया कट अंतर, मन पीने भगत सलाहा है, मेरा प्रभु साचा अतुर संगारण, गुर के शब्द भगत निस्तारण, मेरा प्रभु साचा सद ही साचा, फिर साहा पाप साहा है, से भगत सच्चे तेरे मन पाए, दर कीर्तन करे गुर शब्द सुहाए, साची बाणी अन दिन गावे, निरतन का नाम विसाहा है, जिन आपे मेल भी छोड़े नाही, गुर के शब्द सदा सलाही, सबना सिर तू एको साहिब, सबदे नाम सलाहा है, बिन शब्द तुदनो कोई न जानी, तुद आपे कथि अकथ कहानी, आपे शब्द सदा गुरदाता, हर नाम जप संभा है, तू आपे करता सृजनहारा, तेरा लिखिया कोई न मेटनहारा, गुरमुख नाम देवे तू आपे, सहसा गणत ना ताहा है, भगत सच्चे तेरे दरबारे, सब देसे

मेरे प्रभ साचे एक खेल रचाया, कोई ना किसी जिहा उपाया, आपे फर्क करे वेख विदसे, सब रस दे ही महा है, वाजे पाऊं ते आ

वर्ते अवर न बिया गुरु प्रसादी आप पछाने कमल विकसे बुद्ध ताहा है अपनी गहन गत आपे जाने और लोग सुन सुन आख वखाने ज्ञानी होवे सो गुरमुख बूझे साची सिफत सलाहा है देही अंदर वस्त अपारा आपे कपट खुलावना।

साधक सेना आया, गुर के शब्द अमृत की आया, अमृत की अमरा पद होए, गुर के शब्द रस पाहा है, आप पछाने सो सब गुण जाने, गुर के शब्द हर नाम वखाने, हम दिन नाम रता दिन राती, माया मोह चुका है, गुर सेवा ते सब किछ पाए, हौ मैं मेरा आप गवाए, आपे कृपा करे सुखदाता, गुर के शब्दे सोहा है, गुर का शब्द अमृत है बाणी, हम दिन हर का नाम वखाणी, हर हर सच्चा वसे कट अंतर, सो कट निर्मलता है, सेवक सेवे शब्द सलाहे, सदा रंग राते हर गुण गावे, आपे बसे शब्द मिलाए, परमल वास मन ताहा है, शब्दे अकप तथे साला है, मेरे प्रभ साचे वे परवाहे, आपे गुण दाता शब्द मिलाए, शब्दे का रस ताहा है, मन मुख पूला ठौर न पाए, जो तुर लिखिया सो कर्म कमाए, बिख्या राते बिख्या खोजे, मर्जन में दुख ताहा है, आपे आप आप साला है, तेरे गुण प्रभ तुझी माँ है, तू आप सच्चा तेरी बाणी सच्ची, आपे अलख अथाहा है, बिन गुरदाते कोई न पाए, लख कोटि जे कर्म कमाए, गुर कृपा ते तत अंतर वस्या, शब्दे सच सलाहा है, से जन मिले तुर आप मिलाए, साची बाणी शब्द सुहाए।

कारज न होवे, संयोग वियोग करते लिख पाए, कीर्तना चले चलाहा है, जीवन मुक्त गुर शब्द कमाए, हर क्यों सद ही रह समाए, गुर कृपा चे मिले वड्याई, होमे रोग ना ताहा है, रस रस खाए पिंड वधाए, एक करे गुर शब्द ना कमाए, अंतर रोग महा दुख पारी, बिस्ता माए समाहा है, वेद पढ़े पढ़ बाद वखाने, काट में ब्रह्म तिस शब्द ना पछाने, गुरमुख होवे सो तत बिलोवे, रसना हर रस्ता है, सार वस छोड़े बाहर तावे, मन मुख अंधे साध न पावे, अन रस राती रसना फीकी, बोले हर रस मूल न ताहा है, मन मुख देही परम पतारो, दुर्मत मरे नित होए खुआरो, काम क्रोध मन दूजे ला

शब्द पतारो आम दिन पोग पोगे हर स्यों प्यारो महला अंदर गैर महल पाए पाना बुझ समाहा है आपे देवे देवनहारा किस आ गए नहीं किसे का चारा आपे बक्के शब्द

गुरमुख सच्चो सच वखाणे, गुरमुख सत्सेवै सच्चो सच्चा, गुरमुख सबक सुनाएदा, गुरमुख होवै सो जी पाए, हो मैं माया परम गवाए, गुर की पौड़ी उत्तम ऊची, दर सच्चे हर गुण गाएदा, गुरमुख सच संजम करनी सार, गुरमुख पाए मोख द्वार, पाए पगत सदा रंग राता, आप गवाए समाएदा, गुरमुख होवै मन खोज सुनाए, सच्चे नाम सदा लिवलाए, जो तिस पावे सोई करसी, जो सच्चे मन पाएदा, जा तिस पावे सतगुरु मिलाए, जा तिस पावे ता मन वसाए, अपने पाने सदा रंग

गुरुमुख होवे सो सुख कमाए, मरण जीवन की सो जी पाए। मरण जीवन जो सम कर जाने सो मेरे प्रभ पाएंदा।

गुरमुख निर्मल मैल न लावे, नानक नाम रते विचारी, नामे नाम समाएदा मारू महला तीजा, आपे श्रेष्ठ हुकम सब साजी, आपे खाप उठाप निवाजी, आपे न्याय करे सब साचा, साचे साथ मिलाएदा, काया कोट है आकारा।

जिस अंतर पवे अंतर नहीं पाले, माया मोह बद्दा जम काले, जम की फांसी कबू न टूटे, दूजे पाए परमाएदा, जब तप संजम होर कोई नाही, जब लग गुर का शब्द ना कमाही, गुर के शब्द मिलिया सच पाया, सच्चे सच समाएदा, काम क्रोध सबल संसारा, बहु कर्म कमावे सब दुख का पसारा, सतगुर सेवे से सुख पावे, सच्चे शब्द मिलाएदा, पौन पानी है बेसंतर, माया मोह वर्त है सब अंतर, जिनकी ते जांच से पछाने, माया मोह चुकाएदा, एक माया मोह गर्भ

गुरमुख देव है शब्द पछाणे, नानक दास कहे बेनंती। सतनाम सितलाएंदा मारू महला तीजा, आद जुगाद दया पत दाता, पूरे गुर कह शब्द पछाता। सुदनो सेवै से तुझे समावै, तू आपे मेल मिलाएंदा, अगम अगोचर की।

मत देहे सो होवे तू आपे शब्द बुझाएंदा अन दिन आर जा चीज दी जाए रैन दिन दोए साखी आए मनमुख अंग ना के तै मूड़ा सिर ऊपर काल रुआएंदा मन तन शीतल गुर चरणी लागा अंतर परम गया पो पागा सदा आनंद सच्चे गुण गावे सच बाणी बोलाएंदा जिंतु जाता कर्म विधाता पूरे पाग गुर शब्द पछाता जत पत सच सच्चा।

कर्म होवे गुरु भगत दृढ़ाए, बिन कर्मा क्यों पाया जाए। आपे करे कराए करता, ज्यों पावे तिवें चलाएंदा। सिमरत सासत अंत न जाने, मूरख अंधा तत न पछाने। आपे करे कराए करता, आपे परम पुलाएंदा। सब किस आपे आप कराए, आपे सिर सिर संदे लाए। आपे थाप उठा पे वेखे, गुरमुख आप बुझाएंदा। सच्चा साहिब गहर गंभीरा, सदा सलाही तामन तीरा। अगम अगोचर कीमत नहीं पाई, गुरमुख मन वसाएंदा। आप निराल मोहर तंदे लोई, गुर प्रसादी बूझे कोई। नानक नाम वसे कट अंतर, गुरमती मेल मिलाएंदा। मारू महला तीजा, जुग छत्ती कियो गुबारा। तू आपे जाने सिरजनहारा, होर क्या को कह के आंख बखाने। तू आपे कीमत पाएंदा, ओंकार सब सृष्ट उपाई। सब खेल तमाशा तेरी वड्याई, आपे वेख करे सब साचा। आपे पन कराएंदा, बाजीगर इक बाजी पाई। पूरे गुरते नदरी आई, सदा अलिप्त रह गुर सबदी। साचे सो चितलाएंदा, बाजे बाजे तुन आकारा। आप वजाए वजावन हारा,

सहसा मूल न चुके विकारा, गुरमुख हो वैसो गणत चुकाए, सच्चे सच समाएदा, जे सच दे ता पाए कोई, गुर प्रसादी प्रगट होई, सच नाम सलाहे रंग राता, गुर कृपा ते सुख पाएदा, जप तप संजम नाम प्यारा, किलविख काटे काटनहारा, हर कै नाम तन मन शीतल होवा, सहजे सह समाएदा, अंतर लोभ मन मैले मल लाए, मैले कर्म करे दुख पाए, कूड़ो कूड़ करे वा पारा, कूड़ बोल दुख पाएदा, निर्मल बाणी को मन वसाए, गुर प्रसादी सहसा जाए, गुर कै पाणे चले दिन राती, नाम चेत सुख पाएदा, आप सिरंदा सच्चा सोई, आप उपाय खपाए सोई, गुरमुख हो वैसो सदा सलाहे, मिल साचे सुख पाएदा, अनेक जतन करे इंद्री वसना होई, काम क्रोध जले सब कोई, सतगुरु से

हर जियो दाता अगम अथाहा, उस तिल न तमाए वे परवाहा, जिसनो अपर न सके कोई, आपे मेल मिलाएगा, जो किस करे सो नहचो होई, जिस बिन दाता अवर न कोई, जिसनो नाम दान

अंतर साज परम सुखाए सत सचै का आपे दाता जिस देव है सो सच पाएगा आपे करता सबना का सोई जिसनो आप बुझाए बुझे कोई आपे बख्शे दे वड्याई आपे मेल मिलाएगा हो मैं कर दिया जन्म गवाया आगे मोह न चूके माया अगे जमकाल लेखा ले जो तिल कानी पीड़ाएगा पूरे पाक गुर सेवा होई नजर करे ता सेवे कोई जमकाल किस नेड़ ना आवे महल सच्चे सुख पाएगा तिन सुख पाया जो तुद पाए पूरे पाक गुर सेवा लाए तेरे हथ है सब वड्याई जिस देवे सो पाएगा अंदर परदास गुरु ते पाए नाम पदार्थ मन वसाए।

पीजै रसना नाम से आए रस पीजै रस ही से रस पाएगा महल अंदर महल को पाए गुर कै शब्द सच चित लाए जिसनो सच दे सोई सच पाए सच्चे सच मिलाएगा नाम विसार मन तन दुख पाया माया मोह सब रोग कमाया बिन नाम है मन तन है कुश्ती नरके वासा पाएगा नाम रते तिन निर्मल देहा निर्मल हंसा सदा सुख नेहा नाम सलाए सदा सुख

गुर कै शब्द हर मन वसाए, गुर कृपा ते नाम वसिया कट अंतर, नामो नाम ते आइंदा, नामे नो लोचे जेती सब आई, नाव सिना मिले तुर पुरब कमाई, जिन्नी नाव पाया सेवट पागी, गुर कै शब्द मिलाएंदा, काया कोट अत अपारा, तिस विच बह प्रभ करे विचारा, सच्चा न्याओ सच्चो वापारा, निचल वासा पाएंदा, अंतर कर बंके थान सुहाया, गुरमुख विरले किने थान पाया, किस साथ निभ है साला है सच्चे, हर सच्चा

दिन सब दे सब अंधेरा गुरमुख किसे बुझाएगा। एक चित आए जन्म गवाए मन मुख लागे दूजे पाए ए वेला सिर हाथ न आवे पद किसे पछताएगा। गुर के शब्द पवित्र शरीरा किस विच वसे सच गुणी गहीरा सचो सच वेखे सब थाई सच

मेरे साथ सुख पाएगा। सोचे तेज आप चिताए, गुर कै शब्द वसै मन आए। आपे वेखे आपे बूझे, आपे आप समाएगा। जिन मन विच वथ पाई सोई जाने, गुर कै शब्दे

शरीर सब मूल है माया, दूजे पाए परम पुलाया, हर ना चेते सदा दुख पाए, बिन हर चेते दुख पाएगा, जे सतगुर सेवे सो परवान, काया हंस निर्मल दर्श कह जान, हर सेवे हर मन वसाए, सो है हर गुण गाएगा, बिन पादा गुर सेविया ना जाए, मन मुख फूले मोए बिल लाए।

पुत्र इस बाणी ते हर नाम पाएंदा। वेद पढ़े अन दिन वाद संभाले, नाम न चेत बद्दा जमकाले। दूजे पाए सदा दुख पाए, त्रै गुण परम पुलाएंदा। गुरमुख एक स्यों लिवलाए, त्रिविध मनसा मने समाए। साचे शब्द सदा है मुक्ता, माया मोह चुकाएंदा। जो तुर राते से हुन राते, गुर प्रसादी सहजे माते। सतगुर सेव सदा प्रभ पाया, आपे आप मिलाएंदा। माया मोह परम न पाए, दूजे पाए लगा दुख पाए। सूहा रंग दिन थोड़े होवे, इस जांदे बिलम न लाएंदा। इहो मन पै पाए रंगाए, इत रंग साचे माहे समाए। पूरे पाग को इहो रंग पाए, गुरमती रंग चढ़ाएंदा। मनमुख बहुत करे अभिमान।

गुर प्रसादी हर मिले मिलाया, सच्चा प्रभु सच्चा वापारा, नाम अमोलक पाएदा, इस काया की कीमत किने न पाई, मेरे ठाकुर ए बनत बनाई, गुरमुख हो वै सो काया सो दे, आपे आप मिलाएदा, काया विच तोटा काया विच लाहा, गुरमुख खोजे वे परवाह, गुरमुख वणज सदा सुख पाए, सहजे सहज मिलाएदा, सच्चा महल सच्चे पंडारा, आपे देवे देवनहारा, गुरमुख साला है सुखदाते, मन मेले कीमत पाएदा, काया विच वस्त कीमत नहीं पाई, गुरमुख आपे दे वड्याई, जिसदा हट सोई वत जाने, गुरमुख दे ना पछोताएदा, हर जियो सब में रहा समाई, गुर प्रसादी पाया जाई, आपे मेल मिलाए आपे, सब दे सहज समाएदा, आपे सच्चा शब्द मिलाए, सब दे विच्चों परम चुकाए, नानक नाम मिले वड्याई, नामे ही सुख पाएदा, मारू महला तीजा, अगम अगोचर वे परवाहे, आपे मेहरवान अगम अथाहे, अपड़ कोई न सके तिसनो, गुर शब्दी मेल आया, तुदनो सेवे जो तुद पावे, गुर कै शब्दे सच समावे, अन दिन गुण रवे दिन राती, रसना हर रस पाया, शब्द मरे से मरण सवारे, हर के गुण हृदय उतारे, जन्म सफल हर चरणी लागे, दूजा पाव चुकाए।

अंत न पारा कीमत नहीं पाई। आपे दया करे सुखदाता गुण में गुणी समाया। इस जग में मोह है पसारा मनमुख अज्ञानी अंध अंधारा। तंदे तावत जन्म गवाया बिन नावे दुख पाया। कर्म होवे ता सतगुरु पाए हौं मैं मैल शब्द जलाए। मन निर्मल ज्ञान रतन चानन अज्ञान अंधेर गवाया। तेरे नाम अनेक कीमत नहीं पाई सच नाम हर हृदय वसाई। कीमत कौन करे प्रभ तेरी तू आपे सहज समाया। नाम अमोलक अगम अपारा ना को हुआ तो लनहारा। आपे तोले तोल तोलाए गुर शब्दी मेल तोलाया। सेवक सेवे करे अरदास तू आपे मेल बहा ले पास। सबना जिया का सुखदाता पूरे कर्म ते आया। जत सत संजम जे सच कमावे यह मन निर्मल जे हर गुण गावे। इस बिख में अमृत प्राप्त होवे।

मिलाया पूरे शब्द भगत सुहाई अंतर सुख तेरे मन पाई मन तन सच्ची भगती राता सच्चे सो चितलाया हऊ मैं विच सब जलै शरीरा कर्म होवे पेटे गुरपूरा अंतर अज्ञान शब्द बुझाए सतगुर ते सुख पाया मन मुख अंधा अंध कमाए बहु संकट जो नी

सुधारे गुर के शब्द मरे मन मारे हों में जाए समाया आवन जाने परज विगोई बिन सतगुर थिर कोई न होई अंतर जोत शब्द सुख वस्या ज्योति जोत मिलाया पंच दूत चित में विकारा माया मोह का इहो पसारा सतगुर सेवे ता मुक्त होवे पंच दूत वस आया बाज गुरु है मोह गुबारा फिर डुब्बे वारो वारा सतगुर पेटे सच दृढ़ाए सच नाम मन पाया साचा दर साचा दरवारा सच्चे सेवे शब्द प्यारा सच्ची तुन सच्चे गुण गावा सच्चे माए समाया करे अंदर को कर पाए गुर के शब्दे सह सुवाए उठे सोग विजोग न व्यापे सहजे सहज समाया दूजे पाए दुष्टा का वासा पौंदे फिरे बहु मोह प्यासा कुसंगत बह सदा दुख पावे दुखो दुख कमाया सतगुर बाजो संगत न होई बिन शब्दे पार न पाए कोई सहजे गुण रवे दिन राती ज्योति जोत मिलाया काया बिरख पंखी विचवासा अमृत चुगे गुर

सतगुर प्रसाद। सच्चा आप सवारण हारा, अवर न सूझस बीजी कारा, गुरमुख सच वसे कट अंतर, सहजे सच समाई है, सबना सच वसे मन माही, गुर प्रसादी सहज समाई, गुर गुर करत सदा सुख पाया, गुर चरणी चितलाई है, सतगुर है ज्ञान सतगुर है पूजा, सतगुर सेवी अवर न दूजा, सतगुर ते नाम रतन तन पाया, सतगुर की सेवा पाई है, बिन सतगुर जो दूजे लागे, आवे जाए परम मरे अपागे, नानक तिन की फिर गत होवे, जी गुरमुख रहे शरणाई है, गुरमुख प्रीत सदा है साची, सतगुर ते मांगो नाम अजाची, ओ दयाल कृपा कर हर जियो, रख ले वो गुर शरणाई है, अमृत रस सतगुरु चुआया, दसवें द्वार प्रगट हो आया, तह अनहद शब्द वजह तुन बाणी, सहजे सहज समाई है, जिनको करते तुर लिख पाई, अंग दिन गुर गुर करत विहाई, बिन सतगुर को सीजे नाही, गुर चरणी चित लाई है, जिस पावे तिस आपे दे, गुरमुख नाम पदार्थ ले, आपे कृपा करे नाम देवे, नानक नाम समाई है, ज्ञान रतन मन प्रगट पया, नाम पदार्थ सहजे लया, ए वड्याई गुर ते पाई, सतगुर को सद बल जाई है, प्रगटिया सूर निस्मिटिया अंधियारा, अज्ञान मिटिया गुर रतन अपारा, सतगुर ज्ञान रतन अतपारी, कर्म मिले सुख पाई है, गुरमुख नाम प्रगटी है सोए, चहु जुग निर्मल हच्छा।

गुरुमुख नाम समाय समावे, नानक नाम त्याई है, पगता मुख अमृत है बाणी, गुरुमुख हर नाम आख वखाणी, हर हर करत सदा मन बिकसे, हर चरणी मन लाई है, हम मूर्ख अज्ञान ज्ञान किछ नाही, सतगुरु ते समझ पड़ी मन माही, हो दयाल कृपा कर हर जियो, सतगुरु की सेवा लाई है, जिन सतगुरु जाता

सतगुरु मन वसिया लिव लाई, आप मिलिया जग जीवन दाता, नानक अंक समाई है। मारू महला चौथा, हर अगम अगोचर सदा अविनाशी, सर्वे रव रहा कटवासी।

जन नानक नाम जपो पव खंडन, सुख सहजे रहन विहानी है, जिन हर सेविया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया, जो शरण परे तिसकी पत राखे, जाए पूछो वेद पुराणी है, जिस हर सेवा लाए सोई जन लागे, गुर के शब्द परम पौ पागे, विचे गृह सदा रहे उदासी, ज्यों कमल रहे विच पानी है, विच हो मैं सेवा थाए न पाए, जन्म मरे फिर आवे जाए, सो तप पूरा साई सेवा, जो हर मेरे मन पानी है, हो क्या गुण तेरे आखा स्वामी, तू सर्व जिया का अंतर जामी, हो मांगो दान तुझे पह करते, हर अंदिन नाम वखानी है, किसी जोर अंकार बोलन का, किसी जोर दीवान माया का, मैं हर बिन टेक तर अवरना काई, तू करते राख मैं निमानी है, निमाने मान कर

हर हर नाम जिन्हें सदा त्याया, तिन्हें गुर प्रसाद परम पद पाया, जिन हर सेव्या तिन सुख पाया, बिन सेवा पछो ताणी है। तू सब में वरते हर जगन्नाथ, सो हर जपे जिस गुरमस्तक हाथ, हर की शरण पया हर जापी जन नानक।

गगन रहाया हुक्मे चरणा, अगन उपाय ईदन मह बांधी, सो प्रभ राखै पाई हे। जी जंत को रिजक संभाहे, करण कारण समरथ।

जन्म मरण की जोन न पवया, दुख विनाश किया सुख डेरा, जा तृप्त रहे आगाई है, मीत हमारा सोई स्वामी। थान थनंतर अंतर जामी, सिमर सिमर पूरन परमे

परदेश न जाओ वसो कर मोरे, ऐसा बणज करो गृह पीतर जित उतरे भूख प्यासा है। सगले कर्म धर्म जुग सादा बिन हर रस सुख तिल नहीं लादा, पई कृपा नानक सत्संगे तो तन फिर आनंद उलासा है। तन अंधी फिर चपल सियाना, पंच तत्कारत

तन कछु ना समझे चंचल काचे बहुर बहुर फिर ही संग मांगे ओ बात जाने कर हासाए आई आ गया फिरों बुलाया ना तन पुछी ना मता पकाया।

बिन सतगुर पचमुए साकत निगुरे गल जम फासा है। मन मुख आवे मन मुख जावे, मन मुख फिर चोटा खावे, जितने नरक से मन मुख पोगे, गुरमुख लेप ना मासा है, गुरमुख सोए जे हर

मेरा कट कट पूरन सिर सिरैन मेरा सिर साहा कै सच्चा साहिब अवर नाही को दूजा है हरखवंत अनंत दयाला प्रगट रहो प्रभ सर्व।

सुरत सबद रिद अंतर जागी अम्यो चोल चोल पी जाहे मरे नाही सद सद ही जीवे अमर पया अविनाशी थी वे ना को आवे ना को जावे गुरदूर।

संत संग महा सुख पाया, देख दर्शन इहो मन पी जाहे, मारू महला पंजवा सोलहे। इको अंकार सतगुरु प्रसाद। गुरु गोपाल गुरु गोविंदा, गुरु दयाल सदा बख्शिंदा, गुरु सासत सिमरत खट कर्मा, गुरु पवित्र स्थाना है, गुरु सिमरत सब किल विखनास है, गुरु सिमरत जम संग न फासे, गुरु सिमरत मन निर्मल होवे, गुरु काटे अपमाना है, गुरु का सेवक नरक न जाए।

सतगुर पेट हर जस मुख पणिए कल कलेश मिटाए सतगुर हर दरगे देवे माना है अगम अगोचर गुरु दिखाया पूला मार्ग सतगुर पाया गुर सेवक कौ बिघन न पगती हर पूर दृढ़ाया ज्ञाना है गुर दृष्टाया सबनी ठाई जल थल पूर रहा गोसाई ऊंच ऊन सब एक समाना मन लागा सहत्याना है गुर मिले सब तृष्ण बुझाई गुर मिले ने जो है माई सत संतोख दिया गुरपुर है नाम अमृत पी पाना है गुर की बाणी सब माए समाणी आप सुनी तैं आप वखाणी जिन जिन जपी तेई सब निस्तरे तिन पाया ने चल थाना है सत गुर की महिमा सत गुर जाने जो किछ करे सो

हर के भगत सदा सुखवासी, बाल सुभाए अतीत उदासी, अनेक रंग करें बहु पांति, ज्यों पिता पूत लड़ाए दा, अगम अगोचर कीमत नहीं पाई, ता मिली है जान ले मिलाई, गुरमुख प्रगट पया तिन जन को, जिन तुर मस्तक लेख लिखाए दा, तू आपे करता कारण करना, सृष्ट उपाय तरी

तेरी श्रवण सुनिए। दूजी अवर न जाप सकाई सगल तुम्हारी तारण। आप चितारे अपना किया आपे आप प्रवथिया। आप उपाय रचुन पसारा आपे कट कट सारणा। एक उपाय वड दरबारी एक उदासी एक करबारी। एक पूखे एक त्रिपत अघाए सब सह तेरा पारणा। आपे सत सत सत साचा ओत पोत भगतन संगराचा। आपे गुप्त आपे है प्रगट अपना आप पसारणा। सदा सदा सद होवन हारा ऊंचा अगम अथा।

पैर नाही को बैरी, सब एको है पालना। डर चूके बिन से अंधियारे, प्रगट पए प्रभु पुरख निरारे। आप छोड़ पए शरणाई, जिसका सा तिस्कालना। ऐसा को वड पागी आया, आठ पहर जिन खसम ते आया, तिस जन कै संग।

मोह सोग सब परम मिटाए, एको मंत्र दृढ़ाए औखद सच नाम रिद गायना। जिस नामे को तरसें बो देवा।

सेव न जाने कोई, गुर पार ब्रह्म अगोचर सोई, जिसनो लाए ले सो सेवक, जिस वड पाग मथाएना, गुर की महिमा बेद न जाने, तुच्छ मात सुन सुन वखाने, पार ब्रह्म अपरंपर सतगुर, जिस सिमरत मन सीत लाएना, जां की सोए सुनी मन जीवे, हृदय वसे ता ठंडा थीवे, गुरमुखों अलाए ता सोबा पाए, तिस जम के पंथ न पाएना, संतन की शरणाई पड़िया, जियो प्राण तन आगे तरिया, सेवा सुरत न जाना काई, तुम करो दया किरमाएना, निर्गुण को संग लिहोर लाए, कर कृपा मोह टहले लाए, पखा फेरो पीसो संत आ गए, चरण तोए सुख पाएना, बहुत दुआरे परम परम आया, तुमरी कृपा ते तुम शरणाया, सदा सदा संते संग राखो, इहो नाम दान देवाएना, पए कृपाल गुसाई मेरे दर्श

जैसे दैत सब सिमरै अगनत ना जाई जस गना, सिमरै पश पंखी सब पूता, सिमरै वन पर्वत अवधूता, लता बलि साख सब सिमरै, रव रहया स्वामी सब मना, सिमरै थूल सूखम सब जनता, सिमरै सिद्ध साधिक हरमंता, गुप्त प्रगट सिमरै प्रभ मेरे, सगल पवन

प्रभ समरथ सर्व सुख दाना, सिमरो नाम हो मेहरवाना। हर दाता जी जंत पेखारी, जन बांचे जा चंगना। मांगो जन तूर परम गत पावो, जन्म जन्म की मैल मिटावो। दीर्घ रोग मिटे हर औ

पंगना मन तन अर्प तरी हर आगे जन्म जन्म का सोया जागे जिसका सा सोई प्रतपालक हत त्यागी हो मैं हंतना जल थल पूरन अंतर जामी कट कट रव्या अचल स्वामी परम पीत खोई गुरपूर है एक रव्या सरबंगना जत कत पेखो प्रभ सुख सागर हर तोट पंडार नाही रत।

आद मद अंत प्रवरवया त्रिष्ण बुझी परमंगना गुर परमेश्वर गुर गोविंद गुर कर्ता गुर सदबक्संद गुर जप जाप जपत फल पाया ज्ञान दीपक संत संगना।

एको दान सर्व सुख गुण निद आन मंगन नेह किंचना काया पात्र प्रभ करने हारा लगी लाग संत संगारा निर्मल सोए बनी हर बाणी मन नाम मजी ठहरंगना सोले कला संपूर्ण फलिया अनत कला होए ठाकुर चढ़िया अनद विनोद हर नाम सुख नानक अमृत रस हर पुंचना मारू सोले मैला पंजवा इको ओंकार सतगुरु प्रसाद तू साहेब हों।

तुम पारा, एक खड़े रसातल कर मन मुग्गा वारा, एक ना पार लंघावे आपे सतगुरु जिन का सच बेड़ा, कौतक काल इहो हुकम पठाया, जी जंत उपाय समाया।

आई अगम अगोचर बेअंत अतोला है नाही किछ आहारा कीमत कोई न जाने दूजा आपे आप निरंजन पूजा आप सुज्ञानी आप त्यानी आप सतवंता अत गाड़ा केतड़िया दिन गुप्त कहाया।

आपे सूरा अमर चलाया, आपे शिव वरतायन अंतर, आपे शीतल ठार गड़ा, जिसे निवाजे गुरमुख साजे, नाम वसे तिस अनहद वाजे, तिस ही सुख तिस ही ठकुराई, तिसे ना आवे जम नेड़ा, कीमत कागद कहीं न जाई, कहो नानक बेअंत गुसाई, आद मद अंत प्रभ सोई।

मोहन माधव कृष्ण मुरारे, जगदीशर हर जियो असर संगारे, जग जीवन अविनाशी ठाकुर कट कट वासी है संगा, तरणी तर ईश नरसिंह नारायण,

खाओ अबनासी अवगत अगोचर सब किछ तुझ ही है लगा श्री रंग बैकुंठ के वासी मछ कछ कूरम आ गया औतरासी केसव चलत करे निराले कीता लोड़े सो होएगा निराहारी निर्वैर समाया तार खेल चतुर्भुज कहाया सावल सुंदर रूप बनावे बेण सुनत सब मोहेगा बनमाला विपुखम कमल नैन सुंदर कुंडल मुकुट बैन शंख चक्र गदा है तारी महासारथी सत्संगा पीत पीतंबर त्रिभवन धनी जगन्नाथ गोपाल मुखपणी सारंग तार भगवान बीठला मैं गणत ना आवे सरबंगा नेह कंटक नेह केवल कही है तनंजय जल थल है मही है मृत लोक पयाल समीपत अस्थिर थान जिस है अपगा पतित पावन दुख पै पंजन अहंकार निवारण है पव खंडन भगति तोखत दीन कृपाला गुणे ना कित ही है पिगा निरंकार अचल अडोलो।

दस औरात रखो बदराही, पंच मर्द सिदक ले बांधो, खैर सबूरी कबूल परा, मक्का मेहर रोजा पैखा का, पिस्त पीर लफज कमाए अंदाजा, हूर नूर मुस्क खुदाया, बंदगी अल्लाह आला हुजरा। सच कमावे सोई काजी, जो दिल सोदे होई हाजी, सो मौला मलऊन निवारे, सो दरवेश जिस सिफतरा, सबे वक्त सबे कर वेला, खालक याद दिले मह मौला, तस्बी याद करो दस मर्दन, सुन्नत सील बंधान बरा, दिल में जानो सब फिलहाला, खिलखाना बिरादर हमू जंजाला, मीर मलक उमरे फान।

सिमरत नाम अन दिन जागे, अनद विनोद करे हर सिमरन, तिस माया संग न ताल का, रोग सोग दुख तिस नाही, साध संग हर कीर्तन गा।

जिनकी तोड़ मांगे मन मेरा, जिन विसरे नाही काहू बेरा, जिनके संग परम पद पाई, सदा संगी हर नाल का, साजन मीत प्यारा सोई, एक दृढ़ाए दुर्मत खोई, काम क्रोध अंकार जाए, तिस जन को उपदेश निर्माल का, तुद विण नाही कोई मेरा, गुर पकड़ाए प्रभ के पैरा, हों बलिहारी सतगुरु पूरे, जिन खंडिया परम अनाल का, सास सास प्रभ विसरे नाही, आठ पैर हर हर को त्याई, नानक संत तेरे रंग राते, तू समरथ वडाल का, मारू मेला पंजवा, इको अंकार सतगुर प्रसाद। चरण कमल हृदय नित कारी, गुर पूरा खिन खिन नमस्कारी, तन मन अर्प तरी सब आगे, जग में नाम सुहावना, सो ठाकुर क्यों मनो विसारे, जियो पिंड देश आज सवारे, सास दरास समाले करता, कीता अपना पावना, जाते बिरथा को नाही, आठ पैर हर रख मन माही, साध संग पज अचुत स्वामी, दरगे शोभा पावना, चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध, नाम निधान सहज सुख नौनिद, सर्व कल्याण जे मन में चाहे, मिल साधु स्वामी रावणा, सासत सिमरत वेद बखान।

पूरन पूर रहा दिन राती, जो जो जपै सोई वडपागी, बौड़ न जोनी पावना, जिसनो बिसरे पुरख विधाता, जलता फिरे रहे नितताता, अकिरत कने को रखे न कोई, नरक कोर में पावना, जियो प्राण तन तन जिन साजिया, मात गर्भ में राख निवाजिया, तिस्यो प्रीत छाड़ अनराता, काहू सिरे न लावना, तार अनग्रो स्वामी मेरे, कट कट वसे सबन कहने रे, हाथ हमारे कछुए नाही, जिस जाना है तिसे जनावना, जाके मस्तक तुर लिख पाया, तिसी पुरुख ना व्यापे माया।

तिल नहीं बदे कटे ना कटाए सोई होए जे करते भावे कह कह आप वजावना अंधकूप ते से ही काडे जन्म जन्म के टूटे गांडे कृपा तार रखे कर अपने मेरे साधु गोविंद त्यावना तेरी कीमत कहना जाई अचरज रूप वड्डी वड्याई।

जे सतगुरु माहि समाए मैला तीजा मन के अधिक तरंग क्यों दर्शाए विचुटी है जे राचे सच रंग गूड़े रंग अपार के नानक गुर प्रसादी छुटी है जे चित लगे सच पौड़ी हर का नाम अमोल है क्यों कीमत की जाए आपे सृष्ट सब साजियन आप

मन माए समाना, हर जियो का महल पाया सच लाए त्याना, जिन गुरु प्रसादी मन जीतिया जग तिने जिताना। श्लोक महला तीजा, जोगी होवा जग पवा कर कर पीखिया ले ओ, दरगे लेखा मंगी है किस किस उत्तर दे ओ, पिखिया नाम संतोख मड़ी सदा सच है नाल, देखी हाथ ना लदिया सब बद्दी जमकाल, नानक गल्ला झूठिया सच्चा नाम समाल। मैला तीजा, जित दर लेखा मंगी है सो दर सेवियो ना कोय, ऐसा सतगुरु लोड लहो जिस जेवड अवर ना कोय, तिस सरनाई छूटी है लेखा मंगे न कोए, सच दृढ़ाए सच दृढ़ सच्चा ओ शब्द दे, हृदय जिस दे सच है तन मन भी सच्चा होए, नानक सच्चे हुक्म मने सच्ची वडियाई दे, सच्चे माहि समावसी जिसनो नदर करे पौड़ी, सूरे ए ना आखिए अंकार मरे दुख पावे, अंधे आपना पछाणनी दूजे पच जावे, अत क्रोध स्यों लूज दे अगे पिछे दुख पावे, हर जियो अंकार ना पावे।

नानक जे इव मारिये गुरसबदी विचार, इव मन मारिया ना मरे जे लोचे सब कोए, नानक मन ही को मन मारसी जे सतगुर पेटे सोए पौड़ी। दो वै तरफा उपायुन विच सकत शिव वासा, शक्ति किने न पायो फिर जन्म विनाशा, गुर सेवे सांत पाये जब सांस गिरासा, सिमरत सासत सोध देख उत्तम हरदासा, नानक नाम बिना को थिर नहीं नामे बल जासा। श्लोक महला तीजा, होवा पंडित ज्योत की वेद पढ़ा मुखचार, नवखंड मध्ये पूजिया अपने चज विचार, मत सच्चा अखर पुल जाए चौके पिटे ना कोए, झूठे चौके नानका सच्चा एको सोए। महला तीजा, आप उपाय करे आप आपे नजर करे, आपे दे वडिआइया कहो नानक सच्चा सोए पौड़ी। कंटक काल एक है होर कंटक ना सूजे, अफरियो जग में वर्तदा पापी स्यों लूजे, गुर शब्दी हर पे दिए हर जप हर बूजे, सो हर शरणाई छुटिए जो मन स्यों जूजे, मन विचार हर जप करे हर दरगह सीजे। श्लोक महला पहला, हुक्म रजाई साक्ती दरगह सच कबूल,

साहिब लेखा मंगसी दुनिया देख ना भूल। दिल दरवानी जो करे दरवेशी दिल रास, इश्क मोहब्बत नानका लेखा करते पास। महला पहला अलगो जोए मधुकड़ो, सारंग पान सबाए हीरे हीरा बेदिया, नानक कंठ सुबाए पौड़ी। मनमुख काल व्यापदा मोय माया लागे,

नाम पौड़ी आपे पिंड सवारियों विच नव निध नाम एक आपे परम पुलायन तिन ने फल काम इकनी गुरमुख बुझिया हर आत्म राम इकनी सुन के मन्या हर उत्तम काम अंतर हर रंग उपजिया गाया हर गुण नाम श्लोक महला पहला पोल तन पै मन वसे है कै पादर हीड अत डापन दुख कणो तीने खा परीड महला पहला मांदल बेद से बाजनो कणो तड़िए जोए नानक नाम समाल तू बीजो अवर न कोए महला पहला सागर गुणी अथा किन हाथा ला देखिए वड्डा वे परवाव सतगुर मिले ता पार पवा मज पर दुख बदुख नानक सच्चे नाम बिन किसे ना लथी पुख पौड़ी जिन्नी अंदर पा लिया गुर शब्द सुहावे जो इच्छन सो पाएंदे हर नाम ते आवे जिसनो कृपा करे तिस गुर मिले सो हर गुण गावे तरम राय तिन का मित है जम मग ना पावे हर नाम ते आवे दिन सरात हर नाम समावे श्लोक महला पहला सुनिए एक वखाणी है सुरग मृत पयाल हुक्म न जाई में

जग में राम नाम हर निर्मला होर मैला सब आकार नानक नाम न चेतनी होए मैले मरे गवार मैला तीजा दुख लगा बिन सेवे हुक्म मन्ने दुख जाए आपे दाता सुखेदा आपे दे सजाए नानक एवे जानिए सब किछ तिसैर जाए पौड़ी हर नाम बिना जगत है निर्धन बिन नाम है त्रिपत नाही दूजे परम पुलाया हो मैं दुख पाही बिन कर्मा किछु न पाये जे बहुत लो चाही आवे जाए जम मैं मरे गुर सब छुटाही आप करे किस आखिए दूजा को नाही श्लोक मैला तीजा इस जग में संति तन खटिया जिना सतगुर मिलिया प्रभ आए सतगुर सच दृढ़ाया इस तन की कीमत कही न जाए इस तन पाए पुख लथी सुख वस्या मन आए जिना को तुर लिखिया तिनी पाया आए मन मुख जगत निरतन है माया नो बिलाए अंदिन फिरदा सदा रहे पुख ना कदे जाए सांत ना कदे आवई न सुख वसे मन आए सदा चिंत चित वदार है सहसा कदे न जाए नानक विण सतगुर मत पवी सतगुर नो मिले ता शब्द कमाए सदा सदा सुख में रहे।

महलाती जा। गुण अवगुण समान है जे आप कीते करतार, नानक हुकम मने सुख पाई है गुर सब जी विचार पौड़ी, अंदर राजा तक

पौना है। बूझो ज्ञानी बूझना ए अकथ कथा मन माहे, बिन गुर तत न पाये अलख वसे सब माहे। सतगुर मिले ता जानिए जा शब्द वसे मन माहे, आप गया परम पो गया जन्म मरण दुख जाहे। गुरमत अलख लखाइए उत्तम मत तराहे, नानक सोहंग हंसा जप जापो त्रिभुवन तिसे समाहे। महला तीजा मन मानक जिन परखिया गुर शब्दी विचार, से जन विरले जानिए कल युग विच संसार। आप पैनो आप मिल रहा हो मैं दुबदा मार, नानक नाम रते दुत्तर तरे पौजल बिखम संसार पौड़ी। मनमुख अंदर न पालनी मुठे अहमते, चारे कुंडा पव थके अंदर तिख तत्ते। सिमरत सासत ना सोधनी मनमुख विगुते, बिन गुर किने न पायो हर नाम हर सत्ते। तत ज्ञान विचारे

सब कोए पौड़ी सबे थोक विसार इको मित कर मन तन होए निहाल पापा दह हर आवन जाना चुके जन्म ना जाए मर सच नाम आधार सोग ना मोए जर नानक नाम निदान मन में संजतार।

पाने जेवड होर दात नाही सच आख सुनाया जिनको पूरब लिखिया तिन सच कमाया नानक ते शरणागती जिन जगत उपाया श्लोक महला तीजा जिनको अंदर ज्ञान नहीं तै की नाही बिंद नानक मोया का क्या मारना जे आप मारे गोविंद महला तीजा मन की पतरी वाचनी सुखी हूँ सुखसार।

गुरु मुखार सच्चा सबना का साहिब एक है गुरु शब्दी रचा गुरुमुख सदा सलाहिए सब तिस दे जचा जो नानक आप नचाएं दा तिभी को नचा सुध

देख कपड़ भोग डरावने जिचर भी न देख महला पंजवा उठी जालू कंतड़े हो पसी तो दीदार काजल हार तमोल रस बिन पसे हबरस छार पौड़ी तू सच्चा साहिब सच सच सब धारिया।

दुर्जन तू जल पहाड़ी वे छोड़े मर जाए, कंता तू सौ से जुड़ी मैं डाहबो दुख लाए। महला पंजवा। दुर्जन दूजा भाव है वे छोड़ा हो मैं रोग, सज्जन सच्चा पातशाह जिस मिल की चै भोग। पौड़ी। तू अगम दयाल बेअंत तेरी कीमत कह कौन, तुद सिरजा सब संसार तू नायक सगल पौन। तेरी कुदरत कोई न जाने मेरे ठाकुर सगल रौन, तुद अपड़ कोई न सके तू अब नासी जग उधरण।

श्रेष्ठ करण डखने महला पंजवा जे तू वत्तै अंगने हब धरत सुहावी होए हिकस कंतै बाहरी मैंडी बात न पुछे कोई।

के सतवंता, जति सति प्रभु निर्मला मेरे हर भगवंता। सब ब्रह्म पसार पसारयो आपे खेलंता, यो आवागमन रचायो कर चोज देखंता। तिस बौड़ गर्भ ना पावै जिस देवै गुरमंता, जो आप चलावे त्यों चल दे किछ वस ना जनता। दखने महला पंजवा, कुरिये कुरिये वैद्या तलगाड़ा महरेर, वेखे छिटड़ थीम दो जाम खिसन दो पेर। महला पंजवा, सच जाने कच वैद्यो तू आगू आगे सलवे, नानक आतसड़ी मंज नैनू बिया ढल पबन ज्यो जुम्यो। महला पंजवा, पोरे पोरे रू

अपर परा जिस मेले सतगुरु आप तिसके सब कुल तरा सेवक सब कर दे सेव दर नानक जन तेरा। दखने महला पंजवा गैड डड़ा त्रिन छाया।

शिव सकत वरताइया। शिव अग्गै शक्ति हारिया एवै हर पाइया, इक विच्चों ही तुद रखिया जो सतसंग मिलाइया। जल विच्चों बिंब उठा लियो जल माए समाइया, दखणे महला पंजवा। आगाहू कु त्रांग पिछा फेर न मोडड़ा, नानक सिज इवे हावार बहुड़ न होवी जन्मड़ा। महला पंजवा सज्जन मैंडा चाहिया।

0: थोड़ी
1: जिस जन तेरी भूख है तिस दुख ना व्यापै, जिन जन गुरमुख बुझया सो चौ कुंडी जापै, जो नर उसकी सरणी पर तिस कंबे पापै, जन्म जन्म की मल उतरे गुर धूड़ी नापै, जिन हर बाणा मन्या तिस सोग ना संतापै, हर जियो तू सब ना कामित है सब जाने आपै, ऐसी शोभा जने की जेवड़ हर परतापै, सब अंतर जनवरताया।

जित भुख ले जावे प्रभ जीओ देवो दर्शन आपना, जित ढाडी तृप्तावे अरदास सुनी दातार, प्रभ ढाडी को महल बुलावे, प्रभ देख दया दुख भुख गई ढाडी।

जित लभी सुख दातार पौड़ी। बिन कर्मा हर जियो न पाईए, बिन सतगुर मनवा न लगे। धर्म धीरा कर अंधरे, यो पापी मूल न तगे। अह कर करे सो अह कर पाए, एक घड़ी मोत न लगे।

पालिया तुद जेवड़ ना साईया, मैं दसो मारग संतो क्यों प्रभु मिलाईया। मन अर्प्यो हो मैं तजो इत पंथ जुलाईया, नित सेवो साहिब अपना।

जान चंद्रपा नगरी सुख घटाओ डोए इस पंधानु घर घने पौड़ी अकल कला न पाई है प्रभ अलख लेखं खड़ दर्शन ब्रह्म ते फिर न मिली है भेखं वर्त करे चंद्रायणा से कुत न लेखं वेद पढ़े संपूर्ण तत्सार न देखं तिलक कढ़े स्नान कर अंतर का लेखं भेखी प्रभु न लबई विन सच्ची सिखं भूला मार्ग सो पवै जिस धुर मस्तक लेखं तिन जन्म सवार आया अपना जिन गुर अखी देखं दखने महला पंजवा सो निवाहु गढ़ जो चलाऊ नाथी है कार कुड़ावी छड़ सम्मल सच धनी महला पंजवा हब समानी जोत जो जल घटाऊ चंद्रमा प्रगट थी आप नानक मस्तक लिखया महला पंजवा मुख सुहावे नाम चौ आठ पैर गुण गाओ नानक दरगह मनिए मिली निथावे थाओ पौड़ी बार देखना पाई है प्रभु अंतर जामी एक सहर जियो बारी सब फिरे निकामी मन रत्ता कुटम स्यों नित गर्भ फिरामी फिरे गुमानी जग में क्या गर्भ है दामी चल गया नाल न चली खिन जाए दिलामी बिचर दे फिरे संसार में हर जी हुकामी कर्म खुला गुर पाया हर मिले आ स्वामी जो जन हर का सेव को हर किसकी कामी दखने महला पंजवा मुखो अलाए हब मरण पछाण दो कोए नानक तिन्ना खाक जिना यकीना हित स्यो महला पंजवा जान वसंदो मंज पछाणु को हे कुड़ो तैतन पड़दा नाहे नानक जय गुरु भेटया महला पंजवा।

रंग तुंग गरीब मस्त सब लोक सिदासी, काजी शेख मसाय का सबे उठ जासी। पीर पैगंबर औलिए को थिर न रहासी, रोजा बाग निवाज कथे विभिन्न बुझे सब जासी। लख चौरासी मेजनी सब आवे जासी, नेचल सच खुदाए एक खुदाए बंदा अब।

दया धर्म तप ने चलो जिस कर्म लिखादा नेचल मस्तक लेख लिखया सो टल ना टलादा नेचल संगत साध जन बचन नेचल गुर सादा जिनको पूरब लिखया तिन सदा सदा आरादा श्लोक डखने महला पंजवा जो डुबंदो आप सो तराए किन खे तारे निरो भी तार नानक फिर स्यों रत्या महला पंजवा जिथे कोई कथन नाओ सुनंदो मापिरे मुँह जुलाऊ तथ नानक फिरी पसंदो हरियो थियो महला पंजवा मेरी मेरी क्या करें पुत्र कलत्र सने

डूंगर जला थला भूम बना फल चंद्रा पाता लाया काश पूरन हब घटा नानक पेठ जियो इकत सूत परोतिया पौड़ी। हर जी माता हर जी पिता हर जी ओ प्रतिपालक हर जी मेरी सार करे हम हर के बालक सहजे सहज खिलाए।

कीमत कहन न जाइए सच सा अडोलै सिद्ध साधक ज्ञानी ध्यानिया कौन तुद नो तोलै बन्नन गड़न समरथ है ओपत सब परलै करण कारण समरथ है घट घट सब बोलै रिजक समाहे सब सह क्या

वेद पुराण पढ़े का क्या गुण, खर चंदन जस पारा, राम नाम की गत नहीं जानी कैसे उतरस पारा। जी बधो सु धर्म कर थापो, अधर्म कहो कत पाई, आपस को मुनवर कर थापो, काको कहो कसाई। मन के अंधे आप न बूझो, काहे बुझावो भाई, माया कारण विद्या बेचो, जन्म अभिर था जाई। नारद बचन व्यास कहत है, सुख को पूछो जाई, कह कबीर राम रम छूटो, नाहे तबूढ़े पाई। बने बसे क्यों पाई है, जोलो मनो न तजे विकार, जे घर बन संसार किया ते पूरे संसार। सार सुख पाइये रामा, रंग रवो आत्मा राम रहो, जटा भस्म लेपन किया कहा गुफा में बास। मन जीते जग जीतया, जाते बिछया ते होए उदास। अंजन दे सब कोई सुख चान माहे बिडान, ज्ञान अंजन जे पाया ते लोयन परवान। कह कबीर अब जानया।

राम उदक दे जन पिया तुम बहुर न पई प्यास। गोर प्रसाद जे बूझिया आसा ते पया निराश। सब सच नजरी आया जो आत्म पया उदास। राम नाम

है कभी मन मानिया। जिनगढ़ कोट किए कंचन के छोड़ गया सो रावण, काहे की जत है मन पावन। जब जम आए केस ते पकड़े।

मुकद भयो चौहो जुग जान्यो, जस कीरत माथे छत्र धर्यो, राजा राम जपत को न करयो, गुरु उपदेश साधकी संगत, भगत भगत ताको नाम परयो रहाओ, शंख चक्र माला तिलक विराजत, देख प्रताप जम डर्यो, निर्भव भय राम बल गर्जत, जन्म मरण संताप हिर्यो, अम्बरीक को दियो अभय पद, राज भवीकन अदित करयो, नवनिध ठाकुर दई सुदामे, धुरु अटल अज हूँ न टर्यो, भगत हेत मार्यो हर नाखस, नरसिंह रूप होय देत हर्यो, नामा कै भगत बस के सब।

पेट भरियो पसवा जो सोयो, मनुख जन्म है हारियो रहाओ। साध संगत कब हो नहीं कीनी, रचियो धंधा झूठ। स्वान सूकर बायस जिमे, भटकत चाल्यो ऊठ। आपस को धीर

लालच लागे जन्म गवाया माया परम भुलाहेगा। धन जो बन का गर्व न कीजे कागज जो गल जाएगा। जो जम आए केस जय पटके ता दिन के।

चार पदार्थ अष्टमा सिद्ध नवनिध कर तलता कह। हर हर हर न जपस रसना खबर सब छाड़ बचन रचना रहाओ। नाना ख्यान पुराण वेद विद चौतीस अक्षर माहे। व्यास विचार कहो परमार्थ राम नाम सरनाहे। सहज समाज उपाध रहत होए बड़े भाग लिव लागी। कह रविदास उदास दास मत जा।

कोई न बेली गुरमुख अमृत पीवा। रचना राच रहे निरंकारी सब मन कर्म सुकर्मा। नानक पंथ निहाले साधन तू सुन आत्म रामा। बाबिया प्रयो बोले को कल बाणिया। साधन सबरस चोले अंक समानिया। हर अंक समानी जा प्रभानी सा सोहा गण नारे। नव घर थाप मैल घर ऊंचो निज घर वास मुरारे। सब तेरी तू मेरा प्रीतम निष्बास रंग रावे। नाने प्रियो प्रियो चवे बबीहा को कल सबद सुहावे। तू सुन हर रस जिन्ने प्रीतम आपने। मन तन रवत रवन्ने घड़ी ना बिसरे। क्यों घड़ी बिसारी हो बलहारी हों जीवा गुण गाए। ना कोई मेरा हो किसके रा हर बिन रहन न जाए। ओट गई हर चरण निवासे बहे पवित्र शरीरा। नानक दृष्ट दीरग सुपावे गुर सब दी मन तीरा। बरसे अमृत धार बूंद सुहावनी। साजन मिले सहज सुपाए हर

नानक चेत सहज सुख पावे जे हर वर घर धन पाए। वह साग बला साखा वेश करे धन देख हर द्वार आवो दया करे। घर आओ प्यारे दुतर तारे तुझ बिन अड न मोलो। कीमत कौन करे तुझ पावा देख दिखावे टोलो। दूर न जाना अंतर माना हरता मैल पछाना। नानक वह साखी प्रभु पावे सुरत शब्द मन माना। माओ जेठ भला प्रीतम।

थल नीर भरे बरस रुते रंगमानी, बरसे निज काली क्यों सुखबाली, दादर मोर लवंते प्रिय प्रिय चवै बबीहा, बोले भुयंगम फिर डसंते। मच्छर डंग सायन पर सुबर बिन हर क्यों सुख पाई है, नानक पूछ चलो गुरु अपने जय प्रभ तै ही जाई है। असुन आओ पिरा साधन झूर मुई, सामिली है प्रभ मिले दूजे पाए हुई। झूठ विभूति तापिर मोती को कह कहां से फुले, आगे काम पिछे रुत जाडा देश चलत मन डोले। दै दिस साख हरी हरियावल सहज पचे सो मीठा, नानक सुन मिलो प्यारे सतगुर पे बसीठा। कतड़ किरत पया जो प्रभु पाया, दीपक सहज बले तत जलाया। दीपक रस्ते लो धन फिर मेलो, धन ओ माँ है सरसी, अवगुण मारी मर न सीजै गुण मारी तामरसी। नाम भगत दे निज घर बैठे अजो तिनाड़ी आसा, नानक मिलो कबड़ दर खोलो एक घड़ी खतमासा। मंगल माओ भला हर गुण अंक समावे, गुणवंती गुण रवे मैं फिर नेचल पावे। नेचल चतुर सुजान विदाता चंचल जगत सबाया, ज्ञान ज्ञान गुण अंक समाने सब पाने का पाया। गीत नाद कवित कवे सुन राम नाम दुख भागे, नानक साधन ना प्यारी अब भक्ति तिर आगे। भूख तुखार पड़े वर्ण तृण रसोख, आवत की नाही मंतन वसे मुखे। मंतन रव रहा जग जीवन गुर सब धी रंग मानी, अंडज धीरज सेतज उद्भुज गट गट जोत समानी। दर्शन देहो दया पत दाते गत पावो मत देहो, नानक रंग रवै रस रसिया हर स्यों पीत स्नेहो। माघ पुनीत भई तीरथ अंतर जानिया, साजन सहज मिले गुण गय अंक समानिया। प्रीतम गुण अंके सुन प्रभु बंके, सुरभावा सरनावा। गंग जमुन तय बेणी संगम सात समुन्द समावा। पुन दान पूजा परमेश्वर जुग जुग एको जाता, नानक माघ महारस हर जप असर तीरथ नाता। फल गुण मन रहसी प्रेम सुभाया, अनदिन रस भया आप गवाया। मन मोह चुकाया जा तुझ पाया, कर कृपा घर आओ। बहुते वेश करे फिर बाजो मैली दान खाओ। हार डोर रस पाट पटंबर फिर लोड़ी सिंगारी, नानक मेर लही गुरु अपने घर वर पाया नारी। बेदस मारुति छिती वार भले, घड़ी मूर्त पर

राखो खेती हर गुर हेती, जागर शोर न लागे। जम मगन जाओ ना दुख पाओ, जम का डर बहु भागे। राम सास दीपक गुरमत द्वारा, मन साचा मुख त्यावे। नानक मूर्ख अजो

पाया। अपरंपर आपे थापो थापे किस भावे सो होवे, नानक मीरा हीरे बेदया गुण कह हार परोवे। गुण गुणे समाने मस्तक नाम निशानो, सच साच समाया चूका आवन जानो। सच साच पछाता साच राता साच मिले मन पावे, साचे ऊपर अवर न दिसे साचे साच समावे। मोहन मोलिया मन मेरा बंधन खोल निरारे, नानक ज्योति ज्योत समानी जा मिलिया अत प्यारे। सच दर खोज ले साचा गुरथानो, मनमुख ने पाई है गुरमुख ज्ञानो। देव सजदानो सो परवानो, सजदाता वडदाना अमर अजूनी अस्थिर जाप साचा महल सिराना। दो तू चापक लेख न लिखिया प्रगति ज्योत मुरारी, नानक साचा साचा राचा गुरमुख तरी है तारी। सुखारी महला पहला, ए मन मेरे आ तू समझ अतीत आने आराम। ए मन मेरे आ छड़ अवगुण गुणी समाने आराम। बहु साध लुबाने किरत कमाने विसड़िया नहीं मेला, क्यों दुत्तर करिए जम डर मरिए जम का पंथ दुहेला। मन राम नहीं जाता साज प्रभाता अवगत।

हर सिमर एकंकार साचा सब जगत जिन उपाया पौन पानी अगन बादे गुर खेल जगत दिखाया आचार तू विचार आपे हर नाम संयम जप तपो।

फिर साध संगत कर रलिया फिर न पछोतावे। कर दया दान दयाल साचा हर नाम संगत पावो। नानक पयम पै सुनो प्रीतम गुर शब्द मन समझावो।

जब लग दर्श न होए क्यों अमृत पीवी है राम। क्यों अमृत पीवी है हर दिन जीवी है किस दिन रह न जाए। हम दिन प्रो प्रो करे दिन राती फिर दिन प्यास न जाए। अपनी कृपा करो हर प्यारे हर हर नाम सब सारिया। गुर कै शब्द मिलिया मैं प्रीतम हर सतगुर विटो वारिया। जब देखा फिर प्यारा हर गुण रस रवा राम। मेरे अंतर हुए विगास प्रो प्रो सत्य नित चवा राम। प्रो चवा प्यारे शब्द निस्तारे बिन देखे तृप्त न आवे। शब्द सिगार होवे नित कामन हर हर नाम पे आवे। दया दान मंगत जन दीजै मैं प्रीतम देहो मिलाए। अन दिन गुरु गोपाल ते आई हम सतगुरु विट्टो कुमाए। हम पात्र गुरु नाव बिख पव जल कारिय राम। गुरुदेवो शब्द सुभाए मैं मूड निस्तारिय राम। हम मूड मुगद किछ मिट नहीं पाई तू अगम वड जानिया। तू आप दयाल दया कर मेले हम निर्गुणी निमाणिया। अनेक जन्म पाप कर परमे हुन तो शरणागत आए। दया करो रख ले वो हर जियो हम लागे सतगुर पाए। गुर पारस हम लोह मिल कंचन होया राम। ज्योति ज्योत मिलाए काया गढ़ सोया राम। काया गढ़ सोया मेरे प्रभ मोया क्यों साथ गिरास विसारी है। अदृष्ट अगोचर पकड़िया गुर शब्दी हो सतगुर के बलिहारी है। सतगुर आगे शीश टेक दियो जे सतगुर साचे भावे। आपे दया करो प्रभ दाते नानक अंक समावे। सुखारी महला चौथा हर हर अगम अगाध अपरंपर अपरपरा। जो तुम त्याए जगदीश ते जन पाओ बिखम तरा। बिखम पाओ तिन तरया सुहेला जिन हर हर नाम ते आया। गुरवाक सतगुर जो पाए चले तिन हर हर आप मिलाया। ज्योति ज्योत मिल ज्योत खवाणी हर कृपा कर तरणी तरा। हर हर अगम अगाध अपरंपर अपरपरा। तुम स्वामी अगम अथा तू कट कट पूर रहा। तू अलख अपेयो अगम गुर सतगुर बचन लया। तन तन ते जन पुरख पूरे जिन गुर संत संगत मिल गुण रवे। विवेक बुद्ध विचार गुरमुख गुर शब्द खिन खिन हर नित कवे। जा बह गुरमुख हर नाम बोले जा खड़े गुरमुख हर हर कया। तुम स्वामी अगम अथा तू कट कट पूर रहा। सेवक जन सेवे ते परवान जिन सेव्या गुरमत हरे। तिनके कोट सब पाप खिन पर हर हर दूर करे। तिनके पाप दोख सब बिन से जिन मन चित इक अरा दिया। तिनका जन्म सफल्यो सब किया करते जिन गुर बचनी सच पाखिया। ते तन जन वड पुरख पूरे जो गुरमत हर जप पाओ बिखम तरे। सेवक जन सेवे ते परवान जिन सेविया गुरमत हरे। तू अंतर जामी हर आप ज्यो तू चलावे प्यारे हो तिवे चला। हमरे हाथ कितना है जा तू मेले ता हो आए मिला। जिन को तू हर मेले स्वामी सब तिन का लेखा छुटक गया। तिनकी गणत ना करो को भाई जो गुरबचनी हर मेल लया। नानक दयाल हुआ तिन ऊपर

जिन गुर का पाना मनिया पला तू अंतर जामी हर आप जो तू चलावे प्यारे हों तिवे चला सुखारी महला चौथा तू जग जीवन जगदीश सब करता सृष्ट नाथ तिन तू त्याया मेरा राम जिन कै तुर लेख मात जिन को तुर हर लिख्या स्वामी तिन हर हर नाम आराध्या तिन के पाप इक निमक सब लाथे जिन गुरु वचनी हर जापिया तन तन ते जन जिन हर नाम जपिया तिन देखे हो पया सनाथ तू जग जीवन जगदीश सब करता कृष्ण नाथ तू जल थल मैयल परपूर सब ऊपर साच धनी जिन जपिया हर मन चीत हर जप जप मुक्त कणी जिन जपिया हर ते मुक्त प्राणी तिन के उजल मुख हर द्वार ओए हलत पलत जन पै सुहेले हर राख लिए रखन हार हर संत संगत जन सुनो पाई गुरुमुख हर सेवा सफल बनी तू जल सल मैयल परपूर सब ऊपर साच धनी तू थान सनंतर हर एको एक रव्या वन त्रिन त्रिभवन सब श्रेष्ठ मुख हर हर नाम चव्या सब चवे हर हर नाम करते असंख अगणत हर त्यावे सो तन तन हर संत साधु जो हर प्रभ करते भावे सो सफल दर्शन देहो करते जिस हर हृदय नाम सब चव्या तू थान सनंतर हर एको एक रव्या तेरी भगत भंडार असंख जिस तू देवे मेरे स्वामी तिस मिले जिस कै मस्तक गुर हाथ तिस हृदय हर गुण टिके हर गुण हृदय टिके तिस कै जिस अंतर पाओ पावनी होई बिन पै किने ना प्रेम पाया बिन पै पार ना उतरिया कोई पाओ पाओ प्रीत नानक तिसे लागे जिस तू अपनी कृपा करे तेरी भगत भंडार असंख जिस तू देवे मेरे स्वामी तिस मिले तुखारी महला चौथा नावन पुरब अभीच गुर सतगुर दर्श पया दुर्मत मैल हरी अज्ञान अंधेर गया गुर दर्श पाया अज्ञान गवाया अंतर ज्योत परगासी जन्म मरण दुख खिन में बिनसे हर पाया प्रभ अविनाशी हर आप करते पूर्व किया सतगुरु कुल खेत नावन गया नावन पूर्व अभीच गुर सतगुर दर्श भया मार्ग पंथ चले गुर सतगुर संग सिखा अन दिन भगत बनी खिन खिन निमख विखा हर हर भगत बनी प्रभ केरी सब लोक वेखने आया जिन दर्श सतगुरु गुरु किया तिन आप हर मेला आया तीरथ उद्दम सतगुरु किया सब लोक उदरण अर्था मार्ग पंथ चले गुर सतगुर संग सिखा प्रथम आए कुल खेत गुर सतगुर पूर्व हुआ खबर पई संसार आए त्रै लोआ देखने आए तीन लोक सुर नर मुन जन सब आया जिन परसिया गुर सतगुरु पूरा तिनके किल विख नाश गवाया जोगी दिगंबर सन्यासी खर दर्शन कर गए गोष्ट तोआ प्रथम आए कुल खेत गुर सतगुर पूर्व होआ दुतिया जमुन गए गुर हर हर जपन किया जागाती मिले दे पेट गुर पिछे लंघाए दिया सब छुट्टी सतगुरु पिछे जिन हर हर नाम से आया गुर बचन मार्ग जो पंथ चाले तिन जम जागाती नेड़ ना आया सब गुरु गुरु जगत बोले गुर के नाई ले सब छुटक गया द्वितीया जमुन गए गुर हर हर जपन किया तृतीया आए सुरसरी तह कौतक चलक भया सब मोही देख दर्शन गुर संत किने आड़ ना दाम लिया आड़ दाम किच पया ना बोलक जागातिया मोहन मुंडन पई पाई हम करें क्या किस पास मांगे सब पाग सतगुर पिछे पई जागातिया उपाव स्यान कर विचार डिठा पन बोल का सब उठ गया तृतीया आए सुरसरी तह कौतक चलत भया मिल आए नगर मां जना गुर सतगुर ओट गही
गुर सतगुर गुर गोविंद पुछ सिमरत कीता सही। सिमरत शास्त्र सबनी सही कीता, सुख प्रहलाद श्री राम कर गुर गोविंद त्याया। देही नगर कोट पंच चोर बटवारे, तिनका छाओ थो गवाया। कीर्तन पुराण नित पुन होवे, गुर बचन नानक हर भगत लही। मिल आए नगर महाजना, गुर सतगुर ओट गही। सुखारी संत मैला पंजवा इको अंकार, सतगुर प्रसाद। कोल कुमाई लालना गुर मन दीना, सुन बचन तुम्हारा मेरा मन पीना। एह मन पीना ज्यो जल मीना, लागा रंग मुरारा। कीमत कही न जाई ठाकुर, तेरा महल अपारा। सगल गुणा के दाते स्वामी, बिनो सुनो एक दीना। देहो दर्श नानक बलिहारी, जीड़ा बल बल कीना। एहो तन मन तेरा सब गुण तेरे, खनिए वंजा दर्शन तेरे। दर्शन तेरे सुन प्रभ मेरे, निमख दृष्ट पेख जीवा। अमृत नाम सुनी जय तेरा, कृपा करे ता पीवा। आस प्यासी पिरके ताई, जो चात्रिक बूंदे रे। कहो नानक जीड़ा बलिहारी, देहो दर्श प्रभ मेरे। तू साचा साहिब साओ अमिता, तू प्रीतम प्यारा प्राण हित चित्ता। प्राण सुख दाता गुरमुख जाता, सगल रंग बन आए। सोई कर्म कमावे प्राणी, जेहा तू फुरमाए। जाको कृपा करी जगदीसर, तिन साध संग मन जिता। कहो नानक जीड़ा बलिहारी, जियो पिंड तो दिता। निर्गुण राख लिया संतन का सदका, सतगुरु ताक लिया मोह पापी पर्दा। ताक नहारे प्रभु हमारे, जी प्राण सुख दाते। अविनाशी अवगत स्वामी, पूरन पुरख विदाते। पुस्तक कहन न जाए तुम्हारी, कौन कहे तू कद का। नानक दास ता कह बलिहारी, मिले नाम हर निंका। केदारा महला चौथा कर पहला इको अंकार, सतगुर प्रसाद। मेरे मन राम नाम नित गाविए रे, अगम अगोचर न जाई हर लख्या। गुरपूरा मिले लखाविए रे, रहाओ जिस आपे कृपा करे। मेरा स्वामी तिस जन को हर लिव लाविए रे। सबको भगत करे हर केरी, हर पावे सो थाए पाविए रे। हर हर नाम अमोलक हर पै, हर देवे ता नाम ते आविए रे। जिसनो नाम दे मेरा स्वामी, तिस लेखा सब छड़ाविए रे। हर नाम अरादे से तन जन कहिए, तिन मस्तक पाग तुर लिख पाविए रे। तिन देखे मेरा मन बिकसे, ज्यों सुत मिल मात दल लाविए रे। हम बारक हर पिता प्रभ मेरे, मोको देहो मति जित हर पाविए रे। ज्यों बछरा देख गऊ सुख माने, त्यों नानक हर गल लाविए रे। केदारा महला चौथा कर पहला इको अंकार, सतगुर प्रसाद। मेरे मन हर हर गुण कहो रे, सतगुरु के चरण तोए तोए पूजो। इन विद मेरा हर प्रभ लहो रे, रहाओ। काम क्रोध लोभ मोह अभिमान बिखै रस, इन संगत ते तू रहो रे। मिल सत संगत की जय, हर गोष्ट साधु स्यो गोष्ट। हर प्रेम रसायन राम नाम रसायन, हर राम नाम राम रमो रे। अंतर का अभिमान जोर तू किछ किछ किछ जानता, एहो दूर करो आपन गौरे। जन नानक को हर दयाल हो स्वामी, हर संतन की तूर कर हरे। केदारा महला पंजवा कर दूजा इको अंकार, सतगुर प्रसाद। माई संत संग जागी, प्रिय रंग देखे जपती नाम निधानी। रहाओ दर्शन प्यास लोचन तार लागी, बिसरी प्यास बिदानी।
अब गुर पायो है सहज सुखदायक, दर्शन पेखत मन लपटानी, देख समोदर रहस मन उपजो, नानक प्रिय अमृत बानी। खिदारा महला पंजवा कर की जा इको अंकार, सतगुरु प्रसाद दीन बिनो सुन दयाल, पंच दास तीन दोखी एक मन अनाथ नाथ, राख हो कृपाल राव अनिक जतन गवन करो, खट कर्म जुगत ध्यान करो, उपाव सगल कर हारियो, नह नह हुते बिकराल, शरण बंदन करुणा पते, पाव हरण हर हर हर हरे, केक तू ही दीन दयाल, प्रभ चरण नानक आसरो, उदरे प्रम मोह सागर, लग संतना पग पाल। केदारा महला पंजवा कर चौथा इको अंकार, सतगुरु प्रसाद सरनी आयो नाथ निधान, नाम प्रीत लागी मन प्रीतर, मांगन कौ हरदान रहाओ, सुखदाई पूरन परमेश्वर, कर कृपा राखो मान, देहो प्रीत साधु संग स्वामी, हर गुण रसन बखान, गोपाल दयाल गोविंद दमोदर, निर्मल कथा ज्ञान, नानक को हर कै रंग रागो, चरण कमल संग त्यान। केदारा महला पंजवा हर के दर्शन को मन चाहो, कर कृपा सत्संग मिलावो, तुम देवो अपनो नाव रहाओ, करो सेवा सतपुरुष प्यारे, जत सुनिए तत मन रहसाओ, वारी फेरी सदा कुमाई, कवन अनूप तेरो ठाओ, सर्व प्रत पाले सगल संभाले, सगलिया तेरी छाओ, नानक के प्रभु पुरख विधाते, कट कट तुझे दिखाओ। किदारा महला पंजवा प्रिय की प्रीत प्यारी,

कपट तपट बुझ तृष्णा जीवो पेख दरसारी कौन सो जतन उपाव कनेहा सेवा कौन बिचारी मान अभिमान मोह तज नानक संते संग उधारी किरारा महला पंजवा हर हर हर गुण गावो करो कृपा गोपाल गोविंदे अपना नाम जपावो रहाओ काड लिए प्रभ आन बिखेते साध संग मन लावो तंपो मोह कट्यो गुरु वचनी अपना दर्श दिखावो सबकी रेन होए मन मेरा अहं बुद्ध तजावो अपनी भगत देह दयाला वडपागी नानक हर पावो किदारा महला पंजवा हर बिन जन्म अकारत जात तज गोपाल आन रंग राचत मिथ्या पहरत खात रहाओ

मोह महा मद मोहत काम क्रोध के खात कर गए लिहो दास नानक को प्रभु जियो होए साथ। केदारा महला पंजवा हर बिन कोए न चालस साथ दीना नाथ करना पत स्वामी अनाथा के नाथ राव सुत संपत बिख्या रस ओगवत नह निभत जम कै पात नाम निधान गाओ गुण गोविंद उदर सागर के खात करण समरथ अटक अगोचर हर सिमरत दुख लात नानक दीन तूर जन बाचत मिले लिखत तुर मात। केदारा महला पंजवा कर पंजवा इको अंकार सतगुर प्रसाद बिसरत नाहे मनते हरी अब एह प्रीत मां परबल कही आन बिखै जरी रहाओ बूंद कहा त्याग चात्रिक मीन रहत न करी गुण गोपाल उचार रसना देव ए परी महानाद कुरंक मोयो वेद तीखन सरी प्रभ चरण कमल रसाल नानक गांठ बांध तरी। केदारा महला पंजवा प्रीतम बस रिद में खोर परम पीत निवार ठाकुर गह लियो अपनी ओर रहाओ अधिक गर्त संसार सागर कर दया चारो तोर संत संग हर चरण बोहत उदरते ले मोर गर्भ कुंट में जिने तारियो नहीं दिखे बन में होर हर सकत शरण समरथ नानक हान नहीं निहोर। किदारा महला पंजवा रसना राम राम बखान गुण गोपाल उचार दिन रैन पे कलमलहान रहाओ त्याग चलना सगल संपत काल सिर पर जान मिथन मोह दुरंत आशा झूठ सर परमान सत पुरख अकाल मूर्त हृदय तारो त्यान नाम निधान लाभ नानक बस ए परवान। केदारा महला पंजवा हर के नाम को आधार कल कलेश ना कछ व्याप संत संग व्यवहार रहाओ कर अनग्रह आप राख्यो न उपजतो बेकार जिस परापत होए सिमरे तिस दहत नह संसार सुख मंगल आनंद हर हर प्रभ चरण अमृत सार नानक दास शरणागति तेरे संतना की चार। केदारा महला पंजवा हर के नाम बिन त्रिग स्रोत जीवन रूप विसार जीवे ते कत जीवन होत रहाओ खात पीत अनेक बिंजन जैसे पार बाहक खोत आठ पैर महाश्रम पाया जैसे बिरख जंती जोत तज गोपाल जे आन लागे ते बहु परकारी रोत कर जोर नानक दान मांगे हर रखो कंठ परोत। किदारा महला पंजवा संते तूर ले मुखमली गुणा अचुत सदा पूरन नह दोख व्यापे कली राव गुरु बचन कार्य सर्व पूरन ईत ऊत ना हली प्रभ एक अनक सर्वत पूरन दिखे अग्न ना जली गह पूजा लीनो दास अपनो ज्योति ज्योत रली प्रभ चरण शरण अनाथ आयो नानक हर संग चली। केदारा महला पंजवा हर के नाम की मन रुचे कोट शांत आनंद पूरन जलत छाती बुझे रहाओ संत मार्ग चलत प्राणी पतत उदरे मुचे रेन जन की लगी मस्तक अनेक तीरथ सुचे चरण कमल ध्यान पीतर कट कटे स्वामी सुजय शरण देव अपार नानक बहुर जम नहीं।

दा दौ विवर्जत तजो मान अभिमाना। लोहा कंचन सम कर जाने ते मूरत पगवाना। तेरा जन एक आद कोई काम क्रोध लोभ मोह विवर्जित हर पद चीने सोई रहाओ। रज गुण तम गुण सत गुण कही है ते तेरी सब माया। चौथे पद को जो नर चीने तिन ही परम पद पाया। तीर्थ व्रत नेम सुख संजम सदा रहने कामा। कृष्णा अर माया परम चूका चितवत आत्म रामा। जे मंदर दीपक परगासिया अंधकार कहना सा

तो बन गया नाम गोविंद का ऐसी खेप हमारी। हर के नाम के व्यापारी हीरा हाथ कड़िया निर्मोलक छूट गई संसारी राव। साचे लाए तो सच लागे साचे के व्यवहारी। साची बस के पार चलाए पहुँचे जाए पंडारी। आपे रतन जवाहर मानक आपे है पासारी। आपे देह दिस आप चलावे नेचल है व्यापारी। मन कर बैल सुरत कर पेंडा ज्ञान गोन पर डारी। कहत कबीर सुनो रे संतो निधि खेप हमारी। री कलवार गवार मूड मत उल्टो पवन फिरावो। मन मतवार मेर सर पाठी अमृत तार।

जेते कट अमृत सभी में पावे तिसे पियाई। नगरी एक नौ दरवाजे तावत बर्ज रहाई। त्रिपुटी छूटे दसवां दर फूले तामन खीवा पाई। अबे पद पूर ताप तहना से कह कबीर बिचारी। उबट चलनते ए मद पाया जैसे खोंद फुमारी। काम क्रोध तृष्णा के लीने गत नहीं एक कह जानी। फूटी आँखें कछु न सूजे बूढ़ मुए बिन पानी।

आओ राम ना जपो कवन प्रम फूले तुम ते काल ना दूरे अनित जतन कर एहो तन राखो रहे अवस्था पूरे आपन किया कछु न होवे क्या तो करे परानी जात इस पावे सतगुरु पेटे एको नाम बखानी बलुआ के करुआ में बसते।

राव लाल से चूठ बिकार महामद के बिद औद बिहान कह कबीर अंत की देर आए लागो काल निदान। चार दिन अपनी नौबत चले बजाए इतनक खटिया गठिया मटिया संग ना कछ ले जाए। रहाओ देरी बैठी मेरी रोवे द्वारे लो संग माए मरहट लग सब लोग कुटम्ब मिल हंस इकेला जाए। वह सुत वह बित वह पुर पाटन बौर न देखे आए कहत कबीर राम की न सिमरो जन्म अकारस जाए। राग केदारा बाणी रविदास जीओ की इको अंकार सतगुर प्रसाद। खत कर्म कुल संयुक्त है हर भगत हृदय नाहे चरनार बिंद ना कथा पावे सुपत तुल समान। रे चित चेत चेत अचेत काहे ना बालमी कै देख किस जात ते के पदे अमरियो राम भगत विशेख रहाओ। स्वान सत्र अजात सब ते कृष्ण लावे हेत लोग बपुरा क्या सारा है तीन लोक प्रवेश। अजामल पिंगला लुबत कुंचर गए हर के पास ऐसे दुर्मत निस्तरे तू क्यों ना तरे रविदास। राग पैरों मैला पहला कर पहला चौपदे

मन मनते मानिया मन सामने समाई मन जोगी मन बिनस बियोगी मन समझे गुण गाई गुरते मन मारिया शब्द विचारिया ते विरले संसारा नानक साहिब पर कुरलीना सात शब्द निस्तारा पैरो महला पहला नैनी दृष्ट नहीं तन ही ना जर जीत्या सिर कालो रूप रंग रहस नहीं साचा क्यों छोड़े जम जालो प्राणी हर जप जन्म गयो सात शब्द बिन कब होना छूटत बिरथा जन्म भयो रहाओ तन में काम क्रोध हो ममता कथन पीर अत भारी गुरमुख राम जपो रस रसना किन विद तर्कु तारी बैरे करन अकल भई होछी शब्द सहज नहीं बूझिया जन्म पदार्थ मन मुख हारिया बिन गुर अंग न सूझिया रह उदास आस निराशा सहज ध्यान बैरागी प्रणवत नानक गुरमुख छूटस राम नाम निवलागी पैरों महला पहला पूंडी चाल चरण कर खिसरे तुचा देह कुमलानी नेत्री तुंद करन पै बहरे मन मुख नाम न जानी अंगुले क्या पाया जग आए राम हृदय नहीं गुर की सेवा चाले मूल गवाए रहाओ जेहवा रंग नहीं हर राती जब बोले तब फीके संत जना की निंदा व्यापस पशु पे कदे होए नानी के अमृत का रस विरली पाया सतगुरु मेल मिलाए जब लग शब्द पेद नहीं आया तब लग काल संताए अन को दर कर कबू न जानस एक को दर्श प्यारा गुरु प्रसाद परम पद पाया नानक कह विचारा पैरों महला पहला सगली रैन सोवत गलफाही दिनस जंजाल गवाया किन पल कड़ी नहीं प्रभ जानिया जिन एहो जगत उपाया मन रे क्यों छूटस दुख पारी क्या ले आवस क्या ले जावस राम जपो गुणकारी रहाओ पूंदो कवल मन मुख मत होची मन अंधे सिर तंदा काल विकाल सदा सिर तेरे बिन नावे गल फंदा डगरी चाल नेत्र फुन अंधुले शब्द सुरत नहीं पाई शास्त्र वेद त्रै गुण है माया अंधलो तंद कमाई खोयो मूल लाभ कह पावस दुर्मत ज्ञान विहूने शब्द विचार राम रस चाख्या नानक साच पतीने पैरों महला पहला गुर के संग रह दिन राती राम रसन रंग राता अवर न जानस शब्द पछाणस अंतर जान पछाता सोजन ऐसा मैं मन पावे आप मार अपरंपर राता गुर की कार कमावे रहाओ अंतर बाहर पुरख निरंजन आद पुरख आदेशो कट कट अंतर सर्व निरंतर रव रहा सच वेशो सात रते सच अमृत जेवा मिथ्या मैल नाराई निर्मल नाम अमृत रस चाख्या शब्द रते पत पाई गुणी गुणी मिल लाहा पावस गुरमुख नाम वडाई सगले दुख मिटे गुर सेवा नानक नाम सखाई पैरों महला पहला हृदय नाम सर्व तन तारण गुर प्रसादी पाईए अमर पदार्थ ते किरतार्थ सहज ध्यान लिवलाई है मन रे राम भगत चितलाईए गुरमुख राम नाम जप हृदय सहज खेती कर जाइए रहाओ परम पेद पाओ कभू न छूटत आवत जात न जानी बिन हर नाम को मुक्त न पावस डूब मुए बिन पानी तंदा करत सगली पत खोवस परम न मिटत गवारा बिन गुर शब्द मुक्त नहीं कभी अंधले तंद पकारा अकुल निरंजन स्यों मन मानिया मन ही ते मन मुआ अंतर बाहर एक को जानिया नानक अवर न दुआ पैरों महला पहला जगन होम पुन तप पूजा देह दुखी नित दुख सह राम नाम बिन मुक्त न पावत मुक्त नाम गुरमुख लहै।

पुस्तक पाठ व्याकरण वखाणे संध्या कर्म तिकाल करे बिन गुर शब्द मुक्त कहा प्राणी राम नाम बिन उर्ज मरे दंड कमंडल शिखा सूत तोती तीरथ गवन अप प्रमन करे राम नाम बिन शांत ना आवे जप हर हर नाम सोपार परे जटा मुकुट तन पखम लगाई वस्त्र छोड़ तन नगन भया राम नाम बिन तृप्त ना आवे किरत के बांधे पेख पाया जेते जी जंत जल फल महियल जत्र कत्र तू सर्व जिया गुर प्रसाद राख ले जन को हर रस नानक चोल पिया।

ब्रह्म दिन देसो ब्राह्मण होए, जात का गर्भ न कर मूर्ख दा वारा। इस गर्भ से चले बहुत विकार आ रहा हो, चारे वर्ण आखे सब कोई, ब्रह्म बिंद ते सब उपत होई, माटी एक सगल संसारा, बहुविध

तिरम कसाई, मिलोगी दयाल पंच शब्द बजाई, पणत नानक करे क्या कोए, जिसनो आप मिला वै सोए पैरों महला तीजा। सो मुन जे मन की दुबदा मारे, दुबदा मार ब्रह्म विचारे, इस मन को कोई खोजो भाई, मन खोजत नाम नौनिद।

चार हुक्म बुझ समान। कर्म होवे गुर कृपा करे, यह मन जागे इस मन की दुविधा मरे। मन का स्वभाव सदा बैरागी, सब में वसे अतीत अनुरागी। कहत नानक जो जाने पेओ, आद पुरख निरंजन देओ। पैरो महला तीजा, राम नाम जगत निस्तारा। पव जल पार उतारण हारा, गुर प्रसादी हर नाम समाल। सद ही निभ है तेरे नाल, रहाओ नाम।

नानक गुरमुख नाम प्यार। पैरो मैला तीजा कल युग में बहु कर्म कमाए, नारुत ना कर्म थाए पाहे। कल युग में राम नाम है सार, गुरमुख साचा लगे प्यार। रहाओ तन मन खोज करे मैं पाया, गुरमुख राम नाम चितलाया। ज्ञान अंजन सतगुर ते होए, राम नाम रव रया ते लोए। कल युग में हर जियो एक होर रुत न काई, नानक गुरमुख हृदय राम नाम लियो जमाई। पैरों मैला तीजा कर दूजा इको अंकार, सतगुर प्रसाद। दुबदा मनमुख रोग व्यापे, कृष्णा जले अधिकाई। मर मर जम में ठौर न पावे, बिरथा।

सिमरत शास्त्र पणे मुन केते बिन शब्द सुरत न पाई त्रै गुण सबे रोग व्यापे ममता सुरत गवाई एक आपे काड लय प्रभ आपे गुर सेवा प्रभ लाए हर का नाम निधानो पाया सुख वस्या मन आए।

0: जिन ब्रह्मा विष्णु रुद्र उपाया, नानक निश्चल साचा एको ना ओ मरे न जाया। पैरों मैला तीजा मनमुख दुबदा सदा है रोगी, रोगी सगल संसारा गुरमुख बूझे रोग गवावे गुर सबदी विचारा। हर जियो सत्संगत मेलाए नानक तिसनो देव दयाई, जो राम नाम चितनाए रहाओ ममता काल सब रोग व्यापे, तिन जम की है सिरकारा गुरमुख प्राणी जम नेड़ ना आवे। जिन हर राख्या उधारा जिन हर का नाम ना गुरमुख जाता, से जग में काहे आया गुर की सेवा कदे न कीनी बिरथा जन्म गवाया। नानक से पूरे वड पागी सतगुर सेवा लाए, जो इच्छे सोई फल पावे गुरबाणी सुख पाए।
1: पैरू मैला तीजा दुख विच जम्मे दुख मरे, दुख विच कार कमाए गर्भ जो नी विच कदे ना निकले बिस्ता माए समाए। त्रिग त्रिग मन मुख जन्म गवाया, पूरे गुर की सेवना कीनी हर का नाम न पाया रहाओ। गुर का शब्द सब रोग गवाए जिसनो हर जियो लाए, नामे नाम मिले वड्याई जिसनो मन वसाए। सतगुर पोते ता फल पाए सच करनी सुख सार, से जन निर्मल जो हर लागे हर नामे तरे प्यार। इनकी रेण मिले ता मस्तक लाई जिन सतगुर पूरा त्याया।

शब्द बिचारे सो जन साचा, जिनके हृदय साचा सोई। साची भगत करे दिन राती, तां तन दुख न होई। भगत भगत कहे सब कोई, दिन सतगुर सेवे भगत न पाई। पूरे पाग मिले प्रभ सोई राव, मन मुख मूल गवावे।

कृष्णा अगन पचाए सदा आनंद राम रस राते। हृदय नाम दुबदा मन पागी हर हर अमृत पी तृप्ताते रहाओ आपे पार ब्रह्म सृष्ट जिम साजी।

गुरमुख मन वसाई, आप तरे सगले कुल तारे, जिनी राम नाम लिवलाई, मेरा प्रभ है गुण का दाता, अवगुण शब्द जलाए, जिन मन वस्या से जन सोहे, हृदय नाम वसाए, कर दर मेल सतगुरु दिखाया, रंग सो रलिया माने, जो कुछ कहे सो पला कर माने।

गुरु प्रसाद परम पद पाया, सब इच पुजावन हार राव, सब में एको रब रहा, गुर बिन बूझ न पाए, गुरमुख प्रगट होआ मेरा, हर प्रभ अंग दिन हर गुण गाए, सुखदाता हर एक है, होर थे सुख न पाए, सतगुरु जिनी न सेवया, दाता से अंत गए पछताए, सतगुरु सेव सदा सुख पाया, फिर दुख न लागे ताए, नानक हर भगत प्राप्त होई, ज्योति जोत समाए, पैरों महला तीजा, बाज गुरु जगत बौराना, फूला चोटा खाए, मर मर जमे सदा दुख पाए, डर की खबर न पाए, मेरे मन सदा रहो सतगुर की शरणा, हृदय हर नाम मीठा सद लागा, गुर सबदे पव जल करना रहाओ, देख करे बहुत चित डोले, अंतर काम क्रोध अहंकार, अंतर तिसा भूख अत बहुती, पौकत फिरे दरबार, गुर के शब्द मरे फिर जीवे, तिनको मुक्त द्वार, अंतर शांत सदा सुख होवे, हर राख्या उदार, जो तिस भावे तिवे चलावे, करना किसु न जाई, नानक गुरमुख शब्द संभाले, राम नाम वड्याई, पैरों महला तीजा, हो मैं माया मोह खुआया, दुख खटे दुख खाए, अंतर लोभ हलक दुख पारी, बिन विवेक परमाए, मन मुख त्रिग जीवन सहसार, राम नाम सुपने नहीं चेतिया, हर सो कदे न लागे प्यार रहाओ, पशुआ कर्म करे नहीं बूझे, कूड़ कमावे कूड़ो होए, सतगुरु मिले ता उल्टी होवे, खोज लहे जन कोए, हर हर नाम हृदय सदवस्या, पाया गुणी निधान, गुर प्रसादी पूरा पाया, चूका मन अभिमान, आपे करता करे कराए, आपे मार्ग पाए, आपे गुरमुख देव आए, नानक नाम समाए, पैरों महला तीजा, मेरी पटिया लिखो हर गोविंद गोपाला, दूजे पाए फाके जमजाला, सतगुर करे मेरी प्रतपाला, हर सुखदाता मेरे नाला, गुर उपदेश प्रहलाद हर उचरे, सासना के बालक गम न करे, रहाओ माता उपदेश है प्रहलाद प्यारे, पुत्र राम नाम छोड़।

प्रहलाद आप बिगड़िया सब चाकड़े बिगाड़े, दुष्ट सभा में मंत्र पकाया, प्रहलाद का राखा हुए रघुराया, हाथ खड़ग कर ताया अत अहंकार, हर तेरा कहां तुझले उबार, किन मैं पयान रूप लिख्या थम उपार, हरनाकस नखी बिदारिया प्रहलाद लिया उबार, संत जना के हर जियो कार सवारे, प्रहलाद जन के इतनी कुले उड़ारे, गुर के शब्द हो मैं बिख मारे, नानक राम नाम संत निस्तारे, पैरों महला की जा, आपे दैंत लाए दिते संत जना को, आपे राखा सोई, जो तेरी सदा सरनाई, तिन मन दुख न होई, जुग जुग पगता की रखदा आया, दैत पुत्र प्रहलाद गायत्री तर्पण किछु न जाने, शब्द मेल मिलाया रहाओ, अन दिन पगत करे दिन राती दुबदा सब देखोई, सदा निर्मल है जो सच राते सच वस्या मन सोई, मूरख दुबदा पने मूल न पछाने बिरता जन्म गवाया, संत जना की निंदा करे दुष्ट दैत चिड़ाया, प्रहलाद दुबदा ना पड़े हर नाम ना छोड़े डरे ना किसे दा डराया, संत जना का हर जियो राखा देते काल नेड़ा आया, अपनी तेज आपे राखे पगता दे वड़ियाई, नानक हर नाकस नखी बिदारिया अंदे दर की खबर न पाए, राग पैरों महला चौथा चौप दे कर पहला इको अंकार, सतगुरु प्रसाद हर जन संत कर कृपा पग लायन, गुर शब्द हर पज सुरत समायन, मेरे मन हर पज नाम नारायण, हर हर कृपा करे सुख दाता, गुरुमुख पव जल हर नाम तरायन राव, संगत साध मेल हर गायन, गुरमति ले राम रसायन, गुरु साधु अमृत ज्ञान सरनायन, सब किलविक पाप गए गवायन, तू आपे करता सृष्ट त्रायन, जन नानक मेल तेरा दास दसायन, पैरों महला चौथा बोल हर नाम सफल सा करी, गुर उपदेश सब दुख पर हरी, मेरे मन हर पज नाम नर हरी, कर कृपा मेलो गुरपुरा, सत संगत संग सिंध।

सुकृत करनी सार जप माले, हृदय फेर चले तुझ नाले, हर हर नाम जपो बनवाले, कर कृपा मेलो सब संगत, टूट गई माया जमजाली राव। गुरुमुख सेवा काल जिन काली, तिस करिए सब सची टकसाली, हर अगम अगोचर गुर अगम दिखाली, विच काया नगर लद्दा हर पाली, हम बारिक हर पिता प्रतपाली, जन नानक तारो नगर निहाली, पैरों महला चौथा सब कट तेरे तू सब ना माहे, तुझ ते बाहर कोई ना है, हर सुखदाता।

जिसको तुम हर राख्या भावे, इसके नेड़े कोई न जावे, तू जल थल मैल सब ते भरपूर, जन नानक हर जप हाजरा हजूर।

हर बाहर जो कुछ करे सोई पल होसी, हर क्या वो अंग दिन नाम मुरार, हर जो कुछ करे सो आते आते वो पूछ ना किसे करे विचार, नानक सो प्रभु सदा त्याई है जिन मेलिया सतगुरु कृपा कार, पैरों महला चौथा ते साधु हर मेलो स्वामी, जिन जपिया गत होए हमारी तिनका दर्श देख मन बिगसे, किन किन किन कौ हो बलिहारी, हर हृदय जप नाम मुरारी, कृपा कृपा कर जगत पित स्वामी, हम दासन दास की जय पनिहारी रहो, तिन मत उत्तम तिन पत उत्तम, जिन हृदय वस्या बनवारी, तिन की सेवा लाए हर स्वामी, तिन सिमरत गत होए हमारी, जिन ऐसा सतगुरु साधना पाया, ते हर दरगे का डे मारी, ते नर निंदक सोग न पावे, तिन नख काटे सृजनहारी, हर आप बुलावे आपे बोले, हर आप निरंजन निरंकार निराहारी, हर जिस

सो जन पावे हर सुख कणे, तन सो वंश तन सो पिता तन सो माता जिन जन जने, जिन सास गिरास आया मेरा हर हर, से साची दर गए हर जन बने। हर हर अगम नाम हर तेरे, विच पगता हर तरणे, नानक जन पाया मत गुरमत, जप हर हर पार पवने। पैरो महला पंजवा कर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सगली थीत पास दार राखी, अष्टम थीत गोविंद जन्मासी, परम पूले नर करक कचरायण, जन्म मरण के रहत नारायण। रहाओ कर पंजीर खवायो चोर, ओ जन्म ना मरे रे साकत टोर, सगल पराग देहे लोरो नी, सो मुख जलो

नानक कह कर केवल नाम पैरों महला पंजवा। जे सो लोच लोच खावाया साकत हर हर चीतना आया संत जना की लेहो मते साध संग पावो परम गते रहाओ पात्र को बो नीर पवाया। मैं पी गए अदुख सुकाया खट शास्त्र मूर्ख।

तब आराधन निर्मल रीत साध संग बिनसी विपरीत नीत हीत तन ने पारणा तन तन मेरे नारायणा नानक बोले अमृत बाणी एक बिना दूजा नहीं जाने पैरो महला पंजवा आगे दे पाछे नारायण मद भाग हर प्रेम रसायन प्रभु हमारे शास्त्र सौन सुख सहज आनंद गृह पौन रहाओ रसना नाम करण सुन जीवे प्रभु सिमर सिमर अमृत जीवे जन्म जन्म के दुख निवारे अनहद शब्द बजे दरबारे कर कृपा प्रभु लिए मिलाए नानक प्रभु शरणागत आए पैरों महला पंजवा कोट मनोरथ

होवै। जीवत बहुड़ न जोन परमाम रहाओ। पूजा जाप ताप स्नान सिमरत नाम पहल ने काम। राजमाल साधन दरबार सिमरत नाम पूरन आचार। नानक दास इहो किया विचार बिन हर नाम मिथ्या सब चार।

का मूल दुष्ट ब्राह्मण मुआ होए कैसूल हर जन राखे पार ब्रह्म आप पापी मुआ गुर प्रताप रहाओ अपना खत्म।

पहला पंजवा साच पदार्थ गुरमुख लहो प्रभ का पाना सत कर सहो जीवत जीवत जीवत रहो राम रसायन नित उठ पीवो हर हर हर हर।

हर जप जप उदरिया सगल जहान पैरों मैला पंजवा अपने दास को कंठ लगावे निंदक को अग्न में पावे पापी के राखी नारायण पापी की गत कत हूँ नाही पापी पछया आप कमाइन रहाओ दास राम जियो लागी प्रीत निंदक की होई विपरीत पार ब्रह्म अपना बिरद प्रगताया दुखी अपना कीता पाया आए न जाई रहा समाई नानक दास हर की शरणाई राग पैरों मैला पंजवा चौक दे कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्री कर मोहन सगल उपावन निरंकार सुखदाता ऐसा प्रभ छोड़ करें अन सेवा कवन बिछिया रसमाता रे मन मेरे तू गोविंद पाज अवर उपाव सगल मैं देखे जो चित भी है चित बिगरस ताज रहाओ ठाकुर छोड़ दासी को सिमरे मन मुख अंध अज्ञाना हर की पगत करे तिन निंदे निगुरे पशु समाना जियो पिंड तन तन सब प्रभ का साचत कहते मेरा अहं बुद्ध दुर्मत है मैली बिन गुर पव जल फेरा होम जग जप तप सब संयम तट तीरथ नहीं पाया मिटिया आप कहे शरणाई गुरमुख नानक जगत कराया पैरों मैला पंजवा बन में पेख्यो तृण में पेख्यो गृह पेख्यो उदासाए दंड तार

पंजवा निकट बुझे सो बुरा क्यों करे बिस संचय नित डरता फिरे है निकट अर्थ एक न पाया बिन सतगुरु सब

पंजवा जिस तू राखे तुझ कौन मारे है सब तुझ ही अंतर सगल संसार है कोट उपाव चितवत है प्राणी सोहो वै जे करे चोज विदानी राखो राखो।

जन नानक अपन साचै कोए पैरो मैला पंजवां। तौ करिए जे होवे बाहर तौ करिए जे विसरे नरहर तौ करिए जे दूजा पाए क्या करिए जा रहा समाए। माया मोह करे कड़ पचिया दिन नामे प्रम प्रम प्रम खपिया रहाओ। तौ करिए जे दूजा करता तौ करिए जे अन्याय को मरता तौ करिए जे तुझ जाने नाही क्या करिए जा पर।

बिन अमरे कैसे राज मंडत, बिन बूझे कहां मन ठहराना, नाम बिना सब जग बोराना, बिन बैराग कहां बैरागी, बिन हो त्याग कहां को त्यागी, बिन बस पंच कहां मन चूरे, नाम बिना सब सद ही चूरे, बिन गुरु दीक्षा कैसे ज्ञान, बिन पेखे कहो कैसो ध्यान, बिन पै कथनी सर्व विकार, कहो नानक दर का विचार, पैरों मेला पंजवा, हूँ मैं रोग मानुख को दीना, काम रोग मैं गल बस लीना, दृष्ट रोग पच मोए पतंगा, नाग रोग खप गए।

वासन रोग पवर विनसानो, पेट रोग का सगल संसारा, त्रिविध रोग में बदे विकारा, रोगे मरता रोगे जन्मे, रोगे फिर जोनी पर में, रोग बंद रहन गति न पावे, बिन सतगुरु रोग कटे न जावे, पार ब्रह्म जिसकी दया वहाँ

नानक उदरे नाम पुनः चार, हवर कर्म लोके पतियार, पैरों महला पंजवा, नमस्कार ताको लख बार, रुमन दी जय ताको वार, सिमरन ताके मिटे संताप, होय आनंद न व्यापे ताप, ऐसो हीरा निर्मल नाम जास।

देसुआ पद से किसने शरमावे, सारो दिन मजूरी करे, हर सिमरन की वेला बजर सिर पर है। माया लग पूलो संसार, आप पुलाया पुलावन हारे, राच रहा बिरथा व्यवहार राओ, एक माया रह।

पूरन होत ना कारज माया, काम क्रोध लोभ मन लीना, तरफ मुआ जो जल बिन मीना, जिसके राखे होए हर आप, हर हर नाम सदा जप जाप, साध संग हर के गुण गाया, नानक सतगुरु पूरा पाया, पैरो मैला पंजवा, अपनी दया करे सो पाए, हर का नाम मन वसाए, साच शब्द हृदय मन माहे, जन्म जन्म के चिल विख जाए, राम नाम जी को आधार, गुरु प्रसाद जपो नित पाए, तार ले सागर संसार राव, जिनको लिखिया हर एहो निधान।

जिस लड़ लाए ले सो लागे, जन्म जन्म का सोया जागे, तेरे भगत भगतन का आप, अपनी महिमा आपे जाप, जी जंत सब तेरे हाथ, नानक के प्रभु सभी साथ, पैरों महला पंजवा, नाम हमारे अंतर जामी, नाम हमारे आवे कामी, रोम रोम रविया हर नाम, सतगुरु पूरे तीनों दान, नाम रतन मेरे पंडार, अगम अमूला।

स्वाओ नाम न विसरे संत प्रसाद नाम लेत अनहद पूरे नाद प्रभ कृपा ते नाम नौ निध पाई गुर कृपा ते नाम स्यों बने आई तनवंते सही प्रदान नानक जाके नाम धान पैरों महला पंजवा तू मेरा पिता तू है मेरा माता तू मेरे जीव प्राण सुखदाता तू मेरा ठाकुर हूँ दास तेरा तुझ बिन अवर नहीं को मेरा।

नाम तिस शरणाई सदा सुख होए कर कृपा जा को मिले सोए रहाओ जा के कर्तव्य लखे न जाए जा का परवासा सब कट माए।

पातशाह साचा सोए, जिसकी ओट तिसे की आशा, दुख सुख हमरा तिसी पासा, राख लीनो सब जन का पर्दा, नानक तिसे

रोवन हारी रोज बनाया, बलन बर्तन कौशन बंद चिताया, बूझ बैराग करे जे कोए, जन्म मरण फिर शोक न होए, दिखला का सब

जाए निर्मल मना, सगल मनोरथ पूरन काम, भगत अपने को देवो नाम, सफल सेवा गोपाल राय, करण करामन हार।

ने मूर मुग्ध होए चतुर सुज्ञान सगल पयान का पौन से जन अपने के हर मन बसे पार ब्रह्म प्रभु सुख निदान तत् ज्ञान हर अमृत नाम कर कृपा संत टहले लाए नानक साधु संग समाए पैरो महला पंजवा संत मंडल में हर मन वसे संत मंडल में दुर्त सब नसे संत मंडल में निर्मल रीत संत संग होए एक प्रीत संत मंडल तहां का नाओ पार ब्रह्म केवल गुण गाओ रहाओ संत मंडल में जन्म मरण रहे संत मंडल में जम किछु ना कहे संत संग होए निर्मल बाणी संत मंडल में नाम वखाणी संत मंडल का नेचर आसन संत मंडल में पाप विनाशन संत मंडल में निर्मल कथा संत संग हो मैं दुख नसा संत मंडल का नहीं विनाश संत मंडल में हर गुण पास संत मंडल ठाकुर विश्राम नानक ओत पोत भगवान पैरों महला पंजवा रोग कवन जा राखे आप जिस जन होए न दुख संताप जिस ऊपर प्रभु कृपा करे जिस ऊपर ते काल पर हरे सदा सखाई हर हर नाम जिस चीत आवे तिस सदा सुख होवे दुख न आवे ता कह जाम रहाओ जब ए नासो तब किने उपाया कवन मूल के क्या प्रगटाया आपे मार आप जीवाले अपने भगत को सदा प्रतिपा

0: सोई भगत जपे नाम जाप मन पर दास गुते मत लई। कहो नानक ताकी पूरी पई।
1: पैरों महला पंजवा सुख नाही बहुते तन खाटे, सुख नाही पेखे निरत नाटे, सुख नाही बहु दिवस कमाए, सर्व सुखा हर हर गुण गाए, सुख

सहो नानक प्रभु कृपा करी। सास गिरास जपो हर हरी पैरों महला पंजवा सबसे ऊंचा जाका नाओ सदा सदा ताके गुण गाओ। जिस सिमरत सगला दुख जाए सर्व सुख वसे मन आए सिमर मना तू साचा सोए हलत पलत।

नानक को गुरु पै दयाल पैरों मैला पंजवा जिस सिमरत मन होए प्रगास मिटे कलेश सुख सहज निवास तिसे प्राप्त जिस

सगल कटा के अंतर जामे, कर कृपा अपनी सेवा लाए, नानक दास तेरी शरणाए। पैरों महला पंजवा, लाज मरे जो नाम ना लेवे, नाम विहून सुखी क्यों सोवे। हर सिमरन छाड़ परम गच्छा है, मूल बिना शाखा कथा है। गुरु गोविंद मेरे मन त्याए, जन्म जन्म की मैल उतारे। बंधन काट हर संग मिलाए रहो।

पूरन मन पानी जल थल मही अल रव्या सोए नानक सब किस प्रभ ते होए पैरों मैला पंजवा मन तन राता राम रंग चरणे सर्व मनोरथ पूरन करने आठ पैर गावत पग

सो तनवंता जिस बुद्ध विवेक, सो कुलवंता जे सिमरै स्वामी, सो पतवंता जे आप पछानी, गुरु प्रसाद परम पद पाया, गुण गोपाल दिन रैंते आया, टूटे बंधन पूरन आसा, हर के चरण रिद माए निवासा, कहो नानक जाके पूरन कर्मा, सो जन आया प्रभु की शरणा, आप प्रेत पावन सब कीने, राम रसायन रसना चीने, पैरों महला पंजवा, नाम लैत किस बिघन ना लागे, नाम सुनत जम दूरों पागे, नाम लैत सब दुख है नास, नाम जपत हर चरण निवास, निर्विघ्न भगत पज हर हर नाओ, रसक रसक हर के गुण गाओ रहाओ, हर सिमरत किछ चाख न जो है, हर सिमरत दैत देओ न पो है, हर सिमरत मोह मान न बदे, हर सिमरत गर्भ जोन न रुदे, हर सिमरन की सगली बेला, हर सिमरन बहु माए अकेला, जात अजात जपे जन कोए, जो जापे तिसकी गत होए, हर का नाम जपिए साध संग, हर के नाम का पूरन रंग।

प्रभु कृपा तार, सास सास हर दियो चितार, पैरों महला पंजवा, आपे सासत आपे बेद, आपे कट कट जाने पेद, जोत स्वरूप जाकी सब वत, करण कारण पूरन समरथ, प्रभ की ओट गहो मन मेरे, चरण कमल गुरमुख आरादो, दुश्मन दुख ना आवे नेरे, रहाओ आपे वन त्रिन त्रिभुवन सार, जाके सूत परोया पार, आपे शिव शक्ति संजोगी, आपे निर्वाणी आपे पोगी, जत कत पेखो तत तत सोए, तिस बिन दूजा नाही कोए, सागर तरिय नाम के रंग, गुण गावे नानक साथ संग, मुक्त पुगत जुगत वस जाके, ऊना नाही किस जनता के, कर कृपा जिस होए सो प्रसन्न, नानक दास से जनतन, पैरों मेला पंजवा, भगता मन आनंद गोबिंद, अस्थित पए बिनसी सब चिंद, पै प्रम बिनस गए खिल माहे, पार ब्रह्म वस्या मन आए।

प्रतपाल प्रभ कृपाल कवन गुण गनी अनेक रंग बहुतरंग सर्व को तनी रहाओ अनेक ज्ञान अनेक ध्यान अनेक जाप जाप ताप अनेक गुणत तुनत ललित।

परिवार। लक्ष्मी पौ करे नासा कह जाए, प्रहलाद जन चरणी लागा आए, सतगुरु नाम निधान।

रूप दिखाया, पैरों महला तीजा, गुर सेवा ते अमृत फल पाया, हों मैं तृष्ण बुझाई, हर का नाम हृदय मन वस्या, मनसा मने समाई, हर जियो कृपा करहु मेरे प्यारे, अन दिन हर गुण दीन जन मांगे गुर।

सुरत न पाई, मन मुख मरे तिन किछु न सूजे, दुर्मत अज्ञान अंधारा, पव जल पार न पावे कभी, डूब मोए बिन गुर सिर पारा, साचे शब्द रते जन साचे, हर प्रभ आप मिलाए, गुर की बाणी शब्द पछाती, साच रहे लिवलाए, तू आप निर्मल तेरे जन है निर्मल।

जिस नाम हृदय तिस वड परवारा, नाम बिना मन मुख गावारा। जिस नाम हृदय तिस नहीं चल आसन, जिस नाम हृदय तिस तख्त निवासन। जिस नाम हृदय सो साचा साहा, नाम हीन नाही पतवे साहा।

तरतत्यान कोट तपीसर तप ही करते कोट मुनीसर मौन में रहते अवगत नाथ अगो

अचिंत वस्यो मन सुख विश्रामा, अचिंत हमारे अनहत वाजय, अचिंत हमारे गोविंद गाजय, अचिंत हमारे मन पति आना, नेचल तनी अचिंत पछाना, अचिंतो उपजो सगल विवेका, अचिंत चरी हथ हर हर।

ना राम राजा नौनिद मेरे संपहित कलत तन तेरे रहाओ आवत संग ना जात संगाती कहां पयो दर बांधे हाथी लंका गढ़ सोने का भया मूरख रावण क्या।

कर ईत ऊत की सोजी परे कौन कर्म मेरा कर कर मरे। निज पद ऊपर लागो त्यान राजा राम नाम मोरा ब्रह्म ज्ञान रहाओ। मूल द्वारे बंदिया बंद रब ऊपर गहरा ख्या चंद पश्चिम द्वारे सूरज तपे मेरा दंड सिर ऊपर बसे।

बिरख मूल माया में परा, माया अंतर पीने देव, सागर इंद्रा अर्तर देव, कह कबीर जिस उदर तिस माया, तब छूटे जब साधु पाया, जब लग मेरी मेरी करे, तब लग काज एक नहीं सरे।

आहे। क्यों लीजै गड बंका पाई, दोवर कोट अर तेवर खाई। रहाओ पांच पच्चीस मोह मद मत्सर, आडी परबल माया, जन गरीब को जोर न पहुंचे।

ओत मंत्र मन अस्थिर करे, कह कबीर सो प्राणी तरे, कोट सूरज जा कह प्रगास, कोट महादेव अर कबिलास, दुर्गा कोट जा कह मर्दन करे, ब्रह्मा कोट वेद उचरे, जो जाचो तो केवल राम, आन देव स्यो नाही काम रहाओ।

राव जैसी पर पुरखा रत नारी लोभी नर तन का हितकारी कामी पुरख कामनी प्यारी ऐसी नामी प्रीत मुरारी साई प्रीत जे आपे लाए गुर प्रसादी दुबदा जाए कभू न तू टस रहा समाए नामे चित लाया सचनाए।

राव, हर की भगत ना देखे जाए, मार्ग छोड़ अमार्ग पाए, मूलों पूला आवे जाए, अमृत डार लाद बिखाए।

पर फड चित समाल सोए सदा सदा गोविंद। पोलिया हौ मैं सुरत विसार, हौ मैं मार विचार मन।

ताल, गुरुमुख राम नाम गुण गाए, तू अपरंपर सर्व पाल रहाओ, बिन साध ना पाये हर का संग, बिन गुर मैल मलीन अंग, बिन हर नाम ना सुध हो।

तैसे संत जन राम नाम रवत रहे। मैं मूरख मुग्ध ऊपर करो दया, तौ शरणागत रहो पया। कहत नानक संसार के ने फल कामा।

सालग्राम बिप पूज मनावो, सुकृत तुलसी माला राम नाम जप बेड़ा बांधो, दया करो दयाला,

जीवत मरे अंदिन साच नाम उचरे इन विद प्राणी दुत्तर तरे बिख अमृत करतार उपाए संसार बिरख को दोए फल लाए।

लातीजा राते साथ हर नाम निहाला दया करो प्रभु दीन दयाला तिस बिन अवर नहीं मैं कोए ज्यो पावे त्यों राखे सोए गुरु गोपाल मेरे मन पाए रह न सकूं दर्शन देखे बिन सहज मिलो गुर मेल मिलाए रहाओ ए मन लोभी लोभ लुवाना राम विसार बहुर पछताना बिचरत मिलाए गुर सेव रांगे हर नाम दियो मस्तक वड पागे पौन पानी की ए दे शरीरा हो मैं रोग कठन तन पीरा गुरमुख राम नाम दारू गुण गाया कर कृपा गुर रोग गवाया चार नदियां अग्नि तन चारे तृष्णा जलत जले अंकारे गुर राखे वड पागी तारे जनना

मनमुख मोए नाही हर मनमाहे, मर मर जम मैं पी मर जाहे, से जन जीवे जिन हर मनमाहे, साथ समाले साथ समाए राव, हर ना सेवे ते हर ते दूर, दिसंतर पवे सिर पावे तूर, हर आपे जन लिए लाए, तिन सदा सुख है तिल ना तमाए।

गुर कै शब्द रहा परपूर जी जंत की करे प्रतपाल गुर प्रसादी सब समाल दर्शा चै पक्षों कर जाए नानक नाम बढ़ाई पाए बसंत महला तीजा अंतर पूजा मनते होए एक हो वेखै और न कोए दूजे लोकी बहुत दुख पाया सतगुर मैनु एक दिखाया मेरा प्रभु मौलिया सद बसंत ए मन मौलिया गाए गुण गोविंद रहाओ गुर पूछो तुम करो विचार ता प्रभु साचे लगे प्यार आप छोड़ होए दासत पाए तो जग जीवन वसै।

जे हर जीव भावे सदा सुख शरीर पाने चित लावे अपना प्रभ सेवे सहज सुभाए नानक नाम वसै मन आए बसंत महला तीजा माया मोह शब्द जलाए मन तन हरिया सतगुरु भाए सफल्यो बिरख हर कै द्वार साची बाणी नाम प्यार ए मन हरिया सहज सुभाए सच फल लागे सतगुरु भाए रहाओ आपे नेड़े आपे दूर गुर कै शब्द देखे सद हजूर छावकणी फूली बन राए गुरमुख बिगते सह सुभाए अन दिन कीर्तन करे दिन रात सतगुर गवाई विच्चों झूठ परात परपंच वेख रहा विस्माद गुरमुख पाये नाम प्रसाद आपे करता सब रख भोग जो किछ करे सोई पर होग वड्डा दाता तिल ना तमाए नानक मिलिए शब्द कमाए बसंत महला तीजा पूरे पाग सचकार कमावे एको चेते फिर जून ना आवे सफल जन्म इस जग में आया सच नाम सहज समाया गुरमुख कार करो लिव लाए हर नाम सेवो विच्चों आप गवाए रहाओ तिस जन की है साची बाणी गुर कै शब्द जग माए समाणी चहु जुग पसरी साची सोए नाम रता जन प्रगट होए इक साचे शब्द रहे लिव लाए से जन साचे साचे भाए।

होए जिन सच सेविया तिन रस पाया नानक सहजे नाम समाया बसंत महला तीजा भगत करें जन देख हजूर संत जना की पग पंकज धूर हर सेती सद रहे लिव लाए पूरे सतगुरु दिया बुझाए दासा का दास गिरला कोई होए उत्तम पदवी पावे सोए रहाओ एक को सेवो अवर न कोए जित सेवे ऐसा सुख होए ना ओ मरे ना आवे जाए जिस बिन अवर सेवी क्यों माए से जन साचे जिनी साच पछाणिया आप मार सहजे नाम समाणिया गुरमुख नाम प्राप्त होए मन निर्मल निर्मल सच होए जिन ज्ञान किया तिस हर तू जान साच सबद प्रभ एक सियान हर रस चाखे ता सुध होए नानक नाम रते सच हो।

जीवत मरे मर मरण सवार है, गुरु कै शब्द साच उधार है रहाओ। गुरुमुख सच पोजन पवित्र शरीरा, मन निर्मल सद गुणी गहीरा, जब मैं मरे ना आवे जाए, गुरु प्रसादी साथ समाए, साचा से वो साथ पछाने, गुरु कै शब्द हर दर निशाने, दर साचे सच शोभा होए, निज करवासा पावे सोए, आप अपूल सच्चा सच सोए, और सब पूले दूजे पथ होए, साचा सेवो साची बाणी, नानक नामे साच समाणी, बसंत महला तीजा, बिन कर्मा सब परम पुलाई, माया मोह बहुत दुख पाई, मन मुख अंधे ठौर न पाई, बिस्ता का कीड़ा बिस्ता माए समाए, हुकम मन्ने सो जन प्रवान, गुर कै शब्द नाम निशान, रहाओ साच रते जिना तुर लिख पाया।

पल्ले पाए सो बुझे जिस आग बुझाए सतगुरु सेवा नाम दृढ़ाए जिन एक जाता से जन प्रवान नानक नाम रते दा निशान बसंत मैला तीजा कृपा करे सतगुरु मिलाए आपे आप वसै।

शांत ना होए, बहु अभिमान अपनी पख होए, सेवड़ पागी जिन शब्द पछाणिया, बार जांदा कर मैं आणिया, कर मैं वक्त अगम अपारा, गुरमत खोजे शब्द विचारा, नाम नाम निद पा

संत हे मन मौलिया सतगुरु संग तुम साथ से आवो मुग्ध मना ता सुख पावो मेरे मना रहाओ इत मन मौलिया पया आनंद अमृत फल पाया नाम गोविंद एको एक सब आख बखाने हुकम बूझे ता एको जाने चैत नानक हों मैं कहे न कोए आखन वेखन सब साहिब ते होए बसंत महला तीजा सब जुग तेरे कीते होए सतगुर पे तै मत बुध होए हर जियो आपे लहो मिलाए गुर कै शब्द सच नाम समाए रहाओ मन बसंत हरे सब लोए फले फुलिये राम नाम सुख होए सदा बसंत गुर शब्द विचारे राम नाम राखे उदारे मन बसंत तन मन हरिया होए नानक एहो तन बिरख राम नाम फल पाए सोए बसंत महला तीजा तिन बसंत।

पूरे पाग हर पगत कराए, इस मन को बसंत की लगे न सोए, ए मन जलिया दूजे दोए रहाओ, ए मन तंदे बांदा कर्म कमाए, माया मूठा सदा बिन लाए, ए मन छूटे जा सतगुरु पेटे, जम काल की फिर आवे ना फेटे, ए मन छूटा गुरु लिया छाए, नानक माया मो शब्द जलाए, बसंत महला तीजा बसंत चढ़िया फूली बन राए, ए जी जंत फूले हर चित लाए, इन विद ए मन हरिया होए, हर हर नाम जपे दिन राती, गुरमुख हो मैं कद्दे तोए रहाओ, सत गुर पानी शब्द सुनाए, ए जग हरिया।

तूर्तिना की अकुलीय पाए, सत्संगत मेल मिलाए, आप कराए करे आप भाई, जिन हरिया की आ सब कोए, नानक मन तन सुख सद वसै पाए, शब्द मिलावा होए, राग बसंत मेला चौथा हर पहला एक तुके एक ओंकार। सतगुर प्रसाद ज्यों पसरी सूरज किरण जोत, ज्यों कट कट रमैया ओत पोत, एको हर रविया सर्व थाए, गुर सबदी मिलिए मेरी माए, रहाओ कट कट अंतर एको हर सोए, गुर मिलिए एक प्रगट होए, एको एक रहा परपूर, साकत नर लोभी जाने दूर, एको एक वरते हर लोए, नानक हर एको करे सो होए, बसंत महला चौथा, रैन दिनस दोए सदे पए, मन हर सिमरो अंत सदा रख ले, हर हर चेत सदा मन मेरे, सब आलस दुख पंज प्रभ पाया, गुरमत गावो गुण प्रभ के रे रहाओ, मन मुख फिर हो मैं मोए, काल दैत संगारे जमपुर गए, गुरमुख हर हर हर लिव लागे, जन्म मरण दो दुख पागे, भगत जना को हर कृपा धारी, गुरु नानक तुखा मिलिया बनवारी, बसंत हिंडोल मेला चौथा कर दूजा एक ओंकार। सतगुर प्रसाद राम नाम रतन कोठड़ी गढ़ मंदिर एक लुकानी, सतगुर मिले तां खोजिए मिल ज्योति ज्योत समानी, माधो साधु जन देओ मिलाए, देखत दर्श पाप सब नासे, पवित्र परम पद पाए, राव पंच चोर मिल लागे नगरिया, राम नाम तन हिरिया, गुरमत खोज परे तब पकरे, तन साबत रास उबरिया, पाखंड परम उपाव कर थाके, रिद अंतर माया मा।

साध मिलावे, नानक शांत होवे मन अंतर, नित हृदय हर गुण गावे, बसंत महला चौथा हिंडोल, तुम वड पुरख वड अगम गुसाई, हम कीरे किरम तुम नछे, हर दीन दयाल करो प्रभ कृपा, गुर सत गुर चरण हम बनछे, गोविंद जी ओ सत संगत मेल कर कृपछे, जन्म जन्म के किल विखमल परया।

हम किए पतत पवीछे बसंत ही डोल मैला चौथा मेरा एक छिन मनुआ रह न सके नित हर हर नाम रस गी दे जो बारिक रसक पर्यो थन माता थन का दे बिलल बिरी दे गोविंद जी ओ मेरे मन तन नाम हर दी दे।

जन नानक शरण पवी दे। बसंत हिंडोल मैला चौथा, मन खिन खिन परम परम बहुत आवे है। तिल कर नहीं वाता पाई है, गुर अंकत शब्द दारू सिर तारियो, कर मंदर आन वसाई है। गोविंद जी ओ सत्संगत मेल हर त्याई है, हौ मैं रोग गया सुख पाया, हर सहज समाध लगाई है रहाओ। कर रतन लाल बहु मानक लादे, मन प्रम्या लह न सकाई है। ज्यो ओडा कूप गोज खिन काड है, त्यों सतगुर वस्त लहाई है। जिन ऐसा सतगुर साधना पाया, ते त्रिग त्रिग नर जीवाय है। जन्म पदार्थ पुन फल पाया, कौडी बदले जाय है। मधुसूदन हर तार प्रभ कृपा, कर कृपा गुरु मिलाय है। जन नानक निर्वाण पद पाया, मिल साधु हर गुण गाय है। बसंत हिंडोल मैला चौथा, आवन जान पया दुख बिख्या, दे मन मुख सुन्नी सुन्य, राम नाम खिन पल नहीं चेत्या, जम पकड़े काल सलुंज। गोविंद जी ओ बिखो मैं ममता मुंज, सत संगत गुर की हर प्यारी, मिल संगत हर रस पुंज। राव सत संगत साध दया कर मेलो, शरणागत साधु पंज। हम डूबदे पाथर काट ले हो प्रभ, तुम दीन दयाल दुख पंज, हर उस्तत तारो।

पग थारा दें जोग जुगत, नेत्र संतोखे दर्श पेख, रसना गाए गुण अनेक, तृष्णा बूजी गुर प्रसाद, मन आधा ना हर रसें स्वाद, सेवक लागो चरण सेव, आद पुरुष अपरंपर देव, सगल उदाहरण तेरो नाम, नानक पायो इहो निधान, बसंत

कहते हैं कि सर्व कला प्रभु तुम पर बीन, अंत न पावे जलहे मीन। अगम अगम ऊंचे ते ऊंच, हम थोरे तुम बहुत मूच। जिन तू त्याया से गनी, जिन तू पाया से पनी। जिन तू सेव्या सुखी से, संत शरण नानक।

न लागे। एवड पाग हो है जिस प्राणी सो पाए इह पद निर्वाणी। रहाओ दूजी सेवा जीवन बिरथा कछु न होई है पूरन अर्था।

गाए गुना बसंत महला पंजवा जिस बोलत मुख पवित होए जिस सिमरत निर्मल है सोए जिस आरादे जम किछ ना कहे जिसकी सेवा सब किछ लहे राम राम बोल राम राम त्यागो मन के सगल काम रहाओ जिसके तारे तरण आकाश।

नानक जन हर हर त्याए। बसंत महला पंजवा मन तन पीतर लागी प्यास, गुरदयाल पूरी मेरी आस। किलविख काटे साध संग, नाम जप्यो हर नाम रंग। गुर प्रसाद बसंत बना, चरण कमल हृदय उर्धारे। सदा सदा हर जस सुना रहाओ। समरथ स्वामी कारण करण, मोहे अनाथ प्रभु तेरी शरण। जी जंत तेरे आधार, कर कृपा प्रभु लेह निस्तार।

राम रंग सब गए पाप, राम जपत तत नहीं संताप, गोविंद जपत सब मिटे अंधेर, हर सिमरत कछना है फेर, बसंत हमारे राम रंग, संत जना स्यों सदा संग रहाओ, संत जनी किया उपदेश, जय गोविंद भगत सो तन देश, हर भगत हीन उद्यान थान, गुर प्रसाद कट कट पछान, हर कीर्तन रस भोग रंग, मन पाप करत तू सदा संग, निकट पेख

जत नानक स्वामी सद हजूर बसंत महला पंजवा सच परमेश्वर नित नवा गुर कृपा ते नित चवा प्रभ रखवाले माई बाप जा कै सिमरन नहीं संताप खसम त्याई इक मन इक भाए गुर पूरे की सदा शरणाई साचे साहिब रखिया कंठ लाए रहाओ अपने जन प्रभ आप रखे दुष्ट दूत सब प्रम थके बिन गुर साचे नहीं जाए दुख देश दुसंतर रहे ताए किरत ओना का मिटस नाहे ओए अपना बीजिया आप खाए जन का रखवाला आप सोए जन को पहुँच ना सकस कोए प्रभ दास रखे कर जतन आप अखंड पूरन जाको प्रताप गुण गोविंद नित रसन गाए नानक जी वह हर चरण ध्याए बसंत महला पंजवा गुर चरण सरेवत दुख गया पार ब्रह्म प्रभ करी मया सर्व मनोरथ पूरन काम जप जी वह नानक राम नाम सारुत सुहावी जित हर्षित आवे बिन सत गुरु दी सह बिन लांती साकत फिर आवे जावे रहाओ से तनवंत जिन हर प्रभ रास काम क्रोध गुर शब्द नाश पै दिन से निरपै पद पाया गुर मिल नानक खसम ते आया साध संगत प्रभ की ओ निवास हर जप जप होई पूरन आस जल थल मही अल रव रया गुर मिल नानक हर हर कहया अष्ट सिद्ध नव निध एहे करम प्राप्त जिस नाम देहे प्रभ जप जप जीवे तेरे दास गुर मिल नानक कमल प्रगास बसंत महला पंजवा कर

छुन्या। तुम रवो गोविंद रवन जोग, जित रवे है सुख सहज भोग रहाओ। कर कृपा नदर निहालिया, अपना दास आप संभालिया। सेज सुहावी रस बनी, आए मिले प्रभ सुख तनी।

नानक प्रभ कृपा भई बसंत महला पंजवा रोग मिटाए प्रभु आप बालक राखे अपने कर थाप सांस सहज गृह सद बसंत गुरपुरे की शरणी आए कल्याण रूप जप हर हर।

देख फूल फूल फूले अहं त्याग त्यागे चरण कमल पागे तुम मिलो प्रभ सभागे हर चेत मन मेरे रहाओ सगन बास को।

दुबदा दूर करो लिवलाए। हर नामे के हो वो जोड़ी, गुरमुख बैसो सफा बिछाए। इन बिद पासा टालो वीर, गुरमुख नाम जपो दिन राती। अंतकाल न लागे पीर रहाओ, तरम तरम तुम चौपड़ साजो।

खाना कहो नाम कटह कया द्वारे रख ली वो मुग्ध अजाना बसंत हिंडोल मेला पन्नवा मूल न बूझे आप न सूझे परम व्यापी अहं मनी पिता पार ब्रह्म।

या जानो या पीतर जो राम बसत है साचो तहे पछानो रहाओ। यो जग है संपत सुपने की देख कहाँ ऐडानो। संग तिहार है कछु न चाले ताहे कहाँ लपटानो। उस्तत निंदा दो पर हर हर कीरत उर्यानो। जन नानक सब ही मैं पूरन एक पुरख भगवानो। बसंत महला।

आधार गुर शब्दी बिक प्यास निवार मोहन मोहे लिया मन मोहे गुर कै शब्द पछाना तो है नानक ठाडे चाहे प्रभु द्वार तेरे नाम संतोखे कृपा धार बसंत महला पहला मन फूलो परमस आए जाए अत लुभद लुभानो विकम माए न अस्थिर दिसे एक

मन चले न जाई ठाक रात, बिन हर रसराते पतना साख, तू आपे सुरता आप राख, पर कारण देखे जाने आप, आप पुलाए।

आए सतगुरु मिले मत उत्तम होए मन निर्मल हो मैं कड्डे धोए सदा मुक्त बंद ना सके कोए सदा नाम बखाने और ना कोए मन हर के पाने।

तू अपुल ना पूलो कदे ना है, गुर शब्द सुनाए मत आगाहे, तू मोटो ठाकुर शब्द माहे, मन नानक मानिया सच सलाहे, बसंत महला पहला, दर्शन की प्यास जिस नर होए, एक तराचे पर हर दोए, दूर दर्द मत अमृत खाए,

दुख रोग व्यापे, कट कट रव रहा प्रभ जापे, सुख दुख ही ते गुर शब्द अतीता, नानक राम रवे हित चीता, बसंत महला पहला, हित तुकिया मत पसम अंधु

गुण नानक बोले पली बाण, तुम हो सुजा खेल हो पछाण, बसंत महला पहला दुबदा दुर्मत अगली कार, मन मुख पर मैं मजगुबार, मन अंदुला अंदली मत लागे, गुर करनी बिन परम ना पागे, रहाओ मन मुख अंदले गुरमत ना भाई, पशु भय अभिमान ना जाए, लख चौरासी जंत उपाए, मेरे ठाकुर भाणे सिर समाए, सगली पूले नहीं शब्द अचार, सो समझे जिस गुर करतार, गुर के

वे मोहताज बेअंत अपारा सचपति जय करने हारा नानक पूले गुर समझावे एक दिखावे साच टिकावे बसंत महला पहला।

तू अकल निरंजन परम हीर, तू आपे करता करण जोग, ने केवल राजन सुखी लोग, नानक त्रापे हर नाम स्वाद, बिन हर गुर प्रीतम जन्म बाद, बसंत हिंडोल मैं।

गे कर कर सिफत तुम्हारी, तीरथ सिमरत पुन दान किचला मिले दिहाड़ी, नानक नाम मिले वड़ियाई मेका कड़ी समाली, बसंत हिडोल कर दूजा महला चौथा इको अंकार सतगुर प्रसाद। पाया नगर एक बालक वसिया खिन पल थिर ना रहाई, अनेक उपाव जतन कर खाके बारंबार परमाई, मेरे ठाकुर बालक इकत कर आन सतगुर मिले ता पूरा पाये, पज राम नाम निशान रहाओ यो मृतक मरा शरीर है, सब जग जित राम नाम नहीं वसिया, राम नाम गुर उदक चुआया फिर हरिया हो आ रसिया, मैं निरखत निरखत शरीर सब खोजिया।

तार सब किच आ गए दाल दे पंज समाया राम नाम की पैज वडेरी मेरे ठाकुर आप रखाए जे सब साकत करें।

आशा आपे जल अपरंपर करता आपे मेल मिलावे नानक गुरमुख सहज मिलाए जो जल जल है समावे। बसंत महला पंजवा कर पहला

गन का उदरी हर कह तोत, गज इंद्र त्यायो हर कियो मोक, विप्र सुदा में दाल दुपंज, रे मन तू भी पज गोविंद, बदिक उदार्यो खंपर हार, कुबजा उदरी अंगुष्ट धार, बिदर उदार्यो दासत भाए, रे मन तू भी हर ध्याए, प्रहलाद रखी

भगत बिहुना खंड खंड बिन बूझे जम देत दंड गोविंद पजो मेरे सदा मीत साथ शब्द कर सदा प्रीत रहा।

दो संसार मन उदरण का साजना है, पाप बंधन नित पौत जाहे, पीठ मीत को सखाना है। आप बीज आपे ही खाए, जाके की मैं होत विकार, से छोड़ चले आखिन में गवार, माया मोह बहुत।

बहु अपार कर कृपा लड़ने हो लाए। नानक दास प्रभु की शरण आए, बसंत की वार महला पंजवा इको अंकार। सतगुरु प्रसाद हर का नाम से आए कै हो वरिया भाई, कर्म लिखन तय पाई है ए रुत सुहाई। वन त्रिन त्रिभुवन मौलिया अमृत फल पाई, मिल साधु सुख उपजे लखी सब छाई। नानक सिमरे एक नाम फिर बहुड़ न पाई, पंजे बद्दे मां बली कर सच्चा ढोआ। अपने चरण जपायन विच दया खड़ोआ, रोग सोग सब मिट गए नित नवा निरोआ। दिन रहे नाम से आएदा फिर पाए न मोआ, जिस ते उपजिया नाम का सोई फिर होआ। कि

अगम अगोचर साहेबो दूसर लवेन लावे सच पूरे गुर उपदेशिया नानक सुनावे बसंत माणी भगतां की कबीर जी कर पहला इको ओंकार सतगुर प्रसाद मौली तरती मौलिया आकाश कट कट मौलिया आत्म प्रगास राजा राम मौलिया

ओए परम पुरुष देव आदि देव भगत हेत नरसिंह देव कह कबीर को लख न पार प्रहलाद उधारे अनेक बार इस तन मन मदे मदन चोर जिन ज्ञान रतन हिर लीन मोर मैं अनाथ प्रभ कहो काहे को ना बिगु तो मैं को आहे माधो दारन दुख सहो न जाए मेरो चपल बुद्ध स्यों कहा बसाए रहाओ सनक सनंदन शिव सुकाद नाभि कमल जाने ब्रह्माद सब जन जोगी जटा तार सब आपन अवसर चले सार तू अथाओ मोय था नाहे प्रभ दीना नाथ दुख कहो काहे मोरो जन्म मरण दुख आप हीर सुख सागर गुण रहो कबीर नायक एक बन जाने पाच बर्द पचीसक संग काच नौ बैया दस गोन आहे कसन बेहतर लागी काहे मोहे ऐसे बनज स्यों नहीं काज जिन्हें कटे मूल नित बगे।

चलो बनजारा हाथ चार पूंजी हिरानी बनज टूट जय दिस तांडो गयो फूट कह कबीर मन सरसी काज सहज समानो ता परम पाज बसंत हिंडोल कर दूजा इको अंकार सतगुर प्रसाद। माता जूठी पिता भी जूठा जूठे ही फल लागे आवे जूठे जाए भी जूठे जूठे मरे अभागे।

पेट खाया, गोबर जूठा चौका जूठा, जूठी दीनी कारा, कह कबीर तेई नर सूचे, साची परी बिचारा। रामानंद जी।

जिन सकल विकल प्रमुख आते मोर, रामानंद स्वामी रमत ब्रह्म, गुरु का शब्द काटे कोट कर्म, बसंत बाणी नाम देव जी के इको ओंकार। सतगुर प्रसाद साहिब संकट वे सेवक पजे, चिरंकाल न जीवे दो कुल लजे, तेरी भगत न छोड़ो पावे लोग हसे, चरण कमल मेरे हीरे बसे, रहाओ जैसे अपने तने प्राणी मरण मांडे, तैसे संत जना राम नाम ना छाडे, गंगा गया गोदावरी।

जैसे पंकत त्रुट तुहाकती सर कोवन चाली लाडली रहाओ तो भी कोवे बिरह बिराता हर चरण मेरा मन राता पंत नाम दियो रम रहा अपने भगत पर कर दया बसंत बाणी रविदास जी की इको अंकार सतगुरु प्रसाद तुझे सुजनता कछु नाहे पहरावा देखे उबजाहे गर्भवती का नाही ठाओ तेरी गर्दन ऊपर लवे काओ तू काए गर्भे बावली जैसे पादो खूब राज तू

रविदास जो जपे नाम तिस जात ना जन्म ना जून काम बसंत कबीर जियो इको ओंकार सतगुर प्रसाद सुर है की जैसी तेरी चाल तेरी पूंछ ऊपर चमक बाल इस घर में है सो

मन मानिया हर पाए प्राण आधारा रहाओ। इन विद हर मिलिए वर कामन तन सुहाग प्यारी जात बरन कुल सहसा चूका गुरमत शब्द विचारी जिस मन माने अभिमान ना।

हर के संत जना की हम धूर, मिल सत्संगत परम पद पाया, आत्म राम रहा भरपूर रहाओ। सतगुर संत मिले शांत पाये, दिल विच दुख काटे सब दूर। आत्म जोत पई पर फूल।

नानक दासन दास कहत है कर कृपा लियो उबारे सारंग महला चौथा गोविंद की ऐसी कार कमाए जो किस करे सो सत।

सांस वसै मन आए, गुर कृपाल पै तब पाया, हर चरणी चित लाए, मत पर गास पई हर ध्याया, ज्ञान तत् लिव लाए, अंतर ज्योत प्रगति मन मानिया, हर सहज समाध लगाए।

मेरा मन राम नाम मन मानी, मेरे ही रे सतगुरु प्रीत लगाई, मन हर हर कथा सुखानी रहाओ। दीन दयाल हो वो जन ऊपर, जन देवो अकथ कहानी, संत जना मिल हर रस पाया, हर मन तन नीठ लगानी, हर कै रंग रते बैरागी, जिन गुरमत नाम पछानी, पुरख है पुरख मिलिया सुख पाया, सब चूकी आवन जानी। नैनी बिरहों देखा प्रभु स्वामी।

जप मन जगन्नाथ जगदीशरो जग जीवनो मन मोहन स्यों प्रीत लागी। मैं हर हर हर टेक सब दिन से सब रात रहाओ। हर की उपमा अनेक अनेक अनेक गुण गा।

वाजे पंच शब्द वद पाग मथोरा। तिन जन के सब पाप गए, सब दोख गए, सब रोग गए, काम क्रोध लोभ मोह अभिमान गए। तिन जन के हर मार कदे पंच चोरा। हर राम बोलो हर साधु, हर के जन साधु जगदीश जपो। मन बचन कर्म

जप मन गोविंद हर गोविंद गुणी निधान, सब सृष्टता प्रभो मेरे मन हर बोल हर पुरुष अविनाशी रहाओ। हर का नाम अमृत हर हर हरे सो पी है जिस राम प्यासी, हर आप दयाल दया कर मेले जिस सतगुरु सो जन हर हर अमृत।

अंतर प्यास चात्रक ज्यों जल की सफल दर्शन कर पाओ रहाओ। अनाथा को नाथ सर्व प्रतिपालक भगत वचल हरनाओ। जाको कोई न राखे प्राणी

करत बुराई मानस के छुपाई, साक्षी पूत पमान रहाओ, वैष्णो नाम करत खट कर्मा, अंतर लोभ जुठान, संत सभा की निंदा करते, डूबे सब अज्ञान, करें सोम पाक हिरें पर

मंगल गाए शब्द अनाहद बाजियो सारंग महला पंजवा माई सत सत सत हर सत सत सत सादा बचन गुरु जो पूरे कहो मैं छीक गांठरी बांदा रहाओ निस्बासुर नक्षत्र विनाशी रव सस्यर बेनादा गिर बसदा जल पवन जाएगो एक साध बचन अटलादा अंध विनाशी जेर विनाशी उत्पुज सेत बिनादा चार विनाशी खटे विनाशी एक साध बचन नहीं चलादा राज विनाशी ताम विनाशी सातक पी बेनादा दृष्टमान है सगल विनाशी एक साध बचन आगादा आपके आप ही आपे सब आपन खेल दिखादा पायो न जाई कहीं पाकरे।

अब मोहे राम परोसो पाए, जो जो शरण पर्यो करुणानिद ते ते पहें तराए रहाओ। सुख सोयो अर सहज समायो, सहसा गुरहें गवाए। जो चाहत सोई हर कियो, मन बांचत पल पाए। हृदय जपो नेत्र ध्यान लावो, श्रवणी कथा सुनाए। चरणी चलो मार्ग ठाकुर के, रसना हर गुण गाए। देखो दृष्ट सर्व मंगल रूप, उल्टी संत कराए। पायो लाल अमोल नाम, हर छोड़ न कतू जाए। कौन

अवर सब फूले प्रमत न जानिया, एक सुदाखर जा कह हृदय वस्या, किन वेदें तत पछानिया रहाओ, परवृत मार्ग जेता किस हो।

कहो नानक किस पयो प्राप्त, जहाँ कह लेख मथामा सारंग महला पंजवा। अन दिन राम के गुण कही है, सगल पदार्थ सर्व सुख सिद्ध, मन बांचत फल लई है राव। आवो संत प्राण सुख दाते, सिमरन प्रभ अविनाशी, अनाथे नाथ दीन दुख पंजन, पूर रहो खटवासी। गावत सुनत सुनावत सरदा, हर रस पी वड पागे, कल कलेश मिटे सब तंते, राम नाम लिव जागे।

और ब्रह्म त्याय उपदेश हमारी गत करन रहाओ। दुख रोग तय सगल विनाशे जो आवे हर संत शरण आप जपे अवर।

गुर प्रसाद नानक संतोखे, नाम प्रभु जप जप उदरन सारंग महला पंजवा, गायो री मैं गुण निद मंगल गायो, पले संजोग पले दिन अवसर जो गोपाल री जायो रहाओ, संते चरण मोर लो माथा हमरे मस्तक संत।

कैसे कहूँ मोहे जी वेदनाई, दर्शन प्यास प्रिय प्रीत मनोहर, मन ना रहे बहु विद उमकाई रहाओ। चितवन चितवो।

मानस जन्म दुलवाई, गर्भ जोन छोड़ जो निक्सो तौ लागो अनठाही, करें बुराई ठगाई दिन रहन नेफल कर्म कमाही, कान नाही तो गाहन लागे ताए ताए दुख पाही।

तो मिलिया जो प्रभु मिलाया, जिस मस्तक लेख लिखाई, कौ नानक किन जन बलिहारी, जो अल्प रहे मन माही। सारंग महला पंजवा, क्यों जीवन प्रीतम बिन माई, जाके बिछरत होत मृतका, गृह में रहन न पाई। रहाओ जी ही प्राण को दाता, जाके संग सुहाई, करो कृपा संतो।

श्री रविदास ठाकुर बन आई, जियो पिंड तन तन साधन का, त्यों मन संत रे नाई, संत प्रताप परम सब नासे, नानक मिले गुसाई, सारंग महला पंजवा।

मन कहां लुबाइए आन कहो, कीन्त ऊत प्रभु सदा सहाय, जी संग तेरे काम को रहाओ, अमृत नाम प्रिय प्रीत मनोहर, यह अगावन पान को, अकाल मूर्त है साध संतन की, ठहरनी की ध्यान को, बाणी मंत्र महापुरुषन की, मने उतारन मान को, खोज लहो नानक सुख थाना, हरनामा विश्राम को, सार मेला पंजवा, मन सदा मंगल गो

कृपाल दीन दुख पंजन जमते हो वह तरम राय एक कस दिन नाही को दूजा आन न बियो लवे लाए मात पिता पाई नानक को सुखदाता हर प्राण साए सारंग महला पंजवा हर जन सगल उधारे संके पहे पुनीत पवित्र मन जन्म जन्म के दुख हरे रहाओ मार्ग चले तिनी सुख पाया जिनसो गोष्ठ से तरे बूढ़त कोर अंधकूप में ते साधु संग पार परे जिनके पाग बड़े हैं पाई तिन साधु संग मुख जुरे तिनकी तूर बांचे नित नानक प्रभ मेरा कृपा करे सारंग महला पंजवा हर जन राम राम राम से आए एक पलक सुख साथ समागम।

मोहन काया वो करो जो दरिया, मान करो अभिमान बोलो फूल चूक तेरी प्रक्रिया रहाओ, निकट सुनो अर देखो नाही परम परम दुख परिया, हुए कृपाल गुर लाहे पार दो मिलो लाल मन हरिया, एक निमक जे बिसरे स्वामी जानो कोट दिन सलख बनिया, साध संगत की पीर जो पाई तो नानक हर संग मिरिया, सारंग महला पन्नवा अब क्या सोचो।

प्रम तो हार जो पड़े हो तो गुर मिल चरण पराते कहो नानक मैं सर्व सुख पाया हे सुख बिहानी राते सार महला पंजवा अब मोहे लब दियो है हर टेका गुर दयाल पै सुखदाई अंधुले मानक दे।

जो अल कमला लो भांगे गुण निधान मनमोहन लाल ने सुखदाई सर्वांगे गुरु नानक प्रभु पाहे पठायो मिलो सखा गल लागे सार महला पंजवा अब मोरो ठाकुर स्यो मन माना साध कृपाल दयाल।

मेरे मन शीत आये प्रिय रंगा, बिसरो तंद बंद माया को रजन सबाई जंगा। रहाओ हर सेवो हर हृदय बसावो, हर पाया सत्संगा। ऐसो मिलो मनोहर प्रीतम, सुख पाए मुख मंगा। प्रियो अपना गुर बसर दीना, पोगो पोग निसंगा। निरपो पै नानक पौ मिटिया, हर पायो पाठंगा। सारंग महला पंजवा, हर जियो के दर्शन को कुर्बानी। बचन नाद मेरे श्रवनो पूरे, देहा प्रिय अंक समानी। रहाओ सूतर ते गुर की सुहागन, हर पायो सुगुर सुजानी।

हर भगत पंडार खजीना सार महला पंजवा मोहन सब जी तेरे तू तारे छुटे संगार निमक कृपा ते कोट ब्रह्मंड उदारे रहाओ करे अरदास बहुत बेनंती निमक निमक समारे ओ कृपाल दीन दुख पंजन हाथ दे निस्तारे क्या ए पूपत बपरे सही है कहो ए किसनो मारे राख राख राख सुख दाते सब नानक जगत तुम्हारे सारंग महला पंजवा अब मोह तन पायो हर नामा पय अचिंत कृष्ण सब बुझी है यो लिखियो लेख मथामा रहाओ खोजत खोजत पयो बैरागी फिर आयो दुहे गिरामा गुर कृपाल सौदा ए जोरियो हप करियो लाल अगामा आन बपार बन जो करिए दुख सहामा गोविंद भजन के निरपैवा पारी हर रास नानक राम नामा सार महला पंजवा मेरे मन निष्ठ लगे प्रह बोला गुरबां पकड़ प्रभ सेवा लाए सब दयाल हर टोला रहा।

जन नानक के प्रपुरख विदाते मेरे ठाकुर अजय अतोला सारंग महला पंजवा रसना राम कहत गुण सोहं एक निमख उपाय समावे देख चरित्र मन मोहन रहाओ जिस सुने मन होए रहस अत हृदय मान दुख जोहं सुख पायो दुख दूर परायो बन आई प्रभ तोहं किलविथ गए मन निर्मल होई है गुड़ का दे माया द्रोहं कहो नानक मैं सो प्रभ पाया करण कारण समर्थोहं सारंग महला पंजवा नैनो देखो चलक तमाशा सबहु दूर सबहु ते नेर अगम अगम कटवासा रहाओ अपूल ना पूले लिखो ना चलावे मता ना करे पचासा खिन में साज संवार बिना है भगत वचल गुण तासा अंध कूप में दीपक बलियो गुर हृदय कियो परगासा कहो नानक दर्श तेख सुख पा

पुनीत हृदय हर बस्यो मस्त पुनीत संत दूरावा सर्व निधान नाम हर हर के जिस कर्म लिखिया तिन पावा जन नानक को गुरु पूरा पेट्यो सुख सहज अंत बिहावा सार महला पन्नवा त्यायो अंत बार नाम सखा जह मात पिता सुत पाई न पहुँचे कहाँ कहाँ तू रखा रहा अंधकूप गृह में तिन सिमरियो जिस

गुरमिल ऐसे प्रभु ते आया, कयो कृपाल दयाल दुख पंजन, लगे न ताकी बाया रहाओ, जेते सास सास हम लेते, तेते ही गुण गाया, निमख न बिछरे करी न बिछरे, सद संगे जत जाया, हौ बल बल बल बल चरण कमल को, बल बल गुर दर्शाया, कहो नानक काहू परवाह, जो सुख सागर में पाया, सारंग महला पंजवा, मेरे मन शब्द लगो गुर मीठा, खुलियो कर्म पयो।

और द्वितीय आकाश विराते नैन तृप्ता से देख दर्शावा गुरकर तहारे मेरे माथे सहु नानक मैं।

लाड लड़ावे सदा सदा अनदाई प्रतपाले बारिश की न्याई जैसे मात पिताई तिस बिन निमख नहीं रह सकिए बिसरना कब हूँ जाई। कहो नानक मिल संत संगत ते मगन पए लिवलाई सारंग मैला पंजवा अपना मीत स्वामी गाये आसना अवर काहू की जय सुखदाता प्रभ ध्याय रहाओ सुख मंगल कल्याण जिसे घर तिस ही शरणी पाये तिसे त्याग मानुख जे सेवो तो लाज लोन हो जाये एक ओट पकरी ठाकुर की गुर मिल मत बुद्ध पाये गुण निधान नानक प्रभ मिलिया सगल चुकी मोहताये सारंग महला पंजवा ओट सतानी प्रभ जियो मेरे दृष्ट ना लिया वो अवर

औखद मुख दीनो जाए पया गुर पैर कवन उपमा कहो एक मुख निर्गुण के दाते रह काठ सिलक जो अपना कीनो नानक सूख कनेर सारंग महला पंजवा प्रभ सिमरत दुख विनाशी पयो कृपाल जी सुखदाता।

जीवन पाया बिनती नानक हिसार है सारंग महला पंजवा मन के पै पाओ दूर पर आयो लाल दयाल गुलाल लाडले सहज सहज गुन गायो रहाओ गुर बचनात समात कृपा ते बहुर न कथु धायो रहत उपाद समाद सुख आसन भगत वछल गृह पायो नाद विनोद कोड आनंदा सहजे सहज समायो करना आप करावन आपे

अपने पैमान अपने पैताना अपने ही पै अर्था किन्ही राज जोबन तन मिलखा किन्ही बाप महतारी सर्व थोक नानक गुरु पा।

अपनी इतनी कछु न सारी, अनेक काज अनेक तावरता, उर्जियो आन जंजारी रहाओ, ज्योस चार के दिशे संगी, हुहा नाही जह भारी, तिन्स्यों राच मात हित लायो।

आज काल खुले तेरी गांठली सारंग महला पंजवा गुरजियो संग तुहारे जानियो कोट जोद ओआ की बात न पुछिए तां दरगे भी मान्यो रहाओ कवन मूल प्राणी का कहिए कवन रूप दृष्टानियो जो

आपे सगले दूत बिदारे ठाकुर अंतर जाम आपे पत राखी सेवक की आपकी ओ बंदान आद जुगाद सेवक की राख है नानक को प्रभ जान सारंग महला पंजवा तू मेरे मीत सखार प्राण मन तन जियो।

जिन संतन जानिया तू ठाकुर ते आए परवान जन का संग पाई है वडभागी नानक संतन कह कुर्बान सारंग महला पंजवा करो गत दयाल संतो मोरी तुम समरथ कारण करना टूटी तुम ही जोरी रहाओ जन्म जन्म के बिकी तुम तारे सुमत संग तुम

कहो नानक जिन जगत ठगाना सो माया हर जन ठागे। सारंग महला पंजवा अब जन ऊपर को ना पुकारे पुकारन को जो उदम

निर्भव भय सगल पौ मिटिया, चरण कमल आधार है, गुरु के बचन जप्यो नाव नानक, प्रगट पयो संसार है, सारंग महला पंजवा, हर जन छोड़िया सगला आप, ज्यो जानो त्यो रखो गुसाई, पेख जीवा परताप रहाओ, गुरु उपदेश साध की संगत, बिनस्यो सगल संताप, मित्र सत्र पेख समत विचार्यो, सगल संबाखन जाप, तपत बुझी शीतल आघाने, सुन अनहद विषम पै विषमाद, अनद भया नानक।

सिमरत नाम प्राण गत पावे, मिटे कलेश त्रास सब नासे, साध संग हित लावे रहाओ। हर हर हर हर मन आरादे, रसना हर जस गावे, तज अभिमान

आन उपाव त्याग जन सगले चरण कमल रिद धारे प्राण आधार मीत साजन प्रभ एक है एकंकार सबते ऊंचे ठाकुर।

अनद गुण गाया, बाँ पकड़ कदली ने अपने ग्रह अंधकूप ते माया, कहो नानक गुर बंधन काटे बिछरत आन मिलाया। सारंग महला पंजवा, हर के नाम की गत ठांडी, वेद पुराण सिमरत साधु जन, खोजत खोजत काढ़ी, रहाओ शिव ग्रंथ अर इंद्र।

एक सत्यों लिवलाओ कहो नानक ताकी सरनाई, देत सगल अप्याओ सारंग महला पंजवा, होती नहीं कमन कच करनी, यह ओट पाई मिल संते गोपाल एक की सरनी रहाओ। पंच दोष छिदर या तन में दिखे।

तै हरणी मन बांछत चितवत नानक दास तेख जीवा प्रभ चरणी सारंग महला पंजवा फीके हर के नाम बिन साध अमृत रस कीर्तन हर गाई।

सच तन वन जो सच तन संचो कबू न आवो हारे खास खर्चत किछ निखुटत नाही अगनत परे पंडारे कहो नानक शोभा संग जावो पार ब्रह्म कै द्वारे सारंग महला पंजवा प्रभ जी मोहे कवन अनाथ बिचारा कमन मूल ते मानुष करया।

आवे राम शरण वड पागी, एकस बिन किछ होर न जाने, और उपाव त्यागी रहाओ। मन बच कर्म अरादे हर हर, साध संग सुख पाया, अनद विनोद अकथ कथा रस, साचे सहज समाया। कर कृपा जो अपना कीनो, ताकी उत्तम बाणी, साध संग नानक निस्तरिये, जोरा ते प्रभ निर्वाण।

नित त्याओ मुक्त पदार्थ साधु संगत अमृत हर का नाव रहाओ उत्तम कथा सुनी जय श्रवणी मया करो भगवान आवत जात दो पख पूरन पाये सुख विश्राम सोदत सोदत तत विचार्यो भगत श्रेष्ठ पूरी कहो नानक इक राम नाम बिन अवर सगल विद उरी सारंग महला पंजवा साचे सतगुरु दा तारा दर्शन देख सगल दुख नाते चरण कमल बलिहारा रहाओ सत परमेश्वर सत साध जन नेचल हर का नाओ भगत पावनी पार ब्रह्म की अविनाशी गुण गाओ अगम अगोचर मित नहीं पाये सगल कटा आधार नानक वाहो वाहो कहो ताको जाका अंत न पार सारंग महला पंजवा गुर के चरण बसे मन मेरे पूर रहो ठाकुर सब थाई निकट बसे सब नेरे रहाओ बंदन तोर राम लिवलाई संत संग बन आई।

जन्म मरण संकट ते छूटे, जगदीश भजन सुख ध्यान, तेरी शरण पूरन सुख सागर, कर कृपा देवो दान, सिमर सिमर नानक प्रभु जीवे, बिनस जाए अभिमान, सारंग महला पंजवा, तूरत सोई जे कुर को लागे, सोई तुरंतर, सोई बसंदर, हर एक

आद संग दिन हर हर जप्यो नानक सो परवाना। सारंग महला पंजवा हर हर संत जना की जीवन बिखे रस भोग अमृत सुख सागर राम नाम रस पीवन रहाओ। संचन राम नाम तन रतना मन तन पीतर सीवन हर रंग रांग पै मन लाला राम नाम रस खीवन। ज्योमीना जल स्यो उर्जानो राम नाम संग लीवन नानक संत चा

भगत गुण गावत गीजे होहत न संसार रहाओ। श्रवणी कीर्तन सिमरन स्वामी एहो साधको आचार। चरण कमल अस्थित रिद अंतर पूजा प्राण को आधार। प्रभ दीन दयाल सुनो बेनंती कृपा अपनी धार। नाम निधान उचरो नित रसना नानक सद बलिहार। सारंग महला पंजमा हर के नाम हीन मत थोरी। सिमरत नाहे श्री कर ठाकुर मिलत अंध दुख कोरी।

करना है। जप तप संयम कर्म सुख साधन तुलना कछु ऐला है। चरण कमल नानक मन भेद्यो चरण संग समाए। सारंग महला पंजवा मेरा प्रभ संगे अंतर जामी। आगे कुशल पाछे खेम सूखा।

आप भुलाया बिखे ठगौरी पियो रहाओ। कोट जन्म प्रमतो बहु भांति थित नहीं कठू पाई पूरा सतगुरु सहज न पे।

पूरन होत न कथो बातें अंत पर तिहार रहाओ। सांत सुख ना सहज उपजे यह इस व्यवहार, आप पर का कछ न जाने काम करो दें जार। संसार सागर दुख व्यापियो।

अनेक जोन प्रवीण गोविंद बिसरे कवन दुख गनिए सुख नानक हर पद चीन सारंग महला पंजवा मायरी चरने ओट गही दर्शन पेख मेरा मन मोहयो।

सही सिमर सिमर जीवत हर नानक जम की पीर ना फही। सारंग महला पंजवा मायरी मन मेरो मतवारो देख दयाल अनंत सुख।

ना प्रवति आए रतन जन्म अपार जीतियो बौड़ जोन ना पाए पय कृपाल दयाल गोविंद पया साधु संग हर चरण रास।

जानो दुतिया पाओ सब लुहराओ त्याग गोपाल और जो करना ते बिखिया के खूह दर्श प्यास मेरा मन मोयो काडी नरक ते तू संत प्रसाद मिलियो सुखदाता बिनसी हो मैं हूँ राम रंग राते दास नानक मौलियो मन तन जूह सारंग महला पंजवा।

नानक शरण कृपा निध सागर बिनस्यो आन निहोर सारंग महला पंजवा नीकी राम की तुन सोए चरण कमल अनूप स्वामी जपत साधु होए रहाओ चितवता गोपाल दर्शन कलमला कट धोए जन्म मरण विकार अंकुर।

पंजवा हर के नाम की मत सार हर विसार जो आन राचे मिथन सब विस्तार रहाओ साध संगम पज स्वामी।

गोविंद गुप्त होए रहो न्यारो, मत अंग मत अहंकार, कर कृपा प्रभ संत राखे, चरण कमल आधार, कर जोर नानक।

कास्यों ने लगाई। ज्योति सैसो सगल विनाश है ज्यो बादर की चाही। तज अभिमान शरण संतन गो मुक्त हो है चिन्माही। जन नानक भगवंत भजन बिन सुख सुपने भी नाही। सारंग महला नावा कहा नर अपनो जन्म गवावे।

सहज समाध सदा लिव हर्ष्यों जीवा हर गुण गाई गुर के शब्द रता बैरागी निज कर ताड़ी लाई शुद्ध रस नाम।

कोट कल्प के दुख विनाशन साथ दृढ़ाए निवेरा रहाओ। क्रोध निवार जले हो ममता प्रेम सदा नौरंगी, अनपौ विसर गए प्रभ जाच्या हर निर्माइल संगी। चंचल मत त्याग पौ पंजन पाया एक शब्द लिव लागी, हर रस चाख त्रिखा निवारी हर मेल ले बढ़ पागी। अमृत सिंच भय सुबर सर गुरमत साच निहाला, मन रत नाम रते नहीं केवल आद जुगा दयाला। मोहन मोय लिया मन मोरा बड़े पाग लिव लागी, साच विचार किल विक दुख काटे मन निर्मल अनरागी।

हर रस रते अधिकाई, एक कस्बिन में अवर न जाना, सतगुर बूझ बुझाई, अगम अगोचर अनाथ अजोनी, गुरमत एको जानिया, सुबर भरे नाही चित डोले।

सब आत्म राम मुरारी, सेवक सेव रहे सच राते, जोते रहे मन भाने, दुबदा मैल न पावे जग झूठी, गुण अवगुण ना पछाने, आपे मेल ले अकथ।

जन्म जन्म के किलविक पौ पंजन गुरुमुख एको डीठा रहाओ कोट कोटंतर के पाप विनाशन हर साचा मन भाया हर बिन अवर्ण।

जा। मन मेरे हर की अकथ कहानी, हर नदर करे सोई जन पाए, गुरमुख विर ले जानी रहाओ। हर गहर गंभीर गुणी गहीर, गुर के शब्द पछानिया, बहुविध कर्म करे पाए दूजे, बिन शब्द बहुरानिया। हर नाम नाम है सोई जन निर्मल, फिर मैला मूल।

काट काट कथा राजन की चाले, कर कर तुझे उमाहा, जी जंत सब पाछे करया, प्रथमे रिजिक समाहा, जो किछ करना

आई मुक्त पै साध संगत कर तिनके अवगन सब पर हरिया तिनको देख पै कृपाला तिन पव सागर तरिया हम नानी नी

अगम अगाध सुनो जन कथा, पार ब्रह्म की अचरज सभा रहाओ। सदा सदा सतगुरु नमस्कार, गुर कृपा ते गुण गाए अपार। मन पीतर होवे प्रगास, ज्ञान अंजन अज्ञान विनाश। मितना ही जा का विस्तार, सो बाता की

दाता कट कट पूरन है अलपाता कट कट पूरन कर विस्थिरन जल तरंग ज्यों रचन किया हब रस माने भोग कटाने।

अंग अंग सुखदाई पूर्ण ब्रह्माई थान थन अंतर देशा बंधन ते मुक्ता कट कट जुगता कह न सको हर जैसा देख चरित नानक मन मोयो।

मूरख अंधिया अंधी सात कह कह कहन कहायन आप महला पहला आखन औखा सुनन औखा आखना जापी आख एक आख आखे शब्द पाखे अर्ध उर्द दिन रात जे क्यों होए ता क्यों दिसे जापे रूत ना जात सब कारण करता करे कट औकट कट थाप आखन औखा नानका आखना जापे आख पौड़ी नाई सुनिए मन रहसिए नामी शांति आई नाई सुनिए मन तृप्तिए सब दुख गवाई नाई सुनिए ना उपजे नामे वड्याई नामे ही सब जात पत नामे गत पाई गुरुमुख नाम से आई है नानक लिव लाई श्लोक महला पहला झूठ ना रागी झूठ ना वेदी झूठ ना चंद सूरज की पेदी झूठ ना अन्नी झूठ ना नाई झूठ ना मियो वरे ऐ सब थाई झूठ ना तरती झूठ ना पानी झूठ ना पौने माई समानी नानक निगुरिया।

नाय मनय दुर्मत गई मत प्रवृति आया नाव मनय हो मैं गई सब रोग गवाया नाय मनय नाम उपजय सहजे सुख पाया नाय मनय सांत उपजय हर मन वसाया नानक नाम रतन है गुरमुख हर त्याया श्लोक महला पहला और शरीक होवे कोई तेरा तिस अगे तुद आखां तुद अगे तुद सलाही मैं अंधे नाउ सुजाता जेता आखन साही शब्दी पाख्या पाए सुवाई नानक बहुता एहो आखन सब तेरी वड्याई महला।

कपूर बोल बोल पौकना चूका धर्म विचार जिन जीवन दे आपक नहीं मोया मंदी सोए।

ता नानक कहिए मूरत कौड़ी। सतगुर अमृत बिरख है अमृत रस फलिया, जिस प्राप्त सोल है गुर शब्दी मिलिया। सतगुर के पाणे जो चले हर से पीर लिया, जमकाल जो न सकई कर चानन बलिया। नानक बस मिला।

कितना नाद ना वेद ना गी रस रस तस ना जानंत कितना शुद्ध ना बुद्ध ना अकल सर अखर का प्यो ना लहंत नानक से नर असल खारे जे दिन गुण गर्भ कर।

दे संकर पव थके तेख तारे, दूजे पाए नाव कदे ना पायन, दुख लागा अत भारी, मूर्ख अंधे त्रै गुण सेवे, माया कै व्यवहारी, अंदर कपट उदर करन कै ताई, पाठ पढ़े गावारी, सतगुर सेवे सो सुख पाए।

वही नाम वसै मन आए, बिन नामे जे होर खाना चित रोग लगे तन खाए। नानक रस्ता सब सलाहना आपे ले मिलाए महला तीजा, जिया अंदर जियो सब।

लोभ लहर सुध मत गई, सच न लगे प्यार। गुरुमुख जिना शब्द मन वसे, दर गए मोख द्वार। नानक आपे मेल ले, आपे बख्शन हार। महला चौथा नानक जिस

हर अचिंत बुलावे कृपा कर, हर आपे पावे खाए, हर तिसे त्यावो संत जनों जो अंते ले चलाए। हर कीत पगत आनंद है, सदा सुख वसे मन आए, जिना गुरुमुख नाम आरा।

आप छोड़ शरणाए पवे मन ले रजाए। गुरमुख जम डंड ना लगे हमे विचों जाए, नानक सेवक सोई आखिए जे सत रहे लिवलाए। महला तीजा दात जोत सब

साद मन हर विमुखन को संग सारंग महला पंजवा सूरदास इको अंकार सतगुर प्रसाद हर के संग बसे हर लोक तन मन अर्प सर्व सु

करो बिनु गुर अपने प्रीतम, हर दर आन मिलावे सुन तन कोर शीतल मन मोरा, लालवती गुण गावे बरसतना मेरा।

मन मानिया हर वर नार तई सोहागण मन तन प्रेम सुखानिया अवगण त्याग तई बैरागण अस्थिर वर सोहागरी सोग विजोग तिस कदे ना व्यापे हर प्रभ अपनी कृपा करी आवन जान ही मन में चले पूरे गुर की ओट गही नानक राम नाम जप गुरमुख तन सुहागन सच सही मलार महला पहला साची सुरत नाम नहीं तृप्ते हों मैं करत गवाया।

का नाम न भाया, रतन पदार्थ पर हर त्या गया, जग को तप ही आया, दिष्टा कीत पे उत ही ते, उत ही मैं समाया।

सुरता पंडिता का नाओ गुण गोविंद ना जानिए माए अंडीठा कुछ कह न जाए क्या कर आंख बखानिए माए रहाओ ऊपर बल समान पैल क्यों कर कहिए दो विचार बिन जेवा जो जपह आए कोई जाने कैसा नाओ कथनी बदनी रह निवरात सो बूझे हो जिस बात अंतर है निर्माण।

गर्दन फूल दारू लाए चंदन का फल चंदन वास मानस का फल तप में सास सास गए काया तल पाए ताके पाछे कोई न खाए कंचन काया निर्मल हंस जिसमें नाम निरंजन अंश दुख रोग सब गया गवाए नानक छूट से साचे नाए मलार महला पहला दुख महुरा मारन हरना।

मेरा हर पग अगम अगोचर है, कीमत कह न जाए, गुरु प्रसादी बुझिए, सब जयकार कमाए, नानक नाम से

गुरुमत सत्संगत ना बिछड़े अंधन नाम समाले सबना करता एक तू नित कर देखे विचार एक गुरुमुख आप मिलाया बक्षे पगत पंडार तू आपे सब किस जानदा किस आगे करी पुकार हर हर नाम अमृत है नगरी ताया जाए हम दे हर हर उचरे गुर के सह सुवाए नानक नाम निधान है नामे ही चुकलाए मल्हार महला की जाए गुर सावाही सदा सुख दा।

एक तो एक बसे मन स्वामी, दूजा और न कोई, एक को नाम अमृत है मीठा, जग निर्मल सब सोई, नानक नाम प्रभु ते पाया, जिनको तुर लिखिया होई, मलार महला तीजा, गण गंधर्व नामी सब उदरे, गुर का शब्द विचार, हूं मैं मार सब मन वसाया, हर राख्या उधार, जिसे बुझाए सोई बुझे।

अंदिन सदा पछताए मरमर जन में कदे न बूझे विस्ता मैं समाए गुरमुख नाम रते सेव दुरे गुर का शब्द विचार जीवन मुक्त हर नाम त्याया।

एक बिन मैं और ना जाना, सतगुरु दिया बुझाई, मन मेरे नाम रहो लिवलाई, अदिष्ट अगोचर अपरंपर करता, गुर के शब्द हर

वेद की फिरकूक न होए, मलार न लाती जा। प्रम प्रम जोन मन मुख परमाई, जम काल मारे नित पत गवाई। सतगुरु सेवा जम की काम चुकाई, हर प्रभ मिलिया महल कर पाई। प्राणी गुरमुख नाम ध्याए, जन्म पदार्थ दुविधा खोया। कौडी बदले जाए रहाओ, कर कृपा गुरमुख लगे प्यारे। अंतर पग पे हर हर उधार, पव जल शब्द लंघावन हार। दर साचे दुस्से सचार, बहु कर्म करे सतगुरु नहीं पाया। बिन गुर परम पूले बहुमाया, हों मैं ममता दो मोह वधाया। दूजे पाए मन मुख दुख पाया, आपे करता अगम अथाहा। गुर शब्दी जपिए सकलाहा, हाजर हजूर हर वे परवाहा। नानक गुरमुख नाम समा

जम के सब लागो पाए। हौ जीवा सदा हर के गुण गाई, गुर का शब्द महारस मीठा, हर के नाम मुक्त गत पाई रहाओ। माया मोह अज्ञान दुवार, मनमुख मोहे मुक्त गवार, हम दिन तंबा तर्क निहाय, मरमर जम में मिले सजाए। गुरमुख राम नाम ले लाई, पूरे लालच ना लपताई, जो कुछ हो वह सह सुवाए, हर रस पी वह रसन रसाए, कोट मदे किसे बुझाए।

रसना नाम सब कोई कहे, सतगुरु सेवे का नाम लहे, बंधन तोड़े मुक्त कर गह, गुर शब्दी अस्थिर कर गह, मेरे मन काहे रोष करी जय, लाहा कलयुग राम नाम है गुरमत।

सब आशा मनसा बंधन टूटे, हर हर प्रभु कृपा धारी, नैनी हर हर लागी तारी, सतगुरु देख मेरा मन बिगस्यो। जन हर पेट्यो बनवारी रहाओ, जिन ऐसा नाम विसारिया मेरा हर हर, तिसके कुल लागी गारी, हर तिसके कुल प्रसूत ना करियो, किस विधवा कर मैं तारी, हर हर आन मिलावो गुर साधु, जिस एनस हर उर्धा

मिले बनवारी मल्हार महला चौथा गंगा जमुना गोदावरी सरस्वती ते करें उद्दम तूर साधु की ताई किलविक मैल परे परे हमरे विच हमरी मैल साधु की तूर गवाई ईवत असठ मज्जन नाई सत संगत की तूर परी उड़ नेत्री सब दुर्मत मैल गवाई रहाओ जहर नवी तपे पागी रथयानी केदार था प्यो महसाई काशी कृष्ण चरावत गाऊ मिल हर जन शोभा पाई जितने तीर्थ देवी थापे सब जितने लोचे तूर साधु की ताई हर का संत मिले गुरु।

साधु तूर दे हर पार लंगाई मल्हार महला चौथा किस जन को हर मीठ लगाना जिस हर हर कृपा करे किसकी भूख दुख सब उतरे जो हर गुण हर उचरे जप मन हर हर हर निस्तरे गुर के बचने करण सुन ध्यावे अब सागर पार करे रहाओ किस जन के हम हाथ बिहाजे जिस हर हर कृपा करे हर जन को मिलिया सुख पाए सब दुर्मत मेल हरे हर जन को हर भूख लगानी जन तृप्त जा हर गुण बिचरे हर का जन हर जल का मीना हर बिसरत फूट मरे जिन ए प्रीत लाई सो जाने तो जाने जिस मन धरे जन नानक हर देख सुख पावे सब तन की भूख करे।

हर जन हर कार लावे, सतगुरु हर हर नाम दिलावे। हर बोलो गुर के सुत मेरे भाई, हर पौजल जगत करावे रहाओ। जो गुर को जन पूजे सेवे, सो जन मेरे हर प्रभु भावे। हर की सेवा सतगुरु पूजो, कर कृपा आप करावे। कर्म पूले अज्ञानी अंधुले, कम कम फूल तोड़ावे। निर्जीव पूजे मरा सुरेवे, सब दुखि काल गवावे। ब्रह्म बिंदे सो सतगुरु कहिए, हर हर कथा सुनावे। उस गुर को छादन पूजन पाठ, पतंबर बहुबुदे सत कर मुख संचो। किस पुन की फिर तोटना आवे, सतगुरु देव प्रतक हर मुहूर्त। जो अमृत वचन सुनावे, नानक पाग पले तुस जन।

देखे मेरा मन बिगसे हौकिन कह सद बल जात ज्ञानी हर बोलो दिन रात तिनकी तृष्णा पूछ सब उतरी जो गुरमत राम रस्थांत रहाओ हर के दास साग सखा जन

हर हृदय के कपटी नरमित कपट तमाक तिनको क्या कोई देखवाले वो आप बीज आते ही खाते हर का चिन्ह सोई हर जन का हर आते जन्म आप रखाते तन तन गुरु नानक समदर्शी जिन निंदा उस्तत करी त्रांत मलार महला चौथा अगम अगोचर नाम हर उत्तम हर कृपा ते जप लया सत संगत साध पाई वड पागी संग साधु पार पया मेरे मन अंदिन अंध भया।

0: तिन संगत हर मेलो करमया, तिनका दर्श देख सुख पाया, दुखों में रोग गया। जो अंदिन हृदय नाम दियावे, सब जन तिना का सफल भया। वे आप करे सुष्ट सरकारी, सब कुल भी पार कया। तुद आपे आप उपाया सब जग, तुद आपे वश कर लया। जन नानक तो प्रभु कृपा धारी, दिख दुखदा काब लया।
1: मल्हार महला चौथा, गुर प्रसादी अमृत नहीं पिया, कृष्णा भूख न जाय। मन मुख मूल जलत अहंकारी, हों मैं विच दुख पाई। आवत जात बिरथा जन्म गवाया, दुख लागे पछताई। जिसते उपजे तिसे न चेते, त्रिग जीवन त्रिग खाई। प्राणी गुरमुख नाम दे आई, हर हर कृपा करे गुर मेले। हर हर नाम समाई रहा, मन मुख जन्म भया है बिरथा। आवत जात ल जाई, काम क्रोध डूबे अभिमानी। हो मैं विच जल जाई, तिन सिद्ध न बुद्ध भई मत मदन। लोभ लह दुख।

खीर आधार बारक जब होता बिन खीरे रह न जाई सार समाल माता मुख नीरे तब हो तृप्त अघाई हम बारक पिता प्रभु दाता फूले बारक अनक लख दरिया अनठौर नाही जय जाता रहाओ चंचल मत बारक बपरे की सर्फ अगन कर मेले माता पिता कंठ लाए राखे अनद सहज तब खेले जिसका पिता तू है मेरे स्वामी इस बारक भूख कैसी नव निध नाम निधान गृह तेरे मन बाँचे सो लैसी पिता कृपाल आज्ञा ए दीनी बारक मुख मांगे सो देना नानक बारक दर्श प्रवचा है मोहि हृदय बसे नित चरना मल्हार महला पंजवा सगल विधि जुर आहर करया सजियो सगल अंदेशा कार्य सगल अरंभियो करका ठाकुर का भरोसा सुनिए बाजे बाज सुहावी और पया मैं प्रेम मुख देखे गृह मंगल सुहलावी रहाओ मनुआ लाए सवारे थाना पूछो संता जाए खोजत खोजत मैं पाहुन मिलियो भगत करो निर पाए जब प्रेम आए बसे

अगन में जरते नानक शरण चरण कमलन की तुम ना डारो प्रभ करते राग मलार महला पंजवा दुख दे कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद प्रभ मेरे ओए बैरागी त्यागी हूँ एक खिन तिस बिन रह ना सको प्रीत हमारी लागी रहाओ उनके संग मोहे

कृपाल पै बड़ पागी महा सुख पाया बर न पाको रेन नानक जन पागी मल्हार महला पंजवा माई मोहे प्रीतम देहो मिलाई सगल सहेली सुख पर सूती जे कर लाल बसाई रहा मोहे अवगन प्रभु सदा दयाला मोहे निर्गुण क्या चतुराई करो बराबर जो प्रेम संग राती ए हो मैं की टीठाई कई निमानी शरण एकता की गुरु सब गुरु पुरुष सुखदाई एक निमक में मेरा सब दुख काटिया नानक सुख रहन बिहाई मल्हार महला पंजवा बरस मेघ जी तिल बिल न लाओ बरस प्यारे मने सदारे होए आनंद सदा मन चाओ रहाओ।

मन तन नाम निरंजन रातो चरण कमल लिव लाया अंगीकार कियो प्रभ अपने नानक दास शरणाया मलार महला पंजवा विचरत क्यों जीवे ओए जीवन चित है उलास आस मिलवे।

हुए मर जाही मन तन रव रहा जगदीशर देखत सवा हजूरे नानक रवयो सब अंतर सब रहा पर पूरे मल्हार महला पंजवा हर कै भजन कौन कौन न तारे खग तन मीन तन मृग तन ग्राहा तन साधु संग उदारे रहाओ देव कुल दैत कुल जख किन्नर नर सागर उतरे पारे जो जो भजन करे साधु संग ताके दुख बिदारे काम क्रोध महा बिख्या रस इनते पै निरारे दीन दयाल जपे करुणा में नानक सद बलिहारे मलार महला पंजवा आज मैं बैस्यो हर हाट नाम रास सांझी कर जनस्यो जाओ न जम कै

दुख पंजन आप लिए लड़ लाई, हर की ओठ जीवे दास तेरे, नानक प्रभु शरणाई। मल्हार महला पंजवा, मन मेरे हर के चरण रवीजै, दर्श प्यास मेरो मन मोयो, हर पंख लगाए मिली जय रहाओ, खोजत खोजत मार्ग पायो, साधु सेव करी जय, पार अनग्रो स्वामी मेरे, नाम महारस की जय। त्राहे त्राहे कर सरनी आए, जल को कृपा की जय, कर गह लिहो दास अपने को, नानक अपनों की जय। मलार महला पंजवा, प्रभ को भगत बछल बिरदायो, निंदक मार चरण तल दीने, अपनो जस वरतायो रहाओ।

महा आनंद करो दास हर के, नानक विश्वास मन आयो। राग मल्हार महला पंजवा, चौप दे कर दूजा इको अंकार। सतगुरु प्रसाद गुरुमुख दीसे ब्रह्म पसार, गुरुमुख त्रै गुणिया विस्तार, गुरुमुख नाद वेद विचार, बिन गुर पूरे कोर अंधार। मेरे मन गुर गुर कर सदा सुख पाये, गुर उपदेश हर हृदय वस्यो, सांस गिरास अपना खसम त्याय।

गुर पेटे ना हुए जोन अवतार, गुर की सेवा सो जन पाए, जाको कर्म लिखिया तुरे आए। गुर मेरी जीवन गुर आधार, गुर मेरी वर्तन गुर परवार, गुर मेरा खसम सतगुर शरणाई, नानक गुर पार ब्रह्म जाकी कीम ना पाई। मनार महला पंजवा, गुर के चरण हृदय वसाए, कर कृपा प्रभ आत मिलाए, अपने सेवक को ले प्रभ लाए, ताकि कीमत कहीं न जाए। कर कृपा पूरन सुखदाते, तुमरी कृपा से तू चित आवे, आठ पैर तेरे रंग राते रहाओ, गावन सुनन सब तेरा भाना।

रातनहार सदा मेहरबान, सदा सदा जाइए कुर्बान, काल गवाया करते आप, सदा सदा मन किसनो जाप, दृष्ट तार राखे सब जंत, गुण गावो नित नित भगवंत, एको करता आपे आप, हर के भगत जाने प्रताप, नावे की पैज रखदा आया, नानक बोले तिसका बोलाया, मलार महला पंजवा, गुर शरणाई सगल निधान, साची दरगे पाये मान, ब्रह्म को दुख दर्द सब जाए, साध संग सब हर गुण गाए, मन मेरे गुर पूरा सालाए, नाम निदान जपो दिन राती, मन चिंदे फल पाए रहाओ, सत गुर जेव

सो मन निर्मल जो गुर संग राची गुर पूरा पाए वडवाग काम क्रोध लोभ मनते त्याग कर कृपा गुर चरण निवास नानक की प्रभु सत अरदास राग।

सुरमन हार प्रिय दे हार स्यों रंग किया की नोरी सगल सिंगार तजोरी सगल विकार ताव तो अस्थिर थी आ रहा ऐसे रे मन पाए कै आप गवाए कै कर साधन स्यों संग बाजे बजे मृदंग अनाहद कोकिलरी राम नाम बोले मधुर बैन अक्सोहिया ऐसी तेरे दर्शन की शोभ अत अपार।

नानक प्रयो प्रीतम थिया मलार महला पंजवा मन कने प्रमे बने उमक तरस चाले प्रभ मिलबे की चाह रहाओ त्रै गुण माई मोह आई कहो बेदन काहे आन उपाव सगर किए नह दुख सा कहलाहे हज शरण साधु नानका मिल गुण गोविंद गाहे मल्हार महला पंजवा त्रै की शोभ सुहावनी नीकी हा हा हु हू गंधर्व अपसरा आनंद मंगल रस गावनी नीकी रहाओ तुनत ललित गुणग अनक भांत बहुविद रूप दिखावनी नीकी गिरतर थल जल पवन परपुर कट कट लालन छावनी नीकी साध संग रमैया रस पायो नानक जा कै पावनी नीकी मलार महला पंजवा गुरप्रीत प्यारे चरण कमल रिद अंतर धारे रहाओ दर्श सफलियो दर्श पेखियो गए किल बिख गए मन निर्मल उजियारे विषम विषम विषम भई अब कोट हरते नाम लई गुर चरण मस्तक डार पही प्रब एक तू ही भगत टेक तुहारे जन नानक शरण द्वारे मलार महला पंजवा बरस सरस आग्या होहे आनंद सगल पाग रहाओ संत संगे मन परफड़े मिल मेघ तर सुहाग कन कोर प्रीत मोर चित चात्रिक बूंद ओर ऐसो हर संगे मन मोहो त्याग माया तो हो मिल संत नानक जागया मल्हार महला पंजवा गुण गोपाल गाओ नीत राम नाम तार चीत रहाओ छोड़ मान तज गुमान मिल साधुआ के संग हर सिमर एक रंग मिट जाहे दोख मीत पार ब्रह्म पै दयाल बिनस गए बिखे जंजाल साध जना के चरण लाग नानक गावे गोविंद नीत मल्हार महला पंजवा कन गर्जत गोविंद रूप गुण गावत सुख चैन रहाओ हर चरण शरण तरण सागर तुन अनहता रस बैन पथिक प्यास चित सरोवर आत्म जल लैन हर दर्श प्रेम जन नानक कर कृपा प्रभ दैन।

लाई। शात्रिक जल बिन प्रयो प्रयो टेरे, बिल करे बिल लाई। कम हर कोर दसो दिस बरसे, बिन जल प्यास न जाई। मीन निवास उपजे जल ही ते, सुख दुख पूर्व कमाई। खिन तिल रह ना सके पल जल बिन, मरण जीवन तिस ताई। तन वाडी तिर देश निवासी, सच्चे गुर पै शब्द पठाई।

अपना काश वारो आपे सुखदाते गोसाई गुरु प्रसाद काही फिर पाया कौ नानक तपत बुझाई मलार महला पहला जागत जाग रहे गुरु सेवा बिन हर मैं को नाही अनेक जतन कर रहे न पावे आच पाच टर पाही इस तन तन का कहो गर्भ कैसा बिन सतबार न लागे बवरे हो मैं गर्भ खपे जग ऐसा रहा।

ताई नदी उपकंठ जैसे कर करवर सर्पन कर कर माही उल्टी नदी कहाँ कर करवर सर्पन डसे दूजा मन माही गरुड़ गुर ज्ञान ध्यान गुर बचनी बिख्या गुरमत जारी मंथन हेम पै सच पाया हर की भगत निरारी जेती है तेती तुद जाते तू सर्व जिया दयाला तुमरी शरण परे पत राखो साच मिले गोपाला बादी तंद अंग नहीं सूजे बदिक कर्म कमावे सतगुरु मिले ता सूजस बूजस।

चात्रिक मीन जल ही ते सुख पावे, सारिंग सबद सुहाई, रैन बबीहा बोलियो मेरी माई, रमाओ प्रेय स्यो प्रीत न उल्टे कबहू, जो ते पावे साई, नींद गई हो मैं तन फाकी, सच मत हृदय समाई, रूखी बिरखी उदो पूखा, पीवा नाम सुवाई, लोचन पार ललता बिललाती, दर्शन प्यास

जुड़कै शब्द नाम आधार, ना जल डूंगर ना ऊंची धार, निज कर वासा ते मगना चालनहार, जित कर वसै तू है बिद जाने, बीजो महल न जाते, सतगुरु बाजों

चौदिस नाम पतालं सब में शब्द वर्ते प्रभ साचा कर्म मिले बयालं जामन मरणा दी सह सिर उबो खुदया निद्रा कालं नानक नाम मिले मन भावे साची नगर रसालं मलार महला पहला मरण मुक्त गत सार न जाने कंठे बैठी गुर शब्द पछाने तू कैसे आ

मन मेरे हर हर नाम सितलाए, सतगुरु ते हर पाए साचा, हर स्यों रह समाए रहाओ। सतगुरु ते ज्ञान उपजे ता ए संसार जाए, सतगुरु ते हर बुझिए गर्भ जोनी नह पाए।

गुर प्रसादी शिव कर जमे विचों सकत गवाए अचर चरे विवेक बुद्ध पाए पुरखे पुरख मिलाए तातुर बाजी संसार अचेत है चले मूल गवाए।

मुक्त कदे ना हो वही नौ पायन मोख द्वार बिन सतगुर बंधन ना तुतही नाम न लगे प्यार पढ़ पढ़ पंडित।

है। हर सिंह रह समाये मल्हार महला तीजा अष्टपदी कर दूजा इको अंकार सतगुरु प्रसाद। हर हर कृपा करे गुरु की कारे लाए दुख पल्लर हर नाम बसाए साची गत साचे चित लाए गुरु की बाणी शब्द सुनाए मन मेरे हर हर सेव निधान गुरु कृपा ते हर तन पाई है।

ए साथ समाए राग मल्हार छंक मैला पंजवा इको अंकार सतगुर प्रसाद। प्रीतम प्रेम भगत के दाते अपने जन संग राते, जन संग राते दिन सराते एक निमक मनो ना विसरै। गोपाल गुण निद सदा संगे सर्व गुण जगदीसरै। मन मोहलीना चरण संगे नाम रस जन माते। नानक प्रीतम कृपाल सदहू किने कोट मदे जाते। प्रीतम तेरी गत अगम अपारे महापतित तुम तारे। पतित पावन भगत वचल कृपा सिंध स्वामिया। संत संगे भजन संगे रहो सदा अंतर जामिया। कोट जन्म परमंत जोनी ते नाम सिमरत तारे। नानक दर्स प्यास हर जियो आप लिहो समारे। हर चरण कमल मन लीना प्रभ जल जन तेरे मीना। जल मीन प्रभ जियो एक तू है पिन आन ना जानिए। गह पूजा लेवो नाम देवो तो प्रसादी मानिए। तज साध संगे एक रंगे।

माया बिनवंत नानक शरण तिनकी जिन्नी हर हर ध्याया वार मलार की महला पहला राणी कैलाश तथा माल दे की तुन एक ओंकार सतगुर प्रसाद। श्लोक महला तीजा गुर मिलिए मन रहसी है ज्यों उठे तरण सिगार सब दिशे हरि आवली सर करे सदर ताल अंदर रचे सच रंग ज्यों मंजी ठे लाल कमल विगसे सच मन।

काल खुदया तृष्णा निंदा बुरी काम क्रोध विकराल एनी अखी नदर न आवई जिचर शब्द

तू लोड लहो जित वन्य रोगा कान जित दारू रोग उठिए तन सुख वसे आए रोग गवाए आपना का नानक वैद सदाए पौड़ी ब्रह्मा विष्णु महेश देव उपाया ब्रह्मे दित्ते वेद पूजा लाया दस अवतारी राम राजा आया दैता मारे ताए हुक्म सवाया ईश महेश्वर सेव तिन्नी अंतना पाया सच्ची कीमत पाए तख्त रचाया दुनिया तन दे लाए आप छपाया।

तिन कामणी जिन मन पाओ पाओ होए नानक पै पाए बाहरी तिन तम सुख न होए। महला तीजा ऊनव ऊनव आया वरसे नीर निपंग नानक दुख लागा तिन कामणी जिन कन पैस्यो मन पंग पौड़ी। दोवे तरफा उपाय इक वरत्या वेद बाणी वरताए अंदर वाद कत्या परविरत निर्विरत हाठा दोवे विच तरम फिरे रह बारिया। मन मुख कच्चे कूड़ियार तिन्नी ने चौदर गै हारिया गुरमति शब्द सूर है काम क्रोध जिन्नी मारिया सच्चे अंदर महल शब्द सवारिया।

इस मेघ के हक किचना है जिन एव मेघ पछाया तिसरा को मन माहे तिसनो मन वसायसी जाको नगर करे नानक नगरी बाहरी सब करण पलाह करे पौड़ी सो हर सदा सरेवी है जिस तर्क न लागे वार आदाने आकाश पर खिन में टाहे उसारण हार।

गुरमुख पद सों लेखा निबड़े बक्से सिर पंडार ओथे हथ ना पड़े कूक ना सुनिए पुकार ओथे सतगुरु बेली।

निवलाए, जो जल में कमल अलिपत है ऐसी बंत बनाए, से सुखिए सदा सोने जिन विच्चों आप गवाए, तिन सोग विजोग कदे नहीं जो हर के अंक समाए।

नानक तिनका आख्या आप सुने, जे लयन पन्ने पाए महला तीजा, अमृत सदा वरसदा बूजन बूजन हार, गुरमुख जिन्नी बुझिया हर अमृत रखिया उधार, हर अमृत पीवे सवा रंग राते होमे तृष्णा मार, अमृत हर का नाम है वरसे कृपा धार, नानक गुरमुख नजरी आया हर आत्म राम मुरार। पौड़ी अतुल क्यों तोलिए बिन तोले पाया ना जाए, गुर के शब्द विचारिये गुण में रह समाए, अपना आप आप तोलसी आपे मिले मिलाए, जिसकी कीमत ना पवे कहना किछु ना जाए, हौ बलिहारी गुरे अपने जिन सच्ची बूझ दिती बुझाए, जगत मुसे अमृत लुटी है मनमुख बूझ न पाए, बिन नामे नाल न चलसी जासी जन्म गवाए, गुरमति जागे तिन्नी कर रखिया दूता का किछ न वसाए, श्लोक महला तीजा। बाबी हा ना बिललाए ना तरसाए, इहो मन खसम का हुक्म मन, नानक हुक्म मने तिख उतरे चढ़े चवगल वन, महला तीजा। बाबी हा जल में तेरा वास है, जल ही माय फिरा है, जल की सार न जान ही का तू कूकन पाहे, जल फल चहो दिस वर्षदा खाली को ठाव ना है, एते जल वर्ष दे तिख मरे ताग तिना के ना है, नानक गुरमुख तिन सोजी पई जिन वस्या मन माहे। पौड़ी नाथ जति सिद्ध पीर किने अंत न पाया, गुरमुख नाम पियाए।

नील अनिल अगम सरजीत सवाया, अगन उपाई वाद पुख तिहाया, दुनिया कैसर काल दूजा भाया, रखे रखन हार जिन शब्द बुझाया। श्लोक महला तीजा, एहो जल सब कै वसवा, वरसै पाए सुवाए, से बिरखा हरि आवे।

प्रसादी को विरला बूझे, सो जन मुक्त सदा होए पौड़ी। सच्चा वे परवाह इको तू धनी, तू सब किस आपे आप दूजे किस गणी। मानस कूड़ा गर्भ सच्ची तुदमणि, आवा गौण रचाए उपाई मेदनी। सतगुरु सेवे अपना आया किस गणी, जे हो मैं विच्चों जाए ताके ही गणत गणी। मनमुख मोह गुबार जो पुल्ला मंजवाणी, कट्टे पाप असंख नामे इक कणी। श्लोक महला तीजा, बाबी हा खसमे का महल न जाने, महल देख अरदास पाए। अपने पाने बहुता बोले, बोलिया थाए न पाए। खसम वड्डा दातार है, जो इच्छे सो फल पाए। बाबी हा क्या बपुरा, जग तै की तिख जाए। महला तीजा, बाबी हा किन्नी रहन बोलिया, सहजे सच सुभाए। क्यों जल मेरा जियो है, जल बिन रह न जाए। गुर शब्दी जल पाई है, विच्चों आप गवाए। नानक जिस बिन चसा न जीवई, सो सतगुरु दिया मिलाए पौड़ी। खंड पताल अस

होई। इक राजे खान मलूक कह कहावे कोई, इक सवा सदावे संत धन दूजे पट होई। इक दाते इक मंगते सगना सिर सोई, बिनावे बाजारिया पिहावल होई। पूर्ण खुटे नानका सच करे सो होई। श्लोक महला तीजा, बाबी हा गुणवंती महल पाया, औ गुणवंती दूर अंतर तेरे हर वसे गुरमुख सदा हजूर। कूक पुकार ना हो गई नदरी नदर निहाल, नानक नाम रते सहजे मिले शब्द गुरु कह कहाल। महला तीजा, बाबी हा बेनती करे कर कृपा देहो जी दान, जल बिन प्यास न उतरे छुटक जाहे मेरे।

सच्चा अलख अपार तू गुणदाता निदान है असी अवगण यार जिस बच्चे सो पाए सी गुर सबदी विचार। श्लोक महला पंजवा रात न विहावी सापता जिना विसरै नाओ राती दिन सुहेलिया नानक हर गुण गाओ। महला पंजवा रतन जवे हर मान का हब्बे मणि मखन नानक जो प्रभ पाणिया सच्चे दर सोहन पौड़ी सच्चा सतगुर शेर सच समा लिया अंत खलोआ आए जे सतगुर अगे कालिया कोई न सके जमकाल सच्चा रखवा लिया गुरसा की जोत जगाए दीवा बालिया मनमुख बिन नावे कूड़ियार फिर बेतालिया पशु मानस चंप लेते अंदरों कालिया सबो वरते सच सच्चे सगर निहालिया नानक नाम निधान है पूरे गुर देखा लिया। श्लोक महला तीजा बाबी है हुकुम पछाणिया गुर कै सह सुवाए मेघ वर्ष दया कर गूड़ी छह बरलाए बाबी है कूक पुकार रह गई सुख वसिया मन आए नानक सो साल आई है ये दिन दा सबना जिया रिजक समाए। महला तीजा चात्रिक तू ना जानही क्या तुद विच तिखा है कित पीते तिख जाए दूजे पाए परम्या अमृत जल पल न पाए नदर करे जे अपनी ता सतगुर मिले सुभाए नानक सतगुर ते अमृत जल पाया सहजे रहा समाए पौड़ी एक मन खंड बैसे जाए सदना दे रही एक पाला टक्कर पान शीतल जल हे वही एक पसम चढ़ा में अंग मैलना तो वही एक जटा बिकट बिकराल कुल कर खो वही एक नगन फिरे दिन रात नींद ना सो वही एक अग्नि जला में अंग आप विगो वही गिनना में तन छार क्या कह रो वही सोहन खसम द्वार जे सतगुरु से वही। श्लोक महला तीजा बाबी हा अमृत वेले बोलिया तांदर सुनी पुकार मेघ नो फुरमान होआ वर्षो कृपा कार हौ तिन कै बलिहार ने जिन्नी सच रखिया उधार नानक नामे सब हरियावली गुर कै शब्द विचार। महला तीजा बाबी हा इव तेरी तिखन न उतरे जे सो करे पुकार नदरी सतगुरु पाईए नदरी उपजे प्यार नानक साहिब मन वसे विच्चों जाए विकार पौड़ी एक जैनी उजड़ पाए तुरों खुआया तिन मुख ना ही नाम ना तीरथ नाया हथी सिर खुहाए ना पद कराया कुचल रहे दिन रात शब्द ना पाया तिन जात ना पक्ष ना कर्म जन्म गवाया मन जूठे वे जात जूठा खाया बिन शब्द आचार ना

अंदर सच्ची भगत है सहजे ही पत होए। चंद जुग में कोर अंधार है मन मुखरा न कोय, सेवड पागी नानका जिन गुरमुख प्रगट होए। महला तीजा इंद वर्ष कर दया लोका मन उपजे चाओ, जिसके हुक्म इंद वर्ष दा तिसके सद बलिहार जाओ। गुरमुख शब्द संभालिए सच्चे के गुण गाओ, नानक नाम रते जन निर्मले सहजे सच कमाओ। पौड़ी पूरा सतगुरु सेव पूरा पाया, पूरे कर्म त्याए पूरा शब्द मन वसाया। पूरे ज्ञान ध्यान मैल चुकाया, हर हर तीर्थ जान मनुआ नाया। शब्द मरे मन मार तन जने दी माया, दर सच्चे सच्चार सच्चा आया। पूछ ना सके कोई जा खसने भाया, नानक सच सलाहे लिखिया पाया। श्लोक महला पहला कुल्हा देन दे बावले लेंदे वडे निलज, चूहा थड न मावई तिकल बन्ने छज। देन दुआई से मरे जिनको देन से जाहे, नानक हुक्म न जा कई किथे जाए समाहे।

केते मंग मंग जाहे महला पहला। सौ मन हस्ती क्यों गुड़ खावे पंज सै दाना खाए। डके फूके खीरे उड़ावे साहे गया पछताए। अंधी फूक मोई दीवानी खसम मिटी फिर भानी। अब गुल्ला चिड़ी का चुगन गैन चढ़ी बिल लाए। खसमे पावे ओहा चंगी जे करे खुदाए खुदाए। सत्ता शिव मारे सह मिर्या सब पिछे पे खाए। होए सताना पुरे न मावे साहे गए पछताए। अंधा किसनो बुक सुनावे खसमे मूल न भावे। अक्षो प्रीत करे अक्सिद्धा अकबाली बै खाए। खसमे पावे ओहो चंगा जे करे खुदाए।

गुर कै सबद सलाहिए अंतर प्रेम प्यार विन प्रीति पगत न हो गई विन सतगुर ना लगे प्यार तू प्रभ सब तुझ सेव दे एक ताड़ी करे पुकार जेहे दान संतोखिया सच्चा नाम मिले आधार श्लोक महला पहला राति काल कटे दिन काल छिजे काया होए पराल वर्तन वर्त्या सर्व जंजाल पुलिया चुक गया तपताल अंधा चक चक

मूरख पुख ना जाए, दूजे सब को लग विगुता, बिन सतगुरु बूझ ना पाए, सतगुरु सेवे सो सुख पाए, जिसनो कृपा करे रजाए। श्लोक महला पहला, सरम करम दोय नानका, जे तन पल्ले पाए, सो तन मित्र न कांडिया, जित सिर चोटा खाए। जिनके पल्ले तन वसे, तिनका नाव फकीर, जिनके हृदय तू वसे, ते नर गुणी गहीर। महला पहला, दुखी दुनी सहेड़िए, जाए तन लगे।

जानिए कौजल तारणहार शब्द पछानिए चोर जार जुआर पीड़े खानिए निंदक लाए तबार मिले हरवानिए गुरमुख सत समाए सो दरगे जानिए। श्लोक महला दूजा नाव फकीर है पातशाहो मूर्ख पंडित नाओ अंधे का नाव पारखू एवं करे गुआओ इल्लत का नाव चौधरी पूरी पूरे थाओ नानक गुरमुख जानिए कल का एहो न्याओ। महला पहला हरना बाजा कै सुखदारा एना पर्या।

सदा सुख होए महला पहला। अजर जरे तानो कुल बंद, पूजे प्राण होवे फिर कंद। कहां से आया कहां यो जान, जीवत मर्त रह परवान। हुक्मे बूझे तक पछाने, यो प्रसाद गुरु ते जाने। होंदा खड़ी अग नानक जान, ना हो ना मैं जूनी पान पौड़ी। पढ़िए नाम सलाहा होर बुद्धि मिथ्या, बिन सत्य व्यापार जन्म बिरथिया। अंत न पारा।

नास आप छुटे न छूटिए नानक बचन विनाश महला पहला मास मास पर मूर्ख चगड़े ज्ञान ध्यान नहीं जाने कौन मास कौन साग कहावे किसमें पाप समाने गेंदा मार होम जग किए देवतियाँ की बाने मास छोड़ बैस नख पकड़े।

है मन भाया पाल चलाए बन कोई न रखसी जर जरवाना कन चरिया नथसी सतगुर बोलत बेर सच्चा रखसी अगन पखे पलहाड़ अंदिन पक्षी फासा चुगे चोग हुक्मी छुटसी करता करे सोहोग कूड़ निखुटसी। श्लोक महला पहला कर में

उलट कमल अमृत भरिया यो मन कथो न जाए अजप्पा जात ना विसरे आप जुगाद समाए सब सखियां पंचे मिले गुरमुख निज करवास शब्द खोज एवं कर लह।

कोतवाल सो करासुरी सो ऐसा राजा श्री नरहरि जाचे कल कुलाल ब्रह्मा चतुर्मुख दावणा जिन विश्व संसार राचीले जाके कर ईश्वर बावला जगत गुरु तत्सार था ज्ञान पाखीले पाप पुण्य जाचे।

कहिया पियो कहो रविदास पयो जल लेखो जोई जोई कीनो सोई सोई देखियो। राग का नवा चौक दे महल।

बल बल सात जना को मिर संगत पार उतरिया रहाओ। हर हर कृपा करो प्रभ अपनी, हम सात जना पग परया, तन तन साहब जिन हर प्रभ जानिया, मिर साधु पतित उधरिया। मनुआ चले चले बहु बहु विद, मिल साधु वसगत करिया, जो जल तंत पसारे बगत।

किल बिख दैन पए खिन अंतर, टूट गए माया के फास। क्या हम किर्म क्या कर्म कमावे, मूरख मुग्ध

रंग हर के रे कट कट राम रवियो गुपलाक हर के संत मिले हर प्रगटे उगर गए बिखिया के ताक संत जना की बहुत बहुत शोभा जिन उतारियो हर रसक रसाक हर के संत मिले हर मिलिया जैसे गऊ देख बछराक हर के संत जना

मात पिता बंद पहर साक कानड़ा महला चौथा। मेरे मन हर हर राम नाम जप चीत हर हर वक्त माया गढ़वेड़ी गुर कै शब्द लियो गढ़ जीत रहाओ। मिथ्या परम परम

परचय राम रविया कट अंतर। अखिर राम रविया रंग प्रीत, हर के संत संत जननी के, जिन मिलिया मन रंग रंगीत। हर रंग लहे ना उतरे कबहू, हर हर जाए मिले हर प्रीत। हम बहु पाप किए अपराधी, गुर काटे कटत कटीत। हर हर नाम दियो मुख औखद, जन नानक पतित पुनीत। कानड़ा महला चौथा, जप मन राम नाम जगन्नाथ। कुमन केर परे बिख बिखिया, सतगुर काढ़ लिए दे हाथ। रहाओ स्वामी अभय निरंजन नरहर, तुम राख ले हो हम पापी पाथ। काम क्रोध बिखिया लोभ लुभते, काष्ट लो तरे संग साथ। तुम वड पुरख बड अगम अगोचर, हम टूट रहे पाई नहीं हाथ। तू परे परे अपरंपर स्वामी, तू आपन जाने आप जगन्नाथ। अदृष्ट अगोचर नाम ते आए, सत्संगत मिल साधु पात। हर हर कथा सुनी मिल संगत, हर हर जप्यो अकथ कथकात। हमरे प्रभ जगदीश गुसाई, हम राख ले हो जगन्नाथ। जन नानक दास दास दासन को, प्रभ करो कृपा।

गुण गावे गुरमत हो बलबले हो बलबले जन नानक हर जप पई निहाल निहाल निहाल कानड़ा महला चौथा हर गुण गावो जगदीश एका जी की चै लख बीस जप हर हर शब्द जपीस हर हो किरपीस राव हर कृपा कर स्वामी हम लाए हर सेवा हर जप जपे हर जप जपे जप जापो जगदीश तुमरे जन राम जपे ते उत्तम तिन को हो कुमकुमे कुमकुम जीस हर तुम वड वडे वडे वड ऊचे सो करें जे तुद पावीस जन नानक अमृत पिया गुरमती तन तन तन तन तन गुरु साबीस कानड़ा महला चौथा पज रामो मन राम जिस रूप नारेख वडाम सत संगत मिल पज राम बड हो पाग मताम रहाओ जित गृह मंदर हर होत जास तित तर अनदो अनद पज राम राम राम राम नाम गुण गावो हर प्रीतम।

महला चौथा सतगुर चाटो पग चाट जित मिल हर पादर बाट पग हर रस रस हर गाट हर हो लिखे लिलाट रहाओ खट कर्म क्रिया कर बहु बहु विस्तार सिद्ध साधक जोगिया कर जट जटा जट जाट कर पेख न पाई है हर ब्रह्म जोग हर पाई है सत्संगति उपदेश गुरु गुरु संत जना खोल खोल कर।

काट कटे काट हर काट कानड़ा मेला चौथा जप मन गोविंद माधो हर हर अगम अगा दो मत गुरमत हर प्रभ ला दो सुर हो लिखे लीला दो रहाओ बिख माया संत बहुचित है विकार सुख पाइए हर पज संत संत संगति मिल सतगुरु गुर साधो ज्यो छोए पारस मनहूर भय कंचन त्यों पतित जन मिल संगति सुध होवत गुरमति सुधा दो ज्यो काष्ट संग लोहा बहुतरता त्यों पापी संग तरे साध साध संगति गुर सतगुरु गुर साधो चार वर्ण चार आश्रम है कोई मिले गुरु गुरु नानक सो आप तरे कुल सगल तरा दो कानड़ा महला चौथा हर जस गावो भगवान जस गावत पाप लहान मत गुरु

जाको सतगुर अपना राखे, सो जन हर रस रसना चाखे, कहो नानक गुर कीनी माया, हालत पलत मुख उजल भया, कानड़ा महला पन्नवा, आराधो तुझे स्वामी अपने, उठत बैठत सोवत जागत, सास सास सास हर जपने।

कल युग में पाया जिन नाओ कानड़ा महला पंजवा कीरत प्रभ की गाओ मेरी रसना अनेक बार कर बंदन संतन हुआ चरण गोविंद जी के बसना रहाओ अनेक पाप कर द्वार न पावो होए कृपाल ता हर हर द्यावो कोट कर्म कर दे न सोदा साध संगत में मन पर बोदा कृष्ण ना बूजी बहु रंग माया नाम लेत सर्व सुख पाया पार ब्रह्म जब पहे दयाल सहु नानक सौ छूटे जंजाल कानड़ा महला पंजवा ऐसी मांग गोविंद ते पहल संतन की संग साधु का हर नामा जप परम गते रहाओ पूजा चरना ठाकुर सरना सोई कुशल जो प्रभ जियो करना सफल होत ए दुर्लभ देही।

अनेक स्वांग का छे पेख तारी, जैसो सा तैसो दृष्टारी, कहन कहावन सगल जंजार, नानक दास सच करनी सार। कानड़ा महला पंजवा, तेरो जन हर जत सुनत उमायो, रहाओ मने प्रगास पेख प्रभ की शोभा।

सहज समाज समायो कानड़ा महला पंजवा संतन पह आप उदाहरण आयो रहाओ दर्शन पेटक होत पुनीता हर हर मंत्र दृढ़ायो कांटे रोग पै मन निर्मल हर हर औखद खायो अपित पै बसे सुख खाना बौर न कतहु धायो संत प्रसाद तरे कुल लोगा नानक लिप्त नामायो कानड़ा महला पंजवा बिसर गई सब तात पर आई जब ते सात संगत मोय पाई रहाओ ना को बैरी नहीं बेगाना सगल संग हमको बने आई जो प्रभु कीनो सो पल मान्यो।

तुमरी ओठ तुम्हारी सरना रहाओ, तुमरी आस परोसा तुमरा, तुमरा नाम हृदय ले धरना, तुमरो बल तुम संग सुहेले, जो जो कहो सोई सोई करना, तुमरी दया मया सुख पावो, हो कृपाल सा पौजल।

सुख पाया तृष्णा सब बुझी है, सांस पाई गुण गाया बिन बूझे पशु की न्याई, प्रम मोहे व्याप्यो माया साध संग जम जेवरी काटी, नानक सहज समाया कानड़ा महला पंजवा, हर के चरण हृदय गाए शीतला सुख शांत मूरत, सिमर सिमर नित त्याय रहाओ सगल आस हो।

महा पवित्र संत आसन मिल संग गोविंद ध्याए सगल त्याग शरण आयो नानक लेहो मिलाए कानड़ा महला पंजवा पेख पेख बिगसाओ।

हर हर हर। मित कोट कसमल जात गुण रमंत दुख नाथे, रिद पयंत सांत अमृता रस पी।

उदरे हर सिमरत नागर शीतला हर नाम तेरा पूर्णो ठाकुर प्रभ मेरा दीन दर्द निवार तारन हर कृपा निज पतित उदारन कोट जन्म दुख कर पायो सुखी नानक गुरु नाम दृढ़ायो कानड़ा महला पंजवा तन ओ प्रीत चरण संग लागी कोट जाप ताप सुख पाए आए मिले पूरन बड़ पागी रहाओ मोहे अनाथ दास जन तेरा अवर ओट सगली मोहे त्यागी कोर परम काटे प्रभ सिमरत ज्ञान अंजन मिल सोवत जागी तू अथाओ अत बड़ो स्वामी कृपा सिंध पूरन रतनागी नानक जाचक हर हर नाम मांगे मस्तक आन तरयो प्रभ पागी कानड़ा महला पंजवा कुचल कठोर

नारायण नरपत नमस्कार है। ऐसे गुरु को बल बल जाइए, आप मुक्त मोहितार है रहाओ। कवन कवन कवन गुण कहिए, अंत नहीं कछ पार है। लाख लाख लाख कहीं कोरे, को है ऐसो विचार है। विषम विषम विषम ही भई है, लाल गुलाल रंगार है। कहो नानक संतन रस आई है।

ऊंच नीच सब पेक समानो मुख बकनो मन मान रहाओ कट कट पूर रहे सुख सागर पै पंजन मेरे प्राण मने प्रगास पयो प्रमनास्यो मंत्र दियो गुरकान करत रहे कर्तज्ञ करुणा में अंतर जामी ज्ञान आठ पहर नान

कहु नानक जन हर हर हर है, कत आवे कत रमतै, कानड़ा महला पंजवा, हिये को प्रीतम बिसर न जाए, तन मन गलत भय ते संगे, मोनी मोहे रही मोरी माए रहाओ, जय जय पै कहो बिरसा हो अपनी, तेऊ तेऊ गहे रहे अटकाए, अनिक पाप की एक है जाली, ताकि गंठ नहीं छोराए, फिरत फिरत नानक दास आयो, संतन ही सरनाए, काटे अज्ञान परम मोह माया, लियो कंठ लगाए, कानड़ा महला पंजवा, आनंद रंग विनोद हमारे, नामो गावन नाम त्यावन, नाम हमारे प्राण आधार है रहाओ, नामो ज्ञान नाम इसनाना, हर नाम हमारे कार्य सवारे, हर नामो शोभा नाम बढ़ाई, पौजल विषम नाम हर तारे, अगम पदार्थ लाल अमोला, पयो प्राप्त गुर चरनारे, कहो नानक प्रभ पय कृपाला, मगन पय ही रे दरसारे, कानड़ा महला पंजवा, साजन मीत स्वामी नेरो, देखत सुनत सबन कै संगे, होरे काज बुरो कै फेरो, रहाओ, नाम बिना जे तो लपतायो, कछु नहीं नाही कत्तेरो, आगे दृष्ट आवत सब प्रगट, इहा मोयो परम अंधेरो, अटकियो सुत बनता संग माया, देवन हार दतार बिसेरो।

पयो परगास अनद उजियारा तय समाद समायो कौन कहे तुम ते कछ नाही तुम समरथ अथायो कृपा निधान रंग रूप रस नाम नानक ले लायो कानड़ा महला पंजवा बूढ़त प्राणी हर जपती।

संत प्रसाद हर के गुण गाया, गुर पेटत नानक सुख पाया, कानड़ा महला पंजवा, सिमरत नाम मने सुख पाये, साध जना मिल हर जस गाये।

अंधकोर सागर नहीं मरसन। कानड़ा महला पंजवा कोकत कपट खपट खल गरजत मरजत मीच अनक बरिया रहाओ। अहंग मत अनरत पुमित हित प्रीतम देखत परमत लाख गरिया। अनित व्यवहार आचार विधहीनत मम मद मात कोप जरिया। करुण कृपाल गोपाल दीन बंद नानक उदर शरण परिया। कानड़ा महला पंजवा जी प्राण मान दाता हर बिसरते ही आन रहाओ। गोविंद त्याग आन लागे अमृतो डार पूम पागे। बिखे रस्यों आस्कत मूड़े काहे सुखमान। काम क्रोध लोभ व्याप्यो जन्म ही की खान। पतित पावन सरण आयो उदर नानक जान। कानड़ा महला पंजवा अविलोको राम को मुखार बिंद। खोजत खोजत रतन पायो बिसरी सब चिंद रहाओ। चरण कमल हृदय तार उतरिया दुख मंद। राज तन परवार मेरे सर्व सो गोविंद। साध संगम लाभ पायो नानक फिर ना मरंद। कानड़ा महला पंजवा कर पंजवा इको अंकार।

था पूजा जे हर पावास। माटी की ए पुत्री जोरी क्या ए कर्म कमास। प्रभ बा पकड़ जिस मार्ग पावो सो तुद जंत मिलास। अवर ओट में कोई न सूजे इक हर की ओट में आस। क्या दीन करे अरदास जो सब कट प्रभु ने।

जगत उदाहरण नाम पह तेरे, नवनिद नाम निदान हर केरे, हर रंग रंग रंग अनुपेरे, काहे रे मन मोहे मगनेरे, नैनो देख साध दर तेरे, सो पावे जिस लिखत लिले रे, रहाओ सेवो साध संत चरनेरे, बाँचो तूर पवित्र करे रे, अरसत मज्जन मैल कटे रे, साफ साफ त्यावो मुख नहीं मोरे, किछ संग न चाले।

बर नशा को एक तुलेरे दर्शन प्यास बहुत मन मेरे मिल नानक देव जगत गुर के रे। कानड़ा महला पंजवा ऐसी कौन विदे दर्शन।

मान मोह त्याग छोड़ो तौ नानक हर जियो पेटना। कानड़ा महला पंजवा रंगा रंग रंगन के रंगा कीट हस्त पूरन सब संगा। रहाओ बरत नेम तीरथ सैत गंगा जल हेवत पूख अर नंगा पूजा चार करत मेलंगा चकर करम तिलक खाटंगा दर्शन पेटे बिन सतसंगा हठ निगरै अत रहत बिटंगा हौ रोग व्यापै चुके न पंगा काम क्रोध अत कृष्ण जरंगा।

तुम्हारे बलबले बलबले बल गई। पहले पे संत पाए त्याए त्याए प्रीत लाए, प्रभ थान तेरो केहरो जित जंतन कर विचार। अनिक दास कीरत करें तुम्हारी, सोई मिलियो जो पाव तो जन नानक ठाकुर।

रहाओ। कटन खटन जटन होमन नाही दंड तार सुआओ। जतन पांतन तपन प्रमन अनिक कथन कत्ते नहीं था पाई थाओ। सोध सगर सोधना।

जो संत वेद कहत पंथ गाखरो मोह मगन अहंकार राव जो राते माते संग बपरी माया मोह संताप नाम जपत सौ जन उदरे जिसे उदारो आप बिनस जाए।

अनमोही पंच दोही उर्ज निकट बत्यो ताकि शरण साधुआ दूत संग निवार रहाओ। कोट जन्म जोन प्रम्यो हार पर्यो द्वार कृपा गोविंद पई मिल्यो।

सहज सुभाए आपने आए, कछु ना जानो कछु दिखाए, प्रभ मिलियो सुख बाले पोले रहाओ, संजोग मिलाए साध संगाए, कथु ना जाए करें बसाए, बुन निधान प्रगट्यो ए चोले, चरण लुभाए आन सजाए, थान सनाए सर्व समाए, रसक रसक नानक गुण बोले।

पायो अनेक उकत चतुराई जतन जतन अनेक उपावरे तो मिलियो जो कृपाई प्रभु दयार कृपार कृपा निद जन नानक संत रे नाई कानड़ा महला पंजवा माई सिमरत राम राम राम।

मृत मृत निकट निकट सदा है। हर हरे हरे पाज कहत नानक सुनो रे मूड़, बिन भजन भजन भजन अहला जन्म गई। कानड़ा अष्टपदिया।

अज्ञान लाए सवालिया, गुर ज्ञान लाए जगावे गो, नानक पाणे अपने ज्यो पावे तिवे चलावे गो। कानड़ा महला चौथा, जप मन हर हर नाम तरावे गो, जो जो जपे

मिल सतगुरु नाम से आवै गो। जन्म जन्म की हो मैं मल लागी, मिल संगत मल लह जावै गो। ज्यों लोहा तरयो संग कास्ट लग, शब्द गुरु हर पावै गो। संगत संत मिलो सत्संगत, मिल संगत हर रस आवै गो। बिन संगत कर्म करे अभिमानी, कड पानी चीकड़ पावै गो। भगत जना के हर रखवारे, जन हर रस मीठ लगावै गो। खिन खिन नाम दे वडियाई, सतगुरु उपदेश समावै गो। भगत जना को

ब्रह्म कमल पुत मीन ब्यासा तप तापन पूज करावे गो जो जो भगत होए सो पूजो परमन परम चुकावे गो जात न जात देख मत परमो सुख जनक पगी।

सतगुरु बचन बचन है सतगुर फादर मुक्त जनावे गो शासन सास सास बल पाई है ने शासन नाम से आवे गो गुर प्रसादी हो मैं बूझे तो गुरमत नाम समावे गो सतगुरु।

मन गुरमत चाल चलावे गो ज्यो मैं गल मस्त दी जय तल कुंडे गुर अंकस शब्द दृढ़ावे गो रहाओ चल तो चले चले दह दह दिस गुर राखे हर

सतगुर महापुरख है पारस, जो लागै सो फल पावै गो। ज्यो गुरु उपदेश तरे प्रहलादा, गुर सेवक पैज रखावै गो। सतगुर बचन बचन है नीको, गुर बचनी अमृत पावै गो। ज्यो अमरीत अमरा पद पाए, सतगुर मुख बचन त्यावै गो। सतगुर सरन सरन मन

हर हर हर हर हर सर सेवे तीन दरगे मान दिवावे गो गुरमत गुरमत गुरमत त्यावे हर गल मिल मेल मिलावे गो गुरमुख नाद वेद है गुरमुख गुर परचय नाम दियावे गो हर हर रूप हर रूपो होवे हर जन को पूज करावे गो साकत नर सतगुरु।

बिनवंत नानक शरण स्वामी, बड़ भाग दर्शन पाए मिल साधु नित पजै नारायण, रसक रसक स्वामी गुण गायन, गुण गाए जीवे हर अम्यो पीवे, जन्म मरना पा गए सतसंग पाये हर से आये, बहुर दुख ना ला गए कर दया दाते पुरख विदाते, संत सेव कमायन बिनवंत नानक जन पूर बांचे, हर दर्श सहज समायन सगले जंत पजो गोपाल, जप तप संजम पूरन घाले, नित पजो स्वामी।

जप ताप संजम हर हर निरंजन गोविंद तन संग चाले बिनवंत नानक कर दया दीजै हर रतन बांधो पाले मंगल चार चोज आनंदा कर कृपा मिले।

गोविंद गोविंद गुरमत ध्याय सादर गै पाये मान। गोविंद गोविंद गोविंद जप मुख उजला प्रधान। नानक गुरु गोविंद हर जित मिल हर पाया ना।

सतसंगत सतगुरु तन तनो तन तन तनो जित मिल हर गुण बुलोगिया सब कहो मुखो हर हर हरे हर हर हरे हर बोलत सब पाप लोगिया। श्लोक महला चौथा। हर हर हर हर नाम है गुरमुख पावे कोय हों मैं ममता नाप होए दुर्मत कड्डे धोए नानक अंदिन गुण उचरे जिनको तुर लिखिया होए। महला चौथा। हर आपे आप दयाल हर आपे करे सो होए हर आपे आप वरसदा हर जेवड अवरना कोए जो हर प्रभ पावे सो थिए जो हर प्रभ करे सो होए कीमत किने न पाया बेअंत प्रभु हर सोए नानक गुरमुख हर साल आया तन मन शीतल होए पौड़ी। सब जोत तेरी जग जीवना तू कट कट हर रंग रंगना सब त्यावे तुद मेरे प्रीतमा तू सत सत पुरख निरंजना एक दाता सब जगत पिखारिया हर जाते सब मंग मंगना सेवक ठाकर सब तू है गुरमती हर चंग चंगना सब कहो मुखो रिखी केस हरे जित पावे सब फल फलना। श्लोक महला चौथा। हर हर नाम से आए मन हर दरगे पावे मान जो इच्छे सो फल पाए सी गुर सब दी लगे ध्यान किल विख पाप सब कटी हैं हों मैं चुके गुमान गुरमुख कमल विगसिया सब आत्म ब्रह्म पछान हर हर कृपा तार प्रभ जन नानक जप हर नाम। महला चौथा। हर हर नाम पवित्र है नाम जपत दुख

0: पौड़ी।
1: तू थाम सनंतर परपूर है करते सब तेरी बनत बनावणी, रंग परंग सिद्ध सब साजी, बो बो विद पांच उपावणी।

गुर मेले मुख गुरमुख हर समझावनी सब बोलो राम रमो श्री राम रमो जित दालद दुख पुख सब ले जावनी। श्लोक महला चौथा हर हर अमृत नाम रस हर अमृत हर उर्धार विच संगत हर प्रभु वर्तदा बुज्जो शब्द विचार। मन हर हर नाम से आया दिखौ मैं कड्डी मार जिन हर हर नाम न चेतियो तिन जुए जन्म सबहार। गुर तुफे हर चेताया हर नामा हर उर्धार जन नानक के मुख उजले तिथ दरबार। महला चौथा हर कीरत उत्तम नाम है विच कल जुग करनी सार मत गुरमत कीरत पाई है हर नामा हर उरहार। वड पागी जिन हर त्याया तिन सौंपया हर पंडार बिन नावे जे कर्म कमावणे नित हो मैं होए खुआर। जल हस्ती मलना वाली है फिर भी फिर पावे चार हर मेलो सतगुरु दया कर मन वसे एक अंकार जिन गुरमुख सुन हर

गुरुमति हर निरंकारा, सब चवो मुखो जगन्नाथ, जगन्नाथ जग जीवनो जित पव जल पार उतारा। श्लोक महला चौथा, हमरी जेबा एक प्रभ, हर के गुण अगम अथाहा, हम क्यों कर जपे ए आणिया, हर तुम बड अगम अगाहा। हर देहो प्रभु मत ऊतमा, गुर सत गुर के पग पाहा, सत संगत हर मेर

पंचे शब्द वजे मत गुरमत बड पागी अनहद वजिया अनद मूल राम सब देखिया गुर शब्दी गोविंद गजिया आद जुगाद वेश हर एको मत गुरमत हर प्रभ पजिया हर देवो दान दयाल प्रभ जन राखो हर प्रभ लज्जिया सब तन कहो गुर सतगुरु गुर सतगुरु जित मिल हर पड़दा कज्जिया। श्लोक महला चौथा भगत सरोवर उछले सुबर भरे वहन जिना सतगुरु मन्या जन नानक वड पाग लहन। महला चौथा हर हर नाम असंख हर हर के गुण कथन न जाहे हर हर अगम अगाध हर जन कित विद मिले मिलाहे हर हर जस जपत जपंत जन एक तिल नहीं कीमत पाए जन नानक हर अगम प्रभ हर मेल लहो लड़ लाए। पौड़ी हर अगम अगोचर अगम हर क्यों कर हर दर्शन पिखा किस वखर होए सो वरनी है किस रूप ना रिखा जिस बुझाए आप बुझाए दे सोई जन दिखा सत संगत सत गुर चटसाल है जिस हर गुण सिखा तन तन सो रसना तन कर तन सो पांदा सतगुरु जित मिल हर लेखा लिखा। श्लोक मैला चौथा हर हर नाम अमृत है हर जपिए सतगुरु भाए हर हर नाम पवित्र है हर जपत सुनत दुख जाए हर नाम तिन्नी आराध्या जिन मस्तक लिखिया तुर पाए हर दरगे जन पैनायन जिन हर मन वस्याए जन नानक ते मुख उजले जिन हर सुनिया मन भाए। महला चौथा हर हर नाम निदान है गुरमुख पाया जाए जिन तुर मस्तक लिखिया तिन सतगुर मिलिया आए तन मन शीतल होया सांत वसी मन आए नानक हर हर चौंदिया सब दालद दुख ले जाए। पौड़ी हों वारिया तिनको सदा सदा जिना सतगुर मेरा प्यारा देखिया तिनको मिलिया मेरा सतगुरु जिनको तुर मस्तक लेखिया हर अगम दियाया गुरमती तिस रूप नहीं प्रभ रेखिया गुर बचन से आया जिना अगम हर ते ठाकुर सेवक रल एकिया सब कहो मुखो नर नर हरे नर नर हरे नर नर हरे हर लाहा हर भगत विशेखिया। श्लोक महला चौथा राम नाम रम रव रहे रम रामो राम रमीत कट कट आत्म राम है प्रभ खेल कियो रंग रीत हर निकट वसे जग जीवना परगास कियो गुरमीत हर स्वामी हर प्रभ तिन मिले जिन लिखिया तुर हर प्रीत जन नानक नाम ते आया गुर बचन जपियो मन चीत। महला चौथा हर प्रभ सज्जन लोड़ लो पाग वसे वड पाग गुर पूरे देखा लिया नानक हर लिव लाग। पौड़ी तन तन सुहावी सफल करी जित हर सेवा।

मेरा हर प्रव सुगड सुजाने, हर मेल दिखाए आप हर, गुरबचनी नाम समाने, तिन विट्टो नानक वारिया, जो जप दे हर निर्वाणी, श्लोक महला चौथा, हर प्रभ रत्ते लोयना, ज्ञान अंजन गुरुदे, मैं प्रभ सज्जन पाया, जन नानक सहज मिले।

सब जाए। नानक नामे रतिया नामो पल्ले पाए पौड़ी। तुद आपे जगत उपाय कै तुद आपे वसगत कीता। एक मनमुख कर हारायन एक नामेल गुरु तिना जीता। हर उत्तम हर

वो मोहनो मन मोहनो जग मोहनो जिन जगत उपाय सब वस कीता। श्लोक महला चौथा। मन अंतर हो मैं रोग है परम फूले मन मुख दुर्जना नानक रोग बजाए।

कट कट अंतर रव रहा जप्यो जन कोई सगल जपो गोपाल गुण प्रगट सब लोई। श्लोक महला चौथा गुरुमुख मिले से सज्जना हर प्रभ पाया रंग जन नानक नाम सलाए तू लुड लुड दर गए।

जन को कृपा करो मधुसूदन। हर देवो नाम जपाया मैं मूरख अंधले नाम टेक है। जन नानक गुरुमुख पाया कल्याण महला चौथा। हर जन गुण गावत हसिया हर हर भगत बनी मत गुरमत। तुर मस्तक प्रभ लिखिया रहा गुर के पग सिमरो दिन राती। मन हर हर हर बसिया हर हर हर कीरत जग सारी। सस चंदन जस तसिया हर जन हर हर हर लिव लाई। सब साकत खोज पया ज्यो किरत संजोग चलियो। नर निंदक पग नागन छो जलिया जन के तुम हर राखे स्वामी। तुम जुग जुग जन रखिया कहां भया दैत करी बखीली। सब कर कर चर परिया जे तेजी जंत प्रभ किए। सब काले मुख ग्रसिया हर जन हर हर हर प्रभ राखे। जन नानक शरण पया कल्याण महला चौथा। मेरे मन जप जप जगन्नाथे गुरु उपदेश हर नाम ते आयो। सब किल बिख दो

कोई मार्ग पंथ बतावे प्रभु का, कहो तिन को क्या दिन थे, सब तन मन अर्पो अर्प आरापो, कोई मिले प्रभु मिलते, हर के गुण बहुत बहुत बहुत शोभा, हम कुछ कर कर बरनते, हमरी मत वसगत प्रभु सुमरे, जन नानक के प्रभु समरथे, कल्याण महला चौथा, मेरे मन जप हर गुण अतत सुन थई, धर्म अर्थ सब काम मोख है, जन पीछे लग फिर थई रहाओ, सो हर हर नाम से आवे हर जन, जिस बद भाग मथई, जह दरगे प्रभ लेखा मांगे, तह छुटे नाम से आए थई, हमरे दोख बहुत जन्म जन्म के, दुखों में मैल लग थई, गुरतार कृपा हर जल ना वाए, सब किल बिख पाप गथई, जन के रिद अंतर प्रभ स्वामी, जन हर हर नाम पज थई, जह अंति अवसर आए बनत है, तेरा के नाम साथई, जन तेरा जप गावे हर हर, प्रभ हर जपियो जगन्नाथ थई, जन नानक के प्रभ राखे स्वामी, हम पात्र रख बुढ़ थई, कल्याण महला चौथा, हमरी चितवनी हर प्रभ जाने, और कोई निंद करे हर जन की।

हर सेवा से काल जोए न साके, चरनी आए पवे हर जाने। जाको राख ले मेरा स्वामी, ताको सुमत दे पहकाने। ताको कोई अपर न साके, जाकी भगत मेरा प्रभु माने। हर के चोज विडान देख जन, जो खोटा खरा इक निमख पछाने। ताते जन को अनंद भया है, रिद सुध मिले खोटे पछताने। तुम्हार दासे समरथ स्वामी, इक मांगो तुझ पासो हर दाने। जन नानक को हर कृपा कर दीजे, सद बसे हृदय मोहे हर चराने। कल्याण महला चौथा, प्रभ की जय कृपा निधान। हम हर गुण गावेंगे, हौ तुमरी करो नित आस प्रभ। मुहे कब गल लावेंगे रहाओ, हम बारिक मुग्ध ज्ञान पिता समझावेंगे। सुत खिन खिन फूल बिगार जगत।

जगदीशर चरण शरण जो आए तेजन पवनित पार परे भगत जना की तेज हर रास है जन नानक आप हर के।

जाचिक नाम जाचे जाचे सर्वतार सर्व के नायक सुख समूह के दाते रहाओ खेती खेती मांगर मांगे पावनिया सो पाये सफल सफल सफल दर्शरे परस परस गुण गाये नानक तत् तत् सो मिलिये हीरे हीर विदाई।

सिद्ध मुन इंद्रा भगत दान जस मंगी जोग ज्ञान ध्यान सेख ना गए सगल जपे तरंगी कहो नानक संतन बलिहार है जो प्रभु के सत्संगी कल्याण महला।

मन रसक रसन नाम जपत तै पाप खंडली जोग जुगत ज्ञान पुगत सुरत शब्द तत देते जप तप अखंडली ओत पोत मिल जोत नानक कछु दुख ना डंडली कल्याण महला पंजवा कौन विद ताकी कहा करो तर्क ज्ञान शस्त्र गया अजर पद कैसे।

सुरत मत चतुराई शोभा रूप रंग तन मान सर्व सुख आनंद नानक जप राम नाम कल्याण कल्याण महला पंजवा हर चरण सरन कल्याण।

मुक्त जुगत अनेक सुख हर भगत लवे ना लावनो प्रभ दर्श लुभत दास नानक बहुड़ जोन ना तावनो कल्याण महला चौथा अष्टपदियां इको अंकार सतगुर प्रसाद रामा राम रामो सुन मन पीजे हर हर नाम अमृत रस मीठा गुरमत सहजे पी जय रहाओ कास्त में ज्यो है बैसंतर मत संजम काड कटी जय राम नाम है जोत सबाई सत

जन हर भगवान दिखी जाए, साकत सूत बहु गुरजी भरिया, क्यों कर तान तनी जाए, संत सूत किस मिकते नाही, साकत संग ना की जाए, सतगुर साध संगत है नीकी, मिल संगत राम रवि जाए, अंतर रतन जवे हर मानक, गुर कृपा ते ली जाए, मेरा ठाकुर वड़ा वड़ा है।

राम नाम अनुग्रह बो किया गुरु साधु पुरख मिली जय गुण राम नाम विस्थिरन किए हर सगल पवन जस जी जय साधु साध साध मन प्रीतम बिन देखे रह ना सकी जय जो जल मीन जलन जल प्रीत है खिन जल बिन फूट मरी जय माँ अपाग अपाग है जिनके तिन साधु तूर न पी जाए तिना तिसना जलत जलत नहीं बूझे दंड धर्म राय का दी जाए सब तीर्थ बरत जग पुन किए हिवे गाल गाल तन छीजे अतुल्ला तोल राम नाम है गुरमत को पूजे ना तोल तुली जाए तब गुण ब्रह्म ब्रह्म तू

मन तन अर्थ करो सब आ गए रस गुरमत ज्ञान दृढ़ी जय रहा ब्रह्म नाम गुण साफ करोवर नित चुन चुन पूज करी जय आत्म दियो दियो है आत्म रस लागे।

नाम बिना नचते नर देखो तिन पस पस नाच वडी जाय साकत नर अंकारी कही है बिन नावे त्रिग जीवी जाय जब लग सांस सांस मन अंतर तप बेगल शरण करी जाय नानक कृपा कृपा कर धारो मैं साधु चरण पखी जाय कल्याण महला चौथा रामा मैं साधु चरण धुवी जाय किल विख दहन होए खिन अंतर मेरे ठाकुर कृपा की जय रहाओ मंगत जन दीन करे दर ठाडे हत परसन को दान दी जय त्राहे त्राहे शरण प्रव्याए मोको गुरमत नाम दृढ़ी जय काम क्रोध नगर में सबला नित उठ उठ जूझ करी जय अंगीकार करो रख ले वो गुर पूरा कार्ड कटी जय अंतर अगन

जो सूरज किरण रविया सर्ब ठाई, सब कट कट राम रवि जय। साधु साध मिले रस पावे, तप निज पर बैठिया पी जय। जन को प्रीत लगी गुर सेती, जो चकवी देख सुरी जय। निरखत निरखत रैन सब निरखी, मुख का दे अमृत पी जय।

साधु साध शरण मिल संगत जित हरो अस्पाड कभी जाए पर उपकार बोले बहु गुनिया मुख संत भगत हर।

जेवड भाग होए अपनी का ता गुरमत नाम दृढ़ी जय सब माया मोह बिकम जगतरिये सहजे हर रस पी जय माया माया के जो अधिकारी विच माया पचै पची जय अज्ञान अंधेर महापंथ बिखड़ा अहंकार पार लग ली जय नानक राम रम रम रम रम रामे ते गप की जय सतगुर मिले ता नाम दृढ़ाए राम नामे रले मिली जय छक्का पहला।

अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद राज प्रवासी विपास महला पहला चौक दे कर पहला नाए तेरे तरना नाए पत पूज नाओ तेरा गहना मत मकसूद नाए तेरे नाओ मन्ने सब कोए बिन नामे पत कब हो न होए अवर सियाणत सगली पाज जय बख्शे तै पूरा।

करवाती महला पहला। जासे रूप नाही जात नाही नाही मुख मासा, सतगुर मिले निरंजन पाया तेरे नाम है निवासा। औदू सहजे तत विचार जाते फिर ना आवो सहसार रहाओ। जाके कर्म नाही धर्म नाही नाही सुतमाला, शिव ज्योत कन्नो बुद्ध पाई सतगुरु रखवाला। जाके बर्त नाही नेम नाही नाही बकबाई, गत अवगत की चिंत नाही सतगुरु फुरमाई। जाके आस नाही निराश नाही चित सुरत समझाई, संत को परम संत मिलिया नानका बुद्ध पाई। प्रभाती महला पहला। तांका तया दर परवान दिख अमृत दोए समतर जान, क्या कही है सर्वे रहा समाए जो किछ वर्त।

सो जन जान साची दरगे पावे मान कहना सुनना अकथ कर जाए कफनी बदनी नानक जल जाए प्रवासी महला पहला अमृत नीर ज्ञान मन मज्जन अष्ट तीरथ संग गहे गुरु उपदेश जवाहर मानक सेवे सिख सो खोज लह गुरु समान तीरथ नहीं कोए सर संतोख तास गुरु होए रहाओ गुर दरियाओ सदा जल निर्मल मिलिया दुर्मत मैल हरे सतगुरु पाए पूरा नावन पशु करे तो देव करे रत्ता सच नाम तल ही अल सो गुर परमल कही है जाकी वास बनास पत सौरे पास चरण लिव रही है गुरमुख जी प्राण उपजे गुरमुख शिव कर जाइए गुरमुख नानक सच समाइए गुरमुख निज पद पाइए प्रभासी महला पहला गुर प्रसादी विद्या विचारे पर पर पावे मान आपा मध्य आप प्रगासिया पाया अमृत नाम करता तू मेरा जजमान एक दखना हो तै तै मांगो देहे अपना नाम रहाओ पंच तस्कर कामत राखे चूका मन अभिमान दिष्ट विकारी दुर्मत भागी ऐसा ब्रह्म ज्ञान जत सत चावल दया कनक कर प्राप्त पाती धान दूध कर्म संतोष कियो कर ऐसा मांगो दान खिमा तीरज कर गौ लवेरी सहजे बछरा खीर पिए सिफत कर्म का कपड़ा मांगो हर गुण नानक रवत रहे प्रभाती महला पहला आवत किने आवाखिया जावत क्यों राखिया जाए जिस ते हुआ सोई पर जाने

प्रवाण ताको समझावन जाइए जे को भूला होई। आते खेल करे सब करता ऐसा बूझे कोई, नाव पर भाते सब त्याइए छोड़ो दुनी परीता। प्रणवत नानक दासन दासा जग हारिया तिन जीता, परवाती महला पहला मन माया मन ताया मन पंखी आकाश तस्कर शब्द निवारिया मगर उठा साबास। जा तू राखे रास ले साबत हो वैरास, ऐसा नाम रतन निध मेरे गुरमत देह लगो पग तेरे रहाओ। मन जोगी मन भोगिया मन मूर्ख गावार, मन दाता मन मंगता मन सिर गुर करतार। पंच मार सुख पाया ऐसा ब्रह्म विचार, कट कट एक वखाणी है कहो न देखिया जाए। फोटो पूठो रालिए बिन नावे पच जाए, जा तू मेले ता मिल रहा जा तेरी होए रजाए। जात जन्म ने पूछिए सब कर ले हो बताए, सा जात सा पत है ये कर्म कमाए। जन्म मरण दुख काटिए नानक छूट सुनाए, प्रभाती महला पहला जागत बिगसे मूठो अंधा, गलफाही सिर मारे तंदा। आशा आवे मनसा जाए पुरजी ताणी किछ ना बसाए, जागस जीवन जागन हारा सुख सागर अमृत भंडारा रहाओ। कहो न बूझे अंग न सूझे ओंडी कार कमाई, आपे प्रीत प्रेम परमेश्वर

गीत प्रभाती महला पहला गीत नाद हर्ष चतुराई रह सुरंग सुरमाइस पाई पैन खां चीत न पाई सात सहज सुख नाम वसाई क्या जाना क्या करे करावे नाम बिना तन किसना सुखावे रहा जोग विनोद स्वाद आनंदा मत सत पाए भगत गोविंदा कीरत करम कार निज संदा अंतर रव तो राज रविंदा।

कुमारी त्रिपुट तरंग तत विचारी अकथो कथो क्या मैं जोर भगत करी कराहे मोर हम सर्वस चूके मैं मोर किस से भी दूजा नहीं होर गुर का शब्द महारस मीठा ऐसा अमृत अंतर दीठा जिन चाख्या पूरा पद होए नानक प्राप्यो तन सुख होए परवाती महला पहला अंतर देख शब्द मन मानिया और न रंजन हारा एनस जिया देख संभाले किस ही की सरकारा मेरा प्रभु रांग कणो अत रूड़ो दीन दयाल प्रीतम मनमोहन अत रस लाल सगूड़ो रहाओ ऊपर कूप गगन तनिहारी अमृत पीवन हारा जिसकी रचना सो विधि जाने गुरमुख ज्ञान विचारा पसरी किरण रस कमल विगासे सस्कर सूर समाया काल बिंदु से मन सामन मारी गुर प्रसाद प्रभु पाया अति रस रंग चलू ले राती दूजा रंग ना कोई नानक रसम रसाए राते रब रहया प्रभु सोई परवाती महला पहला बारे में रावल खप जावे चहो छह में सन्यासी योगी का पड़िया सिर खूथे बिन शब्द गल फासी शब्द रते पूरे बैरागी औ हथ हस्त में पीछिया।

दुख पाए, शब्द मिले से सूचाचारी, साची दरगह माने, हम दिन नाम रतन लिव लागे, जुग जुग साथ समाने, सगले कर्म कर्म सुख संजम, जप तप तीरथ शब्द वसे, नानक सतगुरु मिले मिलाया, दुख पराचित काल नसे, करवाती महला पहला, संता की रेण साध जन संगत, हर की रत कर तारी, कहां करे बपुरा जन बरते, गुरमुख हृदय मुरारी, जल जाओ जीवन नाम बिना, हर जप जाप जपो जप माली, गुरमुख आवे साध मना, रहाओ, गुर उपदेश साथ सुख जाको, क्या तिस उपमा कही है, लाल जवेहर रत्न पदार्थ खोजत गुरमुख लही है, चीने ज्ञान त्यान तम साचो, एक शब्द लिवलाव है, निरालंब निरहार नह केवल, निरपौता लीलाव है, सायर सपत करे जल निर्मल, उल्टी नाम चढ़ावे, बाहर जा तो ठाक रहावे, गुरमुख से समावे, सो गिरही सो दास उदासी, जिन गुरमुख आप पछानिया, नानक कहे अवर नहीं दूजा, साथ शब्द मन मानिया, राग करवाती महला तीजा, चौपदे इको अंकार, सतगुर प्रसाद, गुरमुख विरला कोई बूझे, सब दे रहा समाई, नाम रते सदा सुख पावे, साथ रहे लिवलाई, हर हर नाम जपो जन भाई, गुर प्रसाद मन अस्थिर होवे, हम दिन हर रस रहा अघाई रहा, हम दिन पवित्र करो दिन राती, इस युग का लोहा भाई, सदा जन निर्मल मैल न लागे, सच नाम चित लाई, सुख सिगार सतगुरु दिखाया, नाम वड्डी वड्याई, अकुट पंडार करे कदे तोट ना आवे, सदा हर सेवो भाई, आपे करता जिसनो देवे, तिस वसे मन आई, नानक नाम ते आए सदा तू, सतगुर दिया दिखाई, करवाती महला तीजा, निर्गुण यारे को बस ले स्वामी, आपे ले हो मिलाई, तू बेअंत तेरा अंत ना पाया, सब दे देहो बुझाई, हर जियो तुद विट्टो बल जाई, तन मन अर्पी तुद आगे राखो, सदा रहा शरणाई रहाओ, अपने पाने विच सदा रख स्वामी, हर नामो दे वड्याई, पूरे गुरते पाना जापे, हम दिन सहज समाई, तेरे पाने पगत जे तुद भावे, आपे बख्श मिलाई, तेरे पाने सदा सुख पाया, गुर कृष्णा अग्न बुझाई, जो तू करे सो होवे करते, अवर न करना जाई, नानक नावे जेवड अवर न दाता, पूरे गुर ते पाई, करवाती महला तीजा, गुरमुख हर साल आया जिन्ना, तीन साल आए हर जाता, विच्चों परम गया है दूजा, गुर कै शब्द पछाता, हर जियो तू मेरा इक सोई, तुद जपी तुद ऐसा लाही, गत मत तुझते होई, रहाओ, गुरमुख सालान से साध पाएन,

ना सो हुआ न होग। हर जियो सना तेरी सरनाई, ज्यो पावे त्यो राखो मेरे स्वामी, ए तेरी वड्याई रहाओ। जो तेरी सरनाई हर जियो, तिनकी करे कृपाल, आप कृपा कर राखो हर जियो, कोई ना सके जमकाल। तेरी सरनाई सच्ची हर जियो, ना हो कटे न जाए, जो हर छोर दूजे पाए लागे, ओ जम्मे ते मर जाए। जो तेरी सरनाई हर जियो, तिना दुख पूख किछ नाए, नानक नाम सलाए सदा तू, सच्चे शब्द समाए। प्रभाती महला तीजा, गुरमुख हर जियो सदा ते आओ, जब लग जी प्राण। गुर शब्दी मन निर्मल होआ, चूका मन अभिमान। सफल जन्म तिस प्राणी केरा, हर के नाम समान। मेरे मन गुर की सिख सुनी जाए, हर का नाम सदा सुखदाता।

होई। गुर के शब्द कमल पर गासिया हों मैं दुर्मत खोई। सब नाम एक को सच वरते विरला बूझे कोई। गुरमति मन निर्मल होआ अमृत तत्व खाने हर का नाम सदा मन वसिया। विच मन ही मन माने सद बलिहारी गुर अपनी विचो जित आत्म राम पछाने। मानस जन्म सतगुरु न सेविया बिरथा जन्म गवाया। नजर करे ता सतगुरु मेले सहजे सहज समाया। नानक नाम मिले वडियाई पूरे भाग से आया। प्रभाती महला तीजा आपे पांत बनाए बहुरंगी। शिष्ट उपाय प्रभ खेल किया कर कर वेखे करे कराए। सर्व जियानो रिजक दिया कली काल में रव्या राम। कट कट पूर रहा प्रभे को गुरमुख प्रगट हर हर नाम रहा। गुप्ता नाम वर्त विच कल जुग कट कट हर पर पूर रहा। नाम रतन तिना हृदय प्रगटिया जो गुर शरणाई पग पया। इंद्री पंच पंचे वस आने खिमा संतोष गुरमत पावे। सो तन तन हर जनवड पूरा जो कह बैराग हर गुण गावे। गुर ते मोह फेरे जे कोई गुर का कहया ना चित धरे। कर आचार बहु संतोष संचय जो किछ करे सो नरक परे। एक को शब्द एक को प्रभु वर्ते सब एक स्ते उत्पत्त चले। नानक गुरमुख मेल मिलाए गुरमुख हर हर जाए रले। प्रभाती महला तीजा मेरे मन गुर अपना सालाए। पूरा पाग हो गए मुख मस्तक सदा हर के गुण गाहे रहाओ। अमृत नाम भोजन हर दे कोट मदे कोई विरला ले। जिसनो अपनी नजर करे गुर के चरण मन माए वसाए। दुख अनेरा अंदरों जाए आपे फाचा ले मिलाए। गुर की बाणी सो लाए प्यार एथे ओथे एव आधार। आपे देवे सृजनहार सच्चा ननाए अपना भाणा। सोई तगत सुगड़ सो जाना नानक तिसके सब कुर्बाना। प्रभाती महला चौथा विपास एक ओंकार सतगुर प्रसाद। रसक रसक गुण गावे गुरमत लिव उन मन नाम लगान। अमृत रस पिया गुर शब्दी हम नाम विटो कुर्बान। हमरे जग जीवन हर प्राण हर उत्तम रिद अंतर भायो। गुरमंत दियो हर कान रहाओ। आवो संत मिलो मेरे भाई मिल हर हर नाम बखान। कित विद क्यों पाई है प्रभ अपना मोको करो उपदेश हर दान। सत संगत में हर हर वसिया मिल संगत हर गुण जान। वड्डे पाग सत संगत पाई गुर सतगुर परस भगवान। गुण गावे प्रभ अगम ठाकुर के गुण गाए रहे हैरान। जन नानक को गुर कृपा भारी हर नाम दियो खिन दान। प्रभाती महला चौथा उगवे सूर गुरमुख हर बोले सब रैन संभाले हर गाल। हमरे प्रभ हम लोच लगाई हम करें प्रभु हर पाल। मेरा मन साधु तूर गवाल हर हर नाम दृढ़ायो गुरमीठा। गुर पद चारे हम बाल रहाओ। साकत को दिन रैन अंधारी मोय फाते माया जाल। खिन पल हर प्रभ हृदय न वस्यो ऋण बादे बहु विदबाल। सत्संगत मिल मत बुध पाई हों छूटे ममता जाल। हर नामा हर मीठ लगाना गुर की ये शब्द निहाल। हम बारिक गुर अगम गुसाई गुर कर कृपा प्रतपाल।
दिख पौ जल डुब दे काड लियो प्रभ गुरु नानक बाल गोपाल प्रभाती महला चौथा। एक खिन हर प्रभ कृपा धारी गुण गाए रस प्रतीक दावत सुनत बहु कहे मुक्ते जिना गुरमुख खिन हर पीक मेरे मन हर हर राम नाम रसतीक गुरमुख नाम शीतल जल पाया हर हर नाम पिया रस जीक राव जिन हर हृदय प्रीत लगानी तिना मस्तक ऊजल टीक हर जन शोभा सब जग ऊपर ज्यो विच उडवा सस पीक जिन हर हृदय नाम नवस्यो तिन सब कारज फीक जैसे सिगार करे देह मानुक नाम बिना नकटे नकीक कट कट रमैया रमत राम राय सब वर्ते सब मैं एक जन नानक को हर कृपा धारी गुरु बचन ते आयो करी नीक। प्रभाती महला चौथा। अगम दयाल कृपा प्रभधारी मुख हर हर नाम हम कहे पतित पावन हर नाम ध्यायो सब किल बिख पाप लहे जप मन राम नाम रव रहे दीन दयाल दुख पंजन गायो गुरमत नाम सदार्थ लहे रहाओ पाया नगर नगर हर बसयो मत गुरमत हर हर सहे शरीर सरोवर नाम हर प्रगट्यो कर मंदर हर प्रभ लहे जो नर परम परम उद्याने तेसा कुत मूड मुहे जो मृग ना भी बसे बास बसना त्रम त्रम्यो चार गहे तुम वड अगम अगाध बोध प्रभ मत देवो हर प्रभ लहे जन नानक को गुर हाथ सिर करयो हर राम नाम रव रहे। प्रभाती महला चौथा। मन लागी प्रीत राम नाम हर हर जप्यो हर प्रभ वडपा सतगुर बचन सुखाने हीरे हर तारी हर प्रभ कृपा मेरे मन पज राम नाम हर निमखफा हर हर दान दियो गुर पूरे हर नामा मन तन बसा रहाओ काया नगर वस्यो कर मंदर जप शोभा गुरमुख करपफा हलत पलत जन पै सुहेले मुख उजल गुरमुख तरफा अनपौ हर हर हर लिव लागी हर उर्धार्यो गुर निमखफा कोट कोट के दोख सब जन के हर दूर किए इक पलफा तुमरे जन तुम ही ते जाने तब जान्यो जन से मुखा हर हर आप करयो हर जन में जन नानक हर प्रभ इकफा। प्रभाती महला चौथा। गुर सत गुर नाम दृढ़ायो हर हर हम मोए जीवे हर जपबा तन तन गुरु गुर सत गुर पूरा दिख दुख दे बाह दे कडबा जप मन राम नाम अर धाबा उपजंप उपाय ना पाये कतहु गुरपूरे हर प्रभ लाबा रहाओ राम नाम रस राम रसायन रस पिया गुरमत रसदा लो मनूर कंचन मिल संगत हर उर्धार्यो गुर हरवा हों मैं बिख्या नित लोग लुवाने उत कलत मोह लुबा तिन पग संत ना सेवे कबहू ते मन मुख पूंगर परदा तुमरे गुण तुम ही प्रभ जानो हम करे हार तुम शरणवा ज्यो जानो त्यों राखो स्वामी जन नानक दास तुम नवा। सत्ता पहला प्रभाती विपास करताल महला चौथा इको अंकार सतगुरु प्रसाद। जप मन हर हर नाम निधान हर दरगे पावे मान जिन जपिया ते पार प्राण रहाओ सुन मन हर हर नाम कर ध्यान सुन मन हर कीरत अठ अठ न जान
सुन मन गुरुमुख पावे मान, जप मन परमेश्वर प्रधान, चिन खोवे पाप कुटान, मिल नानक हर भगवान। प्रभाती महला पंजवा विपास इको अंकार। सतगुर प्रसाद मन हर किया तन सब साजिया, पंच तत् रच जोत निवाजिया, सेजा तरत बर्तन को पानी, निमख ना विसारो सेवो सारंग पानी। मन सतगुर सेव होए परम गते, हरख सोगते रहे निरारा, का तू पावे प्राण पते रहा। काचड़ पोग रस अनक पुंचाए, मात पिता कुटंग सगल बनाए, रिजक समाहे जल थल मीत, सोहर सेवो नीता नीत। कहां सखाई जय कोई न होवे, कोट अपराध इक छिन में धोवे, बात करे नहीं पछोतावे, एका बक्स फिर बहुर ना बुलावे। किरत संजोगी पाया भाल, साध संगत में बसे गोपाल, गुरमिल आए तुमरे द्वार, जन नानक दर्शन देहो मुरार। करवाती महला तन्यवा, प्रभ की सेवा जन की शोभा, काम क्रोध मिटे तिस लोभा, नाम तेरा जन के पंडार, गुण गावे प्रभ दर्श प्यार। तुमरी पगत प्रभ तुम्हें जनाई, काट जेवरी जन लिए छुड़ाई रहा, जो जन राता प्रभ के रंग, तिन सुख पाया प्रभ के संग, जिस रस लाया सोई जाने, तेक तेक मन में हैराने, सो सुखिया सब ते उत्तम सोए, जा के हृदय वस्या प्रभ सोए, सोई नेचल आवे न जाए, हम दिन प्रभ के हर गुण गाए, ताको करो सगल नमस्कार, जाके मन पूरन निरंकार। कर कृपा मोय ठाकुर देवा, नानक उदरे जन की सेवा। प्रभाती महला पंजवा, गुण गावत मन होए आनंद, हाथ पैर सिमरो भगवंत, जाके सिमरन कलमल जाहे, तिस गुर की हम चरनी पाहे। सुमत देवो संत प्यारे, सिमरो नाम मोहि निस्तारे, राव जिन गुर कहया मार्ग सीधा, सगल त्याग नाम हर गीदा, तिस गुर कै सदा बल जाइए, हर सिमरन जिस गुर ते पाइए। बूढ़त प्राणी जिन गुरे तराया, जिस प्रसाद मोह नहीं माया, हलत पलत जिन गुरे सवारिया, तिस गुर ऊपर सदा हों वारिया। महामुगते किया ज्ञानी, गुर पूरे की अकट तवानी, पार ब्रह्म नानक गुरुदेव, वडे पाग पाये हर सेव। प्रभाती महला पंजवा, सगले दुख मिटे सुख दिए, अपना नाम जपाया, कर कृपा अपनी सेवा लाए, सगला दुर्त मिटाया। हम बारिक शरण प्रभ दयाल, अवगण काट किए प्रभ अपने, राख लिए मेरे गुरु गोपाल। राव पाप पाप बिन से किन भीतर, तय कृपाल गुसाई, सास सास पार गम आरादी, अपने सतगुर के बल जाई। अगम अगोचर बेअंत स्वामी, ताका अंत ना पाये, लाहा खाट होइए तनवंता, अपना प्रभु ध्याइए। आठ पैर पार ब्रह्म त्याई, सदा सदा गुण गाया, कहो नानक मेरे पूरे मनोरथ, पार ब्रह्म गुर पाया। प्रभाती महला पंजवा, सिमरत नाम किल बिक सगना से, सच नाम गुर दीनी रासे, प्रभ की दरगे शोभा वंते, सेवक सेव सदा सोहंते। हर हर नाम जपो मेरे भाई, सगले रोग दोष सब बिनसे,

आए भगत हर सो मन माना, सुन सज्जन संत मीत सुहेले, नाम रतन हर अगै अतोले, सदा सदा प्रभ गुण निध गाइए, कहो नानक वड पागी पाइए।

प्रभाती महला पंजवा। सतगुरु पूरे नाम दिया आनंद मंगल कल्याण सदा सुख कार्य सगला रास्तिया रहा। चरण कमल गुर के मन बूते दुख दर्द प्रभु बिन से चूते नित उठ

गुर पूरा पाइये वडबागी, दर्शन को जाइये पुरबान रहाओ। किलगित में ते शब्द संतोख, नाम आराधन हो आजोग, साध संग हो आ प्रगास, चरण कमल मन माए निवास, जिनकी आकिन लिया राख, प्रभ पूरा अनाथ का नाथ, जिसे निवाजे कृपा धार, पूरन कर्मता के आचार, गुण गावे नित नित नित नवे, लख चौरासी जोन न भवे, इहा उहा चरण पुजारे, मुख उजल साचे दरबारे, जिस मस्तक गुर तरिया हाथ, कोट मदे को विरला दास, जल तल मैयल पेखे परपूर, नानक उदरस तिस जन की दूर, प्रभाती मैला पंजवा, कुर्बान जाई गुर पूरे अपने, जिस प्रसाद हर हर जप जपने।

गुर गुर करत सदा सुख पाया, दीन दयाल पहल तुरपाला, अपना नाम आप जपाया रहाओ। संत संगत मिल पया प्रगास, हर हर जपत पूरन भैयास, सर्व कल्याण सुख मन बूठे, हर गुण गाए गुरु नानक तूठे।

राम राम राम राम जाप, कल कलेश लोभ मोह बिन सुजाए अहंताप। रहाओ आप त्याग संत चरण लाग, मन पवित्र जाहे पाप। नानक बालक कछु न जाने, राखन को प्रभु माई बाप। प्रभाती महला पंजवा, चरण कमल शरण टेक। ऊंच मूच बेअंत ठाकुर, सर्व ऊपर तू ही एक। रहाओ प्राण आधार दुख बिगार, दैनहार बुद्ध विवेक। नमस्कार रखनहार, मन आराध प्रभु मेक। संत ऋण करो मज्जन, नानक पावे सुख अनेक।

सेवा सुरत शब्द विचार, जप तप संयम हो मैं मार, जीवन मुक्त जा शब्द सुनाए, सच्ची रह सच्चा सुख पाए, सुख दाता दुख में तहारा, अवर न सूजस भी जी कारा, तन मन तन हर आगे राख्या, नानक कहे महारस चाख्या, प्रभाती महला पहला, निवली करम पुरंगम पाथी, रेचक पूरक कुंभ करे, बिन सतगुर किछ सोजी नाही, पर में पूला बूढ़ मरे, अंधा परया पर पर कोवे, अंतर की मल कदे ना लहे, नाम बिना फोकट सब कर्मा, ज्यों बाजीगर परम पुले, खट कर्म नाम निरंजन सोई, तू गुण सागर

पयाल जाए क्यों चलिए जे बल रूप पछाने राजा जनमेजा दे मती ब्रज व्यास पराया तिनका जग अठारह काए कीर्तना चले चलाया गणत न गनी हुकम पछाना बोली पाए सुवाए जो किस वरते तुरे सवाही सब तेरी वडियाई गुरमुख अलिपत लेप कदे न लागे सदा रहे शरणाई मनमुख मुगद आगे चेते नाही दुख लागे पछताई आपे करे कराए करता जिन ए रचना रचिए हर अभिमान न जाए जियो अभिमानी पै पचिए फुलन विच किया सब कोई करता आप न

अंतर झूठा क्यों सुठ होए, सब दी तो वह विरला कोए, गुरमुख कोई सच कमावे, आवन जाना था कहावे।

समाए एक सिरकार से सतगुरु दिए मुक्त आना हर पद चीन पहे परगाना मन तन शीतल गुरु बूझ बुझाई प्रभ निवाजे किन कीमत पाई कहो नानक गुरु बूझ बुझाई नाम बिना गत किने न पाई प्रभाती महला पहला एक तुर बख्श ले गुरु पूरे सच्ची बनत बनाई हर रंग राते सदा रंग साचा दुख विसरे पत पाई सूठी गुरमत की चतुराई दिन सत बार ना लागे काई रहाओ मन मुख को दुख दर्द भी आपस मन मुख दुख ना जाई सुख दुख दाता गुरमुख जाता मेल ले शरणाई मन मुख ते अब पगत ना होवस हो मैं पचे दीवाने इव मनु आखिन ऊब प्याली जब लग शब्द ना जाने भूख प्यासा जग पया तिपत नहीं बिन सतगुर पाए सहज सहज मिले सुख पाये दरगे पैदा जाए दरगे दाना बिना एक आपे निर्मल गुर की बाणी आपे सुरता सच विचारस आपे बूझे पद निर्माणी जल तरंग अग्नि पवने फूल।

परख खजा में पाया जात वर्ण से सह अपीता ममता लोभ चुकाया नाम रते तीर्थ से निर्मल दुखों में नैल चुकाया नानक तुम के चरण पखाले

पवित्र पावन सृजन निर्मल हर के नाम समाए, हर मंदिर हरता हाथ है रखिया शब्द सवार। इस विच सौदा एक नाम गुरुमुख लैन सवार, हर मंदिर में मन लोहत है मोया दूजे भाई। पारस पे कंचन भया कीमत कही ना जाए, हर मंदिर में हर वसे सर्व निरंतर सोए। नानक गुरुमुख बन जिए सच्चा सौदा होए, प्रभाती महला की जा कह पाए जागे सृजन जागरण करें। हमें मैल उतार सदा जागे कर।

गुरमुख सहज तुन उपजे, दुखों में विच्चों जाए, हर नामा हर मन वसे, सहजे हर गुण गाए, गुरमति मुख सोने, हर राख्या उर्धार, एते ओते सुख गणा, जप हर हर उतरे पार, हों में विच जागरण ना हो वही, हर पगत ना पवई थाए, मन मुख दर टोई

तै सुहोग विपास प्रभाती मैला पन्यवा अष्टपदियां इको अंकार। सतगुरु प्रसाद मात पिता पाई सुत बनता चूगे चोग आनंद स्यों जुगता उर्ज पर्यो मन मी

अंकर कपट फिरे बेताला, वर्मी मारी साप नमुआ, प्रभु सब कुछ जाने जिन तू किया, कुंवर काप गेरी के बस्तरा, अपदा का मारिया गे के नस्ता, देश छोड़ पर देशे धाया, पंच चंडाल ना ले ले आया, कान पर आए हिराए तू का, कर कर मांगे तृप्तावन ते तू का, बनता छोड़ बद नजर पर नारी, वेश ना पाये महा दुखियारी, बोले ना ही हुए बैठा मोनी, अंतर कल्प पवाई है जोनी, अंते रहता दुख देही सहता, हुकुम ना बूझे व्याप्या ममता, बिन सतगुर किने न पाई परम गते, पूछो सगल वेद सिमरते, मन मुख कर्म करे अजाई, जो बालू कर खौर न ठाई, जिसनो पै गोविंद दयाला, गुर का बचन तिन बांधियो पाला, कोट मदे कोई संत दिखाया, नानक तिन कै संग तराया, जे होवे पाग का दर्शन पाईए, आप तरह सब कुटुंब तराईए, रहाओ दूजा प्रभाती महला पंजवा, सिमरत नाम किलद सब काते, धर्म राय के कागर पाते, साध संगत मिल हर रस पाया, पार ब्रह्म रिद माए समाया, राम रमत हर हर सुख पाया।

जन्म का टूटा गांडा जब तब संयम नाम समा लिया, अपने ठाकुर नगर निहा लिया, मंगल सुख कल्याण तिथाई। जय सेवक गोपाल गुसाई, प्रभु सो प्रसन्न तय गोपाल, जन्म जन्म के मिटे विताल, होम जग उर्द तप पूजा, कोट तीर्थ स्नान करीजा, चरण कमल निमख हृदय धारे, गोविंद जपते सब कार्य।

दूर मात पिता हर प्रीतम मेरा मीठा जन भरवासा तेरा कर गय लीने अपने दास जप जीवे नानक गुणतास विपास प्रभा की बाणी भगत कबीर जी की।

जो जन जान बजे पुरखोत्तम काची अवगत बाणी नामा कह जग जीवन पाया हृदय अलस बिडाणी परवाती आद जुगाद जुगाद जुगो जुग ताका अंत ना जानिया।

प्रभासी अकुल पुरख इक चलत उपाया कट कट अंतर ब्रह्म लुकाया जी की जोत न जाने कोई तैने किया सो मालूम होई राव जो परगा से आमाटी कुंभे हो आप ही करता भी तुल दे हो जी का बंधन कर्म भी आपे जो किस किया सो आपे आपे प्रणवत नाम दियो एहो जियो चित्वे सो लहे अमर होए सब आकुल रहे।

हृद अंतर पर तलकाती। ठग दुष्ट बगा लिव लागा, देख बैसनो प्राण मुख भागा। कल भगवत बंद चिरामं, क्रूर दुष्ट रता निष्बादं रहाओ।

सिल पूजस चक्र गणेशं निस्जागस पगत परवेशं पग नाचस चित्त अकर्मं एलं पट नाच अधर्मं मृग आसन तुलसी माला कर उजल तिलक कपाला हृदय कूर कंठ रुद्रासन रे लंपट कृष्ण अवासन जिन आत्म तत् न चीनिया सब फोकट धर्म अवीनिया कहो बेणी गुरुमुख त्यावे बिन सत गुरु बाप न पावे।

राम भज जन्म सिरात है, कहो कहा बार बार समझत न क्यों गवार, बिनसत न लगे बार पूरे समगात है। रहाओ सगल परम डार दे गोविंद को ना।

हाथ है। जय जावंती मेला नामा। रे मन कौन गत होए है तेरी, ए जग में राम नाम सो तो नहीं सुनियो कान।

बनता विनोद सुत कतंच भाप मीट हित बंध कतंच मोह कुटुंबते कतंच चपल मोहनी रूपं ते खंते त्यागं करोत।

प्राप्तम धर्म लखन नानक जैसो परसन माधवे मृत मोहं अलक बुद्धन रचंत बनता दिनोद साहन जो बन बेहतर्म कनक कुंडले बचित्र मंदर शोभन।

धने दयाल एक भगवान पुरखे नानक सर्व जीत पाल के अनित्य चित्तं अनित्य आशा बहुविध प्रकारं अनित्य हेतं अहम् अहम् बंधं।

ऋत बसंत बै भीत दूते कर्म करत महानिर्मले जन में मरण रहंत श्रोता

बते विपरीत बुद्धिं मारत लोकै नानक चिरंकाल दुख भोगते।

गुसाईन्द्रस्वरूपेण सिमरन सर्वत्र जीवने लब्धं संत संगेन नामित स्वस्थ मार्ग हर भक्तने मस्तं भगनंत शैलं कर्दमं तरंत पपीलके

ਡਾਲ ਖਰੇ ਬਿਖਮ ਸਥਾਨ ਮਨ ਮੋਹ ਮਦਰੰ ਮਹਾ ਅਸਾਧ ਪੰਚ ਸਸ ਕਰੇ ਹੀਤ ਮੋਹ ਭੈ ਭਰ।

अवर्त एते सुत अक्षणे गोविंद दामोदर माधवे गर्भंत नारी मदोन्मतन बलवंत बलात् कारणे चरण कमल में भजंत तृण समान धृग जन मने।

कदेन चित्तो जाचा अस्थल तोल अमितो सोई नानक सखा जी संग कितो। अप जसन मिटंत सत पुत्र सिमर तवर गए।

फिर अंबर कनहर छाया बर्फ परे सरताल चात्रिक जो तरसत रहे तिनको कौन हवाल। कबीर चके जो निस बिछरे आए मिले परबात जो नर बिछरे राम स्यो ना दिन मिले ना रात। कबीर रहना इर बिछोरिया रहो रे शंख मजूर।

सतगुर क्या करे जो सिखा में चूक, हम दे एक ना ला गई जो बांस बजाये फूक। कबीर है गए बाहन सगन कन छत्रपति की नार, ताश पटन करना।

0: कीचड़ आटा गिर परया किछु न आयो हाथ। पीसत पीसत चाबिया सोई निभिया साथ।
1: कबीर मन जाने सब बात जानत ही अवगन करे।

पावत रखे ता राम भजे ना ता बिनती बात। कबीर के सो कुकिया ना सोए सारे रात

कबीर राम रतन मुख को तेरी तारक आगे खोले कोई आए मिले जो गाती ले दो महंगे मोल। कबीर राम नाम जानियो नहीं पाले कटक कुटुंब संदेही में मर गयो बाहर पई न बंब। कबीर आखी केरे मात के पल पल गई बिहाए मन जंग

उपकारी जीवन के पंछी चले दिसावरी बिरखा सुफल पलंग। कबीर साधु संग पर आपकी लिखिया होए लिलाते, मुकुट पदार्थ पाये ठाक न अवगत काट। कबीर एक करी आदि हूं ते आदे।

खेलत खेलत हाल करे जो कुछ होए ता होए। कबीर जो तुम्हें साध तिरम के पाके से तू खेले, काठी सरसों तेल के ना फल पई ना तेल। ढूंढत डोल है अंगगत अर

पर नहीं ककर बैराग बैरागी बंधन करे ताको बड़ो अपाग। श्लोक शेख फरीद के।

कंध कुहारा सिर कड़ा वन के पर लोहारे खरीदा हो लोड़ी सो अपना तू लोड़े अंगियार खरीदा इतना आटा अगला।

सोताओ वत कुआरी नाती है कलर तेरी छपड़ी आए उलते हांजे सिंजू बोरन ना पीवे उड़न संधी डंज हंस उदर कोदर पया लोक विदारण जाए जहला लोक ना जानदा हंस ना कोदरा खाए चल चल गईया पंखियां जिनी वसाए तल फरीदा सर परिया पी चलसी थके कवले तल फरीदा इत सिराने पोए सन कीड़ा लड़ो मास केतड़िया जुग वापरे इकत पया पास फरीदा पन्नी कड़ी सवनवी टुटी नागर लाजे अजराइल फिरिश्ता कै कर नाची अज फरीदा पन्नी कड़ी सवनवी टूटी नागर लाजे जो सज्जन को

नौबत वजी सुबह से चलन का परसाद फरीदा रात पूरी वंडी है सुतिया मिले न खाओ जिना मैं निंद्रावले तिना मिलन को आओ फरीदा मैं जानिया दुख मुझको दुख सबाए जग ऊंचे करके देखिया कर कर एहा अग महला पंजवा फरीदा ओम रंगावली मंज विसूला बाग जो जन पीर निवाजिया तिना अंत न लाग महला पंजवा फरीदा उम्र सुहावड़ी संग सुवनड़ी देहे विरले केई पायने जिना प्यारे ने कंदी रहन ना

आमल आखी से था बंदगी चलन अज के कल खरीदा मोतैदा बन्ना एवें दिसे ज्यों दरिया वैता अगे दोजक तपिया सुनिए हूल पवे कहा इतना नू सब सोजी आई इक फिर देवे कर

रावणे जिना विसारे मनाओ कैसे दुख कनेरिया अगे थौर न छाओ फरीदा पिछल रात ना जाग्यो जीवन दरो मोयो ए जे तें रब विसारिया ता रब ना विसरे ओए महला पंजवा फरीदा कंक रंगावला वड्डा ने मुहताज

सिर तल उत्तर पाए। मैं जानिया वडहंस है ताने की पासंग, जो जाना बग बकुड़ा जन्म न पेड़ी अंग। क्या हंस क्या बगुला जाको नदर करे, जो किस पावे नानका सागो हंस करे। सरवर पंखी हे परो फाही वाल पचास, केतन लहरी गड़सिया सच्चे तेरी आस। कम सो अखर कम गुण कम सो मणिया मंत, कम सो वे सो हो करी जित वस पावे संत। निमन सो अखर खवन गुण जो बा मणिया मंत, के त्रै पैने वेश कर तावस पावी संत। मत होंगी हो याना ताण होंदे हो निताना, अण होंदे आप बंदाए को ऐसा भगत सदाए। एक सिक्का ना गालाए सबना में सच्चा तनी, ह्याओ न कही थाए मानक सब अमोल वे सबना मन मान।

हर भरयो भरपूर सगल घट रहो व्यापे व्यापत देखे जगत जाने कौन तेरी गते सर्व की रक्षा करे आते हर पते अब मासी अब गते आते आप उत्पते एक है तू ही एक है आन नहीं तुम भते हर अंत नहीं पारावार कौन है करे विचार जगत पिता है सर्व प्राण को आधार जन नानक भगत दर तुले ब्रह्म संसर एक दिन क्या बखाने हाँ के बल बल बल बल सद बल हार अमृत प्रवास हर अतुल भंडार भर परे ही ते परे अपर अपार पर आपनो भावन कर मंत्र न दूसरो धर उप तो कर लो एक निमक तो भर आन नई समसर उजियारो निर्मल कोट करा छते जाए नाम लिए हर हर जन नानक भगत दल कुल ब्रह्म सम

निरंकार आकार अचल पूरन अविनाशी हर्षवंत आनंद रूप निर्मल विगासी गुण गावे बेअंत अंत एक तिल नहीं।

धन धन ते धन जने जे कृपाल हर हर भयो हर गुरु नानक जिन परसो से जन्म मरण दो ते रहो सत सत हर सत सत सत सत भणिए दूसर आन न आवर पुरखे पुरातन सुनिए अमृत हर को नाम लेत मन सब सुख पाए जे रसन साखो तें जन तृप्त अधाए जे ठाकुर सो परसन भयो सतसंगत तें प्यार हर गुरु नानक जिन परसो तिन सब कुन कियो उधार सच सभा दीवान सच सचे तै धरयो सचे सत निवास सच तथावस करयो सच सुन जो सन

सिद्ध साधक 35 कोर तेरे केम न परिये। ब्रह्मादिक सन काद सेक गुण अंत न पाए, अबो गयो नहीं जाए पूर सब रयो समाए। जय काटी सिलक दयाल प्रभु से जन लगे भगते,

हर तारन तरम समरथ सवैद कुले समूह उधारण सो चित चेत अचेत जान सत संगते भरम अंधेर मोयो कत भौ मूरत घड़ी सापल सिमरन राम नाम रखना संगलो होतो काज अलग सुख बंधन कोट जन्म कहाँ दुख भौ सिखा संत नाम भजनान के राम रंग आत्म स्योरों रंजक रेत खेत तन निर्मत दुर्लभ दे सवार भरी खान पान सोधे सुख भुंचत संकट काट विपत हरी मात का भाई अर बंधते बूधन के सब सोज परे बरमान होवत दिन प्रतिनित आवत निक

ज्ञान के काट भरम भरी। रे मनमूस बिलावे गर्वत कर्तव करत महाम भुना। संपत धौल धूल संग झूलत माया मग्न भरमत घुगना। सुत बन का साजन सुख बंदते तासु मोह बड़ो सुघना। बोयो भीत अहं मम अंकुर बीतक औ

एवं करत सौद तन जारी करम धर्म संजन सुख सुचनेमा करम धर्म संजन सुचनेमा चंचल संग सगल बिदहारी पथ पंखी बिरख अस तावर बौगंद जौन भम्यो अत भारी सिन पल चसा नाम नहीं सिमर्यो दीना नाथ प्राण पथ सारी खान पान मीठ रस भोजन अंत की बार होत कत खारी नानक संत चरण संग उधरे और माया मगन चले सब डारी ब्रह्मांडक शिव छंद मुनि सर रसक रसक ठाकुर गुण गावत इंद्र मुनिंद्र खोजते गोरत धरणि गगन आवत फुन धावत सिद्ध मांस

दृश्यो जम तो तन डन मृत मरो है। अंत धोन संकट नरक भुंचत शासन दुख गर्त गरो है। प्रेम भगत उधरे सेनान के कर कृपा संत आप करो है। गुण समूह फल सगल मनोरथ पूरन होई आसमारी। औषद मंत्र तनक पर दुख हर सर्व रोग खंडन गुणकारी। काम क्रोध मद मद

भगत दीन गुण रही सहज आत्म रंग माणे, योग ध्यान गुरु ज्ञान बिना प्रभ आवर न जाने। सुखदेव परिखत गुण रहे गौतम रिथ जस गायो, कब कल सुजस ना

जाति दृष्ट अमृत धार, काल को खन उतारे तिमर अज्ञान जाए दर्श द्वारे, ओ जो से

सतसंगत सहज सारे जागीले गुर बिचारे निमरी भूत सदीव परम प्यारे कौटीरत कल सहारे सतत दीप मझारे लेना जगत गुर पर सुमुरारे तै तो दरियो नाम अपारे बिमल जास बिखारे साधक सिद्ध।

हर हर दर्श समानी आत्मावंत ज्ञान जाने अकलगत गुरु परवान जाके दृष्ट अकल ठानी बिमल बुद्ध सुठानी पैर शील सनाओ सकत बिदार कहो कीरत कल सहारी सपद दी तुम झारे लेना जगत गुरु परस मुरार दृष्ट धरत तम हरन दहन अभ पाप परासन सबद सूर बलवंत काम अर क्रोध विनाशन लोभ मोवश करण शरण जाचक प्रित पालन आत्मरत संग्रहण कहन अमर

गुर जगत सुयन सुयंगरो राज जोग लैणा करे। सदा अतल्य रहे करन सिउ इच्छा चारे। गम सपूर जिउने खवे कस बिमल विचार। एह तत जानियो सरबगत अलग।

हर पर सो कल समुल रहे जन दर्शन लेने भयो मन विसास पायो गहर गो हजरत दियो गरल नाश कन नठो अम्यो अंतरगत पियो रिद बिगास जागयो अलग तल धरी जुगंतल सतगुर सहज समाद रव्यो सामान निरंतर उदारो चित दारद हरन तिखंते कलमल प्रसन्न सब रंग सहज कल उचरे जस जमतो लेने रसने नाम औखद नाम आधार अर नाम

तीरथ रव तिर प्रगट संसारे सात सरोवर मवल सरा। उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम जय जयकार जपंत नरा। हर नाम रसन गुरुमुख बरदायो उल्ट गंग पश्चिम।

कोई नाम अचल भगते भवतार। अमरदास गुरु को पुरिया चित नाम लागते तुझसे ध्याई जति कपि सत।

गंभीर गुरु मत सतकर संगत उदरिया। सोई नाम अचल भगत भवतार अमरदास गुरु को पुरिया। नाम कित संसार किरण रहो सुर कर साथे उत्तर दक्षिण पूब देश पश्चिम जस भाके। जन्म तयो सखेत जित नाम हर हृदय निवासे सुर नर गण गंधर बुछे दर्शन आशा से। भलो प्रसिद्ध तेजो तनु कल जोर कर ध्यायो सोई नाम भगत वच भव जल हरन गुर अमरदास तय पायो। नाम धुआवे देव कैपीस और साधक सिद्ध नर नाम खंड ब्रह्मंड धारे। जय नाम समाधेव हरक सोग समतर सहारे। नाम शिरोमण सर्व में भगत रह निवधार। सोई नाम परार्थ अमर गुर कुछ दियो करकार। सत सूरो शील बलवंत सत भाय संगत सघन गुरु मत निर्वैर लिया। जिस धीरज धुर धवल धुर

करवने गुर अमरे सुने जैन सत सोहियो जित ही बसे गुरु अमरदास निज जगत पिते सत्यत सो सुर जालक भणे जो सुर ने गुर अमर निते ते नर

नर उठत बिथते सुख लय ते नर संसार में अभय पट रिद में बिते सत्यत ते नर जालत भणी गुर अमरदास सो पर समझे तय पढ़ो एक मन धर्यो एक कर एक।

सुपन एक पर तख एक इकत में नीनो तीस एक अर पंज सिदे मैं तीस नीनो इको जे लाख लखो अलख है एक एक कर वन्यो गुरु अमरदास जालक भणे तू एक लोणे एक मन्यो जे मत गई जय देव जे मत नामे समाणी जे मत लोचन चित

गुरु दास कर सिंह अभो लभ है गुरु तुक एक बंधु गण जो तो रहे जासमंत मानो लहे जाल पा पदार्थ इतने गुरु अमरदास जिथे मिले सच नाम करतार सुदृढ़ नानक संग्रह हो ताते अंगद ने

तात गुण कवण वखाणो जो गुण अलख अगम तिने गुण अंत न जानो बोलतो विधाते निर्मयो सब संगत कुल उधरण गुरु अमरदास कीरत कहे त्राहे त्राहे तो पासरण आप नारायण कलाधार जग में परवरयो निरंकार आकार ज्योत जग मंडल।

भगत भाए भरपूर हृदय उचर कर तारे गुरु गौहर दरिया पलक डूबंते तारे नानक कुल मल अवतरे गुण कर तारे उतरे गुरु अमरदास।

जब गुरु देखे सुबदिष्ट नाम करता मुख मेवा। अगम अलख कारण पुरख जो फुरमावे सो कहो। गुरु अमरदास कारण करण जिम तू रखे त्यों रहो। दिखे के गुरु ज्ञान अर ध्यान।

धर्म भन कर गयो भगत शील सर लड़यो धन बोहर अटल मन सबद गुरु ने जाग दियो काम क्रोध लोभ मोह अपत

सागर को दंड तरंग अंत को पावे। रुदन ध्यान ज्ञान सतगुर के कब जन भल उन्हें जो गावे। भल

एक मन पुरखन अंगन ध्याओ, गुर प्रसाद हर गुण सद गाओ। गुण गावत मन होए दिगासा, सतगुर पूर जने की आशा। सतगुर सेव परम पद पायो, अदना से अवगत दिहायो। किस भेटे दारिद्र न चमते, कल सहार तार।

नाम निरंजन उर धरया। हर नाम रसक गोविंद गुण गाहते, चाहत तत समत सरे, कब कल ठकर हर दास ने, गुरु राम दास सर अबर भरे। छूटत प्रवाह अमेव अमरा तत, अमृत सरोवर सद भरया। ते पीरे संत करे मन मज्जन, उपजनो सेवा करिया। तिन भव निवार अन भय पद दीना, शब्द मात्र ते उधर धरे। कौन कर्ण छकुन हर दास तने, गुरु राम दास सर अवर भरे। सत गुरु मत गुरु

निरंजन खरेला। सतगुरु दयाल हर नाम दिलाया, इस पर साधवस पंच करे। कल कल ठाकुर हरदास तनी, गुरु रामदास सर अभर भरे। अनुभव अनुमान अकल लेव लागी, पारस भेटिया सहज घरे। सतगुर प्रसाद परम पद पाया, भगत भाए भंडार भरे। मेटिया जन मंत्र मरण भव, भागा चित लागा संतोष सरे। कब कल ठाकुर हरदास तने, गुरु रामदास सर अबर भरे। अबर भरे पायो अपार अंतर धारे, दुख भंजन

भरत परवासी तुम पुबली न होते सतगुरु शब्द अथाओ अम्यो धारा रसगुत्ते मत माता।

सतगुरु नाम एक निव मन जप देखन जन दुख पाप पौखत होए जियो। तारण करण छिन मात्र जाको दृष्ट धारे।

सिद्ध साध मुन जन सुर नर जाती सबद सार एक लिव लाई है। सुन जाने को तेरा अपारे निर्भव निरंकारे अकथ कथन हारे तुझे बुझाई है। भर

नाम सो अपार सार दीनो गुरुर्द धरे नल कौ पारस परस कच कंचना हुए चंदना सुबास जास सिमरत अंतरे जाके दे

पांव तैनीर सर अवर अनल अनाद कियो। सखन खन ससुर दिन सैल करो फल फूल दियो। सुर नर सपत।

दास भट बेनत कहे, जो गुरु नाम हृदय में धरे सो जन्म मरण दोते रहे। गुर बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ न आवे, गुर बिन सुरत न सिद्ध, गुरु बिन मुक्त न पावे। गुर कर सच बिचारे, गुर करे मन मेरे, गुर कर शब्द सुपन अघन कटे सब तेरे। गुर नैन भैन गुर गुर करो, गुरु सत कब नल कै, जिन गुरु न देखो न कियो ते अकथ संसार में। गुरु गुरु गुर कर मन मेरे, तारण तरण समर्थ कलयुग सुनत समाद शब्द जिसके रे। सुन दुखन नाश सुखदायक सूरो, जो धरत ध्यान बस्त तैने रे। पूरो पुरख हृदय हर सिमरत, मुख देखत अग जाए परे रे। जो हर बुध हृदय सिद चाहती, गुरु गुरे गुर कर मन मेरे। गुरु मुख देख गरु सुख पायो, होती जो प्यास प्यो सेवन की, बंसत सिद्ध को विद मिलायो। पूरन भवन ठौर बसोरसे, बासन सुजो दंस धायो। गोविंद वाल गोविंद पुरी, समजलन तीर विवास बनायो। गयो दुख दूर।

जिस देख चरण अघन हरो। निस बासुर एक समान ध्यान, सो नाम सुने सुत भांडरो। भन दास आस जगत गुरु की, पारस भेत परस करो। रामदास गुरु हर

ज्ञानियों शब्द हर हर जपे नाम नवनिध आपे रसन ऐनित रसे सत कर जानियों सुनु प्रेम रंग पाइए गुरमुखे ध्याइए अन मार्ग तजो भजो हर ज्ञानियों बचन गुर रिद धरो पंच भू बस करो जन्म कुल उधरो द्वार हर मानियो जो तो सब सुख इत उत

गुरु जप सत कर अगम गुण जान निधान हर मन धरो ध्यान ऐस करो बचन गुरु हृदय धर सुन गुरु जल बिमल अथा मजन करो संत गुरु सिख करो नाम सच रंग सर सदा निर्वैर निरंकार निर्भव जपे प्रेम गुरु शब्द रस करत दृढ़ भगत हर मुगद मन भ्रम तजो नाम गुरु मुख

उदत गुर गहर गमीर बेअंत हर नाम नग हीर मन मिलत लेवलाये। सुन गुरु परमल सरस करत कंचन परस मैल दुर्मत हिरते शब्द गुरु ध्याये। अमृत प्रवाह छुटकंत सद द्वार जिस ज्ञान गुरु बिमल सर संत।

गुरु मिलत मुन जन रे तरे नार दाद सन काल हर गुरु मुखे तरे एक नाम लग तजो रस अन।

परमानंद गुरुमुख कयन पर तख दे पार ब्रह्म स्वामी आद रूप पोखण भरण सतगुरु गुरु से।

अवलोका ब्रह्म भरम सब छुटकार, अवलोका ब्रह्म भरम सब छुटकार, देव दृष्ट कारण करण सतगुरु गुरु सेव अलख गत जाकी श्री राम दास तारण तरण। परताप सदा गुर का घट घट परदास भया।

करें प्रभात शुद्ध मन गुर पूजा दिद सहित करन। कन कन कन होए परस पारस को ज्योत स्वरूपे ध्यान धरन। जग जीवन जगन्नाथ जल थल मेरिया पूर्व विद वरनं। सतगुरु गुरु सेव अलख

तिन तरयो समुद्र रुद्र थिन एक में जल हर बिंब जुगत जग रचा। कुंडली सुरजी सत संगत परमानंद गुरु मुख मचा। श्री गुरु साहेब सब ऊपर मन

इंद्रियो बले छलन सबल मलन भंग फलन कान कुर नय करंत बजी डंक चढ़ दल रविंद नियो राम रवण दुर्त दमन सकल भवन कुशल करण सर्व भूत आप ही देवाद देव सहस मुख फनिंद जियो जरम करम मच्छ कच हो बराय।

सच जान मंत्र एहे निस बातुर कल्याण लहे परम गत जियो काम क्रोध लोभ मोह जन जन संसार धो होमे का फंद काट साध संग रत जियो देह गे ते सने चित बिलास जगत एओ चरण कमल सदा सेओ दृढ़ता कर मत जियो नाम सार ही धार तज निकार मन

ही पाता। गुरमुख संगत सवे विचारो, वाओ वाओ का बड़ा तमाशा, किया खेल बड़ मेल तमाशा। वाहे गुरु तेरी सब रचना, तू जल थल गगन पयाल पूर रहा, अमृत ते मीठे जाके बचना। माने ब्रह्मा

संगत से ती मन खचना किया खेल बड़मेर समासा वाहे गुरु तेरी सब रचना अगम अनंत अनाद

गुर समरथ गए किरिया धूप बुद्ध सुमत समारन को उन धम दुजा फैरंत सदा अग पुंज तुरंग निवारन को मथुरा जन जान कही जे सासु और कछु न विचारन को हर नाम बहुत बड़ो कल में भव सागर पार उतारन को संतत ही सत संगत संग सुरंग रते जस गावत है ब्रह्म पंथ धर्यो धर्मी धर आप रहे ले उदाहरण।

रव के सुख को तिन त्रास कहा, जो चरण गुरु चित लावत है। निर्मल नाम सुधास पर पूर्ण सब त्रंग प्रगट तिन आदर, गहर गंभीर अथायत वर्ण सुबर सदा सब विदरत नागर। संत मराल करे कंतु हल तिन जम प्रास मिट्यो दुख का।

ध्यान धरे फिरत सगल जुग कभू को पावे आत्म परगास को। वेद बाणी सहते ग्रंथ जस गावे जाको शिव मुन गहना सजात कबिलास को। जाको जोगी जति सिद्ध साधक अनेक तप गदा झूठ देख किए फिरत उदास को। सोतन सतगुण सुख भाई कृपा।

जखम लोक प्रगासे देखत दर्स भटक भ्रम भजत दुख पर हर सुख सहज बिगासे सेवक सिख सदा अतलुभते अलसमूजू कुसुम सुबासे विद्यमान गुर आप थप्यो थिर साचो तखत गुरु रामदासे तारे ओ संसार माया मद मोहिते अमृत नाम दियो समरथे उनकी रतवंत सदा सुख संपते रिद्ध अर सिद्ध न छोड़े।

जाके बसीस धर्यो गुर हथे। तीन भवन भरपूर रहो सोई, अपन तरस क्यों ना जगत कोई। आपन आप ही उपायो, सुर नर असुर अंत नहीं पायो। पायो नहीं अंत सुरे, असुरे नर गण गंधर्व को जंत फिरे। अविनाशी अचल अजौनी, संभो पुरखो तुम आपार परे। करण कारण समरथ सदा सोई, सर्व जी मन ध्यायो। श्री गुरु रामदास जयो जय जग में, हर परम पद पायो। सतगुरु नानक भगत करी एक मन तन, मन धन गोविंद दियो। अंगद अनंत मूरत निज धारी, अगम ज्ञान रस रस हियो। गुरु अमरदास।

सुदामा खूब भगत हर के जुगण अमरीक जय देव त्रिलोचन नामा और कबीर भणन तिनको अवतार।

मनसा कर सिमरंत तुझे नर काम क्रोध मिट्यो जो तिणन। बाचा कर सिमरंत तुझे तिन दुख दरिद्र मिट्यो जो खिणन। कर्म कर तो दर्श परस पारसन बल भट जस गायो। श्री गुरु रामदास जयो जय जग में तैं हर परम पद पायो। जै सित सतगुर सिमरंत नैन के तिमर मिटे खिन। जै सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनो दिन। जय सतगुर सिमरंत जी की तपत मिटावे। जय सतगुर सिमरंत रिद्ध सिद्ध नव निध पावे। सोई रामदास गुण बल भण मिल संगत धन धन करो। जय सतगुर लग प्रभु पाइए सो सतगुर सिमरो नरो।

ज्ञान प्रगत उजियारो दुख दरिद्र अंधियार को नाशे। कब कीरत जो संत चरण मुन लागे तिन काम क्रोध जम को नहीं त्रास। ज्यो अंगद अंग संग नानक गुर सिंह गुरु अमरदास कै गुरु रामदास। जिन सतगुर सेव पदार्थ पायो निसबासुर हर चरण निवास। सांते संगत सगन भाव।

जै तिखत अत होए रहत मन सोई। संत सहार गुरु रामदास, नानक नाम निरंजन जानू, तीनी भगत प्रेम निवलाई। साते अंगद अंग संग भयो सायर, तिन सबद सुरद

आत पत सचो तखते जोग भोग संयुक्त बल गुरु रामदास सच फल भण तू अटल राज।

जन्मत गुरमत ब्रह्म पछाण्यो कल जोड़ कर सो जस वखाण्यो भगत जोग को जैतवार हर जनक उपायो

वेदन भर सहता भय बंजन पर पीर निवारण कल संहार तुए जस भगता कुल सौदी गुरु रामदास तन धर्म भुजा अर्जन हर भगता।

कहे मथुरा अमृत बैन मूरत पंच प्रमाण पुरख गुर अर्जन पिखो नैन सत रूप सत नाम सत संतोख धर्यो आद पुरख पर तथे लिखो अक्षर मस्तक धुरे प्रगट ज्योत जगमगे तेज भूमंडल छायो पारसे परसे परस परस गुरु

बौरस साल ने सवार दी खट बस मीठे पाए त्यों बाणी पगत सलांदे हर नाम चित लाए मन तन तन आगे राख्या सिर वेचिया गुर आगे जाए पै पगती पगत बहु लोच दे।

सतगुर के पाने जो चले तुपता से हर गुण गाए तन तन कर जुग नानका जे चले सतगुरु भाए। सतगुरु ना सेवियो शब्द ना रखियो उधार तिग तिना का जीविया तित आए संसार। गुरमति पौ

0: मन तन निर्मल होए। नामहीन नक्शे फिरे दिल नावे बह रोए, नानक जो तुर करते लिखिया सो मेट न सके कोए। गुरमुखा हर तन खटिया गुर के शब्द विचार, नाम पदार्थ पाया तुत परे पंडार। हर गुण बाणी उचरे अंत न पारा वार, नानक सब कारण करता करे वेखे सृजनहार।
1: गुरमुख अंतर सहज है मन चढ़िया दसवें आकाश, तिथे ऊंग न पुख है हर अमृत नाम सुखवा।

जम्मन मरण न चुकई रंग लग्गा दूजे भाए बंधन बंद भवायन करना कछु न जाए जिनको कृपा धारियन तिना सतगुरु मिलिया आए सतगुरु मिले उल्टी भई मर जीव्या सह सुवाए नानक भक्ति रतिया हर हर नाम समाए मनमुख चंचल मत है अंतर बहुत चतुराई कीता करत्या बिरथा गया इक तिल थाए न पाई पुन दान जो बीज दे सब धर्म राय कह जाई बिन सतगुरु जम काल न छोड़ई दूजे पाए खुआई जो बन जांदा नदर ना आवई जर पहुंचे मर जाई पुत कलत मोहित है अंत बेली को ना सखाई सतगुरु सेवे सो सुख पाए नाम वसे मन आई नानक से वड्डे वड पागी जे गुरमुख नाम समाई मनमुख नाम ना चेतनी बिन नामे दुख रोए आत्मा राम ना पूजनी दूजे क्यों सुख होए हों मैं अंतर मैल है शब्द ना काढ़े तोए नानक बिन नावे मैलिया मोए जन्म पदार्थ खोए मनमुख बोले अंगले तिसमें अग्नि का वास बाणी सुरत ना बुझनी शब्द ना करें प्रगास ओ ना अपनी अंदर शुद्ध नहीं गुरु वचन ना करें विश्वास ज्ञानिया अंदर गुरु शब्द है नित हर लिव सदा विकास हर ज्ञानिया की रखदा

पाए। बिख का मारण हर नाम है, गुर गरुड़ शब्द मुख पाए। जिनको पूर्व लिखिया तिन सतगुरु मिलिया आए। मिल सतगुरु निर्मल होया, बिख हो मैं गया।

सतगुरु पुरख निर्वैर है, नित हृदय हर लिवलाए, निर्वैर नाल वैर रचाएंदा, अपने कर लूकी लाए, अंतर क्रोध अहंकार है, अंदिन जले सदा दुख पाए, कूड़ बोल बोल नित पौंक दे, बिख खा दे दूजे भाए, बिख माया कारण परम दे, फिर कर कर पत गवाए, बेसवा के रे पूत ज्यो पिता नाम तिस जाए, हर हर नाम न चेतनी करते आप खुआए, हर गुरुमुख कृपा तारियन जन विछड़े आप मिलाए, जन नानक तिस बलिहारण जो सतगुरु लागे पाए, नाम लगे से उबरे बिन नामे जम पुर जाए, नानक बिन नामे सुख नहीं आए गए पछताए, चिंता तावत रह गए ता मन पया आनंद, गुर प्रसादी बूझी है सा तन सुती निचिंद, जिनको पूर्व लिखिया तिना पेटिया गुर गोविंद, नानक सहजे मिल रहे हर पाया परमानंद, सतगुर सेवन आपना गुर सबदी विचार, सतगुर का पाना मन लैन हर नाम रखे उरदार, ऐथे ओथे मनियन हर नाम लगे वापार, गुरमुख शब्द संजाप दे तित साचे दरबार, सच्चा सौदा खर्च सच अंतर प्रेम प्यार।

तो है जिसे हाथ न पाए, मनमुख छेती संकरे मोह कालक दाग लगाए, मोह काले तिन लोभियां जासन जन्म गवाए, सत संगत हर मेल प्रभ हर नाम वसे मन आए, जन्म मरण की मल उतरे जन नानक हर गुण गाए, तुर हर प्रभ कर तै लिखिया सो मेटना ना जाए, जियो पिंड सब तिसदा प्रतपाल करे हर राए, चुगल निंदक भुखे रुल मोए ए ना हाथ ना किफाऊ पाए, बाहर पखंड सब कर्म करे मन हृदय कपट कमाए।

मन आवन जान ना सुजई ना सुजै दरबार माया मोह पलेटिया अंतर अज्ञान गुवार तब नर्थ पा जा गया सिर डंड लगा बहु पार गुरमुखा करा उपर हर चेतिया से पायन मोख द्वार नानक आप ओह उदरे सब कुटंब तरे परवार शब्द मरे सो मुआ जापे गुर प्रसादी हर रस्त्रा पे हर दरगे गुर सब जापे बिन शब्द मुआ है सब कोए मन मुख मुआ अपना जन्म खोए हर नाम न चेते अंत दुख रोए नानक करता करे सो होए गुरमुख बुढ़े कदे नाही जिना अंतर सुरत ज्ञान सदा सदा हर गुण रवे अंतर सहज ज्ञान ओए सदा आनंद विवेक रहे दुख सुख एक समान तिना नदरी इको आया सब आत्म राम पहचान मन मुख बालक बिरद समान है जिना अंतर हर सुरत नाही विच हो मैं कर्म कमाव दे सब धर्म राय कह जाही गुरमुख अच्छे निर्मले गुर कह सब सुवाए ओना मैल पतंग ना लग गई जे चलन सतगुर भाए मन मुख झूठ ना उतरे जे सो तोवन पाए नानक गुरमुख मेलिया।

नानक गुरमुख मन च्यों लुजै, जिना सतगुर पुरख न सेवियो शब्द न कीतो विचार। ओए मानस जून ना आखियन पशु टोर गावार, ओ ना अंतर ज्ञान ना ध्यान है हरसों प्रीत ना प्यार। मन मुख मोए विकार में मर जमे वारो वार, जीव दयानो मिले सो जीव दे हर जग जीवन उद्धार। नानक गुरमुख सोने सिद्ध सच्चे दरबार, हर मंदर हर साजिया हर वसै जिस नाल, गुरमति हर पाया माया मोह पर जाल। हर मंदर वक्त अनेक है नव नाम समाल, तन भगवंती नानका जिना गुरमुख लद्दा हर पाल। वड पागी गढ़ मंदर खोजिया हर हृदय पाया नाल, मन मुख दे दिस फिर रहे अत तिसना लोभ विकार। माया मोह न चुकई मर जमे वारो वार, सतगुर सेव सुख पाया अत तिसना तज विकार। जन्म मरण का दुख गया जन नानक शब्द विचार, हर हर नाम से आए मन हर दरगे पावे मान। किलविक पाप सब कटिए हो मैं चुके गुमान, गुरमुख कमल विकसिया सब आत्म ब्रह्म पहचान। हर हर कृपा तार प्रभ जन नानक जप हर नाम, तनासरी तनवंती जानिए पाई जा सतगुर की कार कमाए। तन मन सौंपे जी सो भाई लय हुक्म फिराओ, जय बैसावे बैसे भाई जय पे जय तह जाओ। एवड तन होर को नहीं भाई जेवड सच्चा नाओ, सदा सच्चे के गुण गावा भाई सदा सच्चे के संग रहाओ। पैनन गुण चंगियाईया भाई अपनी पथ के साथ आपे खाए, तिसका क्या सालाई है भाई दर्शन को बल जाए। सतगुर विच वडियां वडियाईयां भाई कर्म मिले ता पाए, एक हुक्म मन ना जाननी भाई दूजे भाई फिराए। संगत तोई ना मिले भाई बैसन मिले ना थाओ, नानक हुक्म तिना मनाए सी भाई जिना तुरे कमाया नाओ। तिन विटो हो वारिया भाई तिन को सद बलिहार रह जाओ। से दाड़ियां सतियां जे गुर चरनी लगन, अंदिन सेवन गुर आपना अंदिन अनदरहन। नानक से मुंह सोहने सच्चे दर दिसन, मुख सच्चे सच दाड़ियां सच बोले सच कमाए। सच्चा शब्द मन वस्या सतगुरु माहे समाहे, सच्ची राशि सच तन उत्तम पदवी पाहे। सच सुने सच मन लैन सच्ची कार कमाहे, सच्ची दरगे बैसना सच्चे माहे समाए। नानक बिन सतगुरु सच ना पाईए मन मुख भूले जाए। बाबीहा प्रयो प्रयो करे जल निज प्रेम प्यार, गुर मिले शीतल जल पाया सब दुख निवारण हार। तिस चुके सहज उपजे चुके कूप पुकार, नानक गुरमुख सांत होए नाम रखो उदार। बाबिया तू सच कहो सच्चे सौ लिवलाए, बोलिया तेरा थाए पवे गुरमुख होए अलाए। शब्द चीन तिक उतरे मन लह रजाए, चारे कुंडा चोक वरसदा बूंद पवे सहज चुबाए। जल ही ते सब उपजे बिन जल प्यास न जाए, नानक हर जल जिन पिया तिस भूख न लागे आए। बाबी हा तू सहज बोल सच्चे शब्द सुवाए, सब किस तेरे नाल है सतगुर दिया दिखाए। आप पछाणे प्रीतम मिले वुठा छह बरलाए, चिम चिम अमृत वरसदा तिसना पुख सब जाए। फूक पुकार न हो वही ज्योति ज्योत मिलाए, नानक सुख सवन सुहागणी सच्चे नाम समाए। तुरु खसम पेजिया सच्चे हुक्म पठाए, इंद वरसे दया कर गूड़ी छह बरलाए। बाबी है तन मन सुख होए जा तत बूंद मोह पाए, अन तन बहुता उपजे तरती शोभा पाए। अंदिन लोक भगत करे गुर कह शब्द समाए, आपे सच्चा बस लय कर कृपा करे रजाए। हर गुण गावो कामणी सच्चे शब्द समाए, पै का सह सिंगार करो सच रहो लिव लाए। नानक नामो मन वसे हर दरगे ले छड़ाए। बाबी हा सगली तरती जे फिरे ऊट चढ़े आकाश, सतगुर मिले जल पाईए चूके भूख प्यास। जियो पिंड सब तिसका सब किस तिसके पास, बिन बोलिया सब किस जानदा किस आ गए की चै अरदास।
नानक कट कट एको वर्तदा शब्द करे प्रगास। नानक तिसै बसंत है जे सतगुरु सेव समाए, हर बुठा मन तन सब पर फड़े, सब जग हरियावल होए, सब दे सदा बसंत है जित तन मन हरिया होए, नानक नाम ना विसरै जिन सिरिया सब कोए, नानक तिना बसंत है जिना गुरमुख वसिया मन सोए, हर उठे मन तन परफड़ै सब जग हरिया होए, वडड़ै चाल चलुंबड़ै नावड़ा लइए किस, नाव लइए परमेश्वर है पन्नन करण समरथ, हर हट भी तू तू करे बोले पल्ली बाण, साहिब सदा हदूर है क्या उच्ची करे पुकार, जिन जगत उपाय हर रंग किया तिसे विटो कुर्बान, आप छोड़े ता सौ मिले सच्चा हो विचार, हों मैं फिक्का बोलना बुझ न सका कार, वन त्रिण त्रिभुवन तुझे त्याईदा अंदिन सदा विहान, बिन सतगुर किने न पाया कर कर सके विचार, नदर करें जे आपनी ता आपे लहें सवार, नानक गुरमुख जिनी त्याया आए से परवान, जोग ना पगवी कपड़ी जोग ना मैले वेस, नानक कर बैठिया जोग पाई है सतगुर कह उपदेश, चारे कुंडा जे पवे वेद पढ़े जुग चार, नानक साचा फेटे हर मन वसे पावे मोह द्वार, नानक हुकम वरते खसम का मत पवी फिरे चल चित, मनमुख सौ कर दोस्ती सुख के पुछे मित, गुरमुख सौ कर दोस्ती सतगुर सौ लाए चित, जमन मरण का मूल कटिए।

रते से जे मुखना मुड़ा ने जिनी संजाता साई चढ़ चढ़ पौधे कच्चे बिरही जिन्ना कारण आए तनी विहूणा पाठ सितंबर पाही छेती जाले तूड़ी विच लुडंदड़ी सोहा नानक तैसे नाले गुर के शब्द अरादी है नाम रंग बैराग जीते पंच बैराइया नानक सफल मारू यह राग जामू इक ता लख तौ जिती पिनने दर कितड़े बामन बिरथा गयो जन्म जिनकी तो सो विसरे थोरठ थोरस पीजी है कबू न फीका हुए नानक राम नाम गुन गाई है दरगह निर्मल सोए जो प्रभ रखे आप तिन कोए न मारे अंदर नाम निदान खुला गुण सारे एका टेप अगम मन तन प्रभ धारे लगा रंग अपार को न उतारे गुरमुख हर गुण गाए सहज सुख सारे नानक नाम निधान हृदय उरहारे करे सुचंगा मान दुई गणत लाहे अपनी नगर निहाल आपे लहो लाए जन देहो मति उपदेश विच्चों परम जाए जो सुर लिखिया लेख सोई सब कमाए सब कष्ट दे वस दूजी नाही जाए नानक सुख आनंद भये सब की मन रजाए गुर पूरा दिन सिमरिया से भय निहाल नानक नाम आराधना कारज आवे रास पापी कर्म कमाव दे कर दे हाय हाय नानक ज्यो मथन माधानिया क्यों मथे धर्म राय नाम से आए साजना जन्म पदार्थ जीत नानक धर्म ऐसे चवे कीतो पवन पुनीत खुबड़ी कुठाए मिठी गलन कुमंत्रिया।

ते हटड़े बाजार सौदा करन वन जा रहा, सच वखर जिनी लद्या थे सचड़े पासार, पंखा प्रेम ना जाने पूली सिरे गवार, नानक हर बिसराए कै पौंदे नरक अंधार, माया मनो ना विसरे मांगे दम्मा दम, सो प्रभ चित ना आवई नानक नहीं करम, चिचर मूल ना छुड़ी दो जिचर आप कृपाल, शब्द अखुट बाबा नानका खाए खर तन माल, खंब विकांदड़े जे लहा किन्ना सावी तोल, तन जड़ाई अपने लहा सो सज्जन टोल।

जिसका सब आधारो, जे को खावे जे को पुंचे तिसका होए उधारो। के वस्त जी नह जाई नित नित रख उधारो, तम संसार चरण लग तरिये।

रागमाला राग एक संग पंच बरंगन संग अला पै आठो नंदन प्रथम राग पैरो वै कर ही पंच रागनी संग उचर ही प्रथम पैरवी बिलावली पुनिया की गावे बंगली पुन असलेखी की पई बारी ए पैरों की पांचों नारी पंचम हरख दिशा सुनावे।

आई माल राग कौशक संग लाई मारू मस्त अंग मेवारा परबल चंड कौशक उभारा खोखट औ पौरा नद गाये अष्टमाल कौशक संग लाए पुन आयो हिंडोल पंचना।

सुरमानंद पास करे आए चंद्रबिम मंगलन सुहाए सरस बाण औ आए बिनोदा गावे सरस बसंत समोदा अष्ट पुत्र में कहे सवारी पुन आई दीपक की बारी कछेली पट मंजरी टोडी कही अलाप कामोदी औ गुजरी संग दीपक के थाप कालंका कुंतल औ रामा कमल कुसुम चंपक के नामा गौरा औ कांगरा कल्याणा अष्ट पुत्र दीपक के जाना सब मिल श्री राग में गावे पांचों संग बिरंगन लावे।

दुख सुख पाइए इकना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा पवाई है। हुक्मै अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोई नानक।

दूर कथना कथि न आवै टोट कत कत कथि कोटि कोट कोट देंदा दे लेंदे तक पाहे जुगा।

वेद सुनिया शास्त सिमरत वेद नानक भगता सदा विगास सुनिया दुख पाप का नास सुनिया सत संतोख ज्ञान सुनिया अठ सठ का इशनान सुनिया पढ़ पढ़ पावह मान सुनिया लागे सहज ध्यान नानक भगता।

कै पछुताए कागज कलम ना लिखन हार मन्ने का बह कर्म विचार ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मन्ने सुत हुए मन बुद्ध मन्ने सगल पवन की।

कोई जे को मन जाने मन कोई मन्ने मार्ग ठाक न पाई मन्ने पथ स्यों प्रगट जाई मन्ने मग न चले पंथ मन्ने धर्म सेती संबंध ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोई मन्ने

दरियाओ कुदरत कवण कहां विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद पावे साई पली कार तू सदा सलामत निरंकार असंख जाप असंख पाओ असंख पूजा असंख तपताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रह उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मुह पखसार असंख मोन लिवलाए तार कुदरत कवण कहां विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद पावे साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार असंख मूर्ख अंध घोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गल वड हत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़े आर कूड़े फिराहे असंख मलेश मल भख खा।

अगम अगम असंख लो असंख कह सिर भार होए अखरी नाम अखरी सलाह अखरी ज्ञान गीत गुण गाह अखरी लिखन बोलन बाण अखरा सिर संजोग बखान जिन एह लिखे तिस सिर नाहे जिव फुरमाए।

एक वार, जो तुद भावे साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार, भरिए हाथ पैर तन दे, पानी धोते उतरस खे।

गत तीरथ मल नाओ सब गुण तेरे मैं नाही कोय बिन गुण कीते भगत ना होय स्वास्थ आथ बाणी बरमाओ सत सुहाण सदा मन चाओ कमण सुवेला वखत कमण कमण थित कमण वार कमण से रुती माह कमण जित होवा आकार वेर न पाइया पंडती

होई, जा करता सिर ठीक को साची, आपे जाने सोई, किव कर आखा किव सालाही, क्यों वरनी किव जाना, नानक आख।

एके जिसनो बख्शे सिफत सलाह नानक पातशाही पातशाह अमूल गुण अमूल वपार मूल वपारिये अमूल भंडार अमूल आवह अमूल लै जाहे अमूल पाए अमूला समाहे अमूल धर्म अमूल दीवान अमूल तुल अमूल परवान अमूल बख्शीश अमूल निशान अमूल कर्म अमूल।

देवतियां दर नाले गाव है सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारी गावन जति सती संतोखी गाव है वीर करारी गावन पंडित पन्न रखीसर जुग जुग वेदा नाले गाव है मोहनिया मन मोहन सुरगा मच पयाली गावन रतन उपाए तेरे अठ सठ तीर्थ नाले गाव है जोध महाबल सूरा गाव है खानी चारी गाव है खंड मंडल वर पंडा कर कर रखे तारे से ही तुदनो गाव है जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चेतना आवन नानक क्या विचारी सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है पी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर विखे कीता अपना जिव तिस दी वडियाई जो तिस पावे सोई करसी हुक्म ना करना जाई सो पात शाहु सहा पात साहिब नानक रहन रजाई मुंदा संतोख शर्म पत चोली।

आई पंथी सगल जमाती मन जीतै जग जीत आदेश दिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजह नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद अवरा साध संजोग वजोग दुहकार चलावह लेखे आवह भाग आदेश दिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस एका माई जुगत व्याई तिन केले परवान एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान जिव तिस पावै तिमें चिलावै जिव होवै।

आद अनिल अनाद अनाहक जुग जुग एको वेश आसन लोए लोए पंडार जो किश पाया सो एकावार कर कर वेखै सिरजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश सया देस आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश एक दूजी पौ लख होहे लख होवह लख वीस लख लख गेड़ा आखिय है एक नाम जगदीश एक राहे पत पवड़िया चढ़िया होए अतीस सुन गल्ला आकाश की कीता आई रीस नानक नगरी।

जोर जोर लागी मन मरन नह जोर जोर ना राज माल मन शोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुट्टे संसार जिस हाथ जोर कर वेखै सोए नानक उत्तम नीच ना कोई राती रुती थिती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्म।

रह जाए। धर्म खंड का हो धर्म, ज्ञान खंड का आख हो कर्म। केते पवन पानी वह संतर, केते कान महेश, केते बर में कार्त करिय है।

नानक अंत ना अंत ज्ञान खंड मह ज्ञान प्रचंड तिथे नाद बलोद कोड आनंद सर्म खंड की वाणी रूप तिथे घाट घड़िए बहुत अनूप ताकियां गल्लां कथियां ना जाहे जे को कह पिछे पछताए तिथे घड़िए सुरत मत मन बुद्ध तिथे घड़िए सुरा सिद्धा की सुध कर्म खंड की बाणी जोर तिथे होर ना कोई होर तिथे जोद महाबल सूर तिन मह राम रहया भरपूर।

राजा धर्म दुआरी गावन तुदनो चित गुप्त लिख जानन लिख लिख धर्म विचारी गावन तुदनो ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सुवारी गावन तुदनो इंद्र इंद्रासन बैठी।

कामन तुदनो पंडित पंडर खीस जुग जुग वेदा नाली गामन तुदनो मोहनिया मन मोहन सुरग मच्छ पाए आली गामन तुदनो रतन उपाए तेरे अठ सठ तीरथ नाली गामन तुदनो जोध महाबल सूरा गामन तुदनो खानी चारी गामन तुदनो खंड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे तारे से तुदनो गावन जो तुद पावन रत्ते तेरे भगत रसाले।

सोई सदा सत साहिब साचा साची नाई है पी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन अपाई कर कर देखे कीता अपना ज्यों तिस दी वडियाई जो तिस भावे सोई करसी फिर हुक्म ना करना जाई सो पातशाह सहा पत साहिब नानक रहन रजा।

मिल सुरत कमाई, सब कीमत मिल कीमत पाई, ज्ञानी त्यानी गुर गुरहाई, कहन न जाई तेरी तिल वड्याई, सब सत सब तप सब चंगियाईयां, सिद्धां पुरखां कियां वड्याईयां, तुद मिन सिद्धी किनै ना पाईया, कर्म मिलै ना ही ठाक रहाईया।

खाई, हर कीरत हमरी रहरास रहाओ, हर जन के वड भाग वडेरे, जिन हर हर शरदा हर प्यास, हर हर नाम मिले तृप्ता सह, मिल संगत गुण परगास, जिन हर हर हर रस नाम ना पाया, ते भागहीन जम पास, जो सतगुर सरन संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास, जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास, धन धन सत संगत, जित हर रस पाया,

सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगमय अपारा सब त्यावह सब त्यावह तुद जी हर सच्चे सिरजन हारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दा तारा हर त्याव

तुझ जी जन नानक तिन कुर्बाना हर त्यावे है हर त्यावे है तुझ जी से जन जुग मह सुखवासी से मुक्त भये जिन हर त्याया जी तिन तूती जमती फासी जिन निरभउ जिन हर निरभउ त्याया जी तिन का भउ सब गवासी जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से धन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी परे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनक अनेक अनंता तेरी अनक करह हर पूजा जी तप ताप है जप है बेअंता तेरे अनेक पढ़े बहु सिमरत शास्त जी कर क्रिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो भाव है मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जेवड अवर ना कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू निश्चल करता सोई तुद आपे पावे सोई वरतै जी तू आपे करह सो होई तुद आपे श्रेष्ठ सब उपाई जी तुद आपे सिरज सब गोई जन ना

आवन रागयासा महला पहला शे कार शे गुर शे अपदेश गुर गुर एको वेश अनेक बाबा जय कर करते कीरत होए सो कर राख वडाई तोए रहाउ विश्वे चसिया कड़िया पहरा थिती वारी माह होआ सूरज एको रुत अनेक नानक करते के केते वेश राग तनासरी महला पहला गगन में थाल रव चंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती धूप मल आन लो पवन चवरो करे सगल बनराए फूल अंत ज्योति कैसी आरती होए भव खंडना तेरी आरती अनहता शब्द वाजंत पेरी रहाउ सहस तव नैन नन नैन है तुहि कहो सहस मूर्त नना एक तोहि सहस पद बिमल नन एक पद गंध बिन सहस तव गंध इव चलत मोहि सब मह जोत जोत है सोए किस दै चानन सब मह चानन होए गुर साखी जोत प्रगट होए जो तिस भावे सो आरती होए हर चरण कमल मकरंद लोभत मनो

साकत हर रस साधना जानिया, इन अंतर हो मैं कंडा ही, जो जो चल है चुभे दुख पावे, जमकाल सह सिर डंडा ही, हर जन हर हर नाम सुमानी, दुख जन्म मरण भव खंडा ही, अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर, बहु शोभ खंड ब्रह्मंडा ही, हम गरीब मशकीन प्रभ तेरे, हर राख राख वड वड्डा ही, जन नानक नाम।

अगर चंदन लीप आवे चाऊ मत देख भूला विसरै तेरा चेतना आवे नाऊ हर बिन जियो जल बल जाऊ मैं अपना गुरपूछ देखिया अवर नाही थां रहाऊ धरती ता हीरे लाल जड़ती।

सिद्ध हुआ सिद्ध लाई रिद्ध आखा आउ गुपत प्रगट हुए बैसा लोक राखे पाऊ मत देख भूला विसरे तेरा चेतना आवे नाउ सुल्तान हुआ मेल लश्कर तख्त राखा पाऊ हुक्म हासिल करी बैठा नानका सब वाऊ मत देख भूला विसरे तेरा चेतना आवे नाउ श्री राग महला पहला।

दास जित बोले पत पाई है सो बोलिया परवान फिक्का बोल विगुचना सुन मूर्ख मन अजान जो तिस भावे है से भले होर के कहन बखान तिन मत तिन पत तिन धन पल्ले जिन हिरदै रहिया समाए तिन का क्या सा लाहना अवर सवाल्यो काय नानक नदरी बाहरे राचे है दान ना नाय श्री राग महला पहला अमल गलोला कूड़ का दिता देवन हार मत्ती मरण वसारिया।

जित सेवै सुख पाईऐ तेरी दरगाह चलै मान रहाव सच सरा गुड़ बाहरा जिस विच सच्चा नाम सुनह वखाण है जेतड़ी हौं तिन बलिहारै जाऊं ता मन खीवा जानिए जा महली पाए थाऊं नाव नीर चंगियाईयां सत परमल तन।

आस सो क्यों मनहु विसारिय जाके जी प्राण तिसविन सब अपवित्र है जेता पहनन खान होर गल्ला सब कूड़िया तुद भावे परवान श्री राग महल पहला जाल मोह कस मस कर

आओ, घर मंदिर खुशी नाम की, नदर तेरी परवार, हुक्म सोई तुद भावसी, होर आखण बहुत अपार, नान

रहाउ। पूज लगे पीर आखिए सब मिले संसार, नाउ सदाए अपना होवे सिद्ध सुमार। जां पत लेखे ना पवे सभा पूज खुआर, जिनको सतगुरु था।

सच मिलै गुरमत पल्लै पाए सो नर जम्मै ना मरै ना आवै ना जाए नानक दर प्रधान सो दरगाहा पैंदा जाए श्री राग महल पहला तन जल बल माटी भया मन माया मोहे मनूर औगण फिर लागू पए कूर बजावै तूर बिन शब्द परमाई है दुबदा डोबे पूर मन रे शब्द तरहो चित लाए जिन गुरमुख नाम ना बूझिया मर जन्मै आवै जाए रहाउ तन सूचा सो आखी है जिसमें साचा नाउ भै सच राती देहोरी जेहवा सच सुआउ सच्ची नदर निहाली है

गुरमुख नाम सलाहिया हौ मैं निवरी पाही रहाउ। सुन सुन गंडन गंडिया लिख पढ़ बुझह पार। तृष्णा अहनिस अगली हौ मैं रोग विकार। ओह वे परवाहु अतोलवा गुरमुख कीमत सार। लख सियाणप जे करी लख सियों प्रीत मिलाप। बिन संगत साधना त्रापिया

अस तू सर्व जियां प्रित पाल ही लेखै सास ग्रास अंतर गुरमुख तू वस है ज्यों पावै त्यों निरजास जियरे राम जपत मन मा।

रूंग वड्डा मन माहे क्यों दरगाह पत पाई है जां हर ना वसै मन माहे गुर मिलिया सुख पाई है।

गत गए नाही सहसा सोग। गुरमुख जिस हर मन वसै तिस मेले गुर संयोग। काया कामन जे करी भोगे भोगण हार। इस स्यों नेहो ना की जई जो दिसै चलन हार। गुरमुख रवह सुहागणी सो प्रभ सेज पतार। चारे अगन निवार मर गुरमुख हर जल पाए। अंतर कमल परगासिया अमृत भरिया अगाए। नानक सतगुर मीत कर सच पाव है दरगाह जाए। श्री राग महला पहला हर हर जपो प्यारिया। गुरमत ले हर बोल मन सच कसवटी लाई।

हर ही राह गुर माहे सत संगत सत गुर पाई है अहनस शब्द सलाहे रहाओ सच वखर धन रास लै पाई है गुर परगास ज्यों अगन मरे जल पाए त्यों तृष्णा दासन दास जम जंदार न लगई त्यों भौजल तरै तरास गुरमुख कूड़ न पावई सच रते सच पाए साकत।

मन मानक निर्मूल है। राम नाम पत पाई मिल सत संगत हर पाई है। गुरमुख हर लिव लाई आप गया सुख पाया। मिल सलल सलल समाई जिन हर हर नाम ना चेतियो सो अवगुण आवे जाई। जिस सत गुरु पुरख ना भेटियो सो भौ जल।

गुर मिल पाओ जल लंगिया दरगाह पात परवान नानक ते मुख उजले धुनि उपजै शब्द निशान श्री राग महला पहला वणज करहो वणजारिहो वखर लिहो संभाल तैसी वस्त वसाही है जैसी निबह नाल अगे साहु सुजान है लैसी वस्त संभाल भाई रे राम कहो चित लाए हर जस वखर लै चलो सहो देख पति आए रहाओ जिन्ना रास ना सच है क्यों किन्ना सुख होए खोटे वणज वणजे मन तन खोटा होए ठाही पाथे मिर्ग ज्यो दुख घणो नेतरोए खोटे पोते ना पवह तिन हर गुर दर्स ना होए खोटे जात ना पत है खोट ना सी जस कोए खोटे खोट कमावना आए गया पत खोए नानक मन समझाई है गुर कै शब्द साला राम नाम रंग रतिया पार ना भरम तिना हर जप लाहा अगला निरपव हर मन माह श्री राग महला पहला कर दूजा तन जो

राव रहया भरपूर रहाओ आपे माछी मछली आपे पानी जाल आपे जाल मणकड़ा आपे अंदर लाल आपे बहो बिदरंगला सखिए मेरा लाल नेत्र वै सुहागणी देख हमारा हाल।

शैतान मत कट जाई, नानक आखे राहे पै चलना, माल धन कित कू संजियाही। श्री राग महला पहला कर चौथा, सोई मौला जिन जग मौलिया, हरिया किया संसारू, आब खाक जिन बंद रहा।

ओहे तू ओना का तेरे ओहे असी बोल वगाड़ वगाड़ है बोल तू नदरी अंदर तोलह तोल जह करनी तह पूरी मत करनी बाजहो घटे घट प्रणवत नानक ज्ञानी कैसा होए।

अंतर हर रस रव रहिया, चूका मन अभमान हिरदय कमल परगासिया, लागा सहज त्यान मन निर्मल हर रव रहिया, पाया दरगह मान सतगुर सेवन अपना, ते विरली संसार हौमै ममता मार कै, हर राखिया उरतार हौ तिनकै बलिहारन, जिन्ना नामे लगा प्यार से सुखिए चौ जुगी, जिन्ना नाम अखुट अपार, गुर मिले नाम पाईए चूकै मोह प्यास, हर सेती मन रव रहिया, घर ही माहे उदास, जिन्ना हर का साध आया, हौ तिन बलिहारै।

बहु भीख कर परमाइए मन हृदय कपट कमाई हर का महल ना पावई मर विष्टा माही समाई मन रे ग्रह ही माही उदास सच संयम करनी सो करे गुरमुख होए परगास रहाओ गुर कै शब्द मन जीतिया गत मुक्त करे मह पाए हर का नाम त्याई है सत संगत मेल मिलाए जे लख इस्तरियां भोग करह नव खंड राज कमाहे बिन सत गुर सुख ना पावई फिर जोनी पाहे हर हार कंठ जिन्नी पहरिया गुर चरणी चित लाए तिन्ना पिछे रिद सिद्ध फिरे ओना तिल ना तमाए जो प्रभु भावै सो थीए अवर ना करना जाए जन ना

सब मह एक वर्त दा एको रहिया समाय जिसनो आप दयाल हुई सो गुरमुख नाम समाय पढ़ पढ़ पंडित ज्योत की वाद करह विचार मत बुद्ध भवी ना बुझई अंतर लोभ विकार लख 84 भ्रम दे भ्रम भ्रम होए खवार पूर्व लिखिया कमावना कोई ना मेटन हार सत

आई, पारस परसी है पारस हुई, ज्योति ज्योत सुमाई, जिनको पूर्व लिखिया तिन सत गुर मिलिया आई। मन भुखा भुखा मत करह, मत तू करह पुकार, लख चौरासी जिन सिरी सब सह दे आधार।

निर्मले हौ सद बलिहारे जास हृदय जिनकै हर वसै इत घट है परगास मन मेरे हर हर निर्मल त्याए तुर मस्तक जिनको लिखिया ते गुरमुख रहे लिव लाए रहाओ हर संत हो देखो नदर कर निकट वसै भरपूर गुरमत जिन्नी पछाणिया से देखे सदा हदूर जिन गुण तिन सद मन वसै औगणवंतियां दूर मनमुख गुण तै बाहरी बिन नावे मरदे झूर जिन शब्द गुरु सुन मन्निया तिन मन प्याया हर सोए अन दिन भगती रत्या मन तन निर्मल होए कूड़ा रंग कसुंभ का बिन सजाए दुख रोए जिस अंदर नाम परगास है ओह सदा सदा थिर होए एहो जन्म पदार्थ पाए कै हर नाम ना चेतै लिव लाए पग खिसिए रहना नहीं आगे ठौर ना पाए ओह वेला हाथ ना आवई अंत गया पछताए जिस नदर करे सो उबरै हर सीती लिव लाए देखा देखी सब करे मनमुख बूझ ना पाए जिन गुरमुख हिरदा सुध है सेव पई तिन थाए हर गुण गाव है हर नित पढ़ है हर गुण गाए समाए नानक तिनकी बाणी सदा सच है जे नाम रहे लिव लाए श्री राग महला तीजा जिन्नी एक मन नाम ते आया गुरमती विचार तिनके मुख सद उजले

गुरमुख सदा पत होए, हर हर सदा त्याई है, मल हमें कदे धोए रहाउ, मनमुख नाम ना जाननी, विन नामे पत जाए, शब्द साधना आयु लागे दूजे पाए, विस्टा के कीड़े पवह विच विस्टा, से विस्टा माहे समाए, तिनका जन्म सफल है, जो चल है सतगुर पाए, कुल उधार है अपना, धन जणेंदी माए, हर हर नाम ते आई है, जिसनो कृपा करे रजाए, जिन्नी गुरमुख नाम ते आया, विचो हो आप गवाए, वे अंदर हो बाहर हो निर्मले, सच्चे सच समाए, नानक आए से परवान है, जिन गुरमति हर त्याय, श्री राग महला तीजा, हर भगता हर तन रास है, गुरपूछ कर है वापार, हर नाम सलाहन सदा सदा, वखर हर नाम आधार, गुरपूरै हर नाम दृढ़ाया, हर भगता अतुट भंडार, भाई रे इस मन को समझाए, हे मन आलस क्या करह, गुरमुख नाम त्याय रहाउ, हर भगत हर का प्यार है, जे गुरमुख करे विचार, पाखंड भगत ना होवे, दुबदा बोल खुआर, सो जन रलाया ना रले, जिस अंतर विवेक विचार, सो सेवक हर आखी है, जो हर राख है उरतार, मन तन सौंपे आगे तरे, हो मैं विचो मार, तन गुरमुख सो

आनंदिन नाम त्याय रहाउ साची मैल ना लागई मन निर्मल हर त्याय गुरमुख शब्द पछाणिए हर अमृत नाम समाय गुर ज्ञान प्रचंड बुलाया अज्ञान अंधेरा जाय मनमुख मैले मल परी हऊ मैं।

मन मुख मोहे व्यापिया बैराग उदासी ना होए शब्द ना चीने सदा दुख हर दरगह पात खोए हों मैं गुरमुख खोइए नाम रते सुख होए मेरे मन एहन सपूर रही नित आसा सतगुर सेव मोह परजलै घर ही माहे उदासा रहाउ गुरमुख कर्म कमावै बिगसै हर बैराग आनंद अनदिन भगत करे दिन राती हों मैं मारनी चंद वड्डै भाग सत संगत पाई हर पाया सहज आनंद सो साधु बैरागी सोई हिरदै नाम वसाए अंतर लाग न तामस मूले विचों आप गवाई नाम निधान सतगुरु दिखालिया हर रस पिया अगाए जिन किने पाया साध संगती पूरे भाग बैराग मन मुख फिर है ना जान है सतगुर हों मैं अंदर लाग नानक शब्द रते हर नाम रंगाए बिन भय के ही लाग श्री राग महला तीजा घर ही सौदा पाईए अंतर सब वथ होए खिन खिन नाम संभालिए गुरमुख पावे कोई नाम निधान अखुट है वडभाग प्राप्त होए मेरे मन तज निंदा हों मैं अहंकार हर जीव सदा त्याए तू गुरमुख एक अंकार रहाउ गुरमुखा के मुख उजले गुर शब्दी बीचार हलत पलत सुख पाएंदे जप जप हृदय मुरार घर ही विच महल पाया गुर शब्दी बीचार सतगुरु तेजो मोह फेर है मथे तिन काले अन दिन दुख कमाव दे नित जो हे जम जाले सुपने सुख ना देखनी बहु चिंता पर जाले सबना का दाता एक है आपे बख्श करे कहना किशु ना जावई जिस पावे तिस दे नानक गुरमुख पाईए आपे जाने सोए श्री राग महला तीजा सच्चा साहिब सेवीए सच वडियाई दे गुर प्रसादी मन वसै हों मैं दूर करे इहो मन धावत तां रहै।

पाई। लाहा हर हर नाम मिले सहजी नाम समाई। बिन गुर महल ना पाईए नाम ना प्राप्त होए। ऐसा सतगुर लोड़ लहू जिदू पाईए सच सोए। असुर संघारे सुख वसे जो तिस भावे सो होए। जेहा सतगुर कर जानिया तेहो जेहा सुख होए। एहो सहसा मूले नाही पाओ लाए जन कोए। नानक एक जोत दोए मूर्ति शब्द मलावा होए। श्री राग महला तीजा अमृत छोड़ बिख्या लोवाणी। सेवा करह विडाणी अपना धर्म गवावह बूझह नाही। अन दिन दुख विहानी मनमुख अंध ना चेत ही। डूब मोए बिन पानी मन रे सदा भजो हर सरनाई। गुर का शब्द

जात सात ताप पवित्र शरीरा हर हर मन वसाय सदा आनंद रह दिन राती मिल प्रीतम सुख पाय जो सतगुर की शरणागति हौ तिनकै बल जाऊं दर सच्चै सच्ची वडियाई सहजे सच समाऊ नानक नदरी पाईऐ गुरमुख मेल मलाऊ श्री राग महला तीजा मनमुख कर्म कमावनी ज्यों दुहागण तन शिंगार सीजै कंत ना आवई नित नित होए खुआर पिरका महल ना पावई ना दिसै घर बार भाई रे एक मन नाम त्याए संता संगत मिल रहे जप राम नाम सुख पाए रहाउ गुरमुख सदा सुहागणी पिर राखिया उर धार मिठा बोलह निव चलह सेजै रवै पतार सोभावंती सुहागणी जिन गुर का हित अपार पूरे भाग सतगुर मिले जा भागै का उदौ होए अंतर हो दुख भ्रम कटियै सुख प्राप्त होए गुर कै भाणै जो चलै दुख ना पावै कोई गुर के भाणे विच अमृत है सहजे पावै कोई जिन्ना प्राप्त तिन पिया हों मैं विचों खोए नानक गुरमुख नाम त्याई है सच मिलावा होए श्री राग महला तीजा जा पिर जाने अपना।

गुर बिन भगत ना होए, बिन गुर भगत ना पाई, जे लोचै सब कोए रहाउ। लख 84 फेर पया कामण।

गुरमुख बूझे कोए बिन बूझे कर्म कमावणे जन्म पदार्थ खोए रहाउ जिन्नी चाखिया तिन्नी साध पाया बिन चाखे भरम भुलाए अमृत साचा नाम है कहना कछु ना जाए पीवत हूं प्रमाण भया पूरा शब्द समाए आपे दे ता पाई है

कमाए। जात सत संयम नाम है, विण नाम है निर्मल ना होए। पूरे भाग नाम मन वसै, शब्द मिलावा होए। नानक सहजे ही रंग वरतदा।

बिख भव जल शब्द गुर तरना रहाउ। त्रै गुण सभा धात है दूजा भाव विकार। पंडित पढ़े बंधन मोह बाधा नह बूझे बिख्या प्यार। सतगुर

अत सबल है छे ना कित उपाय दूजे पाए दुख नाहींदा बहुती दे सजाई नानक नाम लगे से उभरे

मन तन सी तल साच सियो सास न बिरथा कोए मेरे मन हर का नाम त्याए साची।

अगली मनुआ रज्जा सहज सुपाई गुर का शब्द अमृत है जित पीतै तिख जाय इहो मन साचा सच रत्ता सच्चे रहया समाई आखण वेखण बोलना शब्दे रहया समाई बाणी वजी चहु जुगी सचो सच सुनाय हऊ मैं मेरा रह गया सच्चै लया मलाय तिनको महल हदूर है जो सच रहे लिवलाय नदरी नाम ते आई है विन कर्मा पाया ना जाय पूरे भाग सत संगत लह सतगुर भेटै जिसे आय अन दिन नामे रत्या दुख बिखिया विचों जाय नानक शब्द मलावड़ा नामे नाम समाय श्री राग महला तीजा अपना भौ तिन पायुन जिन गुर का शब्द बीचार सत संगति सदा मिल रही सच्चे के गुण सार दुबधा मैल चुकाइयन हर राखिया उर तार।

शब्द सवारन हार रहाव सत्य शब्द मन मोहया प्रभ आपे लय मलाय अनदिन नामे रत्या ज्योति ज्योत समाय ज्योति हूँ प्रभ जापदा बिन सतगुर बूझ ना पाय जिनको पूर्व लिखिया सतगुर पेटिया तिने आय बिन नावे सब डुमणी दूजे भाए खवाय तिस बिन घड़ी ना जीवंदी दुखी रहन विहाय परम पुलाना अंदला फिर आवे जाय नदर करे।

नानक गुरमुख पाए श्री राग महला तीजा बिन गुर रोग ना टुटई हम मैं पीड़ ना जाए गुर प्रसादी मन वसै नामे रह समाए गुर शब्दी हर पाईए बिन शब्द भरम भुलाए मन रे निज कर वासा होए राम नाम सलाहे तू फिर आवन जान ना होए रहाउ हर इको दाता वर्तदा दूजा अवर ना कोई शब्द सलाही मन वसै सहजे ही सुख होए सब नदनी अंदर वेखदा जय पावै तै दे हम मैं

के सदूर जिन फिर संगे जानिया फिर रावे सदा हदूर मुंदे तू चल गुर कै पाए अन दिन रावह फिर अपना सहजी सच समाए रहाउ शब्द रतियां सुहागणी सच्चा शब्द शिंगार हर वर पाइन घर आपण गुर कै हित प्यार सेज सुहावी हर रंग रवै भगत भरे भंडार सो प्रभ प्रीतम मन वसै जे सब सह दे आधार फिर सलाह ने अपना तिनकै हों सद बले।

सोई। गुरमुख बाणी ब्रह्म है, शब्द मिलावा होय। नानक नाम संभाल तू, जित सेवे है सुख होय। श्री राग महला तीजा, जग हों मैं मैल दुख पाया। मल लागी दूजे पाई, मल हों मैं धोती किवै न उतरै। जे सो तीर्थ नहाए, बहु

गुर सरणी आवे ता निर्मल हुई, मनमुख हर हर कर थके मैल ना सकी तो होए रहाउ। मन मैल भगत ना होवे नाम ना पाया जाए, मनमुख मैले मैले मोए जासन पत गुआई। गुर प्रसादी मन वसे मल हम मैं जाए समाए, ज्यों अंधेरै दीपक बाली है त्यों गुर ज्ञान अज्ञान तजाए। हम किया हम करहेंगे हम मूर्ख गावार, करने वाला विसरिया दूजे पाए प्यार। माया जेवड दुख नहीं सब भव थके संसार, गुरमती सुख पाई है सच नाम उरतार। जिसनो मेले सो मिले हम तिस बलिहारे जाऊं, ए मन भगती रत्या सच बाणी निज थाऊं। मन रत्ते जिहवा रत्ती हर गुण सच्चे गाऊं, नानक नाम ना विसरै सच्चे माही समाऊं। श्री राग महला चौथा घर पहला, मैं मन तन बिरहो अत अगला। क्यों प्रीतम मिले घर आए जा देखा प्रभ अपना, प्रभ देखिया दुख जाए। जाए पुछा तिन सजना प्रभ कित बिद मिले मलाए, मेरे सतगुरा मैं तुझ बिन अवर ना कोए। हम मूर्ख मुग्ध शरणागति कर कृपा मेले हर सोए रहाउ। सतगुरु दाता हर नाम का प्रभ आप मलावै सोए, सतगुर हर प्रभ बुझिया गुर जेवड अवर ना कोए। हौ गुर सरनाई टह पवा कर दया मेले प्रभ सोए, मन हठ किने ना पाया कर अपाव थके सब कोए। सहस सियाणप कर रहे मन पूरे रंग ना होए, कूड़ कपट किने ना पायो।

थीए, मेरे सतगुर नाम दृढ़ाई रहाउ, नाम अमोलक रतन है, पूरे सतगुर पास, सतगुर सेवै लगिया, कड रतन देवै परगास, धन वड भागी वड भागिया, जो आए मिले गुर पास, जिन्ना सतगुर पुरख न भेटे हो, से भागहीन वस काल, ओए फिर जोन पुआई है, विच विस्ता कर विकराल, ऊना पास दुआस न पीती है, जिने अंतर क्रोध चंडाल, सतगुर पुरख अमृत सर, वडभागी नावह आए, हुन जन्म जन्म की मैल उतरै, निर्मल नाम दृढ़ाए, जन नानक उत्तम पद पाया।

गुरमुख सज्जन गुण कारिया मिल सज्जन हर गुण गाय हीरा हीर मिल भेदया रंग चलूलै नाय मेरे गोविंदा गुण गावा तृप्त मन होए अंतर प्यास हर नाम की गुर तुस मलावै सोए रहाओ मन रंग हो वडभागी हो गुर तुठा करे पसाओ गुर नाम दरडारे रंग स्यो आऊ सतगुर कै बल जाओ बिन सतगुर हर नाम ना लभई लख कोटि कर्म कमाओ बिन भागा सतगुर ना मिलै कर बैठिया निकट नित पास अंतर अज्ञान दुख भरम है विच पड़दा दूर पई आस बिन सतगुर भेटे कंचन ना थीऐ मनमुख लोहो बूढ़ा बेड़ी पास सतगुर बोहत हर नाव है इत बिद चढ़िया जाय सतगुर कह पाण जो चलै विच बोहित बैठा आए तन तन वड भागी नानका जिन्ना सतगुर लय मलाय श्री राग महला चौथा हौ पंथ दसाई नित खड़ी कोई प्रभ दसे तिन जाऊं जिन्नी मेरा प्यारा रावया।

जे होवी पूर्व लिखिया तां गुर का बचन कमाहे रहाउ। हरी नाही नह डडोरी पक्की वडण हार, लै लै दात पहुंतिया लावे कर तैयार। जा हुआ हुक्म किरसान दा तां लुण मिणिया खेतार। पहला पैर तंदै गया दूजे भर सोया, तीजे चाक चखाया चौथे भोर भया। कद ही चेतना आयो जिन जियो पिंड दिया, साध संगत को वारिया जियो किया कुर्बान। जिसते सो जी मन पई मिलिया पुरख सुजान। नानक डिठा सदा नाल हरे अंतर जामी जान। श्री राग महला पंजवा सबे गल्ला विसरन इको विसर ना जाओ। धंधा सब जलाए कै गुर नाम दिया सच सुआओ। आसा सबे लाए कै इक आयास कमाओ जिन्हें

एक हाथ जन्म पदार्थ सफल है जे सच्चा शब्द काथ गुरते महल प्राप्ति जिस लिखिया हो है मत मेरे मन एक स्यों चित लाए एक सबिन सब तंद है सब मिथ्या मोह माय रहाउ लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे निमख एक हर नाम दे मेरा मन तन शीतल होय जिस को पूर्व लिखिया किन सतगुर चरण गहे सफल मूरत सफला घड़ी जित सच्चे नाल प्यार दुख संताप ना लग गई जिस हर का नाम आधार बाहां पकड़ गुर काढ़िया सोई उतरिया पार थान सुहावा पवित है जिथे संत सभा ढोई तिस ही नो मिलै जिन पूरा गुरु लब्बा नानक बद्दा घर तहां जिथे मिर्त ना जन्म जरा श्री राग महला पंजवा सोई त्याई जीअड़े सिर शाह पातशाह तिस ही की कर आसमन जिसका सब सविसाह सब सियाणपा छड कै गुर की चरणी पाह मन मेरे सुख सहज सेती जपनाओ आठ पैर प्रभ त्याए तू गुण गोविंद नित गाओ रहाओ तिसकी सरनी परमना जिस जेवड़ अवर ना कोई जिस सिमरत सुख होए घना दुख दर्द ना मूले होए सदा सदा कर चाकरी प्रभ साहिब सच्चा सोए साध संगत होए निर्मला टटिए जम की फास सुख दाता पै भंजनो तिस आगे कर अरदास मेहर करे जिस मेहरवान ता कारज आवै रास बहुतो बहुत वखाणी है।

सच देव हो अपना नाम। श्री राग महला पंजवा। नाम त्याए सो सुखी किस मुख उजल होए, पूरे गुरते पाईए प्रगट सबनी लोए। साध संगत कै घर वसै एको सच्चा सोए, मेरे मन हर हर नाम त्याए नाम सहाई।

माया का रंग सब फिक्का जातु बिनस निदान जा कै हृदय हर वसै सो पूरा प्रदान साधु की हो रेणुका अपना आप त्याग अपार सियाणप सगल छड गुर की चरणी लाग तिसह प्राप्त रतन होए जिस मस्तक होए भाग तिसह प्राप्त भाई हो जिस देवे प्रभ आप सतगुर की सेवा सो करे जिस बिनसै होमे ताप नानक कौ गुर भेटिया बिनसे सगल संताप श्री राग महला पंजवा एक पछाणु जी का इको रखन हार इकस का मन आसरा इको प्राण आधार तिस सरनाई सदा सुख पार ब्रह्म करतार मन मेरे सगल उपाव त्याग गुर पूरा

मात पिता एकस की मन टेक है, जिन जियो पिंड दिता सो प्रभ मनोहना विसरै, जिन सब किस वस कीता घर इको बाहर इको थान तनंतर आप, जी जंत सब जिन किए आठ पहर तिस जाप, एकस सेती रत्या ना हुवी सोग संताप, पार ब्रह्म प्रभ एक है दूजा नाही कोय, जियो पिंड सब तिसका जो तिस भावै सो होए, गुरपूरै पूरा भया जप नानक सच्चा सोए, श्री राग महला पंजवा जिन्ना सतगुर सिंह चित लाया, से पूरे प्रधान जिनको आप दयाल होए, किन उपजै मन ज्ञान जिनको मस्तक लिखिया तिन पाया हर नाम, मन मेरे एको नाम त्याए, सर्व सुखा सुख उपजह दरगाह पैंदा जाए, रहाऊ जन्म मरण का पाऊ गया पाऊ भगत गोपाल, साधु संगत निर्मला आप करे प्रतपाल, जन्म मरण की मल कटी है गुरदर्शन देख निहाल, थान थनंतर रव रहया

सो होए। जिन मन वसिया पार ब्रह्म से पूरे प्रधान, तिनकी शोभा निर्मली प्रगट पई जहान। जिन्नी मेरा प्रभ त्याया नानक तिन कुर्बान। श्री राग महला पंजवा। मिल सतगुर सब दुख गया, हर सुख वसिया मन आई। अंतर ज्योत परगासिया एक सस्यों निवलाय। मिल साधु मुख उजला पूर्व लिखिया पाय। गुण गोविंद नित गावणी निर्मल साचै नाय। मेरे मन गुर शब्दी सुख होए, गुर पूरे की चाकरी बिरथा जाए ना कोई रहाओ। मन किया इच्छा पूरिया पाया नाम निदान। अंतर जामी सदा संग करने हार पछान। गुर प्रसादी मुख उजला जप नाम दान इशनान। काम क्रोध लोभ बिनसिया तजिया सब अपमान। पाया लाहा लाभ नाम पूर्ण होए काम। कर कृपा प्रभ मेलिया दिया अपना नाम। आवन जाना रह गया आप हुआ मेहरवान। सच महल घर पाया गुर का शब्द पछान। भगत जना को राखदा अपनी कृपा तार। हलत पलत मुख उजले साचे के गुणसार। आठ पहर गुणसार दी रत्ती रंग अपार। पार ब्रह्म सुख सागरो नानक सद बलिहार। श्री राग महला पंजवा। पूरा सतगुरु जे मिले पाईए शब्द निदान। कर कृपा प्रभ अपनी जपिए अमृत नाम। जन्म मरण दुख काटिए लागे सहज ध्यान। मेरे मन प्रभ सरनाई पाए हर बिन दूजा को नहीं। एको नाम त्याए रहाओ कीमत कहन ना जाइए। सागर गुणी अथाह वडभागी मिल संगति सच्चा शब्द वसाह। कर सेवा सुख सागर है सिर शाह पातशाह। चरण कमल का आसरा दूजा नाही ठाव। मैं धर तेरी पार ब्रह्म तेरे तान रहाव। नेमाणिया प्रभ मान तू तेरे संग समाओ। हर जपिए आराधिए आठ पहर गोविंद। जी प्राण तन धन रखे कर कृपा राखी जिंद। नानक सगले दुख उतारियन प्रभ पार ब्रह्म बख्शिंद। श्री राग महला पंजवा। प्रीत लगी तिस सच सियो मरे ना आवे जाय। ना वे छोड़िया विछड़ सब मह रहिया समाय। दीन दर्द दुख भंजना सेवक कै सत पाय। अचरज रूप निरंजनो गुर मेलाया माय। भाई रे मीत करहो प्रभ सोय। माया मोह प्रीत त्रिग सुखी ना दिसै कोय रहाउ। दाना दाता सीलवंत निर्मल रूप अपार। सखा सहाई अत वड्डा ऊंचा वड्डा अपार। बालक बिरध ना जानिए निश्चल तिस दरबार। जो मंगिए सोई पाईए निधारा आधार। जिस पेखत किल विख हिरह मन तन होवे शांत। एक मन एक त्याई है मन की लाहे प्रांत। गुण निधान नवतन सदा पूर्ण जाकी दात। सदा सदा आराधी है दिन विसरो नहीं रात। जिनको पूर्व लिखिया तिनका सखा गोविंद। तन मन तन अर्पी सबो सगल वारिया एह जिंद। देखै सुनै हदूर सद कट कट ब्रह्म रविंद। किरत कणा नु पालदा प्रभ नानक सद बख्शिंद। श्री राग महला पंजवा। मन तन धन जिन प्रभ दिया रखिया सहज सवार। सर्ब कला कर थापिया अंतर ज्योत अपार। सदा सदा प्रभ सिमरिय
अंतर रख उरतार मेरे मन हर बिन अवर ना कोए प्रभ सरनाई सदा रहो दुख ना व्यापै कोए रहाउ रतन पदार्थ मानका सोयना रूपा खाक मात पिता सुत बंध पा कूड़े सबे साक गिनकी तात सह ना जानी मन मुख पास न पाक अंतर बाहर रव रहया तिसनो जाने दूर तृष्णा लागी रच रहया अंतर हो मैं कूर भगती नाम विहूनिया आवह वंजह पूर राख लिहो प्रभ करन हार जी जंत कर दया बिन प्रभ कोई ना रखन हार महा बिकट जम भया नानक नाम ना विसरौ कर अपनी हर मया श्री राग महला पंजवा मेरा तन अर धन मेरा राज रूप मैं देस सुत दारा बनता अनेक

अनुसाद की अठ सठ तीर्थ नाओ जियो प्राण मन तन हरि साचा इहो सुआउ एथे मिलह वडाइया दरगह पावह थाउ करे कराए आप प्रभ सब किस तिस ही हाथ मारिया पे जीवाल दा अंतर बाहर साथ नानक प्रभ शरणागति सर्व कटा के नाथ श्री राग महला पंजवा शरण पए प्रभ अपने गुरु हुआ कृपाल सतगुर कै अपदेसे बिनसे सर्व जंजाल अंदर लगा राम नाम अमृत नदर निहाल मन मेरे सतगुर सेवा सार करे दया प्रभ अपनी एक निमख ना मनो वसार रहाव गुण गोविंद नित गावी है अवगुण कटन हार बिन हर नाम ना सुख होए कर डिठे विस्थार सहजे सिफती रत्या भवजल उतरे पार तीर्थ वर्त लख संजमा पाईए साधु।

सदा सदा आराधी है। एहा मातव सेख मन तन मिठा तिस लगे, जिस मस्तक नानक लेख श्री राग महला पंजवा। संत जन हो

पाई है अपनी नजर ने हाल कर्म प्राप्त तिस हुए जिसनो हुए दयाल मेरे मन गुरजे वड्यावर ना कोए दूजा थाओ ना को सुजे गुर मेले सच सोए रहाव सगल पदार्थ तिस मिले जिन गुर डिठा जाए गुर चरनी जिन मन लगा सेवड भागी माए गुरदाता समरथ गुर गुर सब मह रहया समाए गुर परमेश्वर पार ब्रह्म गुर डुबदा लये तराए कित मुख गुर सालाही है करन कारण समरथ से मथे निचल रहे जिन गुर धारिया हाथ गुर अमृत नाम पी आलिया जन्म मरण का पथ गुर परमेश्वर सेविया पै भंजन दुख लथ सतगुर गहर गंभीर है सुख सागर अग खंड जिन गुर सेविया अपना जम दूत ना लागे डंड गुर नाल तुल ना लगे खोज दिथा ब्रह्मांड नाम निदान सतगुर दिया सुख नानक मन मेहमंड श्री राग महला पंजवा मिठा करके खाया कौड़ा उपजया साद भाई मीत सुरद किए बिख्या रचया बाद जांदे बिलमना होवे विण नावै विस्माद मेरे मन सतगुर की सेवा लाग जो दिसै सो विनसना मन की मत

हर जानो हर लिव उदरी, नानक सद बलिहार। श्री राग महला पंजवां, कर दूजा गोयल आया गोयली, क्या

किसह त्यागु मन मेरे सर्व को आधार गुर के चरण मन मह त्याई छोड़ सगल सियाणपा साच शब्द लिव लाए रहाउ दुख कलेश ना पौ ब्या।

आधारे पाप सगली जाहि हौ तिनके बलिहार ने जे गुर की पैरी पाहि साध संगत मन वसे साच हर का नाऊ से वड भागी नानका जिन्ना मन एहो पाओ श्री राग महला पंजवा संच हर धन पूज सतगुर छोड़ सगल विकार जिन तो साज सवारिया हर सिमर होए उदार जप मन नाम एक अपार प्राण मन तन जिनह दिया हृदय का आधार रहाओ काम क्रोध अहंकार माते व्याप्या संसार पौ संत सरणी लाग चरणी मिटै दुख अंधार सत

जिस दे प्रभ निरंकार जो दिसे सो सगल तू है पसरे आपासार। कहो नानक गुर परम काटिया सगल

मान अभमान मंदे सो सेवक नाही, तात समदर्शी संत हो कोई कोट मंदाही। कहन कहावन एहु कीर्त करला, कथन कहन ते मुक्ता।

हर हर नाम संभाल, साधु संगत मन वसे, पूर्ण होए काल रहाउ। गुर समरथ अपार गुर, वडभागी दर्शन होए, गुर अगोचर निर्मला, गुर जीवड़ अवर ना कोई, गुर करता गुर करनहार।

कीतड़ा लिखना जाने कोई जे सौ शायर मेलिया तिल ना पुजावे रोई कीमत किने ना पाईया सब सुन सुन आखे सोई पीर पै कामर सालक साधक सुहदे और शहीद सेख मसायक काजी मुल्ला दर दरवेश रसीद बरकत तिन कहो अगली पढ़दे रहन दरूद पुछ ना साजे पुछ ना काही

तेरे जुगह जुगह भंडार महला पहला सबे कंत महलियां सगलियां करह श्रृंगार गणत गणावने।

दीपक शब्द विगासिया राम नाम उरहार नारी अंदर सोहनी मस्तक मणि प्यार सुभा सुरत सुहावनी साचे प्रेम अपार बिन पेर पुरख ना जानी साचे गुर कहित प्यार निस अंधारी।

रहाउ। सब जग बांधु काल को बिन गोरे काल अपार, सच रते से उबरी दुबदहा छोड़ विकार। हौ किन कै बलिहार ने दर सचै सत्यार, सी चाने ज्यो पंखिया जाली बद कहात। गुर राखे से उबरे होर फाथे चो गै साथ, बिन नावे चुन सुटिए कोई ना संगी साथ। सचो सच्चा आखिए सच्चे सच्चा थान, जिन्नी सच्चा मन्या तिन मन सच ध्यान। मन मुख सूचे जानिए है गुरमुख जिन्ना ज्ञान। सतगुर अगे अरदास कर साजन दे मलाए, साजन मिले सुख पाया जमदूत मोए बिख खाए। नावै अंदर हौ वसा नाओ वसै मन आए, बाज गुरु गोबार है बिन शब्द बूझ ना पाए। गुरमति परगास हुई सच।

सोहनी फिर रावे गुण नाल कामन कामना आवई खोटी अवगणियार ना सुख पेय सोहरे झूठ जली बेकार आवन मंजन डाकड़ो छोड़ी कंत वसार फिर की नार सुहावनी मुत्ती सो के तसाद फिर कै कामना आवई बोले फादिल बाद दर कर ढोई न लह छूटी दूजे साध पंडित वाच है पोथियां ना बूझ विचार अन को मत्ती दे चल है माया का व्यापार कथनी झूठी जग पवे रहनी शब्द सो सार केते पंडित जोत की वेदां करह विचार वाद विरोध सलाहणी।

प्रगट सब जानिए जे मन राखै ठाई ऐसा सतगुरु जी मिले ता सहजे लय मलाय कस कस वट्टी लाइए परखे हित चित लाए खोटे ठहर ना पाईनी खरे खजाने पाए आस अंदेसा।

दुख अगला मनमुख बूझना होए सुख दुख सम कर जानिए शब्द भेद सुख होए वेद पकारे वाचिए बाणी ब्रह्म व्यास मुन जन सेवक साधिका नाम रते गुणतास सच रते से जिन गए हौ सद बलिहारे जास चहु जुग मैले मल भरे जिन मुख नाम ना होए भगती पाए विहूणिया मुह काला पत खोए जिन्नी नाम वसारिया अवगण मुठी रोए खोजत खोजत पाया डर कर मिले मिलाए आप पछाण घर वसै हों मैं तृष्णा जाए नानक निर्मल उजले जो राते हर नाए श्री राग महला पहला सुन मन भूले बावरे गुर की चरणी लाग हर जप नाम त्याए तू जम डर पै दुख भाग दुख घणो दोहागनी क्यों फिर रहे सुहाग भाई रे अवर नाही मैं थाऊं मैं तन नाम निदान है गुर दिया बल जाऊं रहाऊ गुरमत पत साबास तिस तिस कै संग मलाऊं तिस बिन घड़ी ना जीव।

शब्द रत्ते से निर्मले तज काम क्रोध अहंकार नाम सलाहन सद सदा हर राख है उरतार सो क्यों मनहु विसारी है सब जिया का आधार शब्द मरे सो मर रहे फिर मरे ना दूजी वार शब्द ही ते पाई है हर नामे लगे प्यार बिन शब्द जग भूला फिर मर जन्मे वारु वार सब सलाह है आपको बड़ो बडेरी होए गुर बिन आप ना चीनी है कहे सुने क्या होए नानक शब्द पछा।

है, कथन ना पाया जाए, व्यापारी बन जा रिया, आए वजून खाए, कार कमाव है सच की, लाहा मिलर जाए, पूंजी साची गुर मिले, ना तिस तिल ना तमाई, गुरमुख तोल तोलाए सी, सच तराजी तोल, आसा मनसा मोहनी, गुरठा की सच बोल, आप तलाए तोल सी, पूरे पूरा तोल, कथन कहन ना छुट्टी है, ना पढ़ पुस्तक पार, काया सोच ना पाई है, बिन हर भगत प्यार, नानक नाम ना विसरे, मेले गुर करतार, श्री राग महला पहला, सतगुर पूरा जे मिले, पाईए रतन विचार, मन दी जय गुर अपने, पाईए सर्ब प्यार, मुक्त पदार्थ पाईए, अवगण मेटन हार, पाई रे गुर बिन ज्ञान ना होए, पूछो हो ब्रह्मे नारद, वेद ब्यास कोई रहाओ, ज्ञान ध्यान तुन जानिए, अकथ कहावे सोए, सफलो बिरख हरियावला, शाम कनेरी होए, लाल जवे हरमान की, गुर पंडारे सोए, गुर पंडारे पाईए, निर्मल नाम प्यार, साचो वखर संचिए, पूरे कर्म अपार, सुखदाता दुख मेटनो, सतगुर असुर संगार, पवजल बिखम डरावनु, ना कंदी ना पार, ना बेड़ी ना तुलहड़ा, ना तिसवान्य मलार, सतगुर पै का बोहिथा, नदरी पार उतार, एक तिन प्यारा विसरे, दुख लागे सुख जाए, जिहवा जलो जलावनी, नाम ना जपै रसाए, घट बिरसे दुख अगलो, जम पकड़े पछताए, मेरी मेरी कर गए, तन तन कलत न साथ, बिन नावे तन बाद है, भूलो मार गयाथ, साचो साहिब सेवी है, गुरमुख अकथो काथ, आवे जाए पवाई है, पय किरत कमाए, पूर्व लिखिया क्यों

जल बलो लोभ जलो अभमान नानक शब्द विचारी है पाइये गुणी निदान श्री राग महला पहला रे मन ऐसी हर स्यों प्रीत कर जैसी जल कमले।

बख्शे भगत भंडार रहाव। रे मन ऐसी हर स्यों प्रीत कर, जैसी मछली नीर ज्यो अधिको त्यों सुख घणो, मन तन शांत शरीर बिन जल घड़ी ना जीवै, प्रभ जाने अब पीर। रे मन ऐसी हर स्यों प्रीत कर, जैसी चात्रक में सर पर थल हरियावली, एक बूंद ना पवई के, कर्म मिले सो पाई है।

खवे दुध कौ खफण ना दे आपे मेल वशुन्या सच वडे आई दे रे मन ऐसी हर स्यो प्रीत कर जैसी चकवी सूर खिन पल नींद ना सोवई जाने दूर हजूर मन मुख सो जी ना पवे गुरमुख सदा हजूर मन मुख गणत गणावणी करता करे सो होए ता की कीमत ना पवे जे लोचे सब कोए गुरमत होए ता पाईए सच मिले सुख होए सच्चा नेहो ना तुटई जे सतगुर भेटै सोए ज्ञान पदार्थ पाईए त्रिभवन सोजी होए निर्मल नाम ना विसरै।

माया परम भुलाई, परम भुली दोहागणी, ना फिर अंक समाई, रहाउ भूली फिरै दसंतरी, भूली ग्रह तज जाय, भूली डूंगर थल चढ़ै, पर मैं मन डोलाय, तुरहु विछुनी क्यों मिलै, गर्भ मुठी बिललाय, बिछड़िया गुरमेल सी, हर अस नाम प्यार, साच सहज सोभा कणी, हर गुण नाम आधार, ज्यों पावै त्यों रख तू, मैं तुझ बिन कवन पतार, अखर पढ़ पढ़ भुलिए, भेखी बहुत अभमान, तीरथ नाता क्या करे, मन मह मैल गुमान, गुर बिन किन समझाई है, मन राजा सुनतान, प्रेम पदार्थ पाई है, गुरमुख तत विचार, सा तन आप गवाया।

मैं तुझ बिन अवर न पावई, तू पावह सुख होए रहाउ। नाम सलाही रंग सिउ, गुर कै शब्द संतोख। जो दिसै सो चलसी,

अंदर जमिया आसा रस कस खाई आसा बंद चलाई है मुहे मुह चोटा खाई अवगण बद्दा मारी है छूटे गुरमत नाई सर्वे थाई एक तू ज्यों भावे त्यों राख गुरमत साचा मन वसै नाम भलो पत साख हौ मैं रोग गवाई है शब्द सच्चै सच पाख आकाशी पाताल तू त्रे भवन रहया समाय आपे भगती पाओ तू आपे मिलह मिलाय नानक नाम ना विसरै ज्यों भावै तिवें रजाय श्री राग महला पहला राम नाम मन बेदया अवर के करी विचार शब्द सुरत सुख उपजै प्रभ रातो सुख सार ज्यों भावै त्यों राख तू मैं हर नाम आधार मन रे साची खसम रजाय जिन तन मन साज सिंगारिया इस सेती लिवलाए रहाओ तन बै संतर होमी है एक रत्ती तोल कटाए तन मन समधा जे करी अन दिन अग्न जलाए हर नामै तुल ना पुजई जे लख कोटि कर्म कमाए अर्ध शरीर कटाई है सिर करवत तराए तन है मन चल गाली है पी मन ते रोग ना जाए हर नामै तुल ना पुजई सब डिठी ठोक बजाए कंचन के कोट दत करी बहु है वर गैवर दान पूम दान गौआ कणी पी अंतर गर्भ गमान राम नाम मन बेदिया गुर दिया सच दान मन हठ बुद्धि।

मन मुख जानै आपणी धियां पूत संजोग नारी देख भगासी नाले हरख सो सोग गुरमुख शब्द रंगावले अहनस हर रस भोग चित चलै वित जावणु साकत डोल डोलाय बाहर ढूंढ विगुचियै कर्म है वस्त सुथाय मनमुख होमै करमुसी गुरमुख पल्लै पाए साकत निर्गुण आरिया अपना मूल पछाण रखत बिंद का इहो तनु अग्नि पास फिराण पवन कै वस देवरी मस्तक सच निशान बहुता जीवन मंगी है मुआ ना लोड़ै कोई सुख जीवन तिस आखी है जिस गुरमुख वस्या सोय नाम विहूणे क्या गणी जिस हर गुर दर्श ना होय ज्यों सुपने निस भुली है जब लग निंदरा होय इं सरपन कै वस जियड़ा अंतर हों मैं दोय गुरमत होए विचारी है सुपना इहो जग लोय अगन मरै जल पाई है जो बारक दूदै माय बिन जल कमल सोना थी है बिन जल मीन मराय नानक गुरमुख हर रास

बिन सतगुरु को मग ना जाने अंधे ठौर ना काई हर सुख दाता मन नहीं वसिया अंत गया पछताई पेई अड़ै जग जीवन दाता गुरमत मन वसाया अन दिन भगत करह दिन राती हम मैं मोच काया जिस स्यों राता तैसो हुए सच्चे सच समाया आपे नदर करे पाहु लाए गुर शब्दी बीचार सतगुर सेवे सहज उपजे हम मैं तृष्णा मार हर गुण दाता सद मन वसै सच रखिया उर धार प्रभ मेरा सदा निर्मला मन निर्मल पाया जाई नाम निधान हर मन वसै हम मैं दुख सब जाई सतगुर शब्द सुनाया हम सद बलिहारे जाऊं अपने मन चित कह कहाई बिन गुरे आप ना जाई हर जियो भगत वशल सुख दाता कर कृपा मन वसाई नानक सोभा सो

रहाउ। बिन सतगुर प्रतीत न आवई, नाम न लागु पाउ, सुपनह सुख न पावी, दुख मह सवै समाई। जे हर हर कीचै बहुत लोची है, किरत न मेटिया जाय। हर का पाणा भगती मन्या, से भगत पए दर थाय। गुर शब्द दड़ावै रंग स्यों, बिन कृपा लया ना जाय। जे सौ अमृत नीरिय, पी बिख फल लागै ताय। से जन सच्चे निर्मले, जिन सतगुर नाल प्यार। सतगुर का भाणा कमावंदे, बिख होमै तज बेकार। मन हठ कितै उपाय ना छूटिय, सिमरत शास्त्र सो दोह जाय। मिल संगत साधु उभरे, गुर का शब्द कमाए। हर का नाम

पाई है कर्म प्राप्त होई। श्री राग महला तीजा पंखी बिरख सुहावड़ा सच चुगै गुर पाई।

गुर कै पाणे जे चल है ता अन दिन राचे है हर नाय रहाउ। पंखी बिरख सुहावड़े उड़ है चहो दिस जाहे, जेता उड़ है दुख घणे नित दाज है तै बिल लाहे। बिन गुर महल ना जापई ना अमृत फल पाहे, गुरमुख ब्रह्म हरियाव।